नमस्कार, हम विविध भारती से बोल रहे हैं। आज सोमवार है, शक संवत 1948 के आषाढ़ मास की 29वीं तिथि, तदनुसार 20 जुलाई सन 2026। हम अपने श्रोताओं का स्वागत करते हैं।

आप सुन रहे हैं विविध भारती राष्ट्रीय सेवा देश की सुरीली धड़कन। श्रोताओं, हम आपको बता दें कि हमारे कार्यक्रम डीटीएच और इंटरनेट स्ट्रीमिंग पर उपलब्ध हैं। इसके अलावा न्यूज ऑन एआईआर ऐप के माध्यम से आप हमारे कार्यक्रम दुनिया के किसी भी कोने में दिन के किसी भी समय सुन सकते हैं।

आप सुन रहे हैं विविध भारती राष्ट्रीय सेवा देश की सुरीली धड़कन। सुबह के 6 बजने वाले हैं। थोड़ी देर में आप सुनेंगे हिंदी में समाचार, जिन्हें हम आकाशवाणी के दिल्ली केंद्र से रिले करेंगे।

0: समाचार आकाशवाणी समाचार के साथ मैं मुकेश कुमार बल। संसद का मानसून अधिवेशन आज से शुरू हो रहा है। ये 13 अगस्त तक चलेगा। 25 दिन के अधिवेशन में सदन की 19 बैठक होंगी। इस दौरान कई महत्वपूर्ण विधेयक चर्चा और पारित करने के लिए सूचीबद्ध हैं। इससे पहले सरकार ने कल संसद भवन में सर्वदलीय बैठक बुलाई। रक्षा मंत्री राजनाथ सिंह ने बैठक की अध्यक्षता की। 40 राजनीतिक दलों के 50 से अधिक नेता बैठक में शामिल हुए। बैठक के पश्चात संसदीय कार्य मंत्री किरेन रिजिजू ने सभी राजनीतिक दलों से महत्वपूर्ण मुद्दों पर सकारात्मक चर्चा करने का आग्रह किया।
1: कोई पार्टी या कोई मेंबर अपना जो भी बात रखना चाहता है पार्लियामेंट में पूरा रख सकते हैं। मैं विपक्ष के साथियों को कहना चाहता हूं कि पहले में भी पार्लियामेंट को चलाने में दिक्कत आई थी क्योंकि हंगामा बहुत ज्यादा हुआ था। लोग चाहते हैं कि पार्लियामेंट सुचारू रूप से चले, इसलिए मैं फिर से सब पार्टी के नेताओं को मैं अनुरोध करता हूं कि पार्लियामेंट अच्छी तरह से चले, इसमें सब लोग योगदान करें।
0: लोकसभा अध्यक्ष ओम बिरला ने कल कार्य मंत्रणा समिति की बैठक बुलाई। इस दौरान सरकार और विभिन्न राजनीतिक दलों के सदस्यों ने सत्र में उठाए जाने वाले विधायी और अन्य मुद्दों पर चर्चा की। सदस्यों ने जनहित और राष्ट्रीय महत्व के कई मुद्दों पर चर्चा का सुझाव दिया। श्री बिरला ने रचनात्मक चर्चा, सार्थक सहयोग और संसदीय परंपराओं के उच्च मानदंडों का पालन करने के महत्व पर बल दिया। उन्होंने सभी दलों से अपील की कि वे कार्यवाही को सुचारू और व्यवस्थित ढंग से चलाने में पूरा सहयोग दें। दिल्ली पुलिस ने स्पष्ट किया है कि आज से शुरू हो रहे संसद अधिवेशन के मद्देनजर नई दिल्ली जिले में किसी भी विरोध मार्च या जुलूस के लिए किसी ने कोई अनुमति नहीं मांगी है और ना ही दी गई है। पुलिस ने सोशल मीडिया पोस्ट में कहा कि क्षेत्र में भारतीय

0: नागरिक सुरक्षा संहिता 2023 की धारा 163 लागू है। इसीलिए जंतर मंतर को छोड़कर क्षेत्र में विरोध मार्च, जुलूस, प्रदर्शन और 5 या अधिक व्यक्तियों के जमावड़े पर सख्त प्रतिबंध है। मध्य प्रदेश विधानसभा का मॉनसून सत्र आज से शुरू हो रहा है। इस सत्र में समान नागरिक संहिता UCC विधेयक पेश किया जाएगा। मंत्रिमंडल ने कल इस विधेयक के मसौदे को सर्वसम्मति से मंजूरी दी। भोपाल में मुख्यमंत्री डॉक्टर मोहन यादव की अध्यक्षता में ये फैसला किया गया। मुख्यमंत्री ने कहा कि समान नागरिक संहिता से राज्य में सभी को समान दर्जा मिलेगा। राष्ट्रपति द्रौपदी मुर्मू 3 देशों मोल्दोवा, उत्तरी मैसेडोनिया और रोमानिया की यात्रा पर हैं। इस यात्रा का उद्देश्य व्यापार, निवेश, प्रौद्योगिकी, नवाचार, शिक्षा तथा जनसंपर्क क्षेत्र में सहयोग बढ़ाना है। इन 3 देशों की यात्रा द्विपक्षीय संबंधों को बढ़ावा देने की दृष्टि से महत्वपूर्ण मानी जा रही है। रोमानिया और मोल्दोवा में भारत के राजदूत डॉ. मनोज कुमार महापात्रा ने राष्ट्रपति की यात्रा को ऐतिहासिक बताया। उन्होंने कहा कि भारत यूरोपीय संघ मुक्त व्यापार समझौते के संपन्न होने से आने वाले वर्षों में इन देशों के साथ द्विपक्षीय आर्थिक साझेदारी और मजबूत होगी। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने 58वें अंतर्राष्ट्रीय रसायन विज्ञान ओलंपियाड में 4 स्वर्ण पदक जीतने पर भारतीय टीम को बधाई दी है। सोशल मीडिया पोस्ट में श्री मोदी ने कहा कि ये प्रतिष्ठित वैश्विक प्रतियोगिता में भारत का अब तक का सर्वश्रेष्ठ प्रदर्शन है। श्री मोदी ने लिथुआनिया में 37वें अंतर्राष्ट्रीय जीव विज्ञान ओलंपियाड में स्वर्ण सहित सभी 4 पदक जीतने पर भारतीय टीम के सभी सदस्यों को भी बधाई दी। प्रधानमंत्री ने कहा कि ये उपलब्धि अनगिनत युवाओं को विज्ञान का अध्ययन करने और उसमें उत्कृष्टता प्रदान करने के लिए प्राप्त करने के लिए प्रेरित करेगी। स्पेन ने अतिरिक्त में मौजूदा चैंपियन अर्जेंटीना को 1-0 से हराकर फीफा विश्व कप जीत लिया है। न्यूयॉर्क न्यूजर्सी स्टेडियम में फाइनल में स्पेन के सब्स्टिट्यूट फेरान टोरेस ने 106वें मिनट में गोल करके अपनी टीम को जीत दिलाई। 90 मिनट तक संघर्षपूर्ण और रोमांचक मैच में कोई गोल नहीं हो पाया था। ये स्पेन का दूसरा पुरुष फीफा विश्व कप का खिताब है। इससे पहले उसने 2010 में खिताब जीता था। इस जीत के साथ स्पेन एक ही समय में पुरुष और महिला फुटबॉल विश्व कप विजेता पहला देश बन गया है। और पुरुष क्रिकेट में इंग्लैंड ने लंदन के लॉर्ड्स में तीसरे और निर्णायक एक दिवसीय मैच में भारत को 27 रन से हराकर श्रृंखला 2-1 से जीत ली है। इसके साथ ही ये समाचार बुलेटिन समाप्त हुआ।
1: ये है विविध भारती।

नमस्कार, प्रस्तुत है कार्यक्रम वंदनवार। आज का चिंतन, विदुर नीति शतकम के अनुसार सत्येन रक्षते धर्मो, विद्या योगेन रक्षते, मृजया रक्षते रूपम, कुलम वृत्तेन रक्षते। अर्थात सत्य के द्वारा धर्म की रक्षा होती है, विद्या की रक्षा अभ्यास से होती है, रूप की रक्षा स्वच्छता से होती है और कुल की रक्षा चरित्र द्वारा होती है। आइए अब सुने भक्ति संगीत।

आप सुन रहे हैं विविध भारती राष्ट्रीय सेवा देश की सुरीली धड़कन झरोखा के अंतर्गत। सुनिए आज दिन भर प्रसारित होने वाले कार्यक्रमों का संक्षिप्त विवरण। झरोखा के ठीक बाद सुबह 6:35 से सुनेगा श्री रामचरित मानस गान भाग 255। सुबह 6:45 और संध्या 6:45 से आपको सुनवाएंगे कार्यक्रम संगीत सरिता। इन दिनों आप सुन रहे हैं श्रृंखला सायंकालीन संधि प्रकाश राग। कलाकार हैं गायिका विदुषी आरती अंकलीकर। इस श्रृंखला की 8वीं कड़ी आज प्रसारित की जाएगी, प्रस्तुति रूपाली रूपक की। सुबह 7 बजे से भूले बिसरे गीत, 7:30 से हम हैं राही प्यार के। सुबह 8:15 से त्रिवेणी, प्रस्तुतकर्ता अनुश्री पाठक। चित्रलोक ये कार्यक्रम सुन सकेंगे सुबह 8:30 से। सुबह 9:30 से सुनिएगा आज के फनकार, ये कार्यक्रम केंद्रित होगा गायिका गीता दत्त पर, प्रस्तुतकर्ता रमेश गोखले। सुबह 10 बजे से पिटारा के अंतर्गत उजाले उनकी यादों के, इसके अंतर्गत फिल्म निर्देशक लेखिका नाटककार पद्म भूषण सई परांजपे से यूनुस खान की बातचीत का पहला भाग सुन सकेंगे। संपादन सहयोग नेहा शर्मा का, प्रस्तुतकर्ता तेजश्री कांबले। सुबह 11 बजे और रात्रि 11 बजे से रंग तरंग, दिन में 12:05 से यादों की महफिल सुरीला सफर, इस कार्यक्रम का वक्त होता है दोपहर 1 बजे से। दोपहर 2 बजे से त्रिवेणी,

झरोखा शाम 6:30 से 6:35 से संध्या रंजन, शाम 7 बजे से प्रसारित किया जाएगा फौजी साथियों का कार्यक्रम जयमाला, शाम 7:45 से इंद्रधनुष के अंतर्गत एक ही फिल्म से, इसके अंतर्गत आज की फिल्म है दो बदन। रात 8 बजे से हवा महल के अंतर्गत सुनेगा हास्य नाटिका पड़ोसी का नाता, लेखन दिलीप सिंह का, निर्देशन कुमुद नागर का।

रात 8:15 से चित्रलोक आपके लिए ये कार्यक्रम सुन सकेंगे रात 9 बजे से। रात 9:30 से आज के फनकार ये कार्यक्रम केंद्रित होगा अभिनेता नसीरुद्दीन शाह पर, प्रस्तुतकर्ता रमेश गोखले। रात 10 बजे से छाया गीत, आलेख एवं स्वर जयंत पात्रिकर का, प्रस्तुतकर्ता राघवेंद्र सिंह नेगी। रात 10:30 से आपको सुनवाएंगे ढलती जाए रात, और रात 11 बजे से रंग तरंग। आपको याद दिला दें, 9:30 से आज के फनकार आप सुनेंगे ये कार्यक्रम केंद्रित होगा गायिका गीता दत्त पर, और रात 9:30 से जो आज के फनकार सुनेंगे वो केंद्रित होगा अभिनेता नसीरुद्दीन शाह पर। अभी आप सुन रहे थे झरोखा के अंतर्गत कार्यक्रम विवरण। आप सुन रहे हैं विविध भारती राष्ट्रीय सेवा देश की सुरीली धड़कन। आइए सुने श्री रामचरित मानस गान भाग 255।

रावण के साथ श्रीराम की कुटी के समीप पहुंचकर मारीच स्वर्ण मृग का रूप धारण कर लेता है। उस अत्यंत विचित्र और सुंदर हिरण को देख सीता जी के मन में उसकी खाल प्राप्त करने की इच्छा बलवती हो उठती है। उनके आग्रह करने पर श्रीराम उनकी रखवाली का दायित्व लक्ष्मण को सौंपकर स्वर्ण मृग के आखेट को निकल पड़ते हैं। जिन प्रभु की महिमा का बखान करने में वेद भी असमर्थ हैं, वही एक कपट मृग के पीछे भाग रहे हैं। भागता छिपता मृग रूपी मारीच उन्हें बहुत दूर ले जाता है। अंत में श्रीराम तीक्ष्ण वाण से मारीच की जीवन लीला समाप्त कर देते हैं। मन ही मन श्रीराम का स्मरण करते हुए मारीच घोर गर्जन के साथ लक्ष्मण को पुकारता है। विपत्ति सूचक पुकार सुनकर सीता जी के मन में आशंका उत्पन्न होती है। वह लक्ष्मण की अनुनय विनय की अवहेलना करके उन्हें बड़े भाई की सुधि लेने के लिए जाने को बाध्य कर देती है।

0: संधि प्रकाश रागों की श्रृंखला के अंतर्गत आजकल आप सुन रहे हैं सायंकालीन गाए बजाए जाने वाले रागों की चर्चा। इसे प्रस्तुत कर रही हैं मशहूर गायिका आरती अंकलीकर। इस श्रृंखला की आठवीं और अंतिम कड़ी में आज सुनिए राग श्री।
1: संगीत सरिता के श्रोताओं को आरती अंकलीकर का प्यार भरा प्रणाम। श्रोताओं, हम इस संधि प्रकाश रागों की चर्चा के अंतिम चरण में आ पहुंचे हैं। इसके पहले मैं आप श्रोताओं से एक बात जरूर कहना चाहूंगी कि ये मेरी खुशनसीबी समझती हूं कि मैं आज यहाँ आके हमारे अभिजात संगीत के बारे में थोड़ी कुछ बातें आपको बता सकी, और इसी श्रृंखला का ये आखिरी भाग जो है रागश्री, बहुत ही खूबसूरत। और ये ऐसा राग है कि जिसके स्वर राग पूर्या धनाश्री से मिलते जुलते हैं, बिल्कुल मिलते ही हैं, लेकिन इसका चलन बिल्कुल अलग है और इसका रंग बिल्कुल अलग है पूर्या धनाश्री से। इस राग में भी रिखब और धैवत कोमल हैं, मध्यम तीव्र है। रागश्री जो है संधि प्रकाश राग, पूर्वी ठाट से इसका जन्म होता है। इसकी जाति ओडव संपूर्ण है और इसका वादी स्वर है रिखब और संवादी है पंचम। जब पंचम और रिखब एक दूसरे के साथ संवाद करते हैं तब रागश्री खिलता है। इसका आरोह अवरोह इस प्रकार है।

अभी आप सुन रहे थे सायंकालीन संधि प्रकाश रागों की श्रृंखला की आठवीं और अंतिम कड़ी। इसे प्रस्तुत किया प्रसिद्ध गायिका आरती अंकलीकर ने। तबला संगति ओंकार गुलवाड़ी की थी और हारमोनियम पर साथ दे रहे थे सुधीर नाइक। कार्यक्रम में प्रस्तुति सहयोग वीणा राय सिंघानी का था।

आप सुन रहे हैं विविध भारती राष्ट्रीय सेवा देश की सुरीली धड़कन, भूले बिसरे गीत। इस कार्यक्रम के लिए कीजिए बस थोड़ा सा इंतजार।

आप सुन रहे हैं विविध भारती राष्ट्रीय सेवा देश की सुरीली धड़कन। प्रस्तुत है कार्यक्रम भूले बिसरे गीत। सभी सुनने वालों को राजेश का प्यार भरा नमस्कार। श्रोताओं, आज सुप्रसिद्ध गायिका गीता दत्त जी की पुण्यतिथि है। आज भूले बिसरे गीत कार्यक्रम में आपको सुनवा रहे हैं गीता दत्त जी के द्वारा ही गाए गए कुछ चुनिंदा गीत। प्रोग्राम की शुरुआत में लीजिए सुनिए गीता दत्त द्वारा गाया हुआ गीत। हावड़ा ब्रिज फिल्म से कमर जलालाबादी के हैं बोल, ओपी नैयर की है तर्ज़।

हमारी अगली पेशकश गीता दत्त और साथियों की आवाजों में लाजवंती फिल्म से। गीतकार हैं मजरूह सुल्तानपुरी और संगीतकार हैं एसडी बर्मन।

0: श्रोताओं, अभी आप सुन रहे थे गीता दत्त और सखियों की आवाजों में लाजवंती फिल्म का गाना। विविध भारती राष्ट्रीय सेवा देश की सुरीली धड़कन से अभी आप सुन रहे हैं कार्यक्रम भूले बिसरे गीत। आइए सुनते हैं ये संदेश।
1: सुनिए,
2: कहिए,
3: सुनिए एक खुशखबरी,
2: कहिए ना,
3: आ गया है मौका सखियों को अपनी बात कहने का। सखियां फोन पर हमसे बताएं अपने दिल की बात और फरमाइश करें अपने पसंदीदा गानों की। सखियों के लिए सखियों द्वारा प्रस्तुत किया जाने वाला आप सबका पसंदीदा कार्यक्रम हेलो सहेली। इस कार्यक्रम की रिकॉर्डिंग होगी प्रत्येक मंगलवार को दिन में 11 बजे से 12 बजे के बीच। हेलो सहेली कार्यक्रम का प्रसारण होगा प्रत्येक शुक्रवार को दिन में 3 बजे से सिर्फ विविध भारती पर।
2: शुक्रिया, शुक्रिया।
3: रिकॉर्डिंग के लिए नोट कर लीजिए हमारा टेलीफोन नंबर 02240024662। तो उठाइए अपना टेलीफोन और कहिए हेलो सहेली और बताइए अपने दिल की बात, सुनिए अपने पसंद के गाने। अपने देश में बढ़ रही है यूरिन की समस्या, लोग परेशान हैं प्रोस्टेट की बीमारी से, जरूरी है सजगता और सचेत रहना।
4: यंग लोगों में जो होती है प्रॉब्लम वो ज्यादा करके अर्ज इनकॉन्टिनेंस है, जो कभी कभी स्ट्रेस के कारण, कभी कभी कैफीन वगैरह ज्यादा पदार्थ लेने के कारण, ये सब चीजों से वो कंट्रोल नहीं कर सकते जो काफी हद तक दवाई से कंट्रोल में आ सकता है, जिसे हम अर्ज इनकॉन्टिनेंस कहते हैं।
3: यूरोलॉजिस्ट डॉक्टर उमेश ओझा चर्चा करेंगे प्रोस्टेट और यूरिन से जुड़ी तमाम बीमारियों पर। तो सुनिए सेहतनामा 20 जुलाई शाम 4 बजे सिर्फ विविध भारती पर।
0: विविध भारती राष्ट्रीय सेवा देश की सुरीली धड़कन से अभी आप सुन रहे हैं कार्यक्रम भूले बिसरे गीत। लीजिए सुनिए गीता दत्त की आवाज में हिल स्टेशन फिल्म का गाना। SH बिहारी हैं, गीतकार और संगीतकार हैं हेमंत कुमार।

आपने ट्यून किया है भारत का नंबर वन मनोरंजन चैनल विविध भारती और कार्यक्रम चल रहा है भूले बिसरे गीत। लीजिए अब सुनिए गीता दत्त और मोहम्मद रफी की आवाजों में CID फिल्म का गाना, जहां निसार अख्तर हैं गीतकार और संगीतकार हैं OP नैयर।

0: हिंदी सिनेमा की कुछ कल्ट फिल्में उनके नाम पर हैं, स्पर्श, कथा, दिशा और चश्मे पर दूर।
1: उन्होंने कहा कि देखो, अब सिर्फ हम नौजवान तीनों दिखा रहे हैं, सिर्फ कॉलेज के युवक नहीं, उनके माँ बाप भी आए हैं, उनके चाचा चाची आए, एक दादी माँ डाली, बाप डाला, एक भाई डाला, वगैरह वगैरह, एक पान वाला डाला। सईद को पकड़ा लिया और उसने कहा फिर मुझे, वी हैव टू गो टू जामा मस्जिद, पुरानी दिल्ली जाना पड़ेगा। मैंने कहा पुरानी दिल्ली क्या करोगे जाके, पान वाले का अगर मुझे करना है रोल तो मुझे देखना नहीं चाहिए पान वाले वगैरह। तो मैंने कहा ये नसीर के बाद ये एक
0: और आ गया।
1: एक और आ गया।
2: कहा जल्दी बुलबुल, कोई और कर्जदार लग गया तेरे पीछे क्या?
3: अरे ललन मियां, आप काट देना रास्ता, अब मेरा काम नहीं होगा।
0: दास्तान सई परांजपे की, उजाली उनकी यादों के, 19 जुलाई से 9 अगस्त शाम 4 बजे सिर्फ विविध भारती पर।
4: सुनिए
0: 21 जुलाई गीतकार आनंद बख्शी की याद का दिन,
5: वो तेरे प्यार का।
0: 22 जुलाई पार्श्व गायक मुकेश का जन्मदिन,
6: मुबारक हो सबको समाये सोहा।
0: विविध भारती लेकर आ रहा है दो खास कार्यक्रम।
7: धीरे धीरे बोल कोई सुनना।
0: गीतकार आनंद बख्शी के बेटे राकेश आनंद बख्शी याद करेंगे अपने पिता को 21 जुलाई शाम 4 बजे।
8: उन्होंने क्या किया कि एक नौकरी पकड़ ली टाइम पास, एक सिनेमा हॉल था वहाँ पे पास में, पैसे नहीं चाहिए थे, फिल्म देखने को मिलता था फ्री में, वो छड़ी से जो उनको मार पड़ी है उसके बाद जबरदस्त मार पड़ी।
0: 22 जुलाई को स्टूडियो में होंगे दो गायक मुख्तार शाह और गोविंद मिश्र, जो गाएंगे मुकेश के ढेर सारे गाने।

0: रहती है।
1: और बताएंगे क्या जगह है मुकेश की उनके जीवन में।
2: वो उनकी तो एक दिल में छवि ऐसी है कि जिसको बोलते ना कि पूजा जाता है।
3: वो अगर होते तो शायद मैं पैर पकड़ के बैठा ही रहता।
1: याद रखिए 21 और 22 जुलाई शाम 4 बजे सिर्फ विविध भारती पर।
0: सुनो जी सुनो हमारी भी सुनो।
4: विविध भारती राष्ट्रीय सेवा देश के सुरीली धड़कन से भी आप सुन रहे हैं कार्यक्रम भूले बिसरे गीत। लीजिए अब सुनिए शैलेंद्र का लिखा और SD बर्मन का संगीतबद्ध किया गाना। आवाज है गीता दत्त की, फिल्म का नाम मुनीम जी।

0: बना अब नदी दुखा, अब नदी दुखा किसी की जान से न खेल रही अनाड़ी। दे दिया तू ले ले दिल, यूं नहीं तो छुप के मिल अनाड़ी अनाड़ी अनाड़ी।
1: जो जो जो तो ले ले ले दिन, यो यो यो नहीं तो तू तो मिल

0: तो चुपके मिल, तू हमारा हो जया अपना हमें बना। अब न जी दुखा, अब न जी दुखा, किसी की जान से न खेल रिया नारी। दे दया तू ले ले दिल, यूं नहीं तो चुपके मिल, अनाड़ी अनाड़ी अनाड़ी रे।
1: और अब आज के इस प्रोग्राम की आखिरी पेशकश गीता दत्त और लता मंगेशकर की आवाजों में पंचायत फिल्म से। शकील नुमानी हैं गीतकार और इकबाल कुरैशी हैं संगीतकार।

आप सुन रहे हैं विविध भारती राष्ट्रीय सेवा देश की सुरीली धड़कन। हम हैं राही प्यार के। इस कार्यक्रम के लिए कीजिए बस थोड़ा सा इंतजार।

आप सुन रहे हैं विविध भारती राष्ट्रीय सेवा देश की सुरीली धड़कन। प्रस्तुत है कार्यक्रम हम हैं राही प्यार के। सभी सुनने वालों को राजेश का प्यार भरा नमस्कार। प्रोग्राम की शुरुआत कर रहे हैं गीता दत्त और मोहम्मद रफी की आवाजों में काला बाजार फिल्म के गाने के साथ। शैलेंद्र के हैं बोल और एस डी बर्मन की है तर्ज।

0: अरे सुनो, कल 3 बजे की टिकट बुक कर लूँ? सब लोग कह रहे हैं कि वो मूवी बहुत अच्छी है।
1: 3 बजे? मैं तो 3 बजे बिजी हूँ, शाम का शो बुक कर लो।
0: यार ऐसा क्या कर रही हो तुम कल 3 बजे?
1: कमाल है, इतना भी नहीं समझते। अरे 3 बजे हम सब मिलकर सुनते हैं सखी सहेली।
2: विविध भारतीय राष्ट्रीय सेवा देश की सुरीली धड़कन से अभी आप सुन रहे कार्यक्रम हम हैं राही प्यार के। लीजिए अब सुनिए शैलेंद्र का लिखा और शंकर जयकिशन का संगीतबद्ध किया गाना। आवाजें हैं गीता दत्त और मोहम्मद रफी की। फिल्म का नाम लव मैरिज।

देके घर आए, घर आ

अगला गाना हमने लिया है मिस्टर एंड मिसेस 55 फिल्म से, गीता दत्त और मोहम्मद रफी की आवाजें, मजरूह सुल्तानपुरी की बोल और तर्ज ओपी नैयर की।

आपने ट्यून किया है भारत का नंबर वन मनोरंजन चैनल विविध भारती और कार्यक्रम चल रहा है हम हैं राही प्यार के। लीजिए अब सुनिए किशोर कुमार और लता मंगेशकर की आवाजों में आप आए बाहर आई फिल्म का गाना। आनंद बख्शी हैं गीतकार और संगीतकार हैं लक्ष्मीकांत प्यारेलाल।

0: 21 जुलाई गीतकार आनंद बख्शी की याद का दिन।
1: वो तेरे प्यार का।
0: 22 जुलाई पार्श्व गायक मुकेश का जन्मदिन।
2: मुबारक हो सबको समाये सोहा।
0: विविध भारती लेकर आ रहा है दो खास कार्यक्रम।
3: धीरे धीरे बोल कोई सुनना।
0: गीतकार आनंद बख्शी के बेटे राकेश आनंद बख्शी याद करेंगे अपने पिता को 21 जुलाई शाम 4 बजे।
4: उन्होंने क्या किया कि एक नौकरी पकड़ ली टाइम पास। एक सिनेमा हॉल था वहाँ पे पास में, पैसे नहीं चाहिए थे, फिल्म देखने को मिलता था फ्री में। वो छड़ी से जो उनको मार पड़ी है उसके बाद जबरदस्त मार पड़ी।
0: 22 जुलाई को स्टूडियो में होंगे दो गायक मुख्तार शाह और गोविंद मिश्र, जो गाएंगे मुकेश के ढेर सारे गाने।

0: और बताएंगे क्या जगह है मुकेश की उनके जीवन में।
1: वो उनकी तो एक दिल में छवि ऐसी है कि जिसको बोलते ना कि पूजा जाता है।
2: वो अगर होते तो शायद मैं पैर पकड़ के बैठा ही रहता।
0: याद रखिए 21 और 22 जुलाई शाम 4 बजे सिर्फ विविध भारती पर।
3: सुनो जी सुनो हमारी भी सुनो।
4: आपने

ज्वाइन किया है भारत का नंबर वन मनोरंजन चैनल विविध भारती और कार्यक्रम चल रहा है हम है राही प्यार के। और आज के इस प्रोग्राम की आखिरी पेशकश दिलेक मंदिर फिल्म से उसका शीर्षक गीत रफी मोहम्मद रफी और सुमन कल्याणपुर की आवाजें, हसरत जयपुरी की बोल और शंकर जयकिशन की है तर्ज।

श्रोताओ, अभी आप सुन रहे थे मोहम्मद रफी और सुमन कल्याणपुर की आवाजों में दिल एक मंदिर फिल्म का गाना। गीतकार थे असल जयपुरी और संगीतकार थे शंकर जयकिशन। इस गाने के साथ ही आज का हम हैं राही प्यार के

आप सुन रहे हैं विविध भारती राष्ट्रीय सेवा देश की सुरीली धड़कन। सुबह के 8 बजने वाले हैं, थोड़ी देर में आप सुनेंगे समाचार जिन्हें हम आकाशवाणी के दिल्ली केंद्र से रिले करेंगे।

0: आप परेशानियों से घिरे हैं, मन भारी है और कोई रास्ता नजर नहीं आ रहा, याद रखें समाधान आपके पास है। टेलीमानस के निशुल्क नंबर 14416 पर कॉल करें। कहीं से भी कभी भी 24 घंटे यह सुविधा उपलब्ध है। यहाँ आपकी बात सुनी जाती है, समझी जाती है और आपको सही दिशा दी जाती है। आप अकेले नहीं है, मदद बस एक कॉल दूर है।
1: नमस्कार, आकाशवाणी से समाचार प्रभात के साथ मैं मुनीश शर्मा। मुख्य समाचार। संसद का मॉनसून अधिवेशन आज से शुरू हो रहा है। सरकार ने सदन के सुचारू कामकाज के लिए सभी राजनीतिक दलों से सहयोग का आग्रह किया। राष्ट्रपति द्रौपदी मुर्मू आज चिसिनाओ में मोल्दोवा की राष्ट्रपति माइया संधू के साथ प्रतिनिधिमंडल स्तर की वार्ता करेंगे। मध्य प्रदेश मंत्रिमंडल ने समान नागरिक संहिता विधेयक को मंजूरी दी। जनजातीय समुदायों को इसके दायरे से बाहर रखा जाएगा। जम्मू कश्मीर के राजौरी और पुंछ जिलों में अचानक बाढ़ और भूस्खलन से 11 लोगों की मृत्यु, 8 लोग लापता। अमरीका ने 9वीं रात भी ईरान पर हमले किए। हॉर्मुज जलडमरू मध्य में तनाव गहराया और स्पेन ने फीफा विश्व कप जीता। खिताब का बचाव करने उत्तरी अर्जेंटीना को 1-0 से हराया। और अब समाचार विस्तार से। संसद का मॉनसून अधिवेशन आज से शुरू हो रहा है। ये 13 अगस्त तक चलेगा। हमारे संवाददाता ने बताया है कि 25 दिन के अधिवेशन में सदन की 19 बैठकें होंगी।
2: संसद के मानसून सत्र के दौरान कई महत्वपूर्ण विधेयकों पर चर्चा किया जाएगा। आज लोकसभा में सर्वोच्च न्यायालय न्यायाधीश संख्या संशोधन विधेयक 2026 पर चर्चा निर्धारित है, जबकि राज्यसभा में राष्ट्र गौरव अपमान निवारण संशोधन विधेयक 2026 पर चर्चा सूचीबद्ध है। इसके अलावा मानसून सत्र के दौरान जन्म और मृत्यु पंजीकरण संशोधन विधेयक, आयकर संशोधन विधेयक और सूक्ष्म लघु और मध्यम उद्यम विकास संशोधन विधेयक पर भी चर्चा किए जाने की संभावना है। अनुपम मिश्र, आकाशवाणी समाचार, दिल्ली।
1: इससे पहले सरकार ने कल संसद भवन में एक सर्वदलीय बैठक बुलाई। रक्षा मंत्री राजनाथ सिंह ने बैठक की अध्यक्षता की। 40 राजनीतिक दलों के 50 से अधिक नेता इस बैठक में शामिल हुए। बैठक के पश्चात संसदीय कार्य मंत्री किरेन रिजिजू ने सभी राजनीतिक दलों से महत्वपूर्ण मुद्दों पर सकारात्मक चर्चा करने का आग्रह किया।
3: कोई पार्टी या कोई मेंबर अपना जो भी बात रखना चाहता है पार्लियामेंट में पूरा रख सकते हैं। मैं विपक्ष के साथियों को कहना चाहता हूं कि पहले में भी पार्लियामेंट को चलाने में दिक्कत आई थी, क्योंकि हंगामा बहुत ज्यादा हुआ था। लोग चाहते हैं कि पार्लियामेंट सुचारू रूप से चले, इसलिए मैं फिर से सब पार्टी के नेताओं को मैं अनुरोध करता हूं कि पार्लियामेंट अच्छी तरह से चले, इसमें सब लोग योगदान करें।
1: लोकसभा अध्यक्ष ओम बिरला ने कल कार्य मंत्रणा समिति की बैठक बुलाई। इस दौरान सरकार और विभिन्न राजनीतिक दलों के सदस्यों ने सत्र में उठाए जाने वाले विधायी और अन्य मुद्दों पर चर्चा की। सदस्यों ने जनहित और राष्ट्रीय महत्व के कई मुद्दों पर चर्चा का सुझाव दिया। श्री बिरला ने सभी दलों से यह अपील की कि वे कार्यवाही को सुचारू और व्यवस्थित ढंग से चलाने

0: पूरा सहयोग करें। दिल्ली पुलिस ने स्पष्ट किया है कि आज से शुरू हो रहे संसद अधिवेशन के मद्देनजर नई दिल्ली जिले में किसी भी विरोध मार्च या जुलूस के लिए किसी ने कोई अनुमति नहीं मांगी है और न ही दी गई है। पुलिस ने एक सोशल मीडिया पोस्ट में कहा है कि क्षेत्र में भारतीय नागरिक सुरक्षा संहिता 2023 की धारा 163 लागू है, इसलिए जंतर मंतर को छोड़कर क्षेत्र में विरोध मार्च, जुलूस, प्रदर्शन और 5 या अधिक व्यक्तियों के जमावड़े पर सख्त प्रतिबंध है। मध्य प्रदेश विधानसभा का मॉनसून अधिवेशन आज से शुरू हो रहा है। हमारे संवाददाता ने बताया है कि इस अधिवेशन में समान नागरिक संहिता यूसीसी विधेयक पेश किया जाएगा।
1: मध्य प्रदेश में समान नागरिक संहिता यानी यूसीसी लागू करने की दिशा में एक बड़ा कदम उठाया गया है। मुख्यमंत्री डॉक्टर मोहन यादव की अध्यक्षता में कल भोपाल जिले के जगदीशपुर में कैबिनेट बैठक हुई। इस बैठक में यूसीसी विधेयक 2026 के प्रारूप को सर्वसम्मति से मंजूरी दे दी गई। मुख्यमंत्री डॉक्टर यादव ने कैबिनेट बैठक के बाद प्रेस ब्रीफिंग में कहा,
2: विवाह एक ही लागू होगा, दूसरा विवाह निषेध माना जाएगा। जब तक कि कानून सम्मत रूप से विवाह विच्छेद नहीं हो, तब तक दूसरे विवाह की परमिशन उसको नहीं रहेगी। उत्तराधिकारी का चयन भी उसी प्रकार से रहेगा। इस कानून के बाद सबको समान रूप से उत्तराधिकारी एक कानून से चलने के लिए बाध्यता रहेगी और एक उत्तराधिकारी में महिला पुरुष का भी अधिकार कम ज्यादा नहीं होगा, दोनों को समान होगा।
1: यूसीसी विधेयक के मुताबिक लिव इन में रहने वालों को एक महीने के भीतर पंजीकरण करवाना अनिवार्य होगा, साथ ही गांव स्तर तक शादी का रजिस्ट्रेशन जरूरी किया जाएगा। हालांकि आदिवासी समाज को इससे बाहर रखा गया है। गोयल, आकाशवाणी समाचार, भोपाल।
0: ये समाचार आकाशवाणी से प्रसारित किए जा रहे हैं। ताजा समाचार जानने के लिए आप हमारे न्यूज ऑन AIR मोबाइल ऐप और सोशल मीडिया हैंडल @AIR News Hindi को फॉलो कर सकते हैं।
3: एक प्रकार से पीएम जय अब गरीबों की जय बन गई है।

0: भारत प्रधानमंत्री जन आरोग्य योजना के तहत लगभग 60 करोड़ लोग बने हैं 5 लाख रुपए के मुफ्त उपचार के हकदार। अब तक 12 करोड़ से भी ज्यादा मुफ्त उपचार किए जा चुके हैं, जिससे गरीब परिवारों के चिकित्सा खर्च में लगभग 2 लाख करोड़ रुपए की बचत हुई। आज ही आयुष्मान ऐप डाउनलोड कर आयुष्मान कार्ड बनाए। ज्यादा जानकारी के लिए 1-4-5-5-5 पर कॉल करें।
1: राष्ट्रपति द्रौपदी मुर्मू आज चिशिनाओ में मोल्दोवा की राष्ट्रपति माइया संडू के साथ शिष्टमंडल स्तर की वार्ता करेंगी। राष्ट्रपति मुर्मू मोल्दोवा संसद के अध्यक्ष इगोर ग्रोसू से भी मिलेंगी और मोल्दोवा भारत संसदीय मैत्री समूह के सदस्यों से बातचीत करेंगी। इसके बाद वे एक व्यापार फोरम को संबोधित करेंगी। मोल्दोवा यात्रा के दौरान राष्ट्रपति मुर्मू भारतवंशियों से भी मिलेंगी। किसी भी भारतीय राष्ट्रपति की ये मोल्दोवा की पहली यात्रा है। श्रीमती मुर्मू इन तीन देशों मोल्दोवा, नॉर्थ मैसिडोनिया और रोमानिया की यात्रा पर हैं। यात्रा के दूसरे चरण में राष्ट्रपति कल नॉर्थ मैसिडोनिया पहुंचेंगी। अमरीका ने लगातार नवी रात भी ईरान पर हमले किए। अमरीकी सेंट्रल कमांड ने एक सोशल मीडिया पोस्ट में बताया कि ये हमले ईरान की उन सैन्य क्षमताओं को कमजोर करने के लिए जारी रहेंगे जिनका इस्तेमाल होर्मुज जलडमरू मध्य से गुजरने वाले वाणिज्यिक जहाजों और नाविकों पर हमले के लिए किया जाता है।
2: अमरीकी हमलों से पश्चिमी एशिया में तनाव और गहरा गया है। इससे पहले लगातार 8वीं रात हमलों के दौरान अमरीकी सेना ने ईरान के कई सैन्य ठिकानों को निशाना बनाया था, जिनमें तटीय निगरानी और एयर डिफेंस सुविधाएं, समुद्री क्षमताओं और मिसाइल व ड्रोन स्टोरेज स्थल शामिल थे। अमरीकी सेना ने इस्लामिक रिवॉल्यूशनरी गार्ड कोर के उन ठिकानों को भी निशाना बनाया जहां से 17 जुलाई को जॉर्डन में अमरीकी सैनिकों पर हमले किए गए थे। पश्चिमी एशिया में 50,000 से अधिक अमरीकी सैनिक तैनात हैं। पिछले हफ्ते अमरीका ने ईरान के दक्षिणी में सैन्य ठिकानों और बुनियादी ढांचे पर कई हमले किए हैं। अमेरिका का कहना है कि इन हमलों का उद्देश्य ईरान की उस क्षमता को कमजोर करना था जिससे वे हॉर्मुज जल डमरू मध्य में वाणिज्यिक जलपोतों के लिए खतरा पैदा करता है। समाचार कक्ष से अमीशा।
1: जम्मू कश्मीर के राजौरी और पुंछ जिले में कल बाढ़ और चट्टाने खिसकने से 11 लोगों की मौत हो गई। 8 लोग लापता हैं। कई लोगों को सुरक्षित स्थानों पर पहुंचाया गया है। गृहमंत्री अमित शाह ने स्थिति की समीक्षा की है और केंद्र की ओर से हर संभव सहायता का आश्वासन दिया है। हिमाचल प्रदेश में दक्षिण पश्चिमी मॉनसून एक बार फिर सक्रिय हो गया है। हमारे संवाददाता ने खबर दी है कि राज्य के अधिकांश हिस्सों में चेतावनी जारी की गई है।
3: हिमाचल प्रदेश में मॉनसून की बारिश का दौर लगातार जारी है। बीते 24 घंटों के दौरान सबसे अधिक 82.2 मिलीमीटर वर्षा जिला कांगड़ा के धर्मशाला में दर्ज की गई। मौसम विज्ञान केंद्र शिमला ने आज चंबा, कांगड़ा, मंडी और सिरमौर जिलों में भारी से अत्यधिक भारी वर्षा के लिए रेड अलर्ट जारी किया है। वहीं ऊना, हमीरपुर, कुल्लू, शिमला और सोलन जिलों में भारी बारिश का ऑरेंज अलर्ट तथा बिलासपुर, किन्नौर और लाहौल स्पीति जिलों के लिए येलो अलर्ट जारी किया है। विभाग ने चेतावनी दी है कि इस दौरान भूस्खलन, अचानक बाढ़ आने और बादल फटने जैसी घटनाएं हो सकती हैं। आज सभी शिक्षण संस्थानों को बंद रखने के निर्देश जारी किए हैं। रितेश कपूर, आकाशवाणी समाचार, शिमला।
1: उत्तराखंड में रविवार सुबह से लगातार बारिश हो रही है। हमारी संवाददाता ने बताया है कि बारिश से मैदानी और पहाड़ी दोनों इलाकों में जनजीवन पर असर पड़ा है।
4: भारतीय मौसम विभाग ने देहरादून, टिहरी, गढ़वाल और हरिद्वार जिलों में भारी से बहुत भारी बारिश का रेड अलर्ट जारी किया है। वहीं उत्तरकाशी, नैनीताल, चंपावत, पौड़ी और उधम सिंह नगर के लिए ऑरेंज अलर्ट और रुद्रप्रयाग, चमोली, अल्मोड़ा, बागेश्वर और पिथौरागढ़ में येलो अलर्ट जारी किया है। बारिश के अलर्ट के मद्देनजर आज ज्यादातर जिलों में सभी सरकारी और निजी विद्यालय तथा आंगनवाड़ी केंद्रों में अवकाश घोषित किया गया है। भारतीय मौसम विभाग के अलर्ट को देखते हुए मुख्यमंत्री पुष्कर सिंह धामी ने सभी विभागों को सतर्क रहने के निर्देश दिए हैं। साक्षी सिंह, आकाशवाणी न्यूज, देहरादून।
1: उत्तर प्रदेश के लगभग सभी जिलों में मध्यम से भारी बारिश हो रही है। हमारे संवाददाता ने खबर दी है कि राज्य भर में जनजीवन अस्त व्यस्त है।
5: मुजफ्फरनगर जिले में भारी बारिश के कारण एक पुरानी इमारत गिरने से 4 बच्चों समेत 5 लोगों की मौत हो गई, 5 अन्य लोग घायल हो गए। भारी बारिश ने राज्य की राजधानी लखनऊ समेत कई जिलों में आम जनजीवन को प्रभावित किया है। मौसम विभाग ने राज्य के कई जिलों के लिए ऑरेंज अलर्ट जारी किया है और कहा है कि मौजूदा मौसम की स्थिति अगले 3 दिनों तक बनी रहने की संभावना है। अगले 24 घंटों में तराई के इलाके और बुंदेलखंड के कुछ हिस्सों में भारी बारिश होने की उम्मीद है। सुशील चंद्र तिवारी, आकाशवाणी समाचार, लखनऊ।
1: स्पेन ने फीफा विश्व कप जीत लिया है। न्यूयॉर्क न्यूजर्सी स्टेडियम में फाइनल में 90 मिनट तक संघर्षपूर्ण और रोमांचक मैच में कोई गोल नहीं हो पाया। स्पेन के फेरान टोरेस ने अतिरिक्त समय में गोल करके अपनी टीम को 1-0 से जीत दिला दी।
6: फीफा फुटबॉल विश्व कप का इतिहास लिखा जा चुका है। स्पेन ने दूसरी बार पुरुष फीफा विश्व कप अपने नाम कर लिया है। इससे पहले स्पेन ने 2010 में खिताब जीता था। इस जीत के साथ स्पेन एक ही समय में पुरुष और महिला फुटबॉल विश्व कप विजेता पहला देश बन गया है। इस हार ने अर्जेंटीना और लियोनेल मेसी के शानदार दौर का भी अंत कर दिया है। मेसी ने अपनी टीम को 2022 फीफा वर्ल्ड कप और 2021 तथा 2024 में कोपा अमेरिका का खिताब जिताया था। टोरेस फीफा विश्व कप फाइनल में गोल करने वाले पांचवे ऐसे खिलाड़ी बने जो मैच के अंतिम समय में किसी अन्य खिलाड़ी के स्थान पर टीम में खेले। 48 टीमों के साथ ये अब तक का सबसे बड़ा फीफा विश्व कप था। ये टूर्नामेंट अमेरिका, कनाडा और मेक्सिको में खेला गया। और अगर बात करें पुरुष क्रिकेट की तो इंग्लैंड ने लंदन के लॉर्ड्स में तीसरे और निर्णायक एक दिवसीय मैच में भारत को 27 रन से हराकर श्रृंखला 2-1 से जीत ली है। इंग्लैंड ने निर्धारित 50 ओवर में 3 विकेट पर 387 रन बनाए। भारतीय टीम 7 विकेट पर 360 रन ही बना सकी। इससे पहले भारतीय टीम ने साउथहैम्पटन के रोज बाउल में पहला मैच जीता था। दूसरा मैच कार्डिफ में मेजबान टीम ने जीता।
1: ये समाचार हमारे मोबाइल ऐप न्यूज ऑन AIR और हमारी वेबसाइट www.newsonair.gov.in पर भी उपलब्ध हैं। और अब आज के समाचार पत्रों की सुर्खियों के साथ हैं मुकेश कुमार बल।
7: धन्यवाद मुनीष। देश की राजधानी से प्रकाशित सभी हिंदी अखबारों के मुख्य पृष्ठ पर सबसे ऊपर आज से शुरू हो रहे संसद के मानसून सत्र और तेज बारिश के कारण जम्मू कश्मीर और लद्दाख में प्रभावित जनजीवन को पटरी पर लाने के लिए जारी बचाव और राहत अभियान की खबरें दिखाई देती हैं। जनसत्ता ने जम्मू कश्मीर के साथ उत्तराखंड और नागालैंड में भारी बारिश से मची तबाही का समाचार सचित्र प्रकाशित किया है। साथ ही आज से शुरू हो रहे मानसून सत्र से पहले आयोजित सर्वदलीय बैठक को शीर्ष समाचार बनाते हुए लिखा है, सर्वदलीय बैठक में राम मंदिर चढ़ावा चोरी, पेपर लीक और एथेनॉल जैसे मुद्दों पर चर्चा। जापान ओपन जीतने वाली पीवी सिंधु की तस्वीर भी कई अखबारों ने पहले पन्ने पर छापी है। दैनिक ट्रिब्यून ने खबर को शीर्षक दिया है, पीवी सिंधु ने जापान ओपन जीतकर रचा इतिहास। राजस्थान पत्रिका ने इस खबर को शीर्षक दिया है, पीवी सिंधु ने बैडमिंटन में खत्म किया खिताबी सूखा। लोकसत्य ने भारत के पहले शब्द संग्रहालय का कोलकाता स्थित राष्ट्रीय पुस्तकालय परिसर में

0: उद्घाटन करते केंद्रीय गृह और सहकारिता मंत्री अमित शाह का चित्र प्रमुखता से छापा है। पत्र ने दिल्ली हाईकोर्ट की इस टिप्पणी को भी खबर बनाया है। सोनम वांगचुक को इलाज के लिए उठाना गलत नहीं, दैनिक भास्कर का शीर्ष समाचार है। वांगचुक को सरकारी अस्पताल ले जाना मनमानी नहीं, हाईकोर्ट। हिंदुस्तान के ने निजी क्षेत्र के रॉकेट विक्रम 1 के सफल प्रक्षेपण को अपने संपादकीय लेख का विषय बनाया है। शीर्षक दिया है वैज्ञानिकों को बधाई।
1: और अंत में इस बुलेटिन के मुख्य समाचार एक बार फिर। संसद का मॉनसून अधिवेशन आज से शुरू हो रहा है। सरकार ने सदन के सुचारू कामकाज के लिए सभी राजनीतिक दलों से सहयोग का आग्रह किया। राष्ट्रपति द्रौपदी मुर्मू आज चिसिनाव में मोल्दोवा की राष्ट्रपति माया संडू के साथ प्रतिनिधिमंडल स्तर की वार्ता करेंगी। मध्य प्रदेश मंत्रिमंडल ने समान नागरिक संहिता विधेयक को मंजूरी दे दी है। जनजातीय समुदायों को इसके दायरे से बाहर रखा जाएगा। जम्मू कश्मीर के राजौरी और पुंछ जिलों में अचानक बाढ़ और भूस्खलन से 11 लोगों की मृत्यु, 8 लोग लापता। अमेरिका ने नवी रात भी ईरान पर हमले किए और स्पेन ने फीफा विश्व कप जीत लिया है। खिताब का बचाव करने उतरी अर्जेंटीना को 1-0 से हराया। और इसके साथ ही समाचार प्रभात का ये अंक समाप्त हुआ। नमस्कार।

त्रिवेणी के सभी श्रोताओं को हमारा प्यार भरा नमस्कार। दोस्तों, कहते हैं जो इंसान भीतर से मजबूत होता है उसे हर बात पर खुद को साबित करने की जरूरत नहीं पड़ती। वो जानता है कि हर बहस जीतना सफलता नहीं है, बल्कि सही समय पर सही बात कहना ही असली समझदारी है। कुछ लोग हालात के आगे बहुत जल्दी हार मान लेते हैं और कुछ आखिरी दम तक मुकाबला करते रहते हैं। इंसान अगर अपने दिल और दिमाग पर नियंत्रण कर ले तो वो अपने जीवन में ऊंचे से ऊंचा मुकाम भी हासिल कर सकता है, लेकिन अगर वो जीवन में मिलने वाली असफलताओं को ही अपनी नियति मान ले तो वो निराशा की ऐसी खाई में गिर सकता है जहाँ से बाहर आना लगभग नामुमकिन हो जाता है। इसलिए वक्त से लड़कर जो अपना नसीब बदल दे, बहुत मजबूत होता है वो इंसान।

0: मजबूत इंसान बनने के लिए शारीरिक और मानसिक दोनों स्तरों पर काम करना बेहद जरूरी है। खुद को अनुशासित रखें, चुनौतियों से घबराने की बजाय उन्हें सीखने का अवसर मानें। कठिन समय में सकारात्मक दृष्टिकोण बनाए रखना ही असल मजबूती है। भीतर से मजबूत और निडर बनने के लिए चुनौतियों से हमें डरना नहीं बल्कि चुनौतियों का डटकर सामना करना आना चाहिए और यही जीवन के लिए बेहद जरूरी भी है।
1: कुछ प...

महान विचारकों और दार्शनिकों के अनुसार मानसिक मजबूती और दर्द सहने की क्षमता का विकास केवल परिस्थितियों से भागने में नहीं बल्कि उनका डटकर सामना करने में है। आंतरिक दृष्टि से मजबूत व्यक्ति अपनी कमजोरियों और ताकतों को स्पष्ट रूप से जानते हैं और खुद को अंधेरे में नहीं रखते। साथ ही ये भीड़ का हिस्सा बनने के बजाय अपने मूल्यों और नैतिकता के अनुसार सही राह पर चलते हैं। भीतर से मजबूत और दृढ़ व्यक्ति विपरीत परिस्थितियों में भी शांत रहता है और अपने सिद्धांतों से समझौता नहीं करता। चाहे परिस्थितियां जैसी भी हों, ऐसे मजबूत लोग शिकायत करने के बजाय समाधान पर ध्यान केंद्रित करते हैं।

दौर के सदाबहार गानों की महफिल। सोमवार से शनिवार दिन में 2:30 बजे सिर्फ विविध भारती पर। सदाबहार नगमे।

आप सुन रहे हैं विविध भारती राष्ट्रीय सेवा देश की सुरीली धड़कन चित्रलोक। इस कार्यक्रम के लिए कीजिए बस थोड़ा सा इंतजार।

आप सुन रहे हैं विविध भारती राष्ट्रीय सेवा देश की सुरीली धड़कन। प्रस्तुत है कार्यक्रम चित्रलोक। सभी सुनने वालों को राजेश का प्यार भरा नमस्कार, गुड मॉर्निंग। प्रोग्राम की शुरुआत कर रहे हैं गोरी तेरे प्यार में, इस फिल्म के गाने के साथ नीतीश कदम और श्रुति पाठक की आवाजें, कौशल मुनीर के बोल, विशाल शेखर की तर्ज बोल हैं दिल डफर।

सोचता हूँ रात भर क्यों हुआ है दिल डफर। ये गाना भी आप सुन रहे थे गोरी तेरे प्यार में, इस फिल्म से। लीजिए अब सुनिए मीत ब्रदर्स और नेहा कक्कर की आवाजों में ड्रीम गर्ल 2 फिल्म का गाना। कुमार ने लिखा इसे और संगीत से संवारा है मीत ब्रदर्स ने।

0: जब जब किसी हमलावर ने हमारी धरती के सीने पर पांव रखना चाहा, सब बच्चे सीना तान कर सामने खड़े हो गए और सीमा सुरक्षा की दीवार खड़ी हो गई।
1: विविध भारती पर हर रविवार की शाम 7 बजे होती है सैनिकों की शौर्य गाथा, कहानियां अदम्य साहस की, कहानियां देश के लिए कुर्बान हो जाने के जज्बे की। गाथा देश के जाबाज फौजियों के शौर्य की, सैनिकों की शौर्य गाथा।
2: विविध भारती राष्ट्रीय सेवा देश की सुरीली धड़कन से भी आप सुन रहे हैं कार्यक्रम चित्रलोक। लीजिए सुनिए सुनिधि चौहान की आवाज में पुष्पा फिल्म का गाना रखी बालम, कहें बोल और देवी श्री प्रसाद की है तर्ज।

दोस्तों अभी आप सुन रहे थे सुनिधि चौहान की आवाज में पुष्पा फिल्म का गाना। इसे लिखा था रकीब आलम ने और संगीत से संवारा था देवीश्री प्रसाद ने। विविध भारती राष्ट्रीय सेवा देश की सुरीली धड़कन से अभी आप सुन रहे कार्यक्रम चित्रलोक। चित्रलोक कार्यक्रम में वक्त हो गया है एक छोटे से अंतराल का, तुरंत हाजिर होते हैं।

आपने ट्यून किया है भारत का नंबर वन मनोरंजन चैनल विविध भारती और कार्यक्रम चल रहा है चित्रलोक। लीजिए सुनिए स्टूडेंट ऑफ द ईयर फिल्म का गाना। शेखर राव जियानी, सलीम मर्चेंट और नीति मोहन की आवाजें हैं। अन्विता दत्त ने लिखा है इसे और संगीतबद्ध किया है विशाल शेखर ने।

0: अपने देश में बढ़ रही है यूरिन की समस्या, लोग परेशान हैं प्रोस्टेट की बीमारी से। जरूरी है सजगता और सचेत रहना।
1: यंग लोगों में जो होती है प्रॉब्लम, वो ज्यादा करके अर्ज इनकॉन्टिनेंस है, जो कभी भी स्ट्रेस के कारण, कभी कभी कैफीन वगैरह ज्यादा पदार्थ लेने के कारण, ये सब चीजों से वो कंट्रोल नहीं कर सकते, जो काफी हद तक दवाई से कंट्रोल में आ सकता है, जिसे हम अर्ज इनकॉन्टिनेंस कहते हैं।
0: यूरोलॉजिस्ट डॉक्टर उमेश ओझा चर्चा करेंगे प्रोस्टेट और यूरिन से जुड़ी तमाम बीमारियों पर। तो सुनिए सेहतनामा 20 जुलाई शाम 4 बजे सिर्फ विविध भारती पर।
2: हिंदी सिनेमा की कुछ कल्ट फिल्में उनके नाम पर हैं, स्पर्श, कथा, निशा और चश्मे बदूर।
3: उन्होंने कहा कि देखो, अब सिर्फ हम नौजवान तीनों दिखा रहे हैं, सिर्फ कॉलेज के युवक नहीं, उनके माँ बाप भी आए, उनके चाचा चाची आए, एक दादी माँ डाली, बाप डाला, एक भाई डाला, वगैरह वगैरह, एक पान वाला डाला। सईद को पकड़ा लिया और उसने कहा फिर मुझे, वी हैव टू गो टू जामा मस्जिद, पुरानी दिल्ली जाना पड़ेगा। मैंने कहा पुरानी दिल्ली क्या करोगे जाके, पान वाले का अगर मुझे करना है रोल तो मुझे देखना नहीं चाहिए पान वाले वगैरह। तो मैंने कहा ये नसीर के बाद ये एक
4: और आ गया।
3: एक और आ गया।
5: जल्दी है बुलबुल, कोई और कर्जेदार लग गया तेरे पीछे क्या?
6: अरे ललन मियां आप काट देना रास्ता, अब मेरा काम नहीं होगा।
2: दास्तान सई परांजपे की, उजाले उनकी यादों के, 19 जुलाई से 9 अगस्त शाम 4 बजे सिर्फ विविध भारती पर।
7: सुनिए
8: विविध भारती, राष्ट्रीय सेवा देश की सुनहरी धड़कन। सभी आप सुन रहे कार्यक्रम चित्रलोक। लीजिए अब सुनिए नरेश अय्यर, जसप्रीत जस और आर्या की आवाजों में एक दीवाना था इस फिल्म का गाना।

लीजिए अब सुनिए अमितोष नागपाल, सुजीत शेट्टी और रणबीर कपूर की आवाजों में बेशरम फिल्म का ये गाना।

आपने ट्यून किया है भारत का नंबर वन मनोरंजन चैनल विविध भारती और आप हैं अपने दोस्त राजेश के साथ प्रोग्राम चित्रलोक में।

श्रोताओं, अभी आप सुन रहे थे माधुरी दीक्षित, स्नेहलता दीक्षित और अनुपमा राग की आवाजों में एक पारंपरिक रचना जो गुलाब गैंग फिल्म की थी। और दोस्तों, आज है अंतर्राष्ट्रीय चंद्र दिवस यानी इंटरनेशनल मून डे। प्रतिवर्ष 20 जुलाई को अंतर्राष्ट्रीय चंद्र दिवस इंटरनेशनल मून डे मनाया जाता है। ये दिवस 20 जुलाई 1969 को मानव द्वारा पहली बार चंद्रमा पर सफलतापूर्वक कदम रखने की ऐतिहासिक उपलब्धि की स्मृति में मनाया जाता है। इसी दिन अमेरिकी अंतरिक्ष यात्री नील आर्मस्ट्रांग और बज एल्ड्रिन ने अपोलो 11 मिशन के माध्यम से चंद्रमा की सतह पर उतरकर मानव इतिहास में एक नया अध्याय जोड़ा। इस दिवस का उद्देश्य चंद्र अन्वेषण, अंतर्राष्ट्रीय सहयोग तथा अंतरिक्ष विज्ञान के प्रति जन जागरूकता बढ़ाना है। चंद्रमा सदियों से मानव की जिज्ञासा, कल्पना और वैज्ञानिक अनुसंधान का केंद्र रहा है। प्राचीन काल में इसे केवल आस्था और साहित्य का विषय माना जाता था, है ना? किंतु आधुनिक विज्ञान ने इसे अनुसंधान का महत्वपूर्ण क्षेत्र बना दिया है। आज अनेक देश चंद्रमा पर जल, खनिज संसाधनों तथा भविष्य में मानव बस्तियां बसाने की संभावनाओं का अध्ययन कर रहे हैं। भारत ने भी चंद्र अन्वेषण में उल्लेखनीय उपलब्धियां प्राप्त की हैं। चंद्रयान 1 ने चंद्रमा पर जल अणुओं के परमाणु को खोजकर विश्व को एक नई दिशा दी, जबकि चंद्रयान 3 की सफल सॉफ्ट लैंडिंग ने भारत को चंद्रमा के दक्षिणी ध्रुव के निकट उतरने वाला विश्व का पहला तथा चंद्रमा पर सफलतापूर्वक उतरने वाला चौथा देश बना दिया। इन उपलब्धियों ने भारतीय वैज्ञानिकों की प्रतिभा और देश की वैज्ञानिक क्षमता को वैश्विक स्तर पर स्थापित किया। ये दिवस युवाओं में वैज्ञानिक सोच, नवाचार और अंतरिक्ष अनुसंधान के प्रति रुचि उत्पन्न करने का भी प्रेरक अवसर प्रदान करता है। इस वर्ष की थीम है वन मून वन विजन वन फ्यूचर। चित्रलोक कार्यक्रम अभी आप सुन रहे हैं भारत विद भारतीय राष्ट्रीय सेवा देश की सुरीली धड़कन से। और कार्यक्रम में आगे बढ़ते हुए सुखविंदर सिंह और KMMC सूफी एंसेंबल की आवाजों में रांझना फिल्म का गाना सुनिए।

0: 21 जुलाई गीतकार आनंद बख्शी की याद का दिन।
1: वो तेरे प्यार का।
0: 22 जुलाई पार्श्व गायक मुकेश का जन्मदिन।
2: मुबारक हो सबको समाये सोहा।
0: विविध भारती लेकर आ रहा है दो खास कार्यक्रम।
3: धीरे धीरे बोल कोई सुनना।
0: गीतकार आनंद बख्शी के बेटे राकेश आनंद बख्शी याद करेंगे अपने पिता को 21 जुलाई शाम 4 बजे।
4: उन्होंने क्या किया कि एक नौकरी पकड़ ली टाइम पास। एक सिनेमा हॉल था वहाँ पे पास में, पैसे नहीं चाहिए थे, फिल्म देखने को मिलता था फ्री में। वो छड़ी से जो उनको मार पड़ी है उसके बाद जबरदस्त मार पड़ी।
0: 22 जुलाई को स्टूडियो में होंगे दो गायक।

0: है
1: और बताएंगे क्या जगह है मुकेश की उनके जीवन में।
2: वो उनकी तो एक दिल में छवि ऐसी है कि जिसको बोलते ना कि पूजा जाता है।
3: वो अगर होते तो शायद मैं पैर पकड़ के बैठा ही रहता।
1: याद रखिए 21 और 22 जुलाई शाम 4 बजे सिर्फ विविध भारती पर।
4: सुनो जी सुनो, हमारी भी सुनो।
5: चित्रलोक, ये कार्यक्रम जारी रहेगा छोटे से अंतराल के बाद।

आपने ट्यून किया है भारत का नंबर वन मनोरंजन चैनल विविध भारती और कार्यक्रम चल रहा है चित्रलोक। लीजिए सुनिए सुनिधि चौहान की आवाज में दिल धड़कने दो फिल्म का गाना, जावेद अख्तर के बोल और तर्ज बनाई है शंकर एहसान लॉय ने।

दोस्तों आज विश्व शतरंज दिवस है यानी वर्ल्ड चेस डे। प्रतिवर्ष 20 जुलाई को विश्व शतरंज दिवस वर्ल्ड चेस डे मनाया जाता है। ये दिवस वर्ष 1924 में अंतर्राष्ट्रीय शतरंज महासंघ की स्थापना की स्मृति में मनाया जाता है। संयुक्त राष्ट्र महासभा ने वर्ष 2019 में इस दिवस को आधिकारिक मान्यता प्रदान की। इस दिवस का उद्देश्य शतरंज के खेल को विश्व भर में लोकप्रिय बनाना, बौद्धिक विकास को प्रोत्साहित करना तथा विभिन्न देशों के बीच मैत्री और सहयोग की भावना को सुदृढ़ करना है। इस वर्ष की थीम है सेलिब्रेट क्रिएट एंड मेक अ डिफरेंस। चित्रलोक कार्यक्रम आप सुन रहे हैं वेद भारती राष्ट्रीय सेवा देश की सुनील धड़कन से। लीजिए सुनिए मंच म्यूजिक हरवी सहारा और नेहा कक्कर की आवाजों में गुड न्यूज। सुन

उन्हीं के संगीत निर्देशन में सन 1946 में गीता रॉय ने 16 बरस की उम्र में फिल्म भक्त प्रहलाद के लिए पार्श्व गायन किया। सन 1947 में गीता रॉय को गायन का अवसर मिला फिल्म दो भाई में, और इस फिल्म के जिस गीत ने गीता रॉय को रातों रात मशहूर कर दिया वो गीत था ये।

1947 में ही गीता रॉय ने अपने संगीत गुरु हनुमान प्रसाद जी के संगीत निर्देशन में फिल्म रसीदी के लिए पार्श्व गायन किया। गीता दत्त जी की गायकी, उनका अंदाज बहुत अनूठा था। स्वर में भावों की अभिव्यक्ति की अद्भुत क्षमता थी। मिठास और मादकता उनके स्वर की विशेषता है।

0: सीता जी के स्वर में उम्र जैसे ठहर जाती है। लहकता बहकता उनका स्वर जब कानों से भीतर उतरता है तो तन मन भी लहकने बहकने लगते हैं।
1: जाता कहाँ है दीवाने, सब कुछ यहाँ है सनम, बाकी के सारे फसाने झूठे हैं।

फिल्म बाजी के गीतों की रिकॉर्डिंग के दौरान गीता जी अभिनेता, निर्माता और निर्देशक गुरुदत्त के संपर्क में आई और 26 मई सन 1953 को दोनों ने विवाह कर लिया और गीता रॉय गीता दत्त

हिंदी सिनेमा के अलावा गीता दत्त जी ने बांग्ला की कई सफल और लोकप्रिय फिल्मों में भी पार्श्व गायन किया। गीता दत्त संगीतकार ओपी नैयर की भी बहुत ही प्रिय गायिका थी। ओपी नैयर जी ने गीता दत्त से कई यादगार गीत गवाए।

1964 में गुरुदत्त इस दुनिया से विदा हो गए और 20 जुलाई 1972 को गीता दत्त भी इस दुनियाए फानी से चली गई।

भारतीय सिने संगीत को गीता जी ने समृद्ध किया अपनी गायकी से, अपने यादगार गीतों से। जमाना इस महान गायिका को हमेशा याद रखेगा।

0: आज के फनकार, आज का ये कार्यक्रम केंद्रित था सुप्रसिद्ध पार्श्व गायिका गीता रॉय यानी गीता दत्त पर। स्वर शोध और आलेख कमल शर्मा का, प्रस्तुति सहयोग आकांक्षा सिंह का और इस कार्यक्रम के प्रस्तुतकर्ता रमेश गोखले। अब दीजिए इजाजत, नमस्कार।
1: आज के फनकार।

0: ये है विविध भारती।
1: उजाले उनकी यादों की। उजाले उनकी यादों की।

0: श्रोताओं नमस्कार, उजाले उनकी यादों के इस कार्यक्रम में आपका स्वागत है। किसी फिल्म की कथा जब पर्दे से बाहर दर्शकों के दिलों को स्पर्श करती है तो वो फिल्म अपने किरदारों, गीतों और कथानक के जरिए बन जाती है सदाबहार। इसी तरह अपनी फिल्मों से दर्शकों की सोच को नई दिशा देने वाली निर्देशिका और पटकथा लेखिका हैं सई परांजपे, जिन्होंने पुरुषों के आधिपत्य वाले क्षेत्र में न सिर्फ कदम रखा बल्कि अपनी उपस्थिति भी खूब दर्ज कराई। सई परांजपे हिंदी सिनेमा की उन अग्रणी महिलाओं में से एक हैं, जिन्होंने फिल्म निर्देशन और पटकथा लेखन की बागडोर संभालकर इस क्षेत्र में भी अपना परचम लहराया। आम जीवन की कहानी को भावपूर्ण तरीके से फिल्मी पर्दे पर उतारने वाली सई परांजपे समानांतर सिनेमा का एक जाना पहचाना नाम है। वो अपनी यादों का पिटारा खोलने वाली हैं हम सभी के सामने। उनकी फिल्मों के पीछे की कहानी सुनिए उनकी ही जुबानी। आपसे बातचीत की है यूनुस खान ने। आइए सुनते हैं इस लंबी बातचीत का पहला भाग।
1: सई जी, विविध भारती के स्टूडियो में आपका बहुत बहुत स्वागत है।
2: शुक्रिया।
1: कैसा लग रहा है फिर से आकाशवाणी के स्टूडियो में आके?
2: बताऊं कैसे
1: पुराना नाता है।
2: हाँ, ऐसा लग रहा है कि जैसे मैं मैके पहुंच गई।
1: क्या बात है।
2: बहुत अच्छा लग रहा है और बहुत सारी यादें उमड़ के आ रही हैं। और रेडियो ये मेरा पहला कार्य था
1: जी।
2: और मेरा पहला प्यार कहिए, ऐसे लगता है कि दोबारा मैं वो सब अनुभव झेल रही हूँ।
1: मैं देख रहा था कि जब आपने हमारा लाइव स्टूडियो देखा तो आपकी आंखों में एक चमक थी और एक नमी थी। काफी पुराने दिन आपको याद आ गए।
2: जी, सही बात है
1: जी। अब रेडियो वाला मामला है, इसकी तो बात करेंगे। हाँ। लेकिन मैंने सुना है कि 8 बरस की उम्र में आपकी पहली किताब आ गई थी। मतलब लिखना जो है वो बिल्कुल संस्कारों में आपको मिला है।
2: जी बिल्कुल, मेरी माँ एक बहुत अच्छी लेखिका थी। और क्या हुआ कि छोटेपन में माँ हमेशा मुझे कहानी, एक सोते वक्त एक कहानी रोज हमारा दस्तूर था कि एक कहानी वो सुनाए
1: जी।
2: और फिर मैं सो जाती थी। एक दिन माँ ने कहा कि आज मैं बोर हो गई हूँ तो आज मैं नहीं सुनाऊंगी, आज तुम कोई कहानी सुना, मुझे सुनाओगी? तो मैंने कहा हाँ हाँ सुना सकती हूँ। और मैंने कुछ एक अपनी तरफ से कहानी सुनाई और इतना मुझे अभी भी याद है कि उसमें एक कोई साधु बाबा थे जिनकी नीली दाढ़ी थी और ऐसा क्या कुछ था। लेकिन कहानी सुनकर माँ ने कहा कि बुरी नहीं थी, वाह ये कहानी किसने तुम्हें सुनाई? मैंने तो नहीं सुनाई ये कहानी। तो मैंने कहा कुछ बड़प्पन से, नहीं नहीं ये कहानी वैसे मैंने रचाई खुद। माँ ने कहा क्या क्या कह रही हो तुम, मैं रचाई? बकवास कह रही है। मैंने कहा नहीं नहीं सचमुच मैंने ही रचाई। कहते और कोई कहानियां? मैंने कहा बतेरी है, बहुत सारी कहानियां मैंने सोची है। तो और एक कहानी बताई। लेकिन उस दिन से यूनुस मैं इतना खुद को कोसती थी कि क्यों मैंने ये सब बताया, क्योंकि उस दिन से क्या हुआ रोज मुझे 3 पन्ने लिखने पड़ने लगे। हाँ, तब तक खेलने नहीं जाना, 3 पन्ने लिखो तुम कहानियां, बड़ी कहानीकार बन गई तुम, तो लिखो 3 पन्ने, कुछ ना कुछ लिखो और फिर खेलने जाओ।
1: तो मजा था कि सजा थी?
2: ये सजा लगती थी बिल्कुल मुझे। हाँ, मजा जरा भी नहीं लगता था। पहले तो मजा लगा कि कहानी अपनी बहुत इतनी सराही गई, लेकिन बाद में खैर। तो ये जो भी मैंने कुछ लिखा उन दिनों बचपन में, तो मेरी माँ ने वो इकट्ठा करके उसकी किताब छपवाई, मराठी किताब थी, उसका नाम था मुलांसा मेवा, मतलब बच्चों के लिए खिशमिश कहो,
1: सुंदर नाम।
2: लेकिन मुझे लगता है यूनुस उसमें कोई मेरी इतनी वो नहीं है, क्या कहते हैं, बड़ी बात, क्योंकि ऐसे कितने होनहार बच्चे होंगे मुझे हमेशा लगता है अपने समाज में, जिनको मेरी माँ जैसी माँ नहीं मिली।
1: जी जी। हाँ,
2: मेरी माँ एक जबरदस्त माँ होने के कारण वो सब ये कर पाई कि मुझे सराहना, मुझे इनकरेज करना और मुझसे लिखवाना और फिर वो छपवाना। तो ऐसे बहुत बच्चे होंगे ये मुझे अंदर से ही अंदर महसूस होता है, लेकिन चलो मेरी ये किस्मत थी कि मेरा एक सीवी में बढ़िया लगता है ना कि 8 साल की उम्र में

0: किताब छपी।
1: लेकिन एक जो आपने जिक्र किया अपनी माँ का, शकुंतला परांजपे राज्यसभा की सदस्य रही, परिवार नियोजन, महिला शिक्षा को लेकर जो काम उन्होंने किया है, फिर एक और बात है कि आपके नाना जी फर्स्ट सीनियर रैंगलर ऑफ इंडिया,
0: करेक्ट,
1: ये भी जो इन दोनों की जो छत्र छाया है, दो महान हस्तियां,
0: जी
1: जाहिर है कि एक बहुत उर्वर जमीन आपको
0: इसमें कोई शक नहीं। और बिल्कुल मैं कहती हूँ जहे नसीब के ऐसे लोग मुझे मिले जिन्होंने मुझे पाला पोसा बड़ा किया। और अफसोस कि मेरे नाना का गणित का जरा भी हिस्सा मेरी तरफ नहीं आया, जरा भी नहीं। मतलब शुरू में बहुत चाहते थे, सोचते थे कि अपनी पोती भी नाम कमाएगी गणित विषय में, लेकिन मेरा तो क्या कहें, कोई रिश्ता रहा ही नहीं गणित के साथ। लेकिन नाना ने, हम दोनों सुबह सुबह घूमने निकलते थे, नाना को बहुत शौक था, वो 100 साल तकरीबन होके फिर चल बसे, उनकी तबीयत भी बहुत माशाल्लाह अच्छी थी। तो सुबह हम निकलते मैं उनके साथ, और वो रोज मुझे एक कहानी सुनाते थे, कोई वो कहानियां सुनाने का जमाना था। मेरे बचपन में मैंने तो बहुत कहानियां सुनी, तो वो ग्रिम्स या एंडरसन, ये जो तब के मशहूर लेखक थे बच्चों का, बाल वांग में लिखने वाले, तो उनमें से वो जाने से पहले वो पढ़ते थे कहानी कि आज सही को क्या सुनाया जाए, उसका तो यकीनन वो एक थोड़ा सा होमवर्क करते थे और फिर मुझे कहानी सुनाते थे। और ऐसे करके उन्होंने मुझ पे वो एक क्या कहें, प्यार जतलाया, जिंदा किया मेरे अंदर। मैं बहुत अच्छा नहीं बता रही हूँ, लेकिन आप समझ रहे हो कि मैं क्या कहना चाहती हूँ। तो ये उनकी बदौलत मैं इस क्षेत्र की तरफ मुड़ी। और माँ ने, माँ तो लेखिका भी थी और माँ खुद गणितज्ञ थी, उसने भी कैम्ब्रिज में जब लड़कियां मैट्रिक होने से पहले ही अपने ससुराल पहुंच जाती थी, उस जमाने में माँ ने ना तो मैट्रिक सिर्फ किया, लेकिन वो कैम्ब्रिज जाकर गणित की एक बहुत अच्छी उन्होंने डिग्री हासिल की। और फिर सोचा, वो थी तो अपना ही करने वाली थी, वो बड़ी धड़ल्ली औरत थी, तो उन्होंने सोचा कि अभी इतनी दूर आए हैं लंदन, अब वापस ऐसे जाना तो थोड़ा यूरोप तो देखा जाए करके वो स्विट्जरलैंड पहुंची। फिर उन्होंने वहां फ्रेंच सीखा बहुत अच्छी तरह। फिर एक बहुत बहुत हैंडसम रशियन पेंटर चित्रकार से मुलाकात हुई और प्यार मोहब्बत हुआ, दोनों ने शादी की। 2 साल ये शादी टिकी और फिर अपने बच्ची को यानी कि मुझे लेकर माँ अपने देश वापस लौटी
1: और पुणे आ गई।
0: हाँ, पुणे आ गई और नाना के पास, मतलब अपने पिता के पास, मेरे नाना अप्पा हम कहते थे। और तब से मैं उनकी छत्र छाया में पली बड़ी।
1: बिल्कुल, रघुनाथ
0: पुरुषोत्तम परांजपे।
1: परांजपे जी, एक बहुत बड़ी हस्ती, एक राजदूत, एक शिक्षाविद, फर्ग्यूसन कॉलेज के प्रिंसिपल, फिर पुणे यूनिवर्सिटी के वाइस चांसलर,
0: लखनऊ यूनिवर्सिटी के भी, और इसलिए लखनऊ में मेरी पैदाइश लखनऊ की है।
1: क्या बात है, तो वो जो आपके बोलने की नजाकत है वो लखनऊ से आती है।
0: ओह डियर, चलो ये मैं बहुत ही बड़ा कॉम्प्लीमेंट समझती हूँ, बहुत ही बड़ा।
1: नाना जी के बारे में और माता जी के बारे में और भी बातें बताइए। वो तो अभिनेत्री भी थी।
0: अभिनेत्री मत कहो, क्योंकि उन्होंने शौक के तौर पे एक बार वी शांताराम की फिल्म में एक रोल किया, दुनिया न माने, या मराठी में कुंकू। हाँ, उसमें अच्छा रोल था चित्रा का, जो कि शांता आपटे हीरोइन थी फिल्म की, उनकी वो सौतेली माँ। लेकिन हम उम्र, मतलब हीरोइन के उम्र की ही थी, उसके बाप से उसकी शादी होती है, लेकिन कोई खास रोल बना नहीं, अच्छा नहीं किया। मैंने कहा भी माँ को कि ये क्या तू कहते, इसीलिए तो एक ही की फिल्म मैंने दोबारा उस तरफ नहीं गई। लेकिन यूनुस, एक बताना चाहती हूँ मैं कि उन्होंने एक नाटक भी किया, लिखा भी, लेखिका तो थी, नाटक लिखा, पांघर लेली कातड़ी, मतलब पहना हुआ खाल। हाँ, तो उसमें एक किरदार है कोइंड,
1: हाँ,
0: मछुआरी का, हाँ, तुलसा नाम की, हाँ, बहुत ही अजीबो गरीब वो रोल था। वो सोचा कि वो रोल तो मैं खुद करूंगी, माँ ने सोचा। लेकिन अब मछुआरी का रोल करना डिकंजम खाना पूना में बैठ के, वो तो आसान नहीं था। फिर उन्होंने क्या किया, हफ्ते में एक बार वो बम्बई जाने लगी, हाँ, इस रिहर्सल के लिए। रोज रोज मतलब हफ्ते में एक बार सीधा डेक्कन क्वीन पकड़ के बम्बई पहुंचना, बम्बई से सीधा माहिम कोड़ीवाड़ा, हाँ, मतलब मछुआरे का जो माहिम का बहुत बड़ा बस्ता है वो, और साथ में मैं तब 4-5 साल की होंगी, और दिन भर फिर वहां पहुंच के माँ फटाफट जाके वो कोड़ी टाइप का साड़ी पहनती, गहने पहनती, बालों में फूल रचा लेती, और फिर उनका शुरू हो जाता था निरी

0: एक्शन कि वो सब औरतों को देखना, वो कैसे बैठती हैं, कैसे बोलती हैं, कैसे चलती हैं, कैसे अंदाज है उनकी वगैरह वगैरह। और मैं आंखें फाड़ फाड़ कर देखती थी कि अरे मेरी माँ की अब ये मछुआरी कैसे और कब बन गई, और मेरे लिए ये बहुत ही एक अचंभा करने वाली बात थी। उस छोटी उम्र में जो नाटक से नाता जुड़ा ही रहा, वो कभी खत्म नहीं हुआ। और आगे जाकर मैंने भी बहुत नाटक लिखे, खेले, डायरेक्ट किया, वो एक प्यार बना रहा। लेकिन वो और फिर आगे जाकर जब मैं नेशनल स्कूल ऑफ ड्रामा में पहुंची तो हमने स्टैंसलर्स्की पढ़ा। और स्टैंसलर्स्की का कहना है, आप तो जानते होंगे कि रोल तुम खुद जियो
1: जी,
0: है ना?
1: बिल्कुल।
0: तो वो तो पाठ मैंने छठी उम्र में माँ से सीखा था,
1: है
0: कि रोल कैसे जीते हैं, वो मछुआरा बन के माँ ने मुझे दिखा दिया। तो ये सब ऐसी बातें थी, और वाकई में बहुत ही हटके, बहुत ही अलग ढंग के मेरी परवरिश रही, बहुत अजीबो गरीब ढंग से कह सकते हैं। और मेरी पिटाई भी बहुत होती थी।
1: कमाल की बात है। हाँ, शरारती थी?
0: नहीं, शरारती नहीं थी इतनी। मैं नहीं कहूंगी कि मैं बहुत हद से ज्यादा तो नहीं थी शरारती, लेकिन मेरी माँ हद से ज्यादा स्ट्रिक्ट थी। और कोई वजह हो, कभी ना भी हो, ज्यादातर ना भी होती थी, फिर भी मेरी दिन में पिटाई एक बार तो होनी ही थी। और हमारे गली में, हमारे मोहल्ले में जब कोई बच्चा शरारत करे, कोई बच्चा सुने नहीं माँ बाप की और कुछ उल्टा सीधा काम करे, तो उसको उसके माँ बाप कहते थे तुम सही की तरह पिटाई करने का। और मुझे इतना अपमान लगता था, आई वुड फील सो ह्यूमिलिएटेड। तो ये बहुत था। इस बात पे मुझे अभी भी कभी याद आती है तो गुस्सा आता है माँ पर, बहुत गुस्सा आता है। लेकिन दूसरी तरफ इतना बेतहाशा प्यार और लाड़ कि जब मैं छोटी थी ना, तब लड़कियों की एक रीत थी कि अपनी गुड़िया की शादी करवाना।
1: वाह वाह, हाँ, बड़ा प्यारा।
0: तो हाँ, बहुत स्वीट। तो हर लड़की की एक ना एक तो गुड़िया होती थी, और प्यारी गुड़िया, तो फिर गुड़िया की शादी होती थी, और बाकी सब लड़कियां फिर शादी में बुलाई जाती हो जाती थी। मेरी भी गुड़िया थी, लेकिन माँ कहती थी नहीं ये सब बकवास है, गुड़िया की शादी वादी कुछ नहीं। तो मैं कहती थी नहीं, लेकिन मैं हर जगह जाती हूँ, मुझे भी तो बुलाना चाहिए, मैं भी बुलाना चाहती हूँ। तो मारे नहीं नहीं कोई शादी वादी नहीं, चुप करवाती थी मुझे। लेकिन एक दिन फिर मैं बहुत ही मैंने जिद की और बहुत ही हट गई। मैंने कहा नहीं, मैं शादी तो ये होके ही रहेगी। तो फिर माँ ने कहा कि अच्छा ठीक है, चलो फिर मुहूर्त देखते हैं। और बाकायदा मुहूर्त देखा, और फिर तुलसीबाग करके पुणे में एक बहुत फेमस मार्केट है, तो वहां से हमने एक जोड़ा खरीदा, गुड्डा गुड्डी कपड़े के थे हाँ दोनों, और गुड़िया के बाल थे अच्छे से काले काले, और छोटा सा जूड़ा था, और साड़ी पहनी थी, मुझे अच्छी तरह याद है, हरी रंग की साड़ी थी। तो उनकी शादी हमारे घर हुई, बाकायदा हम एक महीना भर पहले उसकी तैयारी में थे। मतलब तुलसीबाग से ये छोटे छोटे मणि, उसको क्या बोलते हैं, पर्ल्स लाते थे, उनकी मालाएं बनाना, उनके कान के गहने बनाना, ये बनाना, वो बनाना, क्या क्या क्या क्या चलता था। और फिर शादी के दिन एक तकरीबन 100 बच्चों को बुलाया गया मेहमान के तौर पे, और 100-150 बच्चे बिन बुलाए भी आ गए इधर उधर से। और माँ ने एक सफेद घोड़ी बुक की, सफेद घोड़ी, एक्चुअल घोड़ी। फिर एक बैंड बुलाया, स्काउट बैंड, साफे वाले, हाँ गुलाबी साफे वाले, सब यंग 16-17 साल के जवान लड़के थे, अपने अपने वाद्य लेके आए, उनका बैंड और ये घोड़ी, और घोड़ी पर फिर मेरी गुड़िया, गुड्डा गुड़िया, और फिर हमारी बारात। हम घर से अपने निकले, हम परांजपे रोड पे थे, मेरे नाना से सड़क का नाम दिया था, तो वो उससे फिर अपटे रोड से होते हुए, फर्ग्यूसन कॉलेज रोड से होते हुए, फिर वापस ऐसे पूरा हम डेक्कन जिमखाना तकरीबन घूम के पूरी हमारी बारात आई। और कितने महीनों तक ये चर्चा रही जारी पुणे में कि सही के गुड़िया की शादी।
1: गजब गजब। हाँ, ये तो इतनी भव्यता के साथ हाँ, शादी की गई
0: जी। और मेरी अपनी शादी में मां नहीं आई।
1: हाँ, ये भी एक विडंबना हाँ, की बात
0: लेकिन
1: है। ये वाला जिक्र हाँ, आगे की तरफ करेंगे, ये सूत्र पकड़ेंगे आगे। लेकिन गुड्डे गुड़िया की शादी की बात चल रही है, और गुड़िया जैसा नाजुक जज्बात यहाँ पर आया है, तो मुझे लगता है कि यहाँ एक गाना सुन लेते हैं।
0: अरे क्यों
1: एक
0: नहीं?
1: फिल्म हाँ। में जो बात आती है गुड़िया कब तक रूठी रहोगी,
0: हाँ, हाँ।
1: मुझे लगता है उसी जज्बात को वो आगे बढ़ा।
0: क्या बात,
1: तो वो गाना सुनते हुए आगे बढ़ा। बात

0: बचपन में आप बहुत पढ़ती थी और चार्ल्स
1: जी
0: डिकेंस और सब
1: जी
0: बड़े साहित्यकारों को
1: या
0: पढ़ रखा था।
1: थॉमस हार्डी, जेन ऑस्टिन,
0: हाँ
1: स्कॉट, और
0: बिल्कुल।
1: ये सब हुई बड़ों की किताबें, ये भी मैंने पढ़ी। नाना के साथ पढ़ती थी, और मतलब मैं जोर से पढ़ती थी
0: वुदरिंग हाइट्स वगैरह।
1: वदरिंग हाइट्स, यस एब्सोल्युटली, और ये क्या ब्रॉन्टे सिस्टर्स, हाँ, तो ये सब पढ़ती थी। और इसके अलावा बच्चों की किताबें भी बहुत पढ़ी मैंने, जैसे मराठी में तो खजाना है,
0: जी
1: हाँ, भारा भागवत, और दुनिया भर के साने गुरुजी, और इतनी सारी किताबें, हाँ, और लक्ष्मीबाई टिळक की भी, जो कि बच्चों की नहीं है वो किताब, लेकिन वो भी बहुत, उनका आत्मचरित्र बहुत सुंदर, बहुत बढ़िया था, वो पढ़ा। तो ये मैं बहुत पढ़ती थी और साथ साथ लिखती भी थी अपनी तरफ से, जो कुछ बचकानापन कहो। और जब हम ऑस्ट्रेलिया गए, मेरे नाना भारत के पहले हाई कमिश्नर हुए ऑस्ट्रेलिया में, तो 4 साल हम ऑस्ट्रेलिया रहे, तो वहां फिर खजाना ही खजाना था बच्चों की किताबों का। वहां जाके फटाफट मैंने अंग्रेजी सीख ली, और फिर ढेर सारी किताबें, अब मतलब कितना मैंने पढ़ा उसकी कोई गिनती नहीं। और पढ़ने के अलावा वहां बच्चों के लिए कार्यक्रम भी इतने अच्छे अच्छे प्यारे प्यारे होते हैं, फिल्म्स होती है, रेडियो के प्रोग्राम्स होते हैं, नाटक होते हैं, और जादू के प्रोग्राम्स होते हैं, और क्या क्या क्या नहीं होता, तो वो सब मैं, इतना मुझे लगता है मैं बहुत समृद्ध हुई।
0: बिल्कुल, बहुत दिलचस्प है क्योंकि
1: हाँ
0: आज के जमाने के बचपन से जब हम इसकी तुलना करते हैं तो मुझे लगता है कि ये जो बचपन है इसमें बहुत सारी चीजें हैं। इसमें पिटाई भी है, इसमें किताबें हैं, इसमें जज्बात है, इसमें नाटकों की, एक तरह से नाटकों के संस्कार पढ़ रहे
1: जी
0: हैं,
1: जी
0: तो ये तमाम चीजें हैं।
1: हाँ
0: लेकिन यहाँ एक और चीज है जिसका मैं जिक्र करना चाहता हूं और वो है अच्युत रानाडे साहब।
1: हाँ बिल्कुल बिल्कुल, अरे क्या बात, वो अच्युत मामा, उनको मैं अच्युत मामा कहती थी,
0: जी
1: बहुत ही उम्दा हस्ती थे, हाँ, और वो खुद फिल्म डायरेक्टर थे, लिखते भी बहुत बढ़िया थे, हालांकि मुझे लगता है कि वो डायरेक्शन से भी लेखक ज्यादा अच्छे थे। और उनकी फिल्म गुड़िया, जो इब्सन का डॉल्स हाउस आपने सुना होगा नाटक, तो डॉल्स हाउस पे बनी फिल्म उनकी गुड़िया नाम की, जिसमें उन्होंने बलराज साहनी को पहली बार स्क्रीन पे लाया। तो अच्युत मामा और बलराज साहनी बहुत दोस्त थे, तो बलराज ने उनके फिल्म में काम किया, और अच्युत मामा ने बहुत मराठी और हिंदी फिल्में, हिंदी फिल्म उनकी याद है मुझे, फूल और कांटे एक फिल्म थी, फिर एक मंदार नाम की फिल्म थी, और फिर मराठी में जागा भाड़ैनी देने आए वगैरह वगैरह, ऐसे बहुत ही फिल्में उनकी थी। तो वो और मैं, हम पूना में घूमते बहुत थे,
0: जी
1: पूना वालों को घूमना बहुत पसंद है, एक उनके हिस्सा ही है,
0: जीवन
1: तो
0: शैली का।
1: जीवन शैली का बिल्कुल। तो ये हम जाते थे फर्ग्यूसन टेकड़ी, टेकड़ी मतलब टीला, फर्ग्यूसन टेकड़ी नाम का टीला था, उस पे चढ़ते थे, वहां एक मंदिर था, वो मंदिर तक पहुंचते थे, और जाते जाते अच्युत मामा कहानियां सुनाते, लेकिन कहानियां ऐसी वैसी नहीं, फिल्मों की कहानियां,
0: हाँ ये बड़ा मजेदार
1: हाँ,
0: है।
1: और वो फिल्में कौन सी, तो उन्होंने जो देखे, उन्होंने बहुत सारा देखा हुआ था, उन्होंने अंग्रेजी फिल्मों के जैसे ग्रेट एक्सपेक्टेशंस, या द गुड अर्थ, या वदरिंग हाइट्स वगैरह वगैरह, गैस लाइट, ऐसी इतनी फिल्मों की कहानियां मुझे सुनाई, और मराठी कहानियों की, फिल्मों की भी, जैसे शेजारी, बानूस, राम शास्त्री, ये मराठी फिल्मों की भी कहानियां उसमें आती थी। और वो फिल्म कहानी इस तरह सुनाते थे यूनुस कि हम जा रहे हैं, और ऊपर से देखते हैं तो एक छोटा सा गांव नीचे दिखता है, फिर एकदम एक हम सड़क पे जाते हैं, एक बैलगाड़ी जा रही है, हम बैलगाड़ी के पीछे पीछे जा रहे हैं, और बैल के सींगों के बीच में से हमको एक दूर झोपड़ा दिखता है, मतलब ये पूरा सिनेमैटिकली बताते थे
0: वाह
1: कहानी, और
0: वाह,
1: वो जैसे कहानी झुलसती थी तो वो चित्र आंखों के सामने उभर जाता। और ये करके मैंने, मुझे तब मालूम नहीं था कि ये मैं सीख रही हूँ फिल्म टेक्निक, सीख रही हूँ अनजाने में, लेकिन ये क्या था, फिल्म टेक्निक ही तो था,
0: बिल्कुल
1: हाँ,
0: बिल्कुल।
1: तो ये उन्होंने सिखाया। और एक मजे की बात आपको बता दूँ, बड़ा मुझे यहाँ मोह हो रहा है, रहा नहीं जाता, कि उन्होंने मुझे राम जोशी की कहानी सुनाई,
0: जी
1: राम
0: जी
1: जोशी हमारे एक बहुत बड़े शाहिर थे,
0: शायर हुए।
1: गाने
0: जी
1: वाले, हाँ,
0: जी
1: तो उनको पीने की आदत थी, और पीने से जैसे अनेक कलाकारों को तब के और अब के ये हमने देखा है पतन, तो वो भी शराब के बिल्कुल उसमें आ गए थे। तो एक दिन वो कहते हैं कि आज उनकी बुरी तरह, वो दूसरी जो हंसा वाडकर की भूमिका थी, वो उनको नीचा दिखाती है, एक कंपटीशन सा होता है, तो वो कहते हैं, बहुत छोटे हो जाते हैं, मायूस हो जाते हैं, वो कहते हैं कि बस आज से शराब छोड़ दी, हाँ? और ये कहते तो है बड़े जोरों से, लेकिन कहते हैं फिर शाम को वो बड़े त्रस्त, बड़े परेशान, शराब नहीं पीनी तो बहुत परेशान। और अच्युत मामा ने कहा फिर हम देख रहे हैं कि वो तलम धोती पहने हुए सफेद ऐसी, और सिर्फ हम उनके पैर देख रहे हैं, इधर से उधर जा रहे हैं, उधर से उधर जा, दाएं से बाएं, बाएं से दाएं, और कैमरा उसके साथ साथ हम जा रहे हैं, और कैमरा के साथ हम, और उनके धोती के सुराई की नोक अटकती है। हाँ, सुराई की नोक ही कहते हैं ना, तो सुराई की नोक अटकती है और वो सुराई साथ साथ उनके वो जा रही है, और ये हम देख रहे हैं। तो मैंने कहा अच्युत मामा इसका मतलब कि उनकी शराब छूटी नहीं है ना? हाँ। तो उसने कहा बहुत शाबाश, वेरी गुड, तुम बिल्कुल समझ गई हो और ये करेक्ट है, बिल्कुल ऐसा ही होता है कि वो नहीं छूटती उनकी शराब वगैरह वगैरह। तो आगे जाकर मैंने ये फिल्म देखी और ये दृश्य देखा, और सच बात कहूं, थोड़ा घमंडीपन लगेगा लेकिन सच बात कहूं तो मुझे लगा जो मैंने सोचा था वो ज्यादा बेहतर था। ये दरअसल पर्दे पर जो आया है इतना मजा नहीं आया, और मुझे लगता है कि मैं फिल्म डायरेक्टर बनूंगी, ये उस लम्हे तय हुआ।
0: वाह,
1: ऐसा मुझे लगता है।
0: गजब गजब गजब। तो ये कितनी महत्वपूर्ण घटना है कि अच्युत मामा है, वो एक तरह से सिनेमा के संस्कार
1: जी, देखो वो साथ साथ होता रहा है,
0: कह के सुनाते हैं। हाँ। दूसरी तरफ नाटक चल रहा है।
1: हाँ।
0: माँ जो है वो नाटक की प्रोसेस का हिस्सा बनाती है। लेकिन दो बातें जो है वो मुझे बड़ी जरूरी लग रही है पूछनी। एक तो ये कि मैथमेटिशियंस की फैमिली ये कहा जा सकता है क्योंकि माँ भी मैथमेटिक्स पढ़ी थी, वहां से निकलकर आने वाली एक लड़की मैथ्स नहीं चुनती है, क्यों? और फिर ये रास्ता रेडियो की तरफ कैसे चलता है, या रेडियो का रास्ता सही की तरफ कैसे आता है?
1: वो इत्तेफाक की बात है
0: जी।
1: हाँ, अब मैथ्स नहीं चुनी क्योंकि वो तो जाहिर है नहीं आता नहीं था, और कोई जबरदस्ती किसी ने नहीं की कि तुम्हारे नाना मैथमेटिशियन है तो तुमको ही करना, नहीं, वो जान गए कि इसके बस का नहीं है, इसको नहीं आता, तो मान गए बेचारे, क्या करते।

0: लेकिन मेरी तब बीए की परीक्षा, बीए का इम्तिहान बहुत नजदीक आया था। हाँ, और आखिरी महीने जैसा होता है, मैं पढ़ाई मैंने शुरू की, साल भर मस्ती की, ये वो किया, और फिर जग गई आखिरी महीने में, तो फिर पढ़ाई शुरू। और इतने में एक दिन घर पे एक चपरासी आया, सरकारी बिल्कुल यूनिफॉर्म में, और एक ब्राउन रंग का लिफाफा लेके आया। सही परांठ पे कौन? मैंने कहा जी मैं हूँ, ये आपको आया है, पुणे रेडियो से आया था वो, आकाशवाणी पुणे से। और पढ़ा तो क्या था, ऑडिशंस थे दूसरे दिन, मराठी अनाउंसर के ऑडिशंस, और मुझे बुलाया था।
1: वाह,
0: अब क्यों कैसे ये आज तक मैं नहीं समझी। ये एक कमाल का इत्तेफाक मेरे जिंदगी का है कि
1: जी
0: ये किसने मुझे क्यों भेजा। ना मेरा कोई नाम था तब, कुछ नहीं कुछ नहीं, और मतलब कोई सवाल ही नहीं था कि मुझे कोई भेजे पूछे। तो माँ ने कहा कि कब है, कितने बजे है ये ऑडिशन? मैंने कहा ऐसे कुछ 5 बजे। कहते मतलब शाम को है, तो शाम को थोड़ी ना तुम पढ़ाई करती हो, वैसे भी पढ़ाई कब करती हो क्या पता, लेकिन शाम को तो नहीं ही करती हूँ, तो हो आओ देख तो लो क्या है, जाओ। तो फिर मैं साइकिल, तब साइकिल चलाती थी, अपनी साइकिल चला के डेकिंगम खाना से, तब वो ससून के पास होता था, सेंट्रल बिल्डिंग्स में हमारा रेडियो स्टेशन था, वहां पहुंची और ड्यूटी ऑफिसर मिले। उन्होंने कहा अच्छा आप ऑडिशन के लिए आइए आइए, एक कागज पकड़ाया मुझे, कहते ये आप पहले मन में पढ़ो 2-3 बार, और फिर ये आपको पढ़ना है वहां। तो उसमें एक मुझे वाक्य अच्छी तरह याद है कि मराठी अनाउंसमेंट, ढगांचा गड़गड़ाटा सह विजांचा कड़कड़ाट होईल। हाँ,
1: ओहो
0: अब मुझे माँ का एक और ये बताना, बताया नहीं मैंने कि कितना और क्या क्या बताऊं, लेकिन संस्कृत पढ़ना और स्तोत्र और श्लोक, वैसे हमारा खानदान था नास्तिक, मेरे नाना नास्तिक थे, भगवान पूजा वूजा नहीं मानते थे, हालांकि उनके पिताजी गांव के पुजारी थे,
1: जी
0: लेकिन लंदन जाके उन्होंने जॉन मिल्स पढ़ा वगैरह वगैरह, उनमें परिवर्तन आया, ही बिकेम रैशनलिस्ट। और माँ भी मेरी रैशनलिस्ट थी, तो घर में देव पूजा वगैरह वगैरह नहीं होता था, लेकिन स्तोत्र सीखना और पढ़ना लाजमी था, क्योंकि शुद्ध भाषा और वो इतना खजाना है संस्कृत में। तो माँ ने कहा ये तो बहुत जरूरी है, और श्लोक आज भी मुझे 101 संस्कृत श्लोक जरूर आते होंगे, और
1: वाह,
0: स्तोत्र भी, अभी गणपति स्तोत्र, सूर्य स्तोत्र, राम रक्षा, ये सब मैं अभी भी, रावण स्तोत्र, जटा कटाह संभ्रम
1: वो
0: ब्रह्मण्य,
1: पूरा
0: ये
1: याद है,
0: पढ़े,
1: शिव तांडव स्तोत्र।
0: पूरा तो नहीं लेकिन याद है। तो ये जो मुझे आता था वो मैं ये ढगान सा गड़गड़ाट और बिजान सा कड़कड़ाट से क्या डरूं, है ना?
1: बिल्कुल
0: तो वो
1: बिल्कुल
0: मैंने घड़ाघड़ बोल दिया, सब चौंक गए कि अरे ये लड़की बहुत तेज निकली। और फिर जैसे मैं वो रेड लाइट ग्रीन लाइट उसका ड्रामा हो गया और फिर खत्म हो गया, लाइट बंद हो गया, तो मैंने दरवाजा, वो तो आपको क्या बताना कि दरवाजे कितने हुए भारी
1: भारी
0: होते हैं,
1: होते हैं, खींच
0: वो
1: के
0: ही
1: खोलो।
0: करके मैंने खोला दरवाजा, दरवाजे में ड्यूटी ऑफिसर खड़ा, कहता है कल से आ जाइए। मैंने कहा जी नहीं माफ कीजिए, मैं कल से तो नहीं आ सकती, मेरा इम्तिहान है, मुझे घर से निकाल देंगे, मुझे इम्तिहान देना है, मैं नहीं कल से आ सकती। ओ हो, तो आप ऑडिशन के, तो मैंने कहा ऐसे आई देखने क्या होता है वगैरह। ओ हो, मायूस हुए सब लोग तो नहीं? मैंने कहा नहीं बिल्कुल नहीं आ सकती। फिर मैं चल पड़ी, और जैसे मैं सेंट्रल बिल्डिंग्स के मेन गेट तक, फाटक तक पहुंची, एक चपरासी फिर मेरे पीछे दौड़ते आया, आपको बुलाया है? मैंने कहा नहीं, अब क्या है? कहते नहीं नहीं बुलाया, आइए आइए। फिर गई, उन्होंने कहा कि अंग्रेजी ये पढ़ेंगी आप, अनाउंसमेंट्स, वो सिर्फ 5 मिनट की होती है और शाम को होती है। मैंने कहा कोशिश करते हैं, लाइए। तो फिर और एक पन्ना पढ़ा, वो भी मैंने पढ़ा, तो और भी आसान था, अंग्रेजी सिंपल था। फिर दरवाजा खोला, फिर दरवाजे में ड्यूटी ऑफिसर, कल से आ जाइए। और फिर कल से मैं जाने लगी,
1: जी
0: और तब वो मुझे तनख्वाह, अभी इससे पहले जब हम लोग बातें कर रहे थे तब बताया, जैसे तो मेरी तनख्वाह उन दिनों महीने की 50 रुपए,
1: वाह वाह
0: और
1: वाह,
0: मैं बड़ी खुश कि वाह वाह, ये तो आकाशवाणी को अपन ने कैसा ठगाया, इतना, इतनी मजे की बात, इतना मजे का चांस, इतना अब सब जगह नाम हुआ कि अनाउंसर सही अनाउंसमेंट करती है, और ऊपर से ये पॉकेट मनी 50 रुपए। बहुत खुश हुई, और सचमुच मुझे लगता था कि आकाशवाणी को हमने बेवकूफ बनाया। और ये नहीं कि मैं बेवकूफ बनी थी।
1: कुछ अनाउंसमेंट्स याद हैं शुरुआती तौर पर जो किए होंगे आपने?
0: नहीं, ऐसा कहते दिस इज ऑल इंडिया रेडियो पूना एंड हियर आर द डेज अनाउंसमेंट्स, गिविंग यू द वेदर फोरकास्ट एंड वगैरह वगैरह, ऐसा कुछ
1: अच्छा अच्छा
0: दिन का
1: वाह,
0: जो भी छोटा मोटा, तो 5 मिनट की अनाउंसमेंट थी, 5 या 10 मिनट की ऐसी, दैट्स इट। और हाँ, और फिर एग्जाम हो गया, एग्जाम होने के बाद उन्होंने कहा अब तो मराठी अनाउंसमेंट दे सकती हो। मैंने कहा हाँ अब

0: दे सकती हो तो तनख्वाह मेरी 50 से 150 बढ़ गई, तीन
1: तीन गुना बढ़ गई।
0: गुना, पर फिर भी 150 मतलब क्या है, कुछ भी नहीं। एनीवे तो उसी में भी मैं खुश थी, तो वो मराठी अनाउंसमेंट करने लगी, लेकिन उसमें कुछ मजा नहीं आया कि किसी का लिखा हुआ पढ़ते जाओ, तो एक दो दिन अच्छा लगा लेकिन बाद में लगा कि इसमें कोई दम नहीं है। तो फिर बालोद्यान में करने लगी बच्चों का कार्यक्रम, उसमें कॉम्पेयर बनी दीदी नाम से। हाँ, तो वो तो बात बनी फिर, दैट वाज ग्रेट फन, आई एंजॉयड दैट।
1: तब आप बड़ी लोकप्रिय हो गई और इतनी लोकप्रिय हो गई कि एक बार ट्रंक कॉल बुक किया।
0: नहीं, ट्रंक कॉल नहीं, वो हाँ। बताती हूँ किस्सा। ताई ताई कहते थे मराठी, ताई मतलब दीदी
1: जी।
0: तो तीन जने हम कंपेयरिंग करते थे, एक नाना जो बुजुर्ग थे जो प्रोड्यूसर थे गोपीनाथ तळवलकर, और मैं उनकी असिस्टेंट, मैं दीदी, और एक नेमीनाथ उपाध्याय करके एक देहाती कैरेक्टर था। तो हम तीनों की मिलजुल के बातें होती थी, हंसी मजाक एक दूसरे की खिंचाई, बच्चों के साथ बातें वगैरह वगैरह कार्यक्रम, बहुत ही बच्चों को ये पसंद आता था। और नाना ताई हरवा बहुत प्यारे थे हर फैमिली में। तो एक दिन मुझे किसी का नंबर चाहिए था, टेलीफोन नंबर, उन दिनों मोबाइल वोबाइल तो कुछ नहीं था, तो मैंने फोन किया 199 को और मैंने कहा हेलो, मुझे गर्दी माडगुलकर के घर का फोन दे सकती है?
1: वाह वाह वाह।
0: तो लम्हे सन्नाटा, फिर मैंने कहा शायद सुना नहीं, मैंने कहा हेलो, तो उसने कहा ताई, ताई बोल रही है, टेलीफोन ऑपरेटर ने उधर से। मैं चौंक के, मैंने कहा वाह वाह वाह, मेरा हो गया। मैंने कहा हाँ, रेडियो की ताई, बालोद्यान की ताई बोलते ना, हाँ जी हाँ मैं बोल रही हूँ, अरे ताई। एंड देन फॉर 5 मिनट्स, 5 मिनट तक वो रुके ना, वो बेचारी इतना बोल रही थी कि कितना वो प्रोग्राम सुनती है, कितना उसको अच्छा लगता है, कितनी वो ताई से प्यार करती है ना, ये वगैरह वगैरह वगैरह। तो मैं भी कुछ हाँ हूँ करती रही, और फिर बाद में मैंने कहा अच्छा नंबर दे रही है ना, तो उसने नंबर भी दिया। फिर मैंने फोन रखा और सीधे मैं ऊपर आसमान में पहुंची खुशी, क्योंकि दैट वॉज द फर्स्ट टाइम माई टेस्ट ऑफ रिकग्निशन, जिसको कहते हैं ना कि कोई आपको पहचाने
1: आवाज से। वाह,
0: और ये पहला अनुभव था, और मैं इतनी दंग रह गई कि क्या। और उसके बाद खुशकिस्मती से ऐसे बहुत मौके आए कि लोगों ने सराहा या कहा फला फिल्म पसंद है, फला नाटक ये पढ़ा वो वगैरह वगैरह, लेकिन वो बात फिर कभी नहीं, जो आनंद वो पहले उसमें था ना, इताई ताई बोलते हैं यू नो, वो दोबारा नहीं कभी।
1: लेकिन जिनका नंबर आप ढूंढ रही थी, हाँ, गर्दी माडगुलकर, हाँ, उन्होंने एक फिल्म लिखी थी,
0: हाँ,
1: और उस फिल्म का गाना अब हम आपको सुनवाएंगे।
0: अच्छा,
1: दो आंखें 12 हाथ उन्होंने लिखी थी, ओपन जेल कंसेप्ट पर जो फिल्म थी, वो तो गदी माँ ने ही लिखी थी, है ना। तो मुझे लगा कि चूंकि उनका जिक्र आया है तो इस गाने की यहाँ जगह बनाते हैं, ए मालिक तेरे बंदे हम।
0: क्या बात,

0: रेडियो से आपका ताल्लुक जुड़ गया, आकाशवाणी से जुड़ गया, और ये कहना चाहिए कि पहली प्रसिद्धि आपको मिली, प्रशंसा मिली, बालोद्यान में आपने नाटक लिखने शुरू किए और नाटक करने शुरू किए, ये जो है आपकी जिंदगी का बड़ा टर्निंग पॉइंट था। हम इसके बारे में जानना चाहते हैं। वो नाटक बड़े लोकप्रिय हुए थे,
1: हाँ,
0: 7-8 नाटक थे शायद।
1: 10-12।
0: बापरे जी।
1: हाँ, तो ये ऐसा हुआ कि बालोद्यान के लिए प्रोग्राम करने लगी, फिर सोचा कि एक आध नाटक लिखती हूँ। तो एक नाटक मैंने लिखा, पक्षांत से कवि सम्मेलन, मतलब पंछियों का कवि सम्मेलन, मुशायरा। उसमें छोटे में कहानी ऐसी थी कि कौवा है, और कौवे को सब लोग बहुत हीन समझते हैं, छोटा समझते हैं, बेचारा काला है, एक आंख भी उसकी टेढ़ी है, और सब लोग फिर उसका मजाक उड़ाते हैं। और ये गरुड़ महाराज जो सबसे वहां बुजुर्ग हैं, वो ये मुशायरा अनाउंस करते हैं कि भैया इस फला दिन को मुशायरा होगा और सब पंछी उसमें हिस्सा लेंगे। तो सब लोग खुशी खुशी पहुंच जाते हैं, और फिर एक से बढ़कर एक बेवकूफी की कविताएं सुनाते हैं। जैसे मोर क्या कहते हैं, जन मजला मनती बोर, एक पहा किती तरी थोर, वगैरह, उसके आगे वो जाता ही नहीं है।
0: जी
1: फिर कोकिला तो कहती है, वो कहती है मैं गाने वाली हूँ, तो मैं कोकिला आ कर, वो तानबाजी के अलावा कुछ नहीं, वो ताने ही लेती रहती है पूरा, वो कविता वगैरह कुछ नहीं, वगैरह कर करके। पोपट वो तो ये करता है तोतेबाजी, तो वो उसने कुछ कहीं से रटा हुआ वो वही सुनाता है। और उल्लू जो है वो तो बहुत इंटेलेक्चुअल है, तो ऐसा कुछ सुनाता है जिस किसी के पल्ले नहीं पड़ता, उसके खुद भी नहीं समझ में आता कि क्या उसने, वगैरह वगैरह। और कौवा बहुत ही बढ़िया कविता है, लिखता है, हर एक के ऊपर लिखता है, मोर के ऊपर, तोते के ऊपर, कोयल के ऊपर, वगैरह वगैरह, और खुद के ऊपर भी। हाँ, एनीवे, तो फिर वो बाजी जीत जाता है, बाजी मार जाता है। गरुड़ कहता है तुम लोग सब हंसे थे उस पर, लेकिन कैसे तुम, पता चला कि एक से बढ़कर एक बेवकूफ हो जो तुम्हारी कविता सुन के समझ में आया, लेकिन ये कौवे ने देखो कैसे किया, वगैरह वगैरह। तो एनीवे, ये पक्षांत से कवि सम्मेलन रेडियो से हुआ, और क्योंकि वो टोटली साउंड बेस्ड था,
0: बिल्कुल
1: है ना।
0: बिल्कुल
1: हाँ, उसमें ऐसा कुछ नहीं था कि कोयल दिखा गई हो, तो उनका काव्य इंपॉर्टेंट था। तो उसके बाद में मुझे एक पोस्ट कार्ड आया, फैन मेल, किसका, पु ल देशपांडे।
0: अरे वाह
1: हाँ,
0: वाह वाह, क्या बात
1: कि
0: है।
1: सही, तुझी श्रुति का ऐख ली, तुम्हारी श्रुति का सुन ली, और बहुत मजे की लगी, क्या बात, शाबाश आशीष लीतरा, ऐसे ही लिखते रहो। तो मतलब माँ ने फिर से छापी वो छोटी सी पतली सी पुस्तिका, और उसके बाद फिर मुझे ताव आया कि अरे ये नाटक, ये भी बहुत मजे की बात है ये। और फिर मैंने एक से बढ़कर एक रेडियो के लिए, बालोद्यान के लिए नाटक लिखे, शेपटी चाचा, पत्ते नगरी। पत्ते नगरी पहले था पक्षांत से कवि सम्मेलन के बाद, और उसकी कहानी भी ऐसी मजे की थी कि तब मैं सेंट्रल बिल्डिंग से, मतलब ससून के स्टॉप से, डेकन जिमखाना जाती थी बस से। हाँ, तीन नंबर बस, अगर मैं गलत नहीं हूं तो, मुझे लगता है 3 नंबर की बस होती थी, तो बस पकड़ के मैं जाती थी। और ये एक मजे की बात, तब से आज तक भी ये चलती है कि जब मैं किसी वाहन में हूं, हाँ, तो मेरा दिमाग भी चलने लगता है।
0: वाह
1: हाँ, और तब मैं बस में बैठी, और पता नहीं ये पत्ते नगरी का एकदम मुझे एक जैसे साक्षात्कार हुआ कि ताश की दुनिया है, उसमें ईट और पान चार जो है ना, अंग्रेजी नाम
0: जी
1: बताती हूँ,
0: जी जी
1: हार्ट्स एंड डायमंड्स एक तरफ क्योंकि दोनों लाल है, और स्पेड्स और क्लब्स एक तरफ क्योंकि दोनों काले हैं, और उनकी बाबा आदम के जमाने से उनकी लड़ाइयां शुरू है, और जिनका कोई अंत ही नहीं है क्योंकि तुल्य बल है दोनों तरफ, इधर तेरा उधर तेरा, ये बिल्कुल ये उसका फासला होने वाला नहीं है, ये लड़ाइयां चलती रहेंगी चलती रहेंगी, ऐसा ये कुछ कथानक था। और उसमें एक शांति दूत होता है जो चाहता है कि अरे भाई दोस्ती करो ना, ये क्या है, कब तक झगड़ते रहोगे। वो शांति दूत मतलब जोकर, जो 53rd कार्ड होता है जोकर, यू नो दैट, इन अ ताश के उसमें। तो वो ऐसे एक एक एक एक मुझे सूझता गया कि अरे जोकर, हाँ ये शांति दूत बनेगा, फला धमका ये वो। और मैं बस के टिकट पे छोटे छोटे चीटी जैसे अक्षरों में लिखती गई छोटे छोटे मुद्दे, एंड आई रिमेम्बर दैट आई फॉरगॉट टू गेट ऑफ एट माई स्टॉप, वेंट राइट अप टू स्वारगेट विच वॉज द फाइनल स्टॉप, और वहां देखा अरे ओह मैं कहाँ पहुंच गई। फिर ये

0: किताब भी छपी और आज तक यूनुस ये पत्ते नगरी के खेल होते हैं इधर उधर भारत में, भारत के बाहर भी, और मुझे चिट्ठियां आती है कि हमको इसका शो करना है पत्ते नगरी का। और भी लिखे ड्रामे जैसे शेपटी सा शाप, सड़ो की पड़ो, झाली का गम्मत, जादू सा शंख, भटक्याचे भविष्य, बहुत से ये लिखे, उनमें से कईयों को नेशनल अवार्ड मिले बेस्ट बुक ऑफ द ईयर, एक दो को, और एक दो को स्टेट अवार्ड मिले महाराष्ट्र गवर्नमेंट के। तो इट वॉज अ वेरी ग्रेट एनकरेजमेंट। तो मैं लिखती गई, माउस प्रकाशन में छापी ये किताबें और अभी भी ये छप रही है, अभी भी ये किताबें इधर उधर खेली जाती है महाराष्ट्र में। और परमिशन लेने के लिए तो बहुत पूछते हैं लोग, और बिना परमिशन के भी बहुत बहुत खेल होते रहते हैं, कर भी लेते हैं।
1: ताश से मुझे याद आया, चश्मे बद्दूर में भी ताश से जुड़ा एक सीन होता है जहाँ ये फैसला करते हैं कि सबसे पहले कौन जाएगा।
0: ये तो मुझे याद नहीं आ रहा।
1: वो एक लड़की दिखी,
0: हाँ, वो नीचे दिखती है नेहा,
1: पत्ते से फैसला करते हैं कि जिसके पास रानी आएगी
0: अच्छा
1: वो जाएगा।
0: ये सचमुच मैं भूल गई थी। हाँ हाँ ठीक है, ये तो करते हैं और वो दो बुष्टंडे बेचारे पहुंच जाते हैं उसके घर,
1: बिल्कुल बारी बारी से फारूक शेख रह जाते हैं। चश्मे बद्दूर का जिक्र, चूंकि ताश की बात चली तो मैंने ताश से ताश जोड़ दिया, और मुझे लगा यहाँ चश्मे बद्दूर का गाना लेके आते हैं। हालांकि हम रहेंगे इसी दौर में, जिस दौर की
0: कौन सा गाना सुनाओगे
1: आपकी पसंद?
0: चश्मे बद्दूर का क्यों नहीं, वो काली घोड़ी द्वार,
1: बिल्कुल सुनते, काली घोड़ी द्वार खड़ी, वाह सुनते।

0: बात ये चल रही है कि आपके रेडियो में पदार्पण के बाद जिंदगी बड़ी बदलती है और आप रेडियो के ड्रामा लिखती हैं, लोकप्रियता हासिल करती हैं और वहां से एनएसडी की तरफ रास्ता खुलता है, अखबार में एक विज्ञापन छपता है। ये घटना बताइए, यहाँ से आगे चला जाए।
1: हाँ, ये बालोद्यान के बाद क्या हुआ, रेडियो वीक होता था, जो आपको मालूम ही है अभी भी रेडियो वीक चलता है। तो रेडियो वीक में ना तो सिर्फ श्राव्य रहता है मामला, लेकिन दृश्य भी हो सकता है। हाँ, तो ये जो नाटक आज तक सुन रहे थे लोग, अब वो मंच पे भी खेले जाते हैं। तो ये बालोद्यान के नाटक भी, हर बार मैंने नया नाटक लिखा और वो रेडियो वीक के लिए लिखा और वो मंच पे रेडियो के परिसर में ही, आकाशवाणी भवन के परिसर में ही छोटा सा स्टेज बिठाया जाता था। हाँ, और उसमें ये खेल होता था। तो महीना भर उसकी प्रैक्टिस होती, बच्चे हम चुन लेते, 8-10 बच्चे उसमें रोल करते। और फिर क्या होता, एक शो होता था रेडियो वीक का। हाँ, एक शो हुआ फिर हो गया, बात खत्म। तो बच्चे कहते थे अब अगला शो कब है, तो मैं अगला शो तो नहीं बेटे, हो गया, इतनी मेहनत की, इतना महीना भर तालीम की, हो गया। हाँ, हो गया बेटे। तो फिर माँ बाप भी आके थोड़ा सा नाराज होके झगड़ते भी थे, इतना उन्होंने। फिर हमने सोचा कि ये बात तो सच है, एक इतनी मेहनत करने के बाद सिर्फ एक ही शो करना लाजमी नहीं है। तो फिर हमने एक चिल्ड्रंस थिएटर शुरू किया पुणे में। हाँ, जहाँ हमने और शोज किए और बच्चों को सिखाया और बच्चे आते रहे और ये बालोद्यान से भी जुड़ा, लेकिन उसके अलावा भी इसके शोज काफी होते रहे और वो पॉपुलर भी हुए। और तब ये हमारा बहुत जोरों शोरों से चल रहा था, तब मेरी शादी भी हो गई अरुण दुगड़ेकर के साथ, वो भी इसी माहौल में था।
0: वो तो पूरा एक अलग किस्सा है।
1: हाँ, लेकिन वो तब की बात है ना, इसलिए। तो हमने ये चिल्ड्रंस थिएटर चलाया, लेकिन हमने फिर ये देखा, इश्तहार आया था पेपर में
0: जी,
1: कि नेशनल स्कूल ऑफ ड्रामा करके एक संस्था है जो भारत भर के विद्यार्थियों को नाटक सिखाने के इच्छा से आमंत्रण देती है उनको।
0: तो वो अखबार में विज्ञापन देखा।
1: हाँ, तो वो देखा मैंने। तो अब तय किया था कि अब यही अपना आगे का भविष्य यही है, नाटक रेडियो लिखना। तो अरुण ने भी कहा मुझे कि तुम अप्लाई तो करो। मैंने कहा हाँ, लेकिन ये चिल्ड्रंस थिएटर का क्या, उसे तो देख लेंगे, लेकिन ये एक बहुत अच्छा मौका है, उसे गंवाना नहीं, बाद में पछताओगी, तो तुम ये अप्लाई तो करो और क्या पता शायद तुम्हें चुनेंगे भी नहीं, हो सकता है तो।
0: अच्छा, ऐसे ही कह दिया।
1: तो मैं गई, खैर मुझे चुन लिया। और फिर मुझे याद है वो पहली ऑडिशन में उन्होंने कहा कि हम ज्यादातर लड़कियों को नहीं लेना चाहते। मैंने कहा क्यों, ऐसा क्यों, पार्शियलिटी क्यों? तो उन्होंने कहा इसलिए कि वो लड़कियां आती तो हैं बड़ी चाव से और फिर एक दो महीने में शादी करके चली जाती है। मैंने कहा मेरे साथ ऐसे नहीं होगा, मैं आपको बिल्कुल यकीन दिलाती हूँ। वो कहते कैसे कह सकते। मैंने कहा क्योंकि मेरी शादी तो हो गई है। फिर अच्छा कब? मैंने कहा पिछले महीने। एक महीने में शादी आपको आप पति ने जाने दिया? मैंने कहा नहीं, उन्होंने मुझे ये किया जाने के लिए। कहते एक महीने में वो इतना तंग आ चुके आपसे, वगैरह वगैरह बातें होंगी। एनीवे, तो आई ज्वाइंड एनएसडी एंड दैट्स हाउ आई ज्वाइंड फॉर द फर्स्ट ईयर। इट वॉज नॉट अ वेरी एक्साइटिंग ईयर क्योंकि कुछ खास हुआ ही नहीं उधर। और मुझे फिर लगता रहा कि अरे खामखा हमने छोड़ दिया चिल्ड्रंस थिएटर और यहाँ पहुंच गई, यहाँ तो कुछ हो नहीं रहा। लेकिन अगले साल जो एक तूफान आ गया, पधारा एनएसडी में, और वो था इब्राहिम अलकाजी।
0: क्या बात है।
1: तो वो आ गए और फिर सारा माहौल बदल गया, पूरा ढांचा ही बदल गया। और इतना फिर हमने काम किया, इतना सीखा, मतलब साथ जिंदगी में पूरा पड़ेगा इतना हमने सीखा अलकाजी साहब से। इट वॉज फैंटेस्टिक, यूज अ फैंटेस्टिक टीचर, बोलते इतना अच्छा थे कि क्या बताऊं मैं। इट वॉज रियली वंडरफुल।
0: बहुत सही शब्द का इस्तेमाल आपने किया कि एक तूफान आया जिसका नाम इब्राहिम अलकाजी था। उन्होंने मेरा ख्याल है सबसे पहले शायद आधे अधूरे का मंचन किया था।
1: नहीं नहीं नहीं, आषाढ़ का एक दिन,
0: आषाढ़ का एक दिन का मंचन किया था जी। बाद में फिर वो दूसरे नाटक हुए
1: जी, जी।
0: आपको उनके निर्देशन में काम करने का मौका मिला और कोई दिलचस्प याद?
1: मौका क्या, वो तो था ही, काम करना तो था ही। तो आषाढ़ के एक दिन में मैंने प्रियंगु मंजरी का रोल किया,
0: पत्नी जो होती
1: है, हाँ, कालिदास की पत्नी रानी है वो। और मुझे कोई अभिनय में जरा भी रुचि नहीं थी। एक तो मैं बहुत सीमित अभिनेत्री हूँ, बहुत ही, मैं खुद जानती हूँ अपनी सीमाएं। और वो मुझे मजा भी नहीं था और मैं मोटी भी, अभी भी मोटी हूँ, लेकिन तब मैं कुछ ज्यादा ही मोटी थी। हाँ, तो अलकाजी साहब ने मुझे बुलाकर कहा कि सही, तुम्हें अगर तुमने अपना वजन नहीं घटाया तो तुम्हें अच्छे रोल नहीं मिलने वाले, ये तुम बिल्कुल समझ लो। तो मैंने मन में कहा मुझे कहाँ चाहिए अच्छे रोल, मुझे बिल्कुल नहीं, मुझे नाटक करना है, निर्देशन करना है, आई वॉन्ट टू डायरेक्ट, आई वॉन्ट टू राइट। तो फिर मैंने लेकिन सिर हिलाया हाँ हाँ हाँ करा, उनके आगे अब थोड़ी उनसे बहस करती। तो वो था, उसके बाद मुझे नहीं याद कि मैंने कुछ, हाँ यस ऑफकोर्स मैंने एंटीगनी में इज्मिनी का रोल किया।
0: वाओ,
1: हाँ मतलब एंटीगनी थी सुधा शर्मा, क्या वो बहुत ही लायक एक्ट्रेस थी,
0: यानी जो आगे चलकर सुधा शिवपुरी बन
1: जी
0: जा रही
1: बिल्कुल
0: थी।
1: बिल्कुल, तो वो मेरे क्लास में थी, सुधा भी और शिवपुरी भी दोनों मेरे क्लास में थे, और तब भी दोनों का रोमांस था, खैर वो बात और है। लेकिन उनकी शादी हुई, दोनों बहुत ही अच्छे कलाकार थे, खास करके सुधा तो कमाल की अभिनेत्री थी, शी वॉज रियली फर्स्ट क्लास। और मुझे याद है उसने आषाढ़ के एक दिन में मल्लिका का जो रोल किया, वो नाटक के शुरू होते ही वो भागती हुई बारिश में भीगी हुई आती है, और अंबिका पड़वी को क्या बोलते हैं घर के बाहर जो होता है ना बरामदा सा, उसमें वो अनाज बिन रही है और बैठी है अंबिका, तो उसकी गोद में ये अपने आप को से लुढ़क जाती है उसकी गोद में, और कहती है आषाढ़ का पहला दिन और ऐसी वर्षा माँ, और ओह रोंगटे खड़े हो गए, क्या उसका वो अभी भी मेरे कान में गूंजता है, इतना बढ़िया उसने किया। और कालिदास बने थे शिवपुरी, और शिवपुरी को तब एक बुरी आदत थी, वो ऐसे गर्दन हिलाता था, उसका वाक्य होने पर उसकी गर्दन हिलती थी, फिर वो अलकाजी साहब ने निकाल दिया 3 महीने के अंदर, फिर दोबारा नहीं शिवपुरी की गर्दन। हमें बड़ा अचरज हुआ क्योंकि हमने कहा ये तो होगा ही नहीं, सवाल ही नहीं है कि इतना वो धस गया था उनके अंदर वो। एनीवे तो ये एक साल में बहुत सीखा अलकाजी साहब से, और उन्होंने क्या क्या नाटक किए बनाए कि अंधा युग उन्होंने ताल कटोरा गार्डन्स के वो फोर्ट में किए, मतलब टूटे फूटे वो खंडहरों के बैकड्रॉप पे, मतलब देख के ऐसे रोंगटे खड़े हो जाते थे, इतना बढ़िया उन्होंने मतलब पूरा यही बदल दिया दिल्ली का नाटक के बारे में सोच थी राजधानी की, वी पूरी बदल दी अलकाजी साहब ने, और बहुत ही कमाल का कार्य रहा, कमाल की उनकी देन रही थिएटर के प्रति।
0: जी तो मुझे लगता है कि यहाँ एक गाना सुन लेते हैं, तो इस गाने की यहाँ जगह बनाते हैं।

उजाले उनकी यादों के इस कार्यक्रम में आज आपने सुना निर्देशिका और पटकथा लेखिका पद्म भूषण सई परांजपे से यूनुस खान की बातचीत की पहली कड़ी। ये श्रृंखला जारी रहेगी अगले सप्ताह भी। कार्यक्रम में संपादन सहयोग नेहा शर्मा का, इस कार्यक्रम की प्रस्तुतकर्ता तेजश्री कांबले। अब दीजिए इजाजत, नमस्कार।

0: आप सुन रहे हैं विविध भारती राष्ट्रीय सेवा देश की सुरीली धड़कन। स्वागत है आप सभी का कार्यक्रम रंग तरंग में।
1: रंग तरंग
0: स्वागत है आप सभी का कार्यक्रम रंग तरंग में। मैं हूं विधि जैन। नमस्कार, स्वीकार करें।

सर ने और आर्को ने इसे संगीतबद्ध किया इस खूबसूरत से देशभक्ति गीत को। आइए सुनते हैं कार्यक्रम रंग तरंग में अगला नगमा, जो कि एक बहुत खूबसूरत सी आवाज में एक बहुत प्यारे से एल्बम से है, दीवाना एल्बम से सुन रहे हैं हम यह गीत, जिसे गाया है सोनू निगम ने। फैज अनवर ने इसे लिखा है और साजिद वाजिद ने इसे संगीतबद्ध किया है।

0: 21 जुलाई गीतकार आनंद बख्शी की याद का दिन।
1: वो तेरे प्यार का।
0: 22 जुलाई पार्श्व गायक मुकेश का जन्मदिन।
2: मुबारक हो सबको समाये सोहा।
0: विविध भारती लेकर आ रहा है दो खास कार्यक्रम।
3: धीरे धीरे बोल कोई सुनना।
0: गीतकार आनंद बख्शी के बेटे राकेश आनंद बख्शी याद करेंगे अपने पिता को 21 जुलाई शाम 4 बजे।
4: उन्होंने क्या किया कि एक नौकरी पकड़ ली टाइम पास। एक सिनेमा हॉल था वहाँ पे पास में, पैसे नहीं चाहिए थे, फिल्म देखने को मिलता था फ्री में। वो छड़ी से जो उनको मार पड़ी है उसके बाद जबरदस्त मार पड़ी।
0: 22 जुलाई को स्टूडियो में होंगे दो गायक मुख्तार शाह और गोविंद मिश्र, जो गाएंगे मुकेश के ढेर सारे गाने।
5: हो तो

0: और बताएंगे क्या जगह है मुकेश की उनके जीवन में।
1: वो उनकी तो एक दिल में छवि ऐसी है कि जिसको बोलते हैं ना कि पूजा जाता है।
2: वो अगर होते तो शायद मैं पैर पकड़ के बैठा ही रहता।
0: याद रखिए 21 और 22 जुलाई शाम 4 बजे सिर्फ विविध भारती पर।
3: सुनो जी सुनो, हमारी भी सुनो।
4: अपने देश में बढ़ रही है यूरिन की समस्या, लोग परेशान हैं प्रोस्टेट की बीमारी से, जरूरी है सजगता और सचेत रहना।
5: यंग लोगों में जो होती है प्रॉब्लम, वो ज्यादा करके अर्ज इनकॉन्टिनेंस है, जो कभी कभी स्ट्रेस के कारण, कभी कभी कैफीन वगैरह ज्यादा पदार्थ लेने के कारण, ये सब चीजों से वो कंट्रोल नहीं कर सकते, जो काफी हद तक दवाई से कंट्रोल में आ सकता है, जिसे हम अर्ज इनकॉन्टिनेंस कहते हैं।
4: यूरोलॉजिस्ट डॉक्टर उमेश ओझा चर्चा करेंगे प्रोस्टेट और यूरिन से जुड़ी तमाम बीमारियों पर। तो सुनिए सेहतनामा 20 जुलाई शाम 4 बजे सिर्फ विविध भारती पर।
6: आप सुन रहे हैं विविध भारती, राष्ट्रीय सेवा देश की सुरीली धड़कन। कार्यक्रम है रंग तरंग।

हम सुन रहे थे सुनो एल्बम से लकी अली की आवाज में, जिसे लिखा असलम ने और लकी अली ने ही संगीतबद्ध किया इस सुंदर से गीत को। आइए सुनते हैं अगला नगमा, जो कि है वेलवेट वॉइस हरिहरन के इस एल्बम से, जिसे गाया और संगीतबद्ध किया है हरिहरन ने ही और लिखा है मुशीर झुंझुनाविनी ने।

हम सुन रहे थे ये गीत ट्रैफिक सिग्नल से, चित्रा और उस्ताद सुल्तान खान की आवाज में। कैलाश शर्मा ने इसे लिखा है और संदेश शांडिल्य ने इसे संगीतबद्ध किया है। आप सुन रहे हैं विविध भारती राष्ट्रीय सेवा, देश की सुरीली धड़कन। कार्यक्रम है रंग तरंग।

0: मेरे पे आंसू है, उम्मीद पे दर्द की रंज की बातें हैं और फरियादें हैं। मेरा अब कोई नहीं, मैं हूँ और खोए हुए प्यार की यादें हैं। मैं हूँ और खोए हुए प्यार की यादें हैं। मैं हूँ और खोए हुए प्यार की यादें हैं।
1: हम सुन रहे थे ब्रीदलेस सॉन्ग, ब्रीदलेस एल्बम से शंकर महादेवन की आवाज में, जिसे संगीत बद्ध किया शंकर महादेवन ने और लिखा जावेद अख्तर ने।

से ज्यादा समझा है तुझको मोहब्बत से ज्यादा, ये मैं जानता हूँ या दिल जानता है।

हम सुन रहे थे जान एल्बम का यह गीत सोनू निगम की आवाज में, जिसे बोल दिए फैज अनवर ने और संगीतबद्ध किया है निखिल विनय ने।

0: हम सुन रहे थे तुम आए एल्बम से अलका याग्निक हरिहरन की आवाज में। जावेद अख्तर के बोल और राजू सिंह ने इसे संगीतबद्ध किया इस खूबसूरत से नगमे को। आइए सुनते हैं ये संदेश।
1: हिंदी सिनेमा की कुछ कल्ट फिल्में उनके नाम पर हैं, स्पर्श, कथा, दिशा और चश्मे बदूर।
2: उन्होंने कहा कि देखो अब सिर्फ हम नौजवान तीनों दिखा रहे हैं, सिर्फ कॉलेज के युवक नहीं, उनके माँ बाप भी आए, उनके चाचा चाची आए, एक दादी माँ डाली, बाप डाला, एक भाई डाला वगैरह वगैरह, एक पान वाला डाला। सईद को पकड़ा लिया और उसने कहा फिर मुझे वी हैव टू गो टू जामा मस्जिद, पुरानी दिल्ली जाना पड़ेगा। मैंने कहा पुरानी दिल्ली क्या करोगे जाके, पान वाले का अगर मुझे करना है रोल तो मुझे देखना नहीं चाहिए पान वाले वगैरह। तो मैंने कहा ये नसीर के बाद ये एक और आ गया।
3: जल्दी बुलबुल, कोई और कर्जदार लग गया तेरे पीछे क्या?
4: अरे ललन मियां आप काट देना रास्ता, अब मेरा काम नहीं होगा।
1: दास्तान सई परांजपे की, उजाले उनकी यादों के, 19 जुलाई से 9 अगस्त शाम 4 बजे सिर्फ विविध भारती पर।
5: सुनिए
0: आप सुन रहे हैं विविध भारती राष्ट्रीय सेवा देश की सुरीली धड़कन। कार्यक्रम है रंग तरंग।

अनु मलिक ने इसे संगीतबद्ध किया। आप सुन रहे हैं विविध भारती राष्ट्रीय सेवा देश की सुरीली धड़कन, कार्यक्रम है रंग तरंग। आइए सुनते हैं ये गीत लकी अली सुनिधि चौहान की आवाज में।

हम सुन रहे थे ये गीत फिल्म सुर से। इसे गाया लकी अली और सुनिधि चौहान ने, निदा फाजली के बोल और एमएम करीम के संगीत के साथ। आज के कार्यक्रम रंग तरंग में बस इतना ही। आज्ञा दीजिए, नमस्कार।

0: सिनेमा की कुछ कल्ट फिल्में उनके नाम पर हैं, स्पर्श, कथा, दिशा और चश्मे बद्दूर।
1: उन्होंने कहा कि देखो, अब सिर्फ हम नौजवान तीनों दिखा रहे हैं, सिर्फ कॉलेज के युवक नहीं, उनके माँ बाप भी आए हैं, उनके चाचा चाची आए, एक दादी माँ डाली, बाप डाला, एक भाई डाला, वगैरह वगैरह, एक पान वाला डाला। सईद को पकड़ा लिया और उसने कहा फिर मुझे, वी हैव टू गो टू जामा मस्जिद, पुरानी दिल्ली जाना पड़ेगा। मैंने कहा पुरानी दिल्ली क्या करोगे जाके, पान वाले का अगर मुझे करना है रोल तो मुझे देखना नहीं चाहिए पान वाले वगैरह। तो मैंने कहा ये नसीर के बाद ये
2: एक और आ गया।
3: जल्दी है बुलबुल, कोई और कर्जेदार लग गया तेरे पीछे क्या?
4: अरे ललन मियां आप काट देना रास्ता, अब मेरा काम नहीं होगा।
0: दास्तान सई परांजपे की, उजाली उनकी यादों की, 19 जुलाई से 9 अगस्त शाम 4 बजे सिर्फ

आप सुन रहे हैं विविध भारती राष्ट्रीय सेवा देश की सुरीली धड़कन। दिन के 12 बजने वाले हैं, हम थोड़ी ही देर में समाचार प्रसारित करेंगे।

0: उमंग
1: CIET प्रस्तुत करता है
0: उमंग उमंग उमंग उमंग।
2: सभी श्रोताओं को विमलेश का नमस्कार
1: और अजीत का भी नमस्कार। स्वागत है आप सबका आज के उमंग कार्यक्रम में। श्रोताओ, जलगांव जंक्शन महाराष्ट्र से डॉक्टर दिनेश कार्य जी ने सुविचार भेजा है, लिखते हैं,
2: शब्द तभी अमर होते हैं जब वे केवल लिखे नहीं जाते बल्कि जिए भी।

0: जाते हैं।
1: बहुत बहुत धन्यवाद डॉक्टर दिनेश काले इस सुंदर विचार के लिए। और आइए अब सुनते हैं श्रोताओं के नाम और उनके संदेश। तो पहला संदेश हमें मिला है मोताला महाराष्ट्र से विजय सुरेलकर और रतनमाला जी का।
0: छत्तीसगढ़ पथरिया भरेवा से चंदूलाल सिंगरौल, नारायणी सिंगरौल, नोमेश सिंगरौल, नेहा और वान्या सिंगरौल।
1: और बड़ोदरा पंचमहल गुजरात से रवि जोशी जी का।
0: संबलपुर कांकेर से फागुराम यादव, ज्योति यादव और ओजस्वी यादव।
1: और भटीपुरा महोबा उत्तर प्रदेश से कृष्ण कुमार गुप्ता, कमला देवी गुप्ता, सुधा, कविता, पंकज, आयुषी और मीहू जी का संदेश आया है। लिखते हैं,
0: नमस्कार, ये भी जानिए श्रृंखला के अंतर्गत चार प्रसिद्ध झीलों के बारे में गहन और दिलचस्प जानकारी प्रदान की, सुनकर हम अभिभूत हो गए। आपसे एक विनम्र निवेदन है कि आप विश्व के प्रमुख बांधों और प्रमुख पुलों पर भी ये भी जानिए श्रृंखला के अंतर्गत जानकारी मुहैया करवाने की कृपा जरूर करें। आपको इस हेतु अग्रिम धन्यवाद और आभार।
1: जी, सुहाना चौक ग्राम जसवाड़ी से सूरज कुमार धाकसे जी लिखते हैं, प्रिय अजीत जी और विमलेश जी, आपको मेरा प्यार भरा नमस्कार। गुड मॉर्निंग, आप कैसे हैं? मैं आशा करता हूं कि आप सब कुशल होंगे। मैं सूरज कुमार धाकसे दोनों आंखों से नेत्रहीन हूं। मैं प्रतिदिन आपका कार्यक्रम रेडियो पर सुनता हूं। आपके इस कार्यक्रम में एक से एक बढ़कर कहानियां, कविताएं और जानकारियां सुनकर मुझे बहुत खुशी होती है।
0: धन्यवाद श्रोताओं संदेश भेजने के लिए। और अब बारी है पिछले सप्ताह पूछे गए प्रश्नों के उत्तरों की।
1: तो श्रोताओं, हमारा पहला प्रश्न था कि कंगारू के कितने पैर होते हैं?
0: इसका उत्तर है साथियों, कंगारू के चार पांव ही होते हैं, लेकिन ध्यान देने वाली बात यह है कि कंगारू की पूंछ भी एक मजबूत अंग होती है जो उसके चलते समय उसके संतुलन को बनाए रखने में मदद करती है। वो कई बार चलते हुए अपनी पूंछ का भी सहारा लेता है, इसलिए ऐसा लगता है कि वो पांच पैरों से चल रहा हो। इसलिए बोलचाल में कहा जाने लगा है कि कंगारू के पांच पैर होते हैं, लेकिन वैज्ञानिक रूप से पूंछ को पांव नहीं माना जा सकता।
1: जी, तो श्रोताओं अब सुनिए हमारा पूछा गया अगला प्रश्न। हमारा प्रश्न था, कीलाक्षर किसे कहते हैं और ये किस सभ्यता की देन है?
0: प्राचीन मेसोपोटामिया की सभ्यता में लोग मिट्टी की पट्टियों पर पेंसिल नुमा नुकीली कील से लिखते थे, जिसे कीलाक्षर कहा जाता था। कीलाक्षर यानी कीलों से लिखे हुए अक्षर।
1: जी, और अब सुनिए हमारा अगला प्रश्न जो हमने आपसे पूछा था। हमने पूछा था श्रोताओं कि पेपर शब्द किस वनस्पति के नाम से बना है और ये वनस्पति कहाँ पैदा होती थी?
0: इसका उत्तर भी जान लेते हैं साथियों। पेपर शब्द मिस्र में नील नदी के तट पर पाई जाने वाली पेपरिस वनस्पति या घास के नाम से आया है।
1: जी, और अब सुनिए हमारा अगला प्रश्न। हमने आपसे पूछा था कि कोडेक्स किसे कहते हैं?
0: कोडेक्स आधुनिक पुस्तक के प्राचीन रूप को कहते हैं, जिसमें पन्नों को किनारे से सिलकर या बांधकर पुस्तकें बनाई जाती थीं।
1: जी, और हमारा अंतिम प्रश्न था, जोहन्नेस गुटेनबर्ग ने छापने की मशीन का आविष्कार कब किया?
0: इसका उत्तर है साथियों, जोहन्नेस गुटेनबर्ग ने छापने की मशीन का आविष्कार सन 1440 में किया था।
1: बहुत बहुत धन्यवाद श्रोताओं प्रश्नोत्तरी में भाग लेने के लिए। आपसे निवेदन है इसी प्रकार से जुड़े रहिए हमारे कार्यक्रम उमंग से। और अब सुनिए आज का प्रश्न। आज का प्रश्न है श्रोताओं, मोबाइल फोन का आविष्कार किसने किया था? प्रश्न एक बार फिर से सुन लीजिए,
0: मोबाइल फोन का आविष्कार किसने किया था?
1: भेज दीजिए अपना उत्तर 8800440559 पर, जो हमारा IVRS नंबर है। और आप हमें संदेश व प्रश्नों के उत्तर हमारे ईमेल पर भी भेज सकते हैं। हमारे ईमेल का पता है audio@cit.nic.in।
0: इंस्टा, फेसबुक, लिंक्डइन और एक्स पर भी आप CIT NCERT को फॉलो करना न भूलें।
1: तो श्रोताओं अब बारी है हमारे शैक्षिक कार्यक्रमों की। तो आइए सुनते हैं सबसे पहला कार्यक्रम, शीर्षक है न्याय।
0: ये कार्यक्रम हिंदी की कक्षा 5 की पाठ्य पुस्तक के एक पाठ पर आधारित है, जिसमें युवराज सिद्धार्थ के जीवन में घटित एक प्रेरक प्रसंग के बारे में बताया गया है और संदेश दिया गया है कि पशु पक्षी भी हमारे प्रेम और करुणा के अधिकारी हैं।
2: चलो मित्र सिद्धार्थ, उद्यान की ओर चलते हैं, सरोवर के पास। कैसी शांति है, पक्षी नीड़ों की ओर लौट रहे हैं। वहां देखो उस पेड़ पर कैसे वो चिड़िया अपने बच्चे को दाना खिला रही है, अति सुंदर। और तनिक उधर देखो उद्यान के बाहर, कैसे एक बछड़ा अपनी माँ की ओर दौड़ा चला जा रहा है और गाय अपने बछड़े को लाड़ कर रही है।
3: साथियों, ये वार्तालाप हो रहा था युवराज सिद्धार्थ और उनके मित्र वसु के बीच। सिद्धार्थ का जन्म लुम्बिनी नामक स्थान में हुआ था, जो कपिलवस्तु नगर का एक ग्राम उद्यान था। उनके पिता राजा शुद्धोधन थे

0: शाक्य गणराज के राजा थे, जिसकी राजधानी थी कपिलवस्तु। युवराज सिद्धार्थ ही आगे चलकर गौतम बुद्ध बने और विश्व को अहिंसा और शांति का पाठ पढ़ाया। प्रारंभ में उनका जीवन राजसी सुख सुविधाओं से भरपूर था। आइए एक बार फिर से चलते हैं उस उद्यान की ओर, जहां दोनों मित्र वार्तालाप कर रहे हैं।
1: युवराज, तनिक ऊपर देखो, कितने सुंदर पक्षी हैं।
2: ये राजहंस हैं। ऐसा लगता है मानो हवा में तैर रहे हैं, और इतनी ही सुंदरता से वे पानी में भी तैर सकते हैं।
1: ओह, देखो, एक राजहंस नीचे की ओर गिर रहा है। हाँ, लगता है उसे तीर लगा है।
2: प्यारे पक्षी, सब ठीक हो जाएगा, घबराओ नहीं। मैं हूं ना, न जाने किस निर्दयी ने इसे घायल कर दिया। भला इसका क्या दोष है?
3: दोष ये है कि ये सुंदर है, प्यारा है, सबको पसंद आता है।
2: क्या सुंदर होना और सबका प्यारा होना कोई दोष है?
4: प्यारे हंस, मैं तुम्हारा ये तीर निकाल देता हूं, फिक्र मत करो। ये निकाल दिया, अब तुम मेरी गोद में थोड़ी देर विश्राम कर लो।
2: मित्र, कोई भी व्यक्ति जिसके पास हृदय है, इन निर्दोष पक्षियों को मार ही नहीं सकता। तुम जरा दौड़कर राज वैद्य से इसके लिए कोई औषधि तो ले आओ।
1: हाँ मित्र, अभी जाता हूं।
0: युवराज सिद्धार्थ ने हंस को विश्राम करने के लिए पास के ही एक कुंज में लिटा दिया और वसु के आने की प्रतीक्षा करने लगे। इतने में उनके चचेरे भाई देवदत्त आ पहुंचे। वे इधर उधर देख रहे थे, मानो कुछ खोज रहे हों।
5: कुमार सिद्धार्थ, कुमार सिद्धार्थ, कुमार सिद्धार्थ, अभी मैंने एक उड़ते हुए हंस को तीर मारकर नीचे गिराया था। मैंने अपनी आंखों से उसे गिरते हुए देखा था। वो इधर ही कहीं आया है। तीर धनुष पर मेरा लक्ष्य अब भली भांति सद गया है। ये बात मैं कल गुरुजी को बताऊंगा तो वो कितने प्रसन्न होंगे। तुम गुरुजी के सामने मेरी गवाही दोगे ना?
2: अवश्य दूंगा देवदत्त, और वो भी प्रमाण के साथ, क्योंकि इसका प्रमाण वो हंस है जिसे तुमने मारा है।
5: हाँ, तो हंस तुम्हारे पास है, लाओ उसे मुझे दे दो।
2: क्यों दे दो?
5: क्यों दे दो, ये तो बड़ा ही विचित्र प्रश्न है भाई। इसलिए दे दो क्योंकि मैंने उसे मारा है।
2: लेकिन मैंने इसे बचाया है।
5: तुम राजकुमार हो इसलिए मुझे धमकी देना चाहते हो। मैं भी देखता हूँ कैसे नहीं दोगे। इसका निर्णय तो अब राज दरबार में ही होगा।
0: तो साथियों, दूसरे दिन दरबार लगा हुआ था।
6: महाराज की जय हो,
7: महाराज की जय हो, महाराज की जय हो।
0: प्रतिहारी ने सभी प्रकरणों की जानकारी दी और बताया कि आज कुमार देवदत्त भी एक प्रकरण न्याय के लिए प्रस्तुत करना चाहते हैं। राजकुमार सिद्धार्थ भी उपस्थित थे।
8: कुमार देवदत्त को प्रस्तुत किया जाए।
9: महाराज को प्रणाम करता हूँ। महाराज, मेरा कहना है कि राजकुमार सिद्धार्थ ने मेरा हंस ले लिया है, जिसे मैंने मारा था। वो मुझे मेरा हंस नहीं दे रहे, मुझे न्याय चाहिए।
8: राजकुमार सिद्धार्थ, क्या ये वही हंस है जो आपकी गोद में है?
2: महाराज को प्रणाम करता हूँ। जी महाराज, ये वही हंस है। मेरा कहना है कि कुमार देवदत्त ने इस हंस को मारा है, लेकिन मैंने इसे बचाया है।

0: अतएव मैं ये हंस इन्हें नहीं दे सकता।
1: लेकिन सिद्धार्थ, देवदत्त ने इस हंस का आखेट किया है। नियम के अनुसार आखेट वीर का अधिकार है। वीर आखेट को छोड़ नहीं सकता।
0: जी महाराज, लेकिन नियम तो ये भी कहता है कि वीर शरणागत को भी नहीं छोड़ सकता। हमारी शाक्य राजवंश की परंपरा और शास्त्रों का नियम तो ये भी कहता है कि मारने वाले से बचाने वाला बड़ा होता है।
2: पर महाराज, मैंने पहले इस हंस को मारा है, इसलिए ये मेरा है।
0: जी, पहले मारा था, तभी तो वो मेरी शरण में आया है। बिना मारे वो मेरी शरण में कैसे आता?
1: महामंत्री, समस्या जटिल हो गई है। क्या आप कोई मार्ग सुझा सकते हैं?
3: जी महाराज, आपकी आज्ञा हो तो मैं अभी तुरंत दूध का दूध और पानी का पानी कर सकता हूँ। अब तो निर्णय ये हंस ही करेगा।
1: निर्णय ये हंस ही करेगा? भला वो कैसे आज्ञा है?
3: महाराज, मेरा आग्रह है कि हंस को यहाँ इस आसन पर बैठाया जाए।
4: हंस को आसन पर बैठा दिया गया। हंस भयभीत था, लेकिन सिद्धार्थ उसे सांत्वना दे रहे थे। सभा स्तंभित थी, सभी फुसफुसा रहे थे।
5: पता नहीं ये हंस कैसे बताएगा
6: सिद्धार्थ को मिलना चाहिए।
3: कुमार देवदत्त, आप कहते हैं कि इस पर आपका अधिकार है। आसन के पास आइए और हंस को अपने पास बुलाइए।
7: ओ प्रिय हंस, मेरे पास आओ, आ जाओ, आओ मेरे पास, आ जाओ।
4: देवदत्त जितनी बार हंस को बुलाते, वो उतनी ही बार भय के मारे आसन से चिपक जाता। देवदत्त ने बहुत प्रयास किया, लेकिन बात नहीं बनी।
3: अब मैं राजकुमार सिद्धार्थ को सामने बुलाना चाहूंगा और कहूंगा कि वे भी हंस को अपने पास बुलाएं।
0: प्यारे राजहंस, मेरे प्रिय मित्र, डरो मत, तुम्हें कोई हानि नहीं होगी, तुम्हें कोई कुछ नहीं कहेगा। मेरे पास आ जाओ, अपने मित्र के पास आ जाओ, आ जाओ, घबराओ मत।
4: फिर क्या था, पलक भी नहीं झपकी थी, हंस ने अपने पंख फैलाए और उड़ता हुआ सिद्धार्थ की गोद में ऐसे आ चिपका जैसे एक बालक अपनी माँ की गोद में चिपक जाता है।
1: स्वयं इस पक्षी ने अपना निर्णय बता दिया है। हमने सुना था कि मारने वाले से बचाने वाला बड़ा होता है। आज साक्षात देख भी लिया। मैं हर्ष के साथ घोषित करता हूँ कि ये हंस युवराज सिद्धार्थ का ही है।
8: महाराज जय हो,
9: महाराज जय हो,
10: महाराज जय हो।
11: अभी आप सुन रहे थे कक्षा 5 की हिंदी की पाठ्यपुस्तक वीणा के एक पाठ पर आधारित कार्यक्रम न्याय। साथियों, इस कार्यक्रम में आपने दो शब्द सुने। पहला शब्द था नीड और दूसरा शब्द था आखेट। तो इसका अर्थ आपको बता देते हैं। नीड शब्द का अर्थ है घोंसला और आखेट शब्द का अर्थ होता है शिकार। अब आपके लिए कुछ सोचने और करने को। पशु पक्षियों का ख्याल रखने के लिए आप क्या क्या कर सकते हैं, सोचिए और इसकी सूची बनाइए। कार्यक्रम समन्वय प्रोफेसर भारती कौशिक, ध्वन्यांकन एकांत वशिष्ठ, कलाकार सुनील लोहिया, शशांक शर्मा, बबीता रंजीत और फरहान नकवी, शोध एवं आलेख अजीत होरो, निर्देशन विमलेश चौधरी तथा ध्वनि संपादन एवं निर्माण चेतना शर्मा। ये कार्यक्रम CIET NCERT नई दिल्ली भारत द्वारा प्रस्तुत किया गया।

0: और आइए अब सुनते हैं कार्यक्रम वो ब्रह्म तुम ही हो।
1: ये कार्यक्रम विभिन्न जीवन दर्शनों की चर्चा करता है और संदेश देता है कि हम सभी उसी अनंत सत्ता के अभिन्न अंग हैं।

पौराणिक उपनिषद छांदोग्य से एक कहानी है तत् त्वम् असि। उपनिषद महावाक्य स्वरूप में लघु है, परंतु बहुत गहन विचार समाये हुए हैं। चार प्रमुख महावाक्य हैं। ऋग्वेद के ऐतरेय उपनिषद से प्रज्ञानम ब्रह्म, अर्थात वो प्रज्ञानम ही ब्रह्म है। सामवेद के छांदोग्य उपनिषद से तत् त्वम् असि, अर्थात वो ब्रह्म तुम ही हो। यजुर्वेद के बृहद अरण्यक उपनिषद के ऐतरे उपनिषद से अयम आत्मा ब्रह्म, अर्थात ये आत्मा ब्रह्म है। अथर्ववेद के मांडर के उपनिषद के ऐतरे उपनिषद से अहम ब्रह्मास्मि, अर्थात मैं ब्रह्म हूँ। और सामवेद के छांदोग्य उपनिषद से महावाक्य तत् त्वम् असि एक आध्यात्मिक संवाद है गुरुपिता और शिष्य पुत्र के बीच।

0: पिता उद्दालक ऋषि हैं, महापंडित वेदों के ज्ञाता, धुरंधर दार्शनिक और तर्क वितर्क में निपुण, और उनके 24 वर्षीय जिज्ञासु पुत्र श्वेतकेतु 12 वर्षों की शिक्षा के बाद लौटे हैं।
1: श्वेतकेतु, आज्ञादात, क्या तुम उस ज्ञान से अवगत हो जिसके द्वारा हम सब कुछ जानते हैं और जो हमें जानना आवश्यक है?
2: तात, मैं उस ज्ञान के बारे में जानना चाहूंगा।

0: उद्दालक श्वेत केतु को फूलों के एक उद्यान में ले जाते हैं।
1: श्वेत केतु जी, पिताजी, क्या तुम शहद इकट्ठा कर रही इन मधुमक्खियों को देख पा रहे हो?
2: हाँ, हाँ तात।
1: भिन्न भिन्न फूलों से निकला हुआ रस जब एक हो जाता है तो वो शहद बन जाता है। तब शहद बनने के बाद वो कह सकता है कि मैं इस फूल का रस हूं या उस फूल का रस हूं?
2: नहीं तात।
1: इसी तरह जब कोई उस चेतना से एक हो जाता है तब उसकी अपनी पहचान समाप्त हो जाती है।
2: जी तात, फिर जगत में इतनी विविधता कैसे आई?
1: शुरुआत में केवल एक था और फिर एक को कई में प्रतिलक्षित किया गया। सृष्टि के जन्म से पूर्व द्वैत के अस्तित्व से रहित, नाम और रूप से रहित एकमात्र सत्य स्वरूप अद्वितीय ब्रह्म ही है। वही ब्रह्म आज भी विद्यमान है।
2: जी तात,
1: उसी ब्रह्म को तत्वमसी कहा गया। वो शरीर और इंद्रियों में रहते हुए भी उनसे परे है, आत्मा में उसका अंश मात्र है।
2: जी,
1: उसी से उसका अनुभव होता है, किंतु वो अंश परमात्मा नहीं है।
2: जी पिताजी,
1: वो उससे दूर है। वो संपूर्ण जगत में प्रतिभासित होते हुए भी उससे

0: वत्स श्वेत केतु। जीतात, क्या तुम जानते हो हम जिस अस्तित्व को देख नहीं सकते हैं तो हम कैसे जानते हैं कि वो विद्यमान है?
1: नहीं तात, मैं नहीं जानता हूं, कृपया मुझे समझाएं।
0: तो वत्स जाओ उस वट वृक्ष के पास और एक फल तोड़ कर ले आओ।
1: जो आज्ञा तात।

0: ये रहा फल तात।
1: बस अब इसे तोड़कर इसके दो टुकड़े कर दो।
0: जी पिताजी, इसमें तो सैकड़ों बहुत ही छोटे छोटे बीज हैं।
1: उनमें से एक बीज निकालो

0: और उसे तोड़ो मेरे वत्स जी। और अब मुझे बताओ कि इसमें क्या देख रहे हो?
1: अब नहीं तो यहां तो कुछ भी नहीं है तात।
0: वत्स, तो फिर एक छोटे से बीज से एक विशाल बरगद का वृक्ष भला कैसे बन जाता है?
1: तो फिर तात, जिस अस्तित्व को हम देख नहीं सकते हैं, तो कैसे सब प्राणियों को जन्म दे सकता है तात?
0: मुझ पर विश्वास करो मेरे वत्स, वो सूक्ष्म बीज कुछ भी नहीं, स्रोत था विशाल बरगद वृक्ष का। एक अदृश्य और सूक्ष्म सार पूरे ब्रह्मांड की आत्मा है। सर्वं तत्स्वयं स आत्मा, यही सर्वोच्च वास्तविकता है और यही सब में स्वयं विद्यमान है, यही आत्मा है, तत् त्वम् असि।
1: मैं आभारी हूं पिताजी, आपने मुझे ज्ञान हासिल करने में मदद की है, जिससे अनदेखा देखा हुआ हो जाता है, अज्ञात ज्ञात हो जाता है, और यही सब में स्वयं मौजूद है। तत् त्वम् असि,
0: ईश्वर तुम पर अपनी अनन्य कृपा बनाए रखे।
2: अभी आप सुन रहे थे कार्यक्रम वह ब्रह्म तुम ही हो। कार्यक्रम समन्वय प्रोफेसर राजेंद्र पाल, कलाकार बाबला कोचर, प्रवीण शर्मा और प्रीति मिश्रा, ध्वन्यंकन विकास सांगवान, आलेख डॉक्टर जितेंद्र सिंह, मार्गदर्शन अजीत होरो, निर्देशन विमलेश चौधरी तथा निर्माण जगबंधु जाना। यह कार्यक्रम CIET NCERT नई दिल्ली भारत द्वारा प्रस्तुत किया गया। अभी आपने सुना कार्यक्रम वो ब्रह्म तुम ही हो। और श्रोताओं, अब इसी के साथ हमारा आज का उमंग कार्यक्रम यहीं पर समाप्त होता है। तो अब अजीत
3: और उमंग कार्यक्रम की तकनीकी टीम यानी
2: कुसुमलता,
3: जगबंधु,
2: चेतना
3: और मंजू जी के साथ विमलेश को आज्ञा दीजिए।
2: नमस्कार।
4: उमंग, उमंग, उमंग, उमंग।
5: अभी आप सुन रहे थे NCERT का प्रायोजित कार्यक्रम।

हम सुन रहे थे ये गीत मिस्टर एंड मिसेस 55 से गीता दत्त और मोहम्मद रफी की आवाजों में, मजरूह सुल्तानपुरी के बोल और ओपी नैयर के संगीत के साथ सजा हुआ। आज याद करने का दिन है बहुत सारे लोगों का, और आज हम याद कर रहे हैं अभिनेता राजेंद्र कुमार को भी। आज उनका जन्मदिवस है, तो आइए सुनते हैं उन्हीं की फिल्मों के कुछ नगमे। कार्यक्रम यादों की महफिल में

0: हम सुन रहे थे ससुराल फिल्म का यह गीत जिसे गाया मोहम्मद रफ़ी ने। हसरत जयपुरी के हैं बोल और शंकर जयकिशन का है संगीत। आइए सुनते हैं कार्यक्रम यादों की महफिल में यह संदेश।
1: अरे सुनो, आजकल ये क्या हर रोज तुम रेडियो सुनती रहती हो, पढ़ाई लिखाई नहीं करती क्या? घड़ी देखो जरा, 3 बज रहे हैं 3।
2: वो क्या है ना कि आजकल मैं हर रोज दिन में 3 बजे सुनती हूँ सखी सहेली।
1: सखी सहेली?
2: हाँ, हर रोज 2 सखियाँ 3 बजे बड़ी मजेदार बातें करती हैं। और तो और, पढ़ाई, करियर, इंटरनेट, सोशल मीडिया और दुनिया भर की दिलचस्प जानकारियाँ भी देती हैं।
1: अच्छा, तो मुझे भी बताना जरा, मैं भी सुनूंगा सखी सहेली।
2: हाँ हाँ, क्यों नहीं, सखियाँ ही नहीं सखा भी सुनते हैं सोमवार से शुक्रवार दोपहर 3 बजे
3: सखी सहेली।
2: आलस भरी सुबह जैसे चाय में घुल जाए चीनी।
4: देखो जी बहार आई, बाहों में खिली गली।
2: आपके जीवन में घोलते हैं संगीत भूले बिसरे गीत।
5: मैं तेरा राग, तू मेरी रागनी।
2: गुजरे दौर की आवाजें, धुनों की अनूठी परवाज, सुनहरे गानों का अंदाज आपकी सुबह को बनाए खास। भूले बिसरे गीत हर रोज सुबह 7 बजे सिर्फ विविध भारती पर।
0: आप सुन रहे हैं विविध भारती, राष्ट्रीय सेवा, देश की सुरीली धड़कन। कार्यक्रम है यादों की महफिल।

हम सुन रहे थे झुक गया आसमान फिल्म से यह गीत मोहम्मद रफी की आवाज में, हसरत जयपुरी के बोल और शंकर जयकिशन का संगीत। आइए सुनते हैं कार्यक्रम यादों की महफिल में ये गीत।

हम सुन रहे थे सूरज फिल्म का यह गीत मोहम्मद रफी की आवाज में, हसरत जयपुरी के बोल शंकर जयकिशन के संगीत के साथ। आप सुन रहे हैं विविध भारती राष्ट्रीय सेवा देश की सुरीली धड़कन। कार्यक्रम है यादों की महफिल। यादों की महफिल में हम आज याद कर रहे हैं उन्हें भी, आज जिनका जन्मदिवस है, अभिनेता नसीरुद्दीन शाह। आज उनके जन्मदिवस पर उनके लिए कुछ नगमे उन्हीं की फिल्मों से, आइए सुनते हैं।

मासूम फिल्म से हम सुन रहे थे भूपेंद्र और सुरेश वाडेकर की आवाज में, गुलजार के बोल और राहुल देव वर्मन के संगीत के साथ ये गीत। आइए सुनते हैं, येशुदास की आवाज में नसीरुद्दीन शाह पर फिल्माया गया ये गीत।

हम सुन रहे थे सुनैना मूवी फिल्म का यह गीत, जिसे गाया यशोदास ने रविंद्र जैन के बोल और रविंद्र जैन के ही संगीत के साथ। आइए सुनते हैं आज के कार्यक्रम यादों की महफिल का अंतिम गीत, इजाजत फिल्म से आशा भोसले की आवाज में, गुलजार के बोल हैं और राहुल देवर्मन का है संगीत।

आप सुन रहे हैं विविध भारती राष्ट्रीय सेवा देश की सुरीली धड़कन। स्वागत है आप सभी का कार्यक्रम सुरीला सफर में। मैं हूं आपके साथ विधि प्रवीण जैन। नमस्कार, स्वीकार करें। आप सभी जानते हैं सुरीला सफर में हम सब लेकर आते हैं कुछ बातें, कुछ गीत और कुछ प्यारे से

इससे और कुछ प्रश्न और कुछ उत्तर जो हम आपस में साझा करते हैं उस समय काल को। इबारत एक लिखी जाती है हमारे द्वारा जिसे हम भेजते हैं सोशल मीडिया पर, और यही जो इबारत है वह हमने भी आज भेजी है और उस इबारत को हम आपके सामने सुनाना चाहते हैं। इबारत है कि चंद सिक्कों की खातिर करोड़ों के रिश्ते छोड़ गया, देखो वो परदेश चला गया और वो परदेसी हो गया। बस इबारत इतनी ही है और इस इबारत को लिखने के बाद हमारे श्रोताओं ने बहुत सारी बातें लिखी हैं, हम वो बातें आपके साथ साझा करना चाहते हैं। हमारे श्रोता ने एक बड़ी प्यारी सी कविता कहें या कुछ चंद पंक्तियां कहें उन्होंने लिखकर भेजी हैं कि नयन भरे नीर मन होता अधीर, जिया में टीस यह समाई है, एक तो दूरी चांद से दूजे दो घूंट अपमान के, क्या यही परदेश की कमाई है। बहुत खूबसूरत सी बात लिखी है कि एक तो दूरी चांद से दूजे दो घूंट अपमान के, क्या यही परदेश की कमाई है। कुछ सच्ची बातें हैं, कुछ अच्छी बातें हैं, सब बातें हैं, और इन्हीं बातों के बीच में हमारे और भी श्रोताओं ने लिखा। हमारे एक श्रोता लिखते हैं कि आज की पहली बार इतनी छोटी मगर जीवन की सच्चाई को बयां करने वाली, दिल को चीर देने वाली बहुत ही गहन पंक्तियों को साझा किया गया है। रिश्तों की गर्माहट चंद सिक्कों की खनखनाहट के सामने कच्ची दीवार की तरह ढह जाती है। स्वार्थ परायणता और पैसे के पीछे की पागलपंती दौड़ मानवीय एहसासों और संबंधों को निर्लज्जता से मिटा देता है, और हमेशा से पैसे ने एक रिश्ते से अधिक अपने को अधिक ताकतवर बनवाया है। जी, किसी हद तक आपकी बात भी सही है। हमारे एक और श्रोता लिखते हैं कि आज की इबारत जीवन की सच्चाई से जुड़ी, सच्चाई से भरी है। जहां रिश्ते नाते सब धन दौलत तराजू में तौले जाते हैं, इसे प्राप्त करने के लिए इंसान कोई कसर नहीं छोड़ता, अपने ईमान को भी बेच सकता है। उदाहरण स्वरूप इन्होंने फिल्म सट्टा बाजार का जिक्र किया है यहाँ पर, कि उन्होंने लिखा है कि गुलशन बाबरा ने लिखा हेमंत कुमार का गाया हुआ गीत कुछ कह जाता है कि चांदी के चंद टुकड़ों के लिए ईमान को बेचा जाता है। जी, आपकी बात भी सही है, और इसके साथ आपने एक और दूसरी फिल्म का भी यहाँ पर कहा है कि फिल्म पहचान में भी पैसों की पहचान, यहाँ इंसान की कीमत कोई नहीं, बच के निकले जा इस बस्ती में करता मोहब्बत कोई नहीं, ऐसा कुछ उन्होंने लिखकर भेजा है। इसके साथ ही हमारे एक और श्रोता लिखते हैं कि कभी कभी इंसान परदेश तो सिर्फ रोजी रोटी कमाने के लिए जाता है, लेकिन धीरे धीरे फासले सिर्फ शहरों के नहीं रिश्तों के भी हो जाते हैं। सच तो यही कि चंद सिक्के जिंदगी चला सकते हैं, मगर अपनों की आवाज, उनका साथ और उनका अपनापन किसी भी दौलत से नहीं खरीदा जा सकता। आपकी बात भी सही है। हमारे एक और श्रोता लिखते हैं, इंसान अक्सर थोड़ी सी कमाई लालच में अपने अमूल्य पारिवारिक संबंधों, प्रेम और अपनों के साथ कुछ पीछे छोड़ देता है। बेहतर भविष्य और धन कमाने की होड़ में ये व्यक्ति अपने घर आंगन को छोड़ दूसरे देश चला जाता है। त्रासदी यह है कि वह व्यक्ति अपनों के दिल की धड़कन हुआ करता था और दूर जाते ही अपनों के लिए परदेसी हो जाता है। बहुत अच्छी बातें आपने लिखी है, लेकिन अब हमारा फर्ज बनता है कि हम आपको एक अच्छा सा गीत भी सुनवा दें। और जब हम बात इस परदेसी या परदेशी विषय पर कर रहे हैं, तो ये जो परदेश में जाते हैं, ऐसी कई सारी फिल्में हमारे जेहन में आती हैं। पुरानी फिल्मों में तो कई बार ऐसा होता है कि घर से बेटा कमाने के लिए बाहर चला जाता है। ऐसी कौन सी फिल्म आपके दिमाग में अभी आ रही है, ये प्रश्न है आपके लिए कि ऐसी कौन सी फिल्म आपके दिमाग में आ रही है जिसमें बेटा घर छोड़कर परदेश चला गया पैसे कमाने के लिए। जरा बताइएगा उस फिल्म का नाम। अगर आपके दिमाग में कोई भी फिल्म का नाम आता है तो जरूर से हमारे साथ साझा कीजिए कि ऐसी कौन सी फिल्म है जो आपके दिमाग में अभी आ रही है कि बेटा गया है या बेटी गई है परदेश पैसे कमाने के लिए, विवाह करके नहीं, केवल पैसे कमाने के लिए बेटा या बेटी बाहर गए हैं, जरूर से बताइएगा। तब तक सुनिए ये गीत और बताइए इस गीत को लिखा किसने है। इसके गीतकार का नाम भी आप बता देंगे तो बहुत अच्छा लगेगा। आइए सुनते हैं ये गीत।

हम सुन रहे थे बरसात फिल्म का यह गीत लता मंगेशकर की आवाज में शंकर जयकिशन के संगीत के साथ. और आप सबसे हमने पूछा था कि इसके गीतकार कौन हैं, तो आपने बिल्कुल सही उत्तर दिया. इस फिल्म के गीतकार, इस गीत के गीतकार हैं हसरत जयपुरी. बिल्कुल सही उत्तर देने के साथ हमने आपसे एक और प्रश्न पूछा था कि ऐसी कोई फिल्म जो आपके दिमाग में, आपके जेहन में आ रही है, जो फिल्म चली गई है जिसमें बेटा या बेटी बाहर चले गए हैं पैसा कमाने के लिए, तो हमारे श्रोताओं ने उत्तर दिए हैं अर्पण फिल्म है. जी बिल्कुल, उसमें एक और फिल्म का नाम कई लोगों ने लिया है, जो फिल्म का नाम है नाम. एक और फिल्म है नाम, फिल्म के बारे में कई सारे लोगों ने कहा है, बरसात फिल्म का जिक्र किया है कि यह बरसात फिल्म का गीत है. बिल्कुल सही जी. हमारे एक और श्रोता ने बताया कि स्वदेश फिल्म है जिसमें शाहरुख खान अपने गांव को छोड़कर जाता है. बिल्कुल सही बात है, गांव को छोड़कर जाते हैं, अपनों को छोड़कर जाते हैं, फिर वापस भी आते हैं. इसके साथ हमारे श्रोताओं ने और भी कई सारी फिल्मों के नाम दिए हैं, जैसे पूरब और पश्चिम, नाम, देश परदेश, ऐसी कई सारी फिल्मों के नाम यहाँ पर आ रहे हैं. लेकिन जब हम देखते हैं कि छोटे छोटे गांव में या छोटी जगहों पर जब उन्हें पेट की भूख पूर्ति नहीं कर पाती है, उसकी आपूर्ति नहीं हो पाती है, तो उस समय लोग यहाँ से चले जाते हैं कहीं और. स्वदेश के बारे में फिर से जिक्र हुआ है. और जी हमारे एक श्रोता ने लिखा, उन्हें फिल्म नाम याद आ रही है जिसमें संजय दत्त पैसा कमाने के लिए भारत से बाहर चले जाते हैं और गलत हाथों में भी पड़ जाते हैं. देश परदेश में प्राण इंग्लैंड के लंदन शहर में जाते हैं. जी उनकी खोज में देवानंद भी लंदन जाते हैं. जी ऐसी कई फिल्मों के नाम आप सबने बताए हैं, बहुत अच्छी बात है. अब यहाँ पर एक और हमारे श्रोता बड़े अच्छे से लिख रहे हैं कि यह कड़वी सच्चाई है कि कई बार लोग रिश्तों में पैसे और भौतिक सुखों के बदले भावनात्मक जुड़ाव और सम्मान और अपमान अपनापन के लिए तरसते हैं. अक्सर ऐसा इसलिए होता है कि पैसा एक सीमा तक आराम और सुरक्षा दे सकता है, लेकिन यह प्यार, भरोसा, मानसिक शांति नहीं कर ही सकता. लोग आर्थिक रूप से संपन्न हो जाते हैं, लेकिन रिश्तों में संवाद, अपनापन गायब हो जाने के कारण वे भीतर से अकेले पड़ जाते हैं. जी बिल्कुल सही. हमारे एक और श्रोता ने बहुत अच्छी बात लिखी है कि इंसान अक्सर थोड़ी सी कमाई और लालच के लिए अमूल्य

पारिवारिक संबंधों और अपनों का साथ पीछे छोड़ देता है, धन कमाने के लिए घर आंगन छोड़ देता है, वही बात है परदेसी हो जाता है। परंतु हमारे एक श्रोता ने बड़ी अच्छी बात लिखी, उन्होंने एक पद्यांश का जिक्र किया है महाकवि सूरदास की रचना का कि उन्हें भ्रमर गीत की याद आ रही है। जी ये बहुत खूबसूरत भ्रमर गीत है, जब जब उद्धव गोपियों के पास जाते हैं और गोपियों से इस बात के बारे में बातें होती हैं कि कृष्ण क्या हैं, कैसे हैं, कहाँ हैं, तब गोपियां जब उस भ्रमर गीत में अपनी व्यथा को कहती हैं, उस व्यथा को यहाँ पर इन्होंने लिखा है कि कहत कत परदेसी की बात, मंदिर अरद अवधि वधि हमसों हरि आहार चली जात। और इस बात में वह बड़े अच्छे से बता रही हैं कि उद्धव यानी उद्धव दादा उस परदेसी कृष्ण की बातें क्यों कह रहे हो, जो एक बकवाड़े का बाधा कर गया था और अब तक एक महीने से अधिक बीत गए हैं और वो अभी तक आया नहीं है। तो यहाँ पर जब परदेस कोई चला जाता है और परदेस से वापस नहीं आता है तो वहां पर वो गया क्यों था, इसके पीछे के भी कई सारे प्रश्न बनते हैं। हमारे श्रोताओं ने बहुत सारी बातें लिखी, उन्हीं बातों में से एक प्रश्न मेरे मन में आ रहा है, वह प्रश्न मैं आपको बस छोड़ देती हूँ कि क्या हर बार एक इंसान केवल पैसे कमाने के लिए जाता है? आपके अपनों में से कितने लोग शहर से बाहर गए हैं किसी उपलब्धि के लिए या देश हित के लिए या कभी किसी और काम के लिए, बताइएगा जरूर। और इसके साथ मैं आपको अगला गीत सौंप रही हूं, ये गीत बहुत अच्छा है, बता दीजिए कि इस गीत के गायक कलाकार कौन है, जल्दी से बताइएगा। और बताइए कि आपके में से अपना कोई गया होगा, हम दूसरे पक्ष से बात कर रहे हैं, देख कर देखिए कि आपके उस ओर से कोई बाहर गया होगा, उसके जाने का कारण क्या था।

हम सुन रहे थे ये सुंदर सा गीत जो कि फिल्म आवारा से लिया गया, शैलेंद्र के बोल है, शंकर जयकिशन का संगीत है। और हमने आपसे पूछा था कि बता दीजिए इसके इस गीत के गायक कलाकार कौन है, तो आप सभी ने बिल्कुल सही उत्तर दिया, लता मंगेशकर। और हम उसमें जोड़ देते हैं उनके साथ गाया साथियों ने। चलिए, हम आपसे पूछ रहे थे कि अगर कोई बाहर जाता है तो आप बताइए, अगर कोई आपकी पहचान का है जो कभी बाहर गया है तो बताइए कैसा क्या हुआ। हमारे एक श्रोता ने लिखा है कि मेरे अपने तो बहुत लोग विदेश गए पढ़ाई करने के लिए, लेकिन वहां रहते हुए नागरिकता मिलने के बाद घर वापस आने को तैयार नहीं है, क्या कर सकते हैं, पलायन भी जीवन का एक हिस्सा है। ठीक है, हमारे एक और श्रोता लिखते हैं कि बेटा कमाने के लिए बाहर गया था, बहुत दिनों तक विदेश में रहा, टिक नहीं सका, वापस आ गया और अब तो बहू भी जाने को तैयार नहीं है। जी, अच्छी बात है। हमारे श्रोता ने लिखा कि फिल्म आप लौट चले में एक लड़का विदेश जाता है, लेकिन वहाँ सब कुछ मिलने के बाद अंत में वापस आने के लिए मजबूर हो जाता है। जी, हमारे श्रोताओं ने बड़े अच्छे से उत्तर दिए कई सारी चीज प्रश्नों के, और इन प्रश्नों में से एक प्रश्न मेरी ओर से आपके लिए आता है कि विचार करते हैं हम सब मिलकर कि जो अपना घर छोड़कर, अपना वतन छोड़कर, सीधे देश छोड़ने की बात करते हैं, जो अपना घर छोड़कर, जो अपना देश छोड़कर बाहर जाते होंगे, उन्हें किन किन परेशानियों का सामना करना होता होगा, जल्दी से बताइएगा कि उन्हें क्या क्या परेशानियां होती होंगी। आप ये परेशानियां हमारे साथ साझा कीजिए। तब तक हम आपको सुनवा रहे हैं ये गीत, और बता दीजिए इस गीत में को हमने किस फिल्म से चुना है, यानी ये गीत किस फिल्म से है, उस फिल्म का नाम आपको बताना है। और तब तक ये भी बताइए कि जो लोग विदेश जाते हैं उन्हें किन किन चीजों का सामना करना पड़ता होगा, किन परेशानियों का सामना करना पड़ता होगा।

हम सुन रहे थे गीत लता मंगेशकर की आवाज में, आनंद बख्शी के बोल और लक्ष्मीकांत प्यारेलाल के संगीत के साथ। हमने आपसे पूछा था ये किस फिल्म का गीत है, तो आप सभी ने बिल्कुल सही उत्तर दिया, अर्पण फिल्म का यह गीत है। और हमने आपसे और भी एक बात पूछी थी कि परदेश जाकर कितनी समस्याएं होती होंगी, तो हमारे श्रोताओं ने बड़े अच्छे से उत्तर दिए हैं कि जब परदेश जाते हैं तो अपने आप में बड़ी चुनौती है, क्योंकि वहां जाकर सारे काम उन्हें स्वयं करने पड़ते हैं। जी, ये बात भी सही है। उसके साथ ही हमारे श्रोताओं ने ये बात भी बताई कि वहां जाते हैं, वहां मिलता तो सब कुछ है लेकिन अपनापन नहीं मिलता। आपने बात तो बिल्कुल सही कही है कि अपनापन तो नहीं मिलता है। इसके साथ ही कई बार हमारे श्रोताओं ने बताया कि कई बार विदेश जाते हैं तो दूसरी समस्याओं का भी सामना करना पड़ता है, क्योंकि वह उनके देश के नहीं है, तो एक व्यक्ति अपने देश के व्यक्ति का पहले साथ देगा ना कि आपका, तो ये समस्याएं भी, कुछ इस तरह की समस्याएं भी शायद उनके जीवन में आती होंगी। ये सारी समस्याओं के साथ एक और बहुत बड़ी समस्या हमें लगता है कि उनके जीवन में आती होगी, जिसके बारे में भी हमारे श्रोता ने लिखा है कि अपनत्व। उसने लिखा है कि उनके परिवार के लोग, बहुत से लोग परदेश में हैं, लेकिन जब जब वो भारत आते हैं उनमें अपनत्व की कमी का एहसास लगता है। ऐसा नहीं होता, कई बार क्या होता है जब लोग दूर रहते हैं ना, तो हम और वो एक ही तार पर यानी एक ही बात पर नहीं चल रहे होते हैं, तो कभी कभी जब वो बातें समझ में नहीं आती तो अपनत्व शायद कम लगने लगता होगा। हमारे श्रोता लिखते हैं, हम बहुत पहले दिल्ली मुंबई नौकरी के लिए गए थे और असफल रहे। घर से 2 किलोमीटर दूर गोरखपुर में प्राइवेट नौकरी करके दिन गुजारे। हफ्ते में बार बार घर आना होता था, फिर हम परदेश के का अनुभव क्या बताएं। जी बिल्कुल सही बात है। हमारे श्रोता लिखते हैं कि जब बाहर गए थे तो उन्हें सबसे ज़्यादा पापा मम्मी और अपने दोस्तों के साथ पौधे पक्षियों की भी बड़ी याद आती थी, और उससे भी अधिक जिस बेटे को यहाँ छोड़कर गए थे। जी, और उन्होंने ये भी लिखा कि उन्हें 1 बजे की विविध भारती की गीतमाला की भी बड़ी याद आती थी। जी, अब हम उसे सुरीला सफर के रूप में आपको सुनाते हैं। हमारे श्रोता लिखते हैं कि हर बरस भारत से करीब 3 करोड़ 30 लाख लोग विदेश की यात्रा करते हैं, 2 करोड़ लोग घूमने जाते हैं, कुछ लोग उच्च शिक्षा प्राप्त करने जाते हैं, कुछ काम धंधे के सिलसिले में जाते हैं। जी, हमारे श्रोताओं ने बहुत अच्छे से बताया कि उनका कोई, उनका भाई जो है वो बाहर पढ़ने गया था अमेरिका, और उसके बाद फिर वो वापस आ गया, कुछ कुछ कारण हुए और उन्होंने अपने जीवन में कई सारे काम किए। हमारे एक श्रोता ने बहुत अच्छी बात लिखी है कि इसी विषय को लेकर कि जब जो परदेसी होता है उसकी जिंदगी जो दो दुनिया जो है वो दो में बटी रहती है, एक दुनिया वहां जहां वह अपने सपनों के लिए संघर्ष कर रहा होता है और दूसरा जहां वह लौट कर आना चाहता है। हर त्योहार, हर खुशी, हर दुख में सबसे ज्यादा अपने घर की कमी महसूस होती है। उसे मालूम है कि मेहनत से किसी अपने की आंखों में खुशी आएगी और परदेसी शरीर से भले दूर हो जाए लेकिन उसका मन हमेशा अपने गांव, अपने शहर, अपने लोगों के बीच में रह जाता है। बिल्कुल सही बात है। अब परदेश जाने वालों की तो बहुत सारी बातें हमने कर ली और परदेश जाने वालों की समस्याओं के बारे में भी हमने चर्चा कर ली। अभी हमको ये बता दीजिए कि अगला जो गाना हम आपको सुनवा रहे हैं उस गाने को संगीतबद्ध किसने किया, यानी संगीतकार कौन है। पर इसके साथ एक बात और बताइए कि अगर आपको कभी मौका मिलता, कभी एक चांस मिले, एक मौका मिले अपने देश से बाहर जाने का, वापस आने का भी चांस है, यानी आप बाहर जा रहे हैं तो आप वापस भी आएंगे कुछ ही दिनों में, कुछ दिनों के लिए परदेसी होने का मौका मिले, तो आप अपने देश से कहाँ जाना चाहेंगे, किस जगह पर घूमने जाना चाहेंगे या किस जगह पर जाकर परदेसी बनना चाहेंगे, जरूर से बताइएगा। तब तक सुनिए ये गीत और बताइए इसके संगीतकार कौन है।

हम सुन रहे थे ये गीत मिस्टर नटवरलाल फिल्म से, लता मंगेशकर, किशोर कुमार और साथियों की आवाजें, आनंद बख्शी के बोल। और हमने आपसे पूछा कि इसके संगीतकार कौन है, तो आप सबने सही बताया, इस गीत के संगीतकार राजेश रोशन हैं। और हमने आपसे पूछा कि अगर आप कहीं जाना चाहेंगे, तो हमारे श्रोताओं ने बहुत सारे उत्तर दिए कि हमारे श्रोता लिख रहे हैं कि अब हमें विदेश नहीं जाना, बहुत दूर है, हाँ अमृतसर, कश्मीर और मुंबई आना है विविध भारती में। जी जरूर, स्वागत है हमारे सभी श्रोताओं का। हमारे एक श्रोता लिखते हैं कि हमारे कोई परिवार के जन है जो फ्लोरिडा, अमेरिका में और कतर में रहते हैं, तो वो देश वो घूमकर आए हैं, तो ऐसी कोई उनकी ख्वाहिशें ज्यादा दिख नहीं रही हैं। इसके साथ ही कई सारे लोग का ये कहता है इंग्लैंड जाना है, कोई कहता है स्विट्जरलैंड जाना है, किसी को ऑस्ट्रेलिया जाना है, किसी को कहीं जाना है, सभी को सभी जगह जाकर घूमकर आना है और घूमकर वापस आना है, है ना। ये बहुत अच्छी बात है कि हम एक विचार रखते हैं कि जब हम बाहर जाएं तो वापस आएं। हमारे एक श्रोता लिख रहे हैं कि मेरे पति जब छोटे उनके पति जब उनके बच्चे छोटे थे तब वो एनजीसी में बहुत अच्छी जॉब करते थे, तो वो चले गए, तो बच्चों के साथ सास ससुर देवर नंद के साथ रह गए, उनको भी बहुत तकलीफ हुई और बच्चों के साथ सबके साथ रहने के बाद भी तकलीफ तो इनको भी हुई, तो उनका कहना है कि बाद में उनके पति वापस आ गए तो घर बड़ा खुशनुमा हो गया। हमारे एक श्रोता ने बहुत ही आवश्यक बात लिखी, वो लिखते हैं कि जब बाहर जाते हैं तो ट्रेन में रिजर्वेशन की समस्या आती है दीपावली आदि त्योहारों के समय अपने परिवार तक लौटने के लिए। जी हाँ, ये समस्या भी जब भारत के लोग भारत में ही किसी और शहर में काम करते हैं तो ये समस्या तो आती है। हमारे एक श्रोता लिखते हैं विदेश में खाने पीने की समस्या होती है, अमेरिका में 97% लोग मांसाहारी हैं और भारत में शाकाहारी लोग निवास करते हैं, और मांसाहार और शाकाहार की तो समस्या है, उसके साथ एक और समस्या है स्वाद की। हमारा स्वाद अलग है, उनका स्वाद अलग है, हम मसालों भरा भोजन करते हैं और वहां पर वैसा भोजन मिलता नहीं, तो शायद समस्या तो होती है। और हमारे एक श्रोता लिख रही है इस चीज के लिए बड़ी सकारात्मक बात लिखी है कि उनकी बेटी जब बाहर गई थी उसे घर की बड़ी याद आती थी, धीरे धीरे नए माहौल में ढल गई, अब छोटी बड़ी समस्या का सामना खुद करती है और आत्मविश्वास भी उसका बढ़ रहा है। बिल्कुल सही है, ये सारी बातें तो चल रही हैं, लेकिन एक बड़ा गंभीर सा प्रश्न मेरे दिमाग में आया है अभी आपसे बात करते करते, हमारे श्रोताओं की टिप्पणियों को पढ़ते पढ़ते।

जी, आप सबने सही पहचाना, हम राजा हिंदुस्तानी फिल्म का यह गीत सुन रहे थे। और हमने आपसे एक प्रश्न पूछा था कि आप अगर भारत का जो शिक्षित बच्चा है वो अगर विदेश जाता है तो क्या होता है, इसका उत्तर हम आपसे सुनना चाहेंगे। ज़रूर से इसका उत्तर दीजिएगा। और बहुत खूबसूरत सा बात है कि हमारे श्रोता बता रहे हैं कि वो जब विदेश, वो शाकाहारी हैं विदेश, क्या उन्हें भारत में भी दिक्कत आती है कई बार। अच्छा, अब हम विदेश को छोड़कर जब हम अपने ही देश में आते हैं और अपने गाँव को छोड़कर बाहर जाते हैं, तो जाने के लिए या आप कभी उस जगह पर काम करने के लिए गए होंगे तो कई सारी चीजें भी तो नई नई मिलती है ना, कई सारे रिश्ते मिलते हैं, कई सारे लोग मिलते हैं, अलग अलग संस्कृतियां मिलती हैं, उन सब संस्कृतियों के साथ भी जुड़ जाते हैं। और जो विदेश जाकर रहते हैं वो लोग भी अपने जीवन में बड़ी अलग तरीके से अपनी एक दुनिया सजाते हैं। हाँ, रिश्ते जो अपने रक्त के हैं ये अपने हैं, वो छूट भी जाते हैं। तो जल्दी से बताइएगा कि कभी कोई ऐसा मजबूत रिश्ता आपका छूटा है जो आपको छोड़कर कभी चला गया हो।

हम सुन रहे थे माचिस फिल्म का ये गीत हरिहरन सुरेश वाडकर विनोद सहगल और केके की आवाज में गुलजार के बोल और विशाल के संगीत के साथ। हमने आपसे प्रश्न पूछा कि भारत के पढ़े लिखे बच्चे जब विदेश जाते हैं तो लाभ होता है हानि होता है, जो भी आपके मन में विचार है वो आप अवश्य रखें। तो हमारे श्रोताओं ने बहुत अच्छे से उत्तर दिए हैं कि कई बार विदेशों में गए बच्चे के माँ बाप इतने अकेले हो जाते हैं कि मृत्यु पर अगल बगल के पड़ोसियों को भी पता नहीं चलता, और जब तक 3-4 दिन बाद फोन करे तब पता पड़ता है, और कई बार वीजा आदि की समस्याओं के कारण भी कई सारी चीजें होती हैं। हमारे एक और श्रोता लिखता है, रिश्ता कैसा भी हो दर्द बड़ा सहनीय होता है, उसे भूलना बड़ा कठिन है। कभी कभी ऐसी परिस्थितियां रहती हैं कि हमें दूर जाना भी होता है, दूर जाकर भी दिल तो उस इंसान से जुड़ा ही रहता है, क्योंकि रिश्ते कांच के नहीं होते, जो टूट जाए दिल से जुड़े होते हैं। कितनी सकारात्मक बात आपने कही है। हमारे एक और श्रोता लिखते हैं कि शिक्षित बच्चे विदेश जाकर नौकरी करते हैं, वहां की उपलब्धियों से उनका हुनर दिखाई देता है, राष्ट्र और मजबूत होता है, पर अपने देश में केवल नाम की प्रसिद्धि मिलती है, लाभ कुछ नहीं मिलता। नहीं, ऐसा नहीं है। आप अपने देश में जब काम करते हैं तब आपको लाभ बहुत मिलता है, यहाँ पर रहकर भी कई सारे बच्चों ने बहुत कुछ कमाया है। हमारे एक श्रोता लिखते हैं कि वो जगदलपुर गए थे बस्तर, वहाँ का कल्चर, वहाँ का चित्रकूट जलप्रपात, हरे भरे जंगल, हरियाली उनको आज भी याद है, मन मचल जाता है। हाँ, बहुत सुंदर जगह है ये, बहुत खूबसूरत जगह है, बड़ा आनंद आता है जगह पर, बड़ा अपनापन।

भी है लोगों में। वैसे भारत के किसी भी क्षेत्र में चले जाते हैं, हर जगह प्रेम ही मिलता है। हमारे एक और श्रोता लिखते हैं कि आजकल विदेश जाने वाले विद्यार्थी वापस आते तो अपने साथ अंग्रेजी मैम लेकर आते हैं। नहीं, ऐसा सभी नहीं करते हैं। और हमारे श्रोता लिखते हैं कि जब हमारे देश के बुद्धिजीवी जब उसी ज्ञान को प्रदेश में जाकर सेवाएं देते हैं तो कभी कभी गर्व होता है, उससे अधिक दुख भी होता है कि इसी ज्ञान को भारत माँ को समर्पित करते तो करोड़ों लोग लाभान्वित होते। मैं कई बच्चों को जानती हूँ जो 5-6 साल बाद वापस आ गए क्योंकि वहाँ उन्हें अपनापन और अपने देश की हर बात याद आती थी, इसलिए वो वापस आ गए। कितने अच्छे बच्चे हैं जो अपने देश के लिए वापस आ गए। इसके साथ उन्होंने, हमारे श्रोता लिखते हैं, अपने बच्चों को कहा कि कम कमा कर भी अपने देश में रहकर तरक्की करने की सलाह दी गई है। हमारे श्रोता ने लिखा, भारत का बच्चा विदेश क्यों जाए, इस देश में अपार संभावनाएं हैं। हमारे एक और श्रोता लिख रहे हैं, जब हमारे देश के बच्चे विदेश जाते हैं तो देश को प्रत्यक्ष और अप्रत्यक्ष रूप से कई महत्वपूर्ण लाभ होते हैं। इससे विदेशी मुद्रा रेमिटेंस की प्राप्ति होती है, तकनीकी एवं ज्ञान का हस्तांतरण और वैश्विक मंच से देश की शाख बढ़ती है, जिससे देश का अंतर्राष्ट्रीय स्तर पर प्रभाव मजबूत होता है। बिल्कुल सही बात है। हमारे श्रोताओं ने, एक ने और वही विवाह वाली बात को कहा है, बिल्कुल सही कह रहे हैं आप सब, जो कुछ कह रहे हैं बिल्कुल सही कह रहे हैं। लेकिन कई बार ऐसा होता है, मैं जब विद्यालय में पढ़ा करती थी तब मेरे शिक्षक ने एक बात बहुत अच्छी सिखाई थी कि जब आप विदेश जाते हैं तो एक काम करिए, आप विदेश जाइए लेकिन विदेश जाकर वहाँ कुछ रोज रहकर वापस आ जाइए, क्योंकि वहाँ पर जो आप सीख कर आएंगे, देख कर आएंगे, वो अपने देश में अगर लगाएंगे तो बड़ा मज़ा आ जाएगा, और वो भारत में आकर उस चीज़ को लगाएगा तो भारत की साख और बढ़ जाएगी। मुझे ये बात बड़ी अच्छी लगी, आप भी अपने लोगों को बता सकते हैं। हमारे लोग लिखते हैं कि पहले लोग अपने प्रदेश से दूसरे राज्य में कमाने जाते थे तो उन्हें प्रदेश कहा जाता था, और ऐसा उन्होंने बताया। इसके साथ ही हमारे श्रोता लिखते हैं, उनकी भाई की कई ट्रांसफर कई जगह होती है, कई सारी संस्कृति से वो शिक्षा भी लेते हैं। हाँ, बिल्कुल सही बात है। ये बहुत सारी बातें हैं कि अलग अलग वर्गों में अलग अलग लोग बाहर जाते हैं, और जब वो बाहर जाते हैं तो हम उनसे बस यही बात कह सकते हैं कि आप चले तो गए हैं लेकिन आपका देश आपसे बहुत प्यार करता है। इस गीत के गायक कलाकारों के नाम बताइए।

हम सुन रहे थे ये गीत आप लौट चलें, और हमने आपसे पूछा इसके गायक कलाकारों के बारे में, आपने बिल्कुल सही उत्तर दिया, उदित नारायण और अलका याग्निक इस गीत के गायक कलाकार हैं। हमारे श्रोता जो हैं उन्होंने एक बड़ी दिल को कचोटने वाली बात या कहें हृदय से रोने वाली बात लिख दी है, जहां पर सच में हर किसी का हृदय द्रवित हो जाएगा। वो लिखते हैं कि जब पहली बार बेटा विदेश जाता है तो माँ का कलेजा मुँह में आ जाता है और माँ को बहुत घबराहट होती है, होती ही होगी ना, अपने हृदय के टुकड़े को अपने से दूर भेजने में। हमारे श्रोताओं ने कई चीजें बताई हैं विदेश जाने पर, कि विदेश चले जाते हैं, परिवार दूर हो जाता है, पर कई बार उस ओर से देखें तो उनकी भी मजबूरी होगी जो उन्हें जाना पड़ा। अपने घर को छोड़कर कोई नहीं जाना पड़ता, पर कई बार रोटी उन्हें दूर खींच ले जाती है और कई बार तो वापस आने का रास्ता भी नहीं मिलता। और ऐसे समय में हम और आपने जो चिट्ठियां लिखी होती हैं, उन्हें संदेश भेजे होते हैं, उन्हें प्यार भेजा होता है, वो उनका साथ देता है। हमारे श्रोता बताते हैं उन्होंने ये फिल्म करतारपुर सनम सिनेमा में देखी हुई थी। हमारे श्रोता बताते हैं कि वो नेपाल घूमने जाते थे और दोस्तों को कहते थे कि विदेश गए हैं। हाँ तो अच्छी बात है ना, घूमने तो गए हैं। तो चलिए एक काम कीजिए, जितने लोग आपसे दूर रहते हैं या जो लोग दूर रहते हैं, दोनों आपस में चिट्ठियां जरूर भेजिए। व्हाट्सएप मैसेज, वीडियो कॉल, ये सब तो होता रहेगा, लेकिन चिट्ठियां एक बार नहीं, कई सौ बार एक दूसरे की याद, एक दूसरे के प्यार में डुबो देती हैं। तो चलिए सुनते हैं ये गीत और बताइएगा ये गीत गाया किसने है।

0: चिट्ठी आई।
1: और इसी के साथ हमारे एक श्रोता ने एक चिट्ठी लिखी है छोटी सी, और वो चिट्ठी ऐसी है कि देसी बायना सब जग मीठा। यह विद्यापति जी ने कहा है, बिल्कुल अपना देश जहाँ है, जहाँ की मिट्टी, वहां से खान पान, वहां से गोली, और वहां अपनापन दुनिया की सारी सुख समृद्धियों से ऊपर है। पर दुनिया कहीं भी बहुत सुख समृद्धि हो, सोने चांदी के पलंग बिछावन है, पर हमें तो अपने भारत की खटिया ही बहुत प्यारा है। जी धन्यवाद। और हम सुन रहे थे नाम फिल्म का यह गीत, पंकज उदास और साथियों ने इसे गाया, आनंद बख्शी के बोल, लक्ष्मीकांत प्यारेलाल के संगीत के साथ। आज का सुरीला सफर यहीं पर समाप्त होता है। सदा सुखी रहिए। नमस्कार, प्रणाम।

त्रिवेणी के सभी श्रोताओं को हमारा प्यार भरा नमस्कार। दोस्तों, कहते हैं जो इंसान भीतर से मजबूत होता है उसे हर बात पर खुद को साबित करने की जरूरत नहीं पड़ती। वो जानता है कि हर बहस जीतना सफलता नहीं है, बल्कि सही समय पर सही बात कहना ही असली समझदारी है। कुछ लोग हालात के आगे बहुत जल्दी हार मान लेते हैं और कुछ आखिरी दम तक मुकाबला करते रहते हैं। इंसान अगर अपने दिल और दिमाग पर नियंत्रण कर ले तो वो अपने जीवन में ऊंचे से ऊंचा मुकाम भी हासिल कर सकता है। लेकिन अगर वो जीवन में मिलने वाली असफलताओं को ही अपनी नियति मान ले तो वो निराशा की ऐसी खाई में गिर सकता है जहां से बाहर आना लगभग नामुमकिन हो जाता है। इसलिए वक्त से लड़कर जो अपना नसीब बदल दे बहुत मजबूत होता है वो इंसान।

मजबूत इंसान बनने के लिए शारीरिक और मानसिक दोनों स्तरों पर काम करना बेहद जरूरी है। खुद को अनुशासित रखें, चुनौतियों से घबराने की बजाय उन्हें सीखने का अवसर मानें। कठिन समय में सकारात्मक दृष्टिकोण बनाए रखना ही असल मजबूती है। भीतर से मजबूत और निडर बनने के लिए चुनौतियों से हमें डरना नहीं बल्कि चुनौतियों का डटकर सामना करना आना चाहिए और यही जीवन के लिए बेहद जरूरी भी है। कुछ

महान विचारकों और दार्शनिकों के अनुसार मानसिक मजबूती और दर्द सहने की क्षमता का विकास केवल परिस्थितियों से भागने में नहीं बल्कि उनका डटकर सामना करने में है। आंतरिक दृष्टि से मजबूत व्यक्ति अपनी कमजोरियों और ताकतों को स्पष्ट रूप से जानते हैं और खुद को अंधेरे में नहीं रखते। साथ ही ये भीड़ का हिस्सा बनने के बजाय अपने मूल्यों और नैतिकता के अनुसार सही राह पर चलते हैं। भीतर से मजबूत और दृढ़ व्यक्ति विपरीत परिस्थितियों में भी शांत रहता है और अपने सिद्धांतों से समझौता नहीं करता। चाहे परिस्थितियां जैसी भी हों, ऐसे मजबूत लोग शिकायत करने के बजाय समाधान पर ध्यान केंद्रित करते हैं।

0: दोपहर के 2:15 होने को हैं। बस थोड़ी ही देर में हम समाचार प्रसारित करेंगे।
1: नमस्कार, आकाशवाणी से दोपहर समाचार के साथ मैं जागृति शर्मा। संसद का मॉनसून सत्र आज से शुरू। विपक्ष के हंगामे के कारण दोनों सदनों की कार्यवाही कई बार स्थगित। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने संसद के मॉनसून सत्र के सार्थक होने की उम्मीद जताई, कहा इससे देश का कल्याण होगा। सर्वोच्च न्यायालय में आज राम मंदिर चढ़ावा चोरी मामले की निष्पक्ष जांच की मांग करने वाली याचिकाओं पर सुनवाई होगी। राष्ट्रपति द्रौपदी मुर्मू ने किशिनो में मोल्दोवा के राष्ट्रपति माया संधु के साथ प्रतिनिधिमंडल स्तर की बातचीत की और मौसम विभाग ने उत्तराखंड, हिमाचल प्रदेश तथा जम्मू कश्मीर के कुछ हिस्सों में मूसलाधार बारिश का रेड अलर्ट जारी किया। अब समाचार विस्तार से। संसद के दोनों सदनों की कार्यवाही नीट परीक्षा पेपर लीक मामले पर विपक्ष के हंगामे के कारण लगातार बाधित हो रही है। दोनों सदनों की कार्यवाही दोपहर 2:00 चौथे स्थगन के बाद फिर शुरू होने पर विपक्षी सदस्यों का नीट मुद्दे पर हंगामा जारी रहा। शोर शराबे के बीच दोनों सदनों की कार्यवाही दोपहर 2:30 तक के लिए स्थगित कर दी गई है। आज सवेरे सत्र की कार्यवाही शुरू होते ही सदस्यों ने हाल ही में दिवंगत हुए 6 पूर्व सदस्यों को श्रद्धांजलि अर्पित की। सदन ने कतर के अमीर शेख हमद बिन खलीफा अस्सानी को श्रद्धांजलि दी। लोकसभा अध्यक्ष ओम बिरला ने कहा कि श्री अस्सानी ने भारत कतर संबंधों को मजबूत करने में महत्वपूर्ण भूमिका निभाई।
2: मुझे अत्यंत दुख के साथ सभा को कतर के फादर अमीर महामहिम शेख हमद बिन खलीफा अल थानी के निधन के बारे में भी सूचित करना है। महामहिम शेख हमद बिन खलीफा अल थानी ने जून 1995 से जून 2013 तक 18 वर्षों तक कतर के अमीर के रूप में कार्य किया। उन्होंने आधुनिक कतर की नींव रखी। उन्होंने भारत कतर संबंधों के संवर्धन में भी महत्वपूर्ण भूमिका निभाई।
1: लोकसभा की कार्यवाही विपक्ष के हंगामे के कारण लगातार बाधित हुई। सवेरे प्रश्नकाल शुरू होते ही कांग्रेस, समाजवादी पार्टी सहित विपक्षी सदस्यों ने नीट परीक्षा पेपर लीक मुद्दा उठाया। अध्यक्ष ने विपक्ष से सदन की कार्यवाही चलने देने और सदन की मर्यादा बनाए रखने का आग्रह किया।
2: मेरा आग्रह है कि सदन का प्रथम दिन है और इस परंपरा को तोड़ना चाहिए कि प्रथम दिन सदन नहीं चलेगा। मैं हमेशा आपसे आग्रह कहता हूं कि आपको पर्याप्त अवसर, पर्याप्त समय मिलेगा। नियमों के तहत नोटिस दीजिए, सदन नियमों प्रक्रियाओं से चलता है।
1: पीठासीन

0: अधिकारी दिलीप सैकिया ने शून्यकाल चलाने की कोशिश की, लेकिन विपक्ष का हंगामा जारी रहा, जिसके बाद सदन की कार्यवाही 1 बजे तक के लिए स्थगित कर दी गई। 1 बजे कार्यवाही शुरू होने पर भी विपक्ष का हंगामा जारी रहा, जिसके कारण कार्यवाही दोपहर 2 बजे और इसके बाद 2:30 बजे तक स्थगित कर दी गई। उधर राज्यसभा की कार्यवाही शुरू होते ही नवनियुक्त और पुनर्नियुक्त सदस्यों को शपथ दिलाई गई। बाद में विपक्ष के नेता मल्लिकार्जुन खड़गे ने नीट परीक्षा पेपर लीक मामला उठाने की कोशिश की।
1: टू पुट फोर्थ माई व्यूज अबाउट दिस पेपर लीक एंड नीट एग्जामिनेशन घोटाला, जो लाखों बच्चों की भविष्य है, उनके भविष्य के बारे में मैं बात कर रहा हूं, और उसके लिए आज यहां जंतर मंतर पे हजारों बच्चे आए हैं।
0: सभापति सीपी राधाकृष्णन ने सदस्यों से सदन की मर्यादा बनाए रखने की अपील की।
2: आई अपील टू मेंबर्स अक्रॉस ऑल साइड्स ऑफ द हाउस टू अपहोल्ड द डिग्निटी डिसिप्लिन एंड डेकोरम ऑफ दिस ऑगस्ट इंस्टीट्यूशन। व्हाइल डिफरेंसेस ऑफ ओपिनियन आर इंटेग्रल टू पार्लियामेंट्री डेमोक्रेसी, दे मस्ट बी एक्सप्रेस्ड इन अ मैनर दैट प्रिजर्व्स द सैंक्टिटी ऑफ द हाउस।
0: शोर शराबा जारी रहने पर सदन की कार्रवाई कई बार बाधित हुई और अब सदन की कार्रवाई 2:30 बजे तक के लिए स्थगित कर दी गई है। केंद्रीय विधि और न्याय मंत्री अर्जुन राम मेघवाल ने आज लोकसभा में सर्वोच्च न्यायालय न्यायाधीशों की संख्या संशोधन विधेयक 2026 पेश किया। इस विधेयक का उद्देश्य सर्वोच्च न्यायालय न्यायाधीशों की संख्या अधिनियम 1956 में संशोधन करके सर्वोच्च न्यायालय के न्यायाधीशों की संख्या भारत के मुख्य न्यायाधीश को छोड़कर वर्तमान में 33 से बढ़ाकर 37 करना है। केंद्रीय मंत्री डॉक्टर मनसुख मांडविया ने कहा है कि ज्ञान भारतम मिशन के अंतर्गत 8 करोड़ से अधिक पांडुलिपियों का डिजिटलीकरण किया गया है। लोकसभा में आज पूरक प्रश्नों का उत्तर देते हुए उन्होंने कहा कि इसके अंतर्गत देश भर में 1 करोड़ से अधिक पांडुलिपियों का सर्वेक्षण किया गया है। जनता दल यूनाइटेड के नेता संजय झा ने आज कहा कि विपक्ष को संसद में रचनात्मक मुद्दे उठाने चाहिए। मॉनसून सत्र के पहले दिन संसद के बाहर आकाशवाणी से बातचीत में श्री झा ने कहा कि सरकार ने एलपीजी, पेट्रोल और डीजल की निर्बाध उपलब्धता सुनिश्चित करते हुए कीमतों को नियंत्रण में रखकर सराहनीय काम किया है। केंद्रीय राज्य मंत्री एसपी सिंह बघेल ने कहा कि नरेंद्र मोदी सरकार में स्टार्टअप्स की संख्या में अभूतपूर्व वृद्धि हुई है। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने कहा है कि चाहे मॉनसून हो या मॉनसून सत्र, दोनों के सक्रिय रहने पर वे अत्यंत उत्पादक सिद्ध होते हैं। संसद के मॉनसून सत्र से पूर्व संवाददाताओं से बातचीत में श्री मोदी ने कहा कि महज 1 महीने में देश ने अनेक उपलब्धियां हासिल की हैं जो प्रत्येक नागरिक को गौरवान्वित करती हैं।
3: मॉनसून हो या मॉनसून सत्र, अगर दोनों प्रोएक्टिव हो तो देश का कल्याण होता है, जीव मात्र का कल्याण होता है। साथियों, पिछले 1 महीने में देश ने अनेक सिद्धियां प्राप्त की है और देशवासी गर्व से भर जाए इस प्रकार की सिद्धियों का सिलसिला चला है, चाहे राष्ट्रीय हो, अंतर्राष्ट्रीय हो और अब तो अंतरिक्ष भी हो, भारत के लिए गर्व के पल रहे हैं।
0: श्री मोदी ने सभी राजनीतिक दलों से सकारात्मक और सार्थक चर्चा का आग्रह किया। ये समाचार हमारे न्यूज ऑन AIR ऐप और हमारी वेबसाइट newsonair.gov.in पर भी उपलब्ध हैं। दोपहर समाचार में आपका फिर स्वागत है। सर्वोच्च न्यायालय आज अयोध्या राम मंदिर चढ़ावा चोरी मामले की निष्पक्ष और समयबद्ध जांच की मांग करने वाली याचिकाओं पर सुनवाई करेगा। मुख्य न्यायाधीश सूर्यकांत और न्यायमूर्ति जॉय माल्या बागची तथा वी मोहन की पीठ इस मामले से संबंधित 4 अलग-अलग याचिकाओं पर सुनवाई करेगी। इससे पहले उत्तर प्रदेश सरकार द्वारा गठित विशेष जांच दल SIT ने राम मंदिर चढ़ावा चोरी मामले में न्यायालय के समक्ष अपनी स्थिति रिपोर्ट प्रस्तुत की। कलकत्ता उच्च न्यायालय ने आज ममता बनर्जी के नेतृत्व वाले तृणमूल कांग्रेस गुट को पार्टी के 3 बैंक खातों को संचालित करने की अंतरिम अनुमति देने से इनकार कर दिया है। प्रवर्तन निदेशालय ईडी ने इन 3 बैंक खातों को फ्रीज कर दिया था। इनमें 440,42,00,000 रुपए जमा थे। ये कार्रवाई राज्य पुलिस द्वारा दर्ज FIR के आधार पर की गई, जांच के सिलसिले में की गई।

0: संसद के मॉनसून सत्र के मद्देनजर नई दिल्ली में यातायात प्रतिबंध लागू किए गए हैं। दिल्ली यातायात पुलिस ने लोगों को रफी मार्ग, मोतीलाल नेहरू मार्ग, मौलाना आजाद रोड, संसद मार्ग, अशोका रोड, तालकटोरा रोड, राजेंद्र प्रसाद रोड, जनपथ तथा आसपास के मार्गों से बचने की सलाह दी है। इस बीच दिल्ली पुलिस ने कुछ मीडिया चैनलों पर प्रसारित उन दावों का खंडन किया है जिनमें नई दिल्ली के जंतर मंतर पर कथित तौर पर बल प्रयोग और गिरफ्तारियों की बात कही गई है। एक सोशल मीडिया पोस्ट में दिल्ली पुलिस ने स्पष्ट किया कि विरोध प्रदर्शन पर पूरी तरह से शांतिपूर्ण तरीके से चलाने की कोशिश की जा रही है। दिल्ली मेट्रो रेल निगम ने जानकारी दी है कि सेवा तीर्थ, राजीव चौक और केंद्रीय सचिवालय मेट्रो स्टेशनों पर अब इंटरचेंज सुविधाएं और गेट खुल गए हैं। त्रिपुरा के पुलिस महानिदेशक अनुराग धनखड़ आज अगरतला पुलिस मुख्यालय में मृत पाए गए। उनके निधन का कारण अभी तक आधिकारिक तौर पर पुष्टि नहीं हुई है, अधिक जानकारी की प्रतीक्षा है। राष्ट्रपति द्रौपदी मुर्मू ने अपने तीन देशों के दौरे के पहले चरण के अंतर्गत मोल्दोवा गणराज्य में अपने कार्यक्रमों की शुरुआत की। उनको किशिनाव स्थित राष्ट्रपति भवन में औपचारिक गार्ड ऑफ ऑनर से सम्मानित किया गया। राष्ट्रपति मुर्मू ने मोल्दोवा की राष्ट्रपति माई सांदू के साथ द्विपक्षीय वार्ता की। इसका उद्देश्य द्विपक्षीय संबंधों को मजबूत करना और आपसी हित के क्षेत्रों में सहयोग का विस्तार करना था। इस अवसर पर राष्ट्रपति मुर्मू ने कहा कि इस यात्रा से दोनों देशों के बीच संबंध और मजबूत हुए हैं।
1: मोल्दोवा की पहली राज्य की यात्रा है, ये हमारे द्विपक्षीय संबंधों में एक ऐतिहासिक उपलब्धि है और हमारे दोनों देशों के बीच बढ़ती मित्रता और आपसी विश्वास को दर्शाती है। भारत और मोल्दोवा तीन दशकों से मधुर और मैत्रीपूर्ण संबंध साझा करते आ रहे हैं। भौगोलिक रूप से दूर होने के बावजूद शांति, विकास और अंतर्राष्ट्रीय सहयोग के प्रति हमारे साझा प्रतिबद्धता के अनुरूप हमारी साझेदारी निरंतर बढ़ती रही है।
0: अमरीका ने लगातार नौवें दिन भी ईरान पर हमले जारी रखे जिसके कारण होर्मुज जल डमरू मध्य को लेकर तनाव और बढ़ गया है। अमरीका ने दक्षिण पश्चिम ईरान के होर्मुज शहर को निशाना बनाया, वहीं जॉर्डन, कुवैत और बहरीन ने ईरान के नए हमलों की सूचना दी है। अमरीका ईरान के बीच का टकराव पड़ोसी देशों तक फैल गया है। इस बीच जॉर्डन के सरकारी प्रसारक ने सोशल मीडिया पर एक पोस्ट में कहा कि देश के वायु रक्षा प्रणालियों ने ईरान से जॉर्डन की ओर दागी गई तीन मिसाइलों को बीच में ही रोक दिया। ये समाचार आकाशवाणी से प्रसारित किए जा रहे हैं। ताजा समाचार जानने के लिए आप हमारे न्यूज ऑन AIR ऐप और सोशल मीडिया हैंडल @AIRNewsHindi को फॉलो कर सकते हैं। ये आकाशवाणी है। उत्तराखंड में सुरक्षा कारणों को देखते हुए एहतियात के तौर पर आज चार धाम यात्रा कुछ समय के लिए स्थगित कर दी गई है। हमारी संवाददाता ने बताया है कि बारिश से मैदानी और पहाड़ी दोनों इलाकों में जनजीवन पर असर पड़ा है।
2: उत्तराखंड के कई जिलों में तेज बारिश की चेतावनी और चार धाम यात्रा मार्ग पर कई स्थानों पर भूस्खलन की खबरों के मद्देनजर तीर्थ यात्रा को अस्थायी रूप से रोकने का निर्णय लिया गया है। गढ़वाल आयुक्त आनंद स्वरूप ने संबंधित जिला मजिस्ट्रेटों को निर्देश दिया है कि जहां भी सड़कें अवरुद्ध हो वहां तीर्थ यात्रियों के लिए सुरक्षित व्यवस्था की जाए और यात्रा तभी दोबारा शुरू की जाए जब मार्ग पूरी तरह से सुरक्षित घोषित कर दिए जाएं। मौसम विभाग ने देहरादून, टिहरी, गढ़वाल और हरिद्वार जिलों में भारी से बहुत भारी बारिश का रेड अलर्ट जारी किया है। उत्तरकाशी, नैनीताल, चंपावत, पौड़ी और उधम सिंह नगर के लिए ऑरेंज अलर्ट और रुद्रप्रयाग, चमोली, अल्मोड़ा, बागेश्वर और पिथौरागढ़ में येलो अलर्ट जारी किया है। साक्षी सिंह की रिपोर्ट के साथ समाचार कक्ष से वैष्णवी।
0: उधर असम में लगातार हो रही बारिश के कारण बाढ़ की स्थिति और खराब हो गई है। ऊपरी असम के कई जिलों में हजारों लोग प्रभावित हैं। शिवसागर, चराईदेव और जोरहाट बाढ़ से सबसे ज्यादा प्रभावित हैं। सेना, राष्ट्रीय और राज्य आपदा मोचन बल को राहत और बचाव कार्यों के लिए तैनात किया गया है। उधर पंजाब और हरियाणा के कई हिस्सों में भी तेज बारिश हो रही है। आज हिमाचल प्रदेश, जम्मू और कश्मीर, लद्दाख तथा उत्तराखंड में तेज बारिश का रेड अलर्ट जारी किया गया है। असम, मेघालय, बिहार, हरियाणा, चंडीगढ़, दिल्ली, पंजाब, पश्चिम बंगाल के गांगेय क्षेत्र, सिक्किम और उत्तर प्रदेश में आज तेज बारिश का ऑरेंज अलर्ट है। छत्तीसगढ़, पूर्वी राजस्थान, गुजरात, झारखंड, केरल, माहे, कोंकण, गोवा, मध्य महाराष्ट्र, मध्य प्रदेश, ओडिशा और

0: उत्तर पूर्वी भारत के कुछ हिस्सों में अगले 3 दिन तक ऐसी ही स्थिति रहने की संभावना है। विभाग ने कहा है कि पश्चिम मध्य अरब सागर के अधिकांश हिस्सों और दक्षिण पश्चिम तथा पश्चिम मध्य बंगाल की खाड़ी के कुछ हिस्सों, उत्तरी तमिलनाडु तट के आसपास और उससे दूर अगले 2 दिन के दौरान तूफानी मौसम रहने की संभावना है। और अब खेल खबरों के साथ हैं मुकेश।
1: फीफा फुटबॉल विश्व कप का इतिहास लिखा जा चुका है। स्पेन ने दूसरी बार पुरुष फीफा विश्व कप अपने नाम कर लिया है। इस जीत के साथ स्पेन एक ही समय में पुरुष और महिला फुटबॉल विश्व कप विजेता पहला देश बन गया है। इस हार ने अर्जेंटीना और लियोनेल मेसी के शानदार दौर का भी अंत कर दिया है। 48 टीमों के साथ ये अब तक का सबसे बड़ा फीफा विश्व कप था। ये टूर्नामेंट अमरीका, कनाडा और मैक्सिको में खेला गया। और अगर बात करें पुरुष क्रिकेट की, तो इंग्लैंड ने लंदन के लॉर्ड्स तीसरे और निर्णायक एक दिवसीय मैच में भारत को 27 रन से हराकर श्रृंखला 2-1 से जीत ली है। इंग्लैंड ने निर्धारित 50 ओवर में 3 विकेट पर 387 रन बनाए। भारतीय टीम 7 विकेट पर 360 रन ही बना सकी।
0: और अंत में मुख्य समाचार एक बार फिर। संसद का मॉनसून सत्र आज से शुरू। विपक्ष के हंगामे के कारण दोनों सदनों की कार्यवाही कई बार स्थगित। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने संसद के मॉनसून सत्र के सार्थक होने की उम्मीद जताई। सर्वोच्च न्यायालय में आज राम मंदिर चढ़ावा चोरी मामले की निष्पक्ष जांच की मांग करने वाली याचिकाओं पर सुनवाई होगी। राष्ट्रपति द्रौपदी मुर्मू ने किशनौ में मोल्दोवा की राष्ट्रपति माया संधू के साथ प्रतिनिधिमंडल स्तर की बातचीत की। और मौसम विभाग ने उत्तराखंड, हिमाचल प्रदेश तथा जम्मू कश्मीर के कुछ हिस्सों में मूसलाधार बारिश का रेड अलर्ट जारी किया। इसके साथ ही दोपहर समाचार का ये अंक समाप्त हुआ। नमस्कार।
2: आप सुन रहे हैं विविध भारती राष्ट्रीय सेवा देश की सुरीली धड़कन। स्वागत है आप सभी का कार्यक्रम सदाबहार नगमे में।

हम सुन रहे थे ये गीत आज और कल फिल्म से आशा भोसले की आवाज में साहिल लुधियानवी के बोल और रवि के संगीत के साथ। आइए सुनते हैं कार्यक्रम सदाबहार नगमे में एक और गीत जिसे गाया है सुमन कल्याणपुर ने। नूर देवासी ने इसे लिखा है, विपिन ने इसे संगीतबद्ध किया है। बागी शहजादा फिल्म से ये गीत है।

0: ये गीत हमने सुना गुमराह फिल्म से महेंद्र कपूर और आशा भोसले की आवाज में, साहिल लुधियानवी के बोल और रवि के संगीत के साथ। आइए सुनते हैं ये संदेश।
1: 21 जुलाई गीतकार आनंद बख्शी की याद का दिन।
2: वो तेरे प्यार का।
1: 22 जुलाई पार्श्व गायक मुकेश का जन्मदिन।
3: मुबारक हो सबको समाये सुहाना।
1: विविध भारती लेकर आ रहा है दो खास कार्यक्रम।
4: धीरे धीरे बोल कोई सुनना।
1: गीतकार आनंद बख्शी के बेटे राकेश आनंद बख्शी याद करेंगे अपने पिता को 21 जुलाई शाम 4 बजे।
5: उन्होंने क्या किया कि एक नौकरी पकड़ ली टाइम पास। एक सिनेमा हॉल था वहाँ पे पास में, पैसे नहीं चाहिए थे, फिल्म देखने को मिलता था फ्री में। वो छड़ी से जो उनको मार पड़ी है उसके बाद जबरदस्त मार पड़ी।
1: 22 जुलाई को स्टूडियो में होंगे दो गायक मुख्तार शाह और गोविंद मिश्र, जो गाएंगे मुकेश के ढेर सारे गाने।
6: होठों पे सच्चाई रहती है, जहाँ दिल में सफाई रहती।

0: है
1: और बताएंगे क्या जगह है मुकेश की उनके जीवन में।
2: वो उनकी तो एक दिल में छवि ऐसी है कि जिसको बोलते ना कि पूजा जाता है।
3: वो अगर होते तो शायद मैं पैर पकड़ के बैठा ही रहता।
1: याद रखिए 21 और 22 जुलाई शाम 4 बजे सिर्फ विविध भारती पर।
4: सुनो जी सुनो, हमारी भी सुनो।
5: आप सुन रहे हैं विविध भारती राष्ट्रीय सेवा देश की सुरीली धड़कन। कार्यक्रम है सदाबहार नगमे। आइए सुनते हैं कार्यक्रम सदाबहार नगमे का अगला गीत, जो कि है फिल्म दिल ही तो है से। आशा भोसले और साथियों की आवाजें हैं, साहिर लुधियानवी के बोल हैं और रोशन का है संगीत।

0: दिन की भागदौड़ के बाद सुकून का एक कोना, मैं और मेरी तन्हाई, सुनहरे गानों का बिछौना, यादों का मीठा राग, जज्बात की नरम छांव, प्यार की चुवन, अपनेपन का गांव, छाया गीत, रोज रात 10 बजे सिर्फ विविध भारती पर।
1: आप सुन रहे हैं विविध भारती राष्ट्रीय सेवा देश की सुरीली धड़कन। कार्यक्रम है सदाबहार नगमे।

0: हम सुन रहे थे लता मंगेशकर की आवाज में शकील बदायूनी के बोल और नौशाद के संगीत से सजा हुआ यह गीत, जिसे जो कि है फिल्म मेरे महबूब से।
1: हिंदी सिनेमा की कुछ कल्ट फिल्में उनके नाम पर हैं, स्पर्श, कथा, दिशा और चश्मे बदूर।
2: उन्होंने कहा कि देखो अब सिर्फ हम नौजवान तीनों दिखा रहे हैं, सिर्फ कॉलेज के युवक नहीं, उनके माँ बाप भी आए हैं, उनके चाचा चाची है, एक दादी माँ डाली, बाप डाला, एक भाई डाला वगैरह वगैरह, एक पान वाला डाला। सईद को पकड़ा लिया और उसने कहा फिर मुझे वी हैव टू गो टू जामा मस्जिद, पुरानी दिल्ली जाना पड़ेगा। मैंने कहा पुरानी दिल्ली क्या करोगे जाके, पान वाले का अगर मुझे करना है रोल तो मुझे देखना नहीं चाहिए पान वाले वगैरह। तो मैंने कहा ये नसीर के बाद ये एक और आ गया।
3: जल्दी है बुलबुल, कोई और कर्जेदार लग गया तेरे पीछे क्या?
4: अरे ललन मियां आप काट देना रास्ता, अब मेरा काम नहीं होगा।
1: दास्तान सई परांजपे की, उजाली उनकी यादों की, 19 जुलाई से 9 अगस्त शाम 4 बजे सिर्फ विविध भारती पर। सुनिए,
0: आप सुन रहे हैं विविध भारती राष्ट्रीय सेवा देश की सुरीली धड़कन। कार्यक्रम है सदाबहार नगमे। आइए सुनते हैं कार्यक्रम सदाबहार नगमे का अंतिम गीत, ब्लफ मास्टर फिल्म से मुकेश की आवाज में, राजेंद्र कृष्ण के बोल और कल्याण जी आनंद जी के संगीत के साथ। और इसी के साथ आज्ञा दीजिए, नमस्कार।

0: सखी सहेली
1: सखी सहेली सुनने वाली सभी सखियों को और श्रोता भाइयों को मंजरी वर्मा का प्यार भरा नमस्कार। और हमारे साथ आज हैं चंचल वर्मा। तो चंचल जी, बहुत दिनों बाद मुलाकात हो रही है, तो आपका स्वागत करते हैं और बहुत बहुत नमस्कार।
2: नमस्कार मंजरी, आपको भी और हमारे सभी सुनने वालों को नमस्कार। और जब भी हमारी ये जोड़ी साथ में आती है ना, तो बहुत सारे श्रोता इस बात का कमेंट करते हैं कि दो वर्मा बहनें या दो वर्मा सखियां साथ में हैं।
1: क्या बात है, देखो
2: तो यूं तो हमारी मुलाकात होती है, लेकिन इस मंच पर आज हम बाकी बहुत दिन के बाद साथ में आए हैं।
1: बिल्कुल, और बड़ा अच्छा भी लग रहा है। और इससे पहले भी हम लोग कुछ कुछ गप्पे मार रहे थे, तो उसमें भी बड़ा आनंद ले रहे थे कि व्यंजन की बात करेंगे तो व्यंजन की ही बातें चल रही थी, है ना। और आज देखो हम लोग व्यंजन की बात करने वाले हैं।
2: और बारिश के मौसम में कुछ खास व्यंजन बनते हैं
1: जी,
2: इसे चाट पकौड़ी और तली हुई चीजों का एक खास मजा होता है खाने का। लेकिन आज जिन व्यंजन की हम बात करेंगे, ना तो वो चाट पकौड़ी है ना कोई तली हुई चीजें हैं,
1: बिल्कुल,
2: लेकिन है वो पंजाब के बहुत ऑथेंटिक व्यंजन, पारंपरिक व्यंजन है जिन्हें बड़े चाव से बनाया जाता है, खाया जाता है। और जो हमारे सुनने वाले श्रोता पंजाब के आसपास रहते हैं या वहां से ताल्लुक रखते हैं, वो जरूर इनके बारे में जानते होंगे और रेसिपीज हमें लिखकर भेज रहे होंगे।
1: बिल्कुल, और वो भाई व्यंजन भी तो बता देते हैं कि दाल मखनी और पिन्नी के बारे में हम बात करेंगे।
2: एक है ऐसी सब्जी जो खास मौके पर बनाई जाती है, या पंजाबी घरों में तो आमतौर पर दाल मखनी बनती ही रहती
1: है।
2: और मीठे व्यंजन की बात करें तो हम पिन्नी बनाएंगे।
1: बिल्कुल, और बारिश के पानी की बचत कैसे की जाए इस पर भी हम चर्चा करेंगे।
2: हाँ, क्योंकि बारिश का पानी हमें, यानी कि बारिश का मौसम तो होता है सिर्फ 3 महीने के का, कभी कभी 4 महीने भी चलता है, या कहीं कहीं 2 महीने भी रहता है, लेकिन पानी की जरूरत तो पूरे 12 महीने होती है।
1: बिल्कुल,
2: उम्र होती है, और यही पानी होता है जो 3 महीने बरसेगा, लेकिन बाकी के जो और 9 महीने हैं इसी पानी से हमें काम चलाना है, इसीलिए इसकी बचत बहुत जरूरी है।
1: बिल्कुल, तो इसके बारे में हमारे साथी ने भी बहुत सारे कमेंट्स भेजे हैं। और कथा सुधा के अंतर्गत दो बहने का भाग 3 अंतिम भाग हम सुनवाएंगे। मुंशी प्रेमचंद जी की लिखी कहानी है ये, तो उससे पहले चंचल एक गीत सुन लेते हैं, फिर आगे बढ़ते हैं।

0: ट्राई किया? पास से शुरू करना था ना, और तुमने कहाँ से किया? नी से?
1: अच्छा बाबा, लो पास से शुरू करती हूँ।

0: तो चंचल कितना प्यारा सा ये गीत अभी हम लोगों ने सुना।
1: गृह प्रवेश फिल्म का बहुत सुंदर गीत था और इसके बाद हम सुनने वाले हैं कहानी। तो कथा सुधा के अंतर्गत आज मुंशी प्रेमचंद की कहानी दो बहने का तीसरा और अंतिम भाग हमारी सखियां और सखा सुनेंगे।
2: कथा सुधा भाव भरी कहानियों का सागर, जिसकी लहरें कभी मुस्कुराहट सजाएंगी तो कभी आंखें नम कर जाएंगी। सामाजिक सरोकार से लेकर परिवार तक की होंगी बातें, कुछ मनोरंजन होगा तो कुछ सीख भी मिल जाएगी। हर बार नई अनसुनी कहानी की अलग अंदाज में होगी बयानी। कहानी की मौलिकता बनाए रखते हुए श्रोताओं के लिए कार्यक्रम रोचक और सुगम हो, इसलिए कहानी में थोड़े बहुत बदलाव किए गए हैं। आशा है आपको कथा सुधा में डूबना अच्छा लगेगा।
3: कथा सुधा में हम सुन रहे हैं मुंशी प्रेमचंद की कहानी दो बहने। पिछली कड़ी में आपने सुना,
4: दो बहने दो साल बाद एक तीसरे अजीज के घर मिली और खूब रो धोकर खामोश हुई तो बड़ी बहन रूप कुमारी ने देखा कि छोटी बहन राम दुलारी सर से पांव तक गहनों से लदी हुई है।
5: इस दो साल में कैसे हुन बरस गया, कौन जाने जेवर किसी से मांग कर लाई हो, कपड़े भी दो चार दिन के लिए मांग लिए हो। उसे ये स्वांग मुबारक रहे, मैं जैसी हूं वैसी ही अच्छी हूं।
4: आखिर रामदुलारी उसे गले मिलकर अंदर चली गई। गुरुसेवक ने कार बढ़ाई। रूप कुमारी ने उड़ती हुई निगाह से रामदुलारी का मकान देखा और ठोस हकीकत सलाख की तरह उसके जिगर में चुभ गई।
5: 75 रुपलियां लाकर मेरे हाथ में रख देते हो और सारी दुनिया का खर्च, मेरा दिल ही जानता है कि मुझे कितनी कतर ब्योत करनी पड़ती है। क्या पहनूं क्या ओढ़ूं, तुम्हारे साथ जिंदगी खराब हो गई। गुरु सेवक को ही देखो, तुमसे कम पढ़ा है, उम्र में भी तुमसे कहीं छोटा है, मगर 500 रुपया महीना लाता है। और रामदुलारी, रामदुलारी रानी बनी बैठी।
4: ये सिलसिला कई मिनट तक जारी रहा और बेचारे उमानाथ खामोश सुनते रहे।
3: रूप कुमारी क्या राम दुलारी की असलियत जान सकेगी? आइए सुनते हैं आज इस कहानी की तीसरी और अंतिम कड़ी।
4: एक हफ्ता तक रूप कुमारी हैजान की हालत में रही, बात बात पर झुंझलाती, लड़कों को डांटती, शोहर को कोसती, अपनी तकदीर को रोती। घर का काम तो करना ही पड़ता था, वरना नई आफत आ जाती, लेकिन अब किसी काम से उसे दिलचस्पी न थी। घर की जिन पुरानी धुरानी चीजों से उसे दिली ताल्लुक हो गया था, जिनके सफाई और सजावट में वो मुनहमीक रहा करती थी, उनकी तरफ आंख उठाकर भी ना देखती। घर में एक खिदमतगार था, उसने देखा कि बहू जी खुद घर की तरफ से लापरवाह है तो उसे क्या गृहस्थी की सफाई करता। दोनों बच्चे भी मां से बोलते डरते थे और उमानाथ तो उसके साए से भी भागते थे। जो भी कुछ उनके सामने आ जाता जहर मार कर लेते, दफ्तर चले जाते, दफ्तर से लौटकर दोनों बच्चों को साथ लेकर कहीं घूमने निकल जाते। रूप कुमारी से कुछ बोलते रूह फना होती थी, वहां उनकी तफ्तीश जारी थी। एक दिन उमानाथ दफ्तर से लौटे तो उनके साथ गुरु सेवक भी थे। रूप कुमारी ने आज कई दिन बाद जमाने से मसालहत कर ली थी और उस वक्त से झाड़न लिए कुर्सियां और तिपाइयां साफ कर रही थी कि गुरु सेवक ने उसे अंदर पहुंचकर सलाम किया। रूप कुमारी दिल में कट गई, उमानाथ पर बेहद गुस्सा आया।
5: क्या करते हैं आप, उन्हें यहां लाकर क्यों खड़ा कर दिया? न कहना न सुनना, बस बुला लाए। अब इस हालत में देखकर गुरु सेवक ने दिल में क्या समझा होगा हम लोगों को, मगर आपको अकल आई ही कब थी? मैं अपना पर्दा ढाकते फिरती हूं और आप उसे खोलते फिरते हैं, जरा भी शर्म नहीं। जैसे बेहयाई का जामा पहन लिया आपने तो, खामख्वाह मुझे जलील करते रहते हैं। बस
4: दुआ देकर आफियत पूछी और कुर्सी रख दी। गुरु सेवक ने बैठते हुए कहा,
6: आज भाई साहब ने मेरी दावत की है, मैं इनकी दावत पे तो ना आता, लेकिन इन्होंने कहा कि तुम्हारी दीदी का सख्त तकाजा है, तो वक्त निकालना पड़ा।
4: रूप कुमारी ने बात बनाई।
5: हाँ, वो तुमसे उस दिन रवा रवि में मुलाकात हुई, देखने को जी लगा हुआ था।
6: जी
5: जी।
4: गुरु सेवक ने दरो दीवार पर नजर डाली और कहा,
6: ये घर दीदी इस पिंजरे में तो आप लोगों को बड़ी तकलीफ होती होगी।
4: रूप कुमारी को अब मालूम हुआ कि ये कितना बदमजाक है, दूसरों के जज्बात की उससे बिल्कुल परवाह नहीं, ये इतनी सी बात भी नहीं समझता कि दुनिया में सभी तकदीर वाले नहीं होते, लाखों में कहीं एक ऐसा भगवान निकलता है। किसी कदर तुर्श होकर बोली,
5: पिंजरे में रहना कटघरे में रहने से अच्छा है, पिंजरे में मासूम चिड़िया रहती हैं, कटघरे तो दरिंदों का मस्कन होता है।
4: गुरु सेवक किनाया न समझ सका, बोला,
6: मुझे तो इस घर में ऐसे घर में हफ्स हो जाएगी, दम घुट जाए। मैं आपके लिए दीदी, मैं आपके लिए अपने घर के पास एक घर तय कर दूंगा, खूब लंबा चौड़ा, और आपसे कुछ किराया न लिया जाएगा। हाँ, सुन रहे हैं दीदी, मकान हमारी मालकिन का है, मैं भी तो उन्हीं के मकान में रहता हूं, सैकड़ों मकान है उनके पास, सैकड़ों, सब मेरी इख्तियार में है, मेरी इख्तियार में, सुन रहे हैं आप दीदी?
5: सुन रही।
6: जिसको जो मकान चाहूं दे दूं, सब मेरे इख्तियार में है, किराया लूं या ना लूं। अब मैं आपके लिए अच्छा सा मकान ठीक कर दूंगा दीदी, जो सबसे अच्छा है। मैं आपका बहुत अदब करता हूं, मैं बहुत अदब करता हूं आपका, आप मेरी दीदी है। हाँ।
4: रूप कुमारी समझ गई हजरत इस वक्त नशे में है, जब ही बहकी बहकी बातें कर रहे हैं, उनकी आंखें सिकुड़ गई हैं, रुखसार कुछ फूल गए हैं, जबान में हल्की सी लग्जिश थी जो हर लम्हा नुमाया होती जाती थी। एक जवान खूबसूरत शरीफ चेहरा और बेगैरत बन गया था, जिसे कुछ देखकर नफरत होती थी। उसने एक लम्हा बाद फिर बहकना शुरू किया,
6: दीदी आपके लिए मेरी जान हाजिर है, दीदी आपके लिए मकान का इंतजाम करना मेरे लिए कुछ मुश्किल नहीं है, मैं मिसेज लोहिया का मुख्तार हूं। कौन हूं? मुख्तार। सब कुछ मेरे इख्तियार में है, सब कुछ, मैं जो कुछ कहता हूं वो आंख बंद करके मंजूर कर लेती है, मुझे अपना बेटा समझती है। क्या? बेटा, बेटा समझती है मुझे, मैं उनकी सारी जायदाद का मालिक हूं। आपको बताता हूं, मिस्टर लोहिया ने मुझे 20 रुपए का नौकर रखा था। कितना? 20 रुपए का। बड़ा मालदार आदमी था, मगर ये किसी को मालूम न था कि उसकी दौलत कहां से आती थी। मेरे सिवा किसी को मालूम नहीं था, किसी को नहीं, कोई नहीं जानता था, वो खुफिया फरोश है, किसी से कहना नहीं दीदी, किसी से कहना नहीं, वो खुफिया फरोश था, कोकेन बेचता था, लाखों की आमदनी थी उसकी। मैं भी अब वही काम करता हूं, हर शहर में हमारे एजेंट हैं। मिस्टर लोहिया ने मुझे इस फन में यकता कर दिया। जी हां, मजाल है कि कोई मुझे गिरफ्तार कर ले, बड़े बड़े अफसरों से मेरा याराना है, उनके मुंह में नोटों के पुलिंदे ठूंस ठूंस कर उनकी आवाज बंद कर देता हूं, कोई चू नहीं कर सकता। हिसाब में लिखता हूं 1,000, देता हूं 500, बाकी बाकी यारों का है। बेदरेग रुपये आते हैं, बेदरे खर्च करता हूं। और वो बुढ़िया, बुढ़िया को तो राम नाम से मतलब है, साधु संतों की सेवा में लगी रहती है और बंदा चैन करता है, जितना चाहूं खर्च करूं, कोई पकड़ने वाला नहीं, कोई बोलने वाला नहीं। दीदी एक मिनट, ये
5: क्या है?
6: थोड़े से रुपए।
5: ये थोड़े से रुपए नहीं है, ये तो पूरा नोटों का बंडल है। इतने रुपए?
6: दीदी क्या? ये आपके कदमों का सदका है, मुझे दुआ दीजिए। जो ईमान और उसूल के उपासक हैं, उन्हें दौलत लात मारती है। दौलत तो उन्हें पकड़ती है जो उसके लिए अपना दीन ईमान सब कुछ निसार करने को तैयार है। मुझे बुरा न कहिए, जितने दौलतमंद हैं सब लुटेरे हैं, मैं भी उन्हीं में से एक हूं। कल मेरे पास रुपए हो जाए और मैं एक धर्मशाला बनवा दूं, फिर देखिए मेरी कितनी वाह वाह वाह वाह होती है। कौन पूछता है कि ये दौलत मुझे कहां से मिली? किसी को भी देख ली, जो है सो अपने फन में माहिर है, काम इतना सा करते हैं, पैसा इतना सारा बना लेते हैं, है? अगर उनकी आमदनी जायज है तो मेरी आमदनी भी जायज है ना दीदी? जायज है ना? जी हाँ, जरूरतमंदों को लूटकर मालदार हो जाना हमारी सोसाइटी का पुराना दस्तूर है। और दीदी मैं भी वही करता हूं जो दूसरे करते हैं, और मेरी जिंदगी का मकसद है ऐश करना। मैं भी ऐश करूंगा दीदी, मैं भी लूटूंगा, समझे ना? ऐश करूंगा और खैरात करूंगा। कहिए तो गिनवा दूं, यहां कितने लोग जुआ खेलकर करोड़पति हो गए, न जाने कैसे कैसे गलत काम करके करोड़पति हो गए लोग दीदी। अब मैं भी तो वही कर रहा हूं, क्या गलत कर रहा हूं? मैं भी ऐश करूंगा, लूटूंगा, मैं भी, अब मैं भी ऐश करूंगा, खैरात भी करूंगा।
4: उमानाथ ने आगे कहा,
7: अरे मिस्टर गुरुसेवक, क्या कर रहे हो? चलो चाय पी लो, ठंडी हो रही है।
4: गुरुसेवक उठा, पैर लड़खड़ाए और जमीन पर गिर पड़ा, फिर संभल कर उठा, झूमता झामता ठोकरे खाता बाहर चला गया। रूप कुमारी ने आजादी की सांस ली, यहां बैठे बैठे उसका दम घुट रहा था। कमरे की हवा जैसे कुछ भारी हो गई थी, जो तरगीबे कई दिन से अच्छे अच्छे दिलावेज रूप भर कर उसके सामने आ रही थी, आज उसे उनकी असली मकरूह घिनावनी सूरत नजर आई। जिस सादगी खुलूस और इसार की फिजा में अब तक जिंदगी गुजर रही थी, उसमें हरामकारी और आबला फरेबी का गुजरना था। इन दामों में वो दुनिया की सारी दौलत और सारे ऐश भी खरीदने को आमादा न हो सकती थी। अब वो रामदुलारी की तकदीर से अपनी तकदीर का बदला न करेगी। वो अपने हाल में खुश है, रामदुलारी पर उसे रहम आया जो नमूद और नुमाइश के लिए अपने जमीर का खून कर रही है। मगर एक ही लम्हा में गुरु सेवक की तरफ से उसका दिल नर्म पड़ गया।
5: जिस सोसाइटी में दौलत पुछती है, जहां इंसान की कीमत उसके बैंक अकाउंट और शानो शौकत से आंकी जाती है, जहां कदम कदम पर तरगीबों का जाल बिछा हुआ है और सोसाइटी का निजाम इतना बेढंगा है कि इंसान की हद, गजब और फिरोमायगी के जज्बात को उकसाता रहता है, वहां गुरु सेवक अगर रौ में बह जाए तो ताज्जुब का मुकाम नहीं।
4: उस वक्त उमानाथ ने आकर कहा,
7: सुनो, यहां बैठा बैठा क्या बक रहा था भाई? मैंने तो उसे रुखसत कर दिया। जी डरता था कहीं उसके पीछे पुलिस ना लगी हो, कहीं मैं नाकर्दा गुनाह में पकड़ा ना जाऊं।
4: रूप कुमारी ने उसकी तरफ माजरत ख्वाहाना नजर से देख कर जवाब दिया।
5: वही अपनी खुफिया फरोशी का जिक्र कर रहा था।
7: मुझे भी मिसेज लोहिया से मिलने की दावत दे गया है, शायद कोई अच्छी जगह मिल जाए।
5: जी नहीं, आप क्लर्की किए जाइए, इसी में आपकी खैरियत है।
7: मगर क्लर्की में ऐश कहां, क्यों ना साल भर की रुख्सत लेकर जरा उधर का भी लुफ्त उठाऊं।
5: लेकिन मुझे अब वो हवस नहीं रही।
7: मगर एक बात तो है।
5: क्या?
7: मैं तुमसे आकर ये किस्सा कहता तो तुम्हें यकीन ना आता।
5: हाँ, यकीन तो ना आता, और मैं तो कयास भी नहीं कर सकती कि अपने फायदे के लिए कोई आदमी दुनिया को जहर खिला सकता है।
7: मुझे सारा किस्सा मालूम हो गया था। मैंने उसे खूब पिला दी, नशे में बहकने लगा और सब कुछ खुद ब खुद कबूल कर लिया।
5: वैसे ललचाई तो तुम्हारी तबीयत भी थी।
7: हाँ, ललचाई तो है, मगर ऐप करने के लिए जिस हुनर की जरूरत है ना, वो कहां से लाऊंगा।
5: ईश्वर ना करे कि वो हुनर तुम में आए। मुझे तो उस बेचारे पर तरस आता है, मालूम नहीं रास्ते में उस पर क्या गुजर है।
7: नहीं, वो तो अपनी कार पर थे।
4: रूप कुमारी एक मिनट तक जमीन की तरफ देखती रही, फिर बोली,
5: सुनो, तुम मुझे दुलारी के घर पहुंचा दो अभी। हाँ, ले चलो, शायद मैं उसकी मदद कर सकूं। जिस बाग की वो सैर कर रही है उसके चारों तरफ दरिंदे घात लगाकर बैठे, शायद मैं उसे बचा सकूं। मुझे दुलारी के घर पहुंचा दो, शायद मैं उसकी मदद कर सकूं।
2: कथा सुधा में आपने सुना मुंशी प्रेमचंद की कहानी दो बहने की तीसरी और अंतिम कड़ी। पात्र परिचय इस प्रकार है: रूप कुमारी रेणु चतुर्वेदी, राम दुलारी ममता सिंह, उमानाथ अजेंद्र जोशी, गुरु सेवक जयंत पात्रिकर, सूत्रधार जी श्याम, प्रस्तुति अनुश्री पाठक, परिकल्पना एवं निर्देशन रेणु चतुर्वेदी। अगले हफ्ते कथा सुधा में एक नई कहानी के साथ हाजिर हो जाएंगे।

0: विविध भारती पर इस समय चल रहा है कार्यक्रम सखी सहेली, और अंतराल के बाद हम फिर से हाजिर हैं। और अब हम बात करेंगे मौसम से जुड़ी, यानी बारिश की कुछ बातें। बारिश के पानी की बचत क्यों जरूरी है,
1: बिल्कुल
0: क्यों करनी चाहिए, और अगर हम बात करें कि संदेश हमारे श्रोताओं के आ रहे हैं, तो आज एक बड़ा अच्छा संदेश मैंने पढ़ा। किसी श्रोता ने लिखा है कि आज विषय बहुत कम है, शायद विषयों की कुछ कमी पड़ गई है, इस तरह से हमारे श्रोता ने लिखा है।
1: अच्छा
0: तो उनकी बात का जवाब सिर्फ मैं इतना देना चाहूंगी कि विषयों की कोई कमी नहीं है, लेकिन सोमवार का दिन है और आज के दिन होता है कथा सुधा, जो कि एक बड़ा विषय है जो समय बहुत ज्यादा लेता है। किसी भी कहानी को सुनने के लिए 15, 17, 18 इतने मिनट का समय लग जाता है, और इस दौरान अगर हम बहुत सारे विषय ले लेंगे तो उस विषय के साथ न्याय नहीं हो पाता, उस पर पूरी चर्चा नहीं हो पाती। फिर हमारे श्रोता जो संदेश भेजते हैं हमें बड़े प्यार से, उन संदेशों को भी हम सबको शामिल नहीं कर पाते, जबकि हमारी कोशिश ये रहती है कि हमारे श्रोता जो हमें संदेश लिखकर भेज रहे हैं उनमें से ज्यादा संदेश उनके हम पढ़कर आप सब तक पहुंचा सकें।
1: बिल्कुल
0: तो इसीलिए कथा सुधा का दिन था तो हमने विषय थोड़े कम चुने।
1: बिल्कुल तुमने सही बात कही है, सबको समझ में भी आ गया होगा कि क्या वजह है ना,
0: जी
1: तुमने रिप्लाई दे दिया। तो चंचल, बारिश का पानी प्रकृति का सबसे शुद्ध और मुफ्त उपहार है। बारिश का पानी जो है, इसमें बहुत सारे पोषक तत्व पाए जाते हैं जो पेड़ पौधों के लिए बड़े फायदेमंद होते हैं। तभी तो इस दौरान सब तरफ हरियाली छा जाती है, मिट्टी की उर्वरक क्षमता बढ़ जाती है, और बारिश के दौरान नदियां, नहर, बांध, कुएं, तालाब, बावड़ियां, झील और सागर, ये सब ऐसे जलाशय हैं जिनमें पानी खूब भर जाता है। वर्ष भर इनमें से पानी उपलब्ध रहता है। वर्षा का जल हमारी प्यास ही नहीं बुझाता, बल्कि संपूर्ण जीवन और पर्यावरण के लिए अमूल्य है।
0: और जैसा आपने शुरुआत में कहा ना कि इसमें बहुत सारे पोषक तत्व पाए जाते हैं, तो हमने देखा है बहुत सारे लोग सिर्फ झरनों का जो पानी है वो बोतलों में भर कर लेकर आते हैं, और इस तरह का पानी आजकल तो बाजारों में बिकने भी लगा है, जो कि नेचुरल पानी होता है, उसमें किसी तरह की कोई मिलावट नहीं होती है, क्योंकि वर्षा के पानी की और हमें पूरे साल भर इस जल को चलाना है,
1: चलाना
0: तो
1: रहता
0: इसीलिए इसकी एक एक बूंद को बचाना बहुत जरूरी है। और इसे इकट्ठा करने के या बचाने के बहुत सारे तरीके हैं, और पीने के पानी के लिए बात करें फिल्टर करने की और शुद्धिकरण की, तो वर्षा के पानी को भी पीने लायक बनाया जा सकता है।
1: बिल्कुल, और घरेलू कार्यों के

0: लिए उपयोग में भी लाते हैं, जैसे कपड़े धोने हुए, बर्तन साफ करना, फर्श की सफाई, और शौचालय में भी उपयोग किया जा सकता है। सिंचाई के लिए जैसे खेतों, बगीचों और किचन गार्डन की सिंचाई में बारिश का जल बहुत उपयोगी होता है।
1: और मंजरी, मुझे याद है बहुत सारे जो बड़े बड़े कपड़े होते थे, दरियां होती थी, जिन्हें हम आमतौर पर धो नहीं पाते हैं, तो छतों पर बारिश के दिनों में उनको रख दिया जाता था और फिर महिलाएं उन्हीं पर थोड़ा सा ब्रश चला के उन्हें साफ करके, तो इस तरह से भी वर्षा के जल का उपयोग करते
0: बिल्कुल, और
1: थे।
0: साथ में वो लोग खुद भी नहा के आनंद भी ले
1: हाँ,
0: लेती थी
1: बारिश
0: वर्षा
1: में
0: का।
1: भीगने का आनंद भी मिल
0: जी,
1: जाता है, और ऐसे कपड़े जिन्हें हाथ से धोना जल्दी से संभव नहीं हो
0: लेकिन
1: पाता है।
0: आज भी चंचल हम लोग यही करते हैं कि जब कभी बारिश होने लगती है ना, तो डोरमेट सारे बाहर डाल देते हैं कि जल्दी से पानी से वो धार से पड़ पड़ के उनकी धूल
1: जी
0: निकल जाए, तो इसका एक फायदा मिल जाता है। और चंचल, पशु पक्षियों के लिए वर्षा जल उनके पीने के पानी की जो है वो उसकी मात्रा मिल जाती है उन्हें, और साफ सफाई के काम भी आता है। उद्योगों में शुद्ध किए गए वर्षा जल का उपयोग विभिन्न प्रक्रियाओं में करते हैं। पर्यावरण संरक्षण के लिए वर्षा जल हरियाली बढ़ाता है, मिट्टी की नमी बनाए रखता है और जैव विविधता को सहारा देता है।
1: बहुत सारी जगह ऐसी होती है ना, खासतौर पे हम जंगलों की बात करें, जहां पानी डालने पौधों में कोई भी नहीं जाता, तो ये जो बारिश का पानी है, ये साल भर तक मिट्टी में जो नमी बन जाती है उससे, उसी से वो जो पेड़ पौधे हैं वो साल भर तक हरे हरे रहते
0: बिल्कुल,
1: हैं।
0: हमने अपने सामने भी देखा है कि
1: जी
0: मुरझाया सूखा पौधा भी हरा हरा हो गया, पत्तियां निकल आई, तो देखकर बहुत अच्छा लगता है कि लगता
1: जी
0: है बारिश इन लोग के लिए एक मुफ्त उपहार है। और आग बुझाने और आपातकालीन उपयोग, संग्रहित वर्षा का जल जो है उपयोग आता है इन आपात स्थितियों में किया जा सकता है। घर के आंगन या बगीचे में अधिक से अधिक पेड़ पौधे लगाएं जिससे पानी जमीन में समा सके। सीमेंट की जगह जहां संभव हो मिट्टी या इंटरलॉकिंग पक्की सतह रखें ताकि वर्षा का पानी जमीन में जा सके।
1: और बहुत सारे तरीके हैं मंजरी कि हम बारिश के पानी को बचा सकते हैं, रेन वाटर हार्वेस्टिंग जिसे हम कहते हैं अंग्रेजी में, और बहुत सारे जो बड़े सोसाइटी हैं, महानगरों में जो बड़ी बिल्डिंग है वहां पर रेन हार्वेस्टिंग प्लांट लगाए जाते हैं। स्कूल, कार्यालय, किसी भी बिल्डिंग की छत पर गिरने वाला जो पानी है उसको इकट्ठा करके जमीन के अंदर तक पहुंचा दिया, तो बहुत बड़े बड़े टैंक बनाए जाते हैं और ये पानी इतनी ज्यादा मात्रा में इकट्ठा हो जाता है कि उस सोसाइटी में, उस बिल्डिंग में साल भर भी आपूर्ति दे देता है।
0: बिल्कुल, और इसमें छत पर गिरते पानी को पाइप के माध्यम से नीचे लाया जाता है और फर्स्ट फ्लश सिस्टम से गंदे पानी को अलग निकाल दिया जाता है, जिससे धूल, मिट्टी और पत्तियां टैंक में ना जाएं। फिल्टर यूनिट के द्वारा बजरी और चारकोल डालकर पानी साफ किया जाता है और भंडारण टैंक में साफ पानी जमा कर लिया जाता है।
1: और इसका दूसरा तरीका एक ये भी है कि रिचार्ज पिट, इसमें पानी को जमीन में उतारना होता है और इसमें घर या किसी भी भवन जो है, इमारत जो है, उसके पास 3 से 6 फीट का गड्ढा बनाया जाता है, उसमें ईंट, गिट्टी और फिर रेत भरी जाती है। पानी को पाइप से इसमें गिराया जाता है और इस तरह से भूजल स्तर जो है वो बढ़ जाता है।
0: और इसके साथ साथ एक सोक पिट यानी सोखता गड्ढा भी तैयार करना एक साधन है कि रिचार्ज कुओं, हैंडपंपों या बोरवेल के माध्यम से भूजल स्तर बढ़ाना, खेतों में तालाब बनाकर पानी संचित करना भी एक जरिया है, और गांव में चेक डैम और छोटे बांध बनाना तालाब, झील और पोखरों का संरक्षण एवं गहरीकरण करना होता है।
1: तो इस बारे में और बात करेंगे, लेकिन मुझे लगता है हम गीत भी सुनते हुए चले आगे बढ़े।

0: गीत बड़ा सुंदर सुनवाया, लेकिन हम बात कर रहे थे ना बारिश की, बारिश आ चुकी है और कमेंट्स भी आ चुके हैं। हमारे श्रोता ने लिखा है कि जब हम कॉलेज में थे तब हमारी केमिस्ट्री टीचर वर्षा होने पर लैब में रखी हुई कांच की बड़ी बोतलें और बड़े प्लास्टिक के ड्रम हमसे रखवाती थी ताकि गिरते हुए पानी को इकट्ठा किया जा सके। बाद में हम इस एकत्रित पानी का उपयोग प्रयोगशाला में किया करते थे, क्योंकि ये जल प्राकृतिक रूप से वाष्पीकरण और संघनन द्वारा डिसिल्ट होकर बरसता है, इसीलिए जमीन पर गिरने से पहले की पूरी तरह स्वच्छ और मृदु यानी कि सॉफ्ट होता है।
1: और हमारे एक साथी लिखते हैं, चंचल, बारिश के पानी को बचाने का महत्व, ये गर्मी में पानी की कमी से राहत देता है और इससे जो भूमिगत जल है उसका स्तर सुधरता है, कण में जो जल और उसका स्थल सुधरता है, इसको आप निम्नलिखित तरीकों से बचा सकते हैं। जो आपकी छत में पानी गिर रहा है बारिश का, वहां पर पाइप लगा दे, वो पानी पाइप में जमा हो जाएगा और इसको आप संचय कर सकते हैं और अपने रोजमर्रा के कामों के लिए उसे इस्तेमाल में ले सकते हैं। आंगनों में भी आपके जो बरसात का पानी गिरता है उसको भी आप आंगन से संरक्षण कर सकते हैं, यानी बाल्टी ड्रम वगैरह रख के आप कर सकते हैं। और इसी
0: एक अन्य संदेश है कि कल बचाना है तो जल बचाना है, बारिश एक वरदान की तरह है, बस हमें इसके पानी का प्रबंधन कैसे करना है इस बात को सीखना होगा। प्रकृति किसी से कुछ लेती नहीं, बस देती है, उसी ने हमें जीवन दिया और जिंदा रहने के साधन भी दिए, जैसे सांस लेने के लिए ऑक्सीजन और जिंदा रहने के लिए जरूरी मीठा पानी, यानी ये वो पानी है जो हमें जिंदा रखता है। बाकी खारा पानी तो अथाह भरा पड़ा, यानी कि समंदर की बात कर रहे हैं कि भू जल स्तर पर, यानी कि पृथ्वी पर कितना पानी है, लेकिन इसे पीने लायक बनाना बहुत ही सीमित है। शायद इसीलिए बारिश आती है और पानी के भंडारण के लिए सूरज की गर्मी खींच ले जाती है, वहीं पानी प्रकृति पानी के रूप में प्रकृति से वापस लौटा देती है।
1: क्या बात है।
0: और कटे हुए टीडीएस की तरह उस पानी को हमें सहेज कर उसका उपाय करना चाहिए।
1: जी, बहुत अच्छी से बात लिखी है। और एक इसी तरह चंचल हमारे साथी और लिखते हैं कि बारिश के पानी की बचत ही असल में अपने कल की सुरक्षा है, क्योंकि धरती पर जितना पानी है वो सीमित है और हर बूंद अनमोल है। प्रकृति हमें मुफ्त में बारिश का उपहार देती है, अगर हम इसे छतों पर और सड़कों से बहाकर नालियों में बहा देंगे तो सूखे को खुद बुलावा देके रेन वाटर हार्वेस्टिंग, सोखता गड्ढे और पेड़ लगाकर हम उस पानी को धरती में उतार सकते हैं, जिससे भूजल बढ़ेगा, बाढ़ रुकेगी और आने वाली पीढ़ियों की प्यास भी मिटेगी। याद रखो, बूंद बूंद से ही सागर बनता है और बूंद बूंद बचाने से ही जीवन बचता है। मैंने अपने घर के बगीचे में एक गड्ढा बना रखा है जिसमें बारिश से छत के पानी का अधिकांश भाग उसी में समा जाता है। बहुत अच्छी सी जानकारी हमारे सभी श्रोताओं ने दी है।
0: यानी कि ये तो हुई पानी की बचत की बात, लेकिन वो जो पानी गड्ढों में भरा रह जाता है, जो मच्छर पैदा करता है, वो पानी आपको भरने नहीं देना है। ये जो पानी हम संचय की बात कर रहे हैं, ये वो पानी का भराव है जो हमें आगे तक काम देगा। रेन वाटर हार्वेस्टिंग

0: अलग चीज है, और गड्ढों में पानी जमा हो जाना, उस पानी का ना सूखना, जो बीमारियां जिससे बनपती हैं, वो एक अलग चीज है। तो दोनों ही बातों को ध्यान रखना है।
1: बिल्कुल। और हमारे एक साथी लिखते हैं कि कथा सुधा और पंजाब के व्यंजन सुनने की उत्सुकता है। बारिश का पानी बचाने के लिए हमारी सोसाइटी में छत पर जमा हुआ पानी पाइप डालकर आसपास के जमीन में छोड़ दिया है। भूजल वृद्धि से सोसाइटी के बोरवेल अच्छे से भरी रहती है, सोसाइटी की बगिया खिली रहती है। बारिश के पानी की बचत कैसे करें, इस विषय पर हम सोसाइटी के बच्चों का वर्कशॉप लेते हैं, कथा कविता और प्रतियोगिता के माध्यम से उन्हें भी अच्छा से सतर्क करवाते हैं, यानी उनको भी जानकारी दिलवाते हैं। बहुत अच्छी सी बात आपने लिखी है।
0: और सही बात है कि हमारी आने वाली पीढ़ी को भी हमें ये बात सिखानी है, क्योंकि हम तो आज हैं नहीं रहेंगे, लेकिन आने वाली जो पीढ़ी है उनके लिए पानी का स्तर कम ना हो, और एक एक बूंद मतलब जो बोतल है वो खरीद कर हमें लेनी पड़ेगी, और तब हमें कीमत समझ में आएगी, तो उस नौबत तक हम पहुंचे ही ना, अगर हम ही हमें आज ही से ही इस पानी का अगर संचय करना शुरू करेंगे।
1: बिल्कुल। और एक साथी लिखते हैं, बारिश के पानी की बचत करना चाहिए। पहले देखती थी कि बारिश का हुआ तो घर के आंगन में एक दो खाली बर्तन बाल्टियां और बड़े बड़े बर्तन रख दिया करते थे, और उसमें बारिश का पानी जो इकट्ठा करते थे वो कपड़े धोने के काम आता था। दादी उसे साफ बोतल में भर के रख देती थी और उससे अपनी आंखें धोती थी। तो भाई ये जानकारी तो आपने उनके अनुभव से लिखी है, तो इसको हम ये नहीं कह सकते कि भाई आप इस पर अपना है, मेरा सुन के ना अपना, जो उन्होंने लिखा है वो अपनी यादें लिखी हैं,
0: और जल संचय
1: है?
0: अभियान लिखते हुए हमारे एक साथी ने लिखा है कि 1986 और 87 की ये बात कर रहे हैं, गुजरात के सौराष्ट्र विस्तार में बारिश बहुत ही कम बरसी थी, तब अकाल जैसी परिस्थिति हो गई थी वहां पर, और ग्रामीण क्षेत्रों में किसानों को खेतों में पानी संचय करने का अभियान चलाया गया, जिसे ढलान वाली जगह पर खेतों में के गोल किनारे या चौरस खुदाई करके कुंडी बनाकर बरसात के पानी का भरना, बाद में जब पानी जब मिट्टी नीचे बैठ जाती है तो ऊपर सीमेंट के पाइप द्वारा कुएं उनमें पाइप डाले जाते हैं कुएं की तरह, और इस तरह से उस पानी को काम में लिया जाता है। उसके बारे में उन्होंने पूरी जानकारी लेकर भेजी है। चलिए अब गीत सुन लें।

0: 21 जुलाई गीतकार आनंद बख्शी की याद का दिन।
1: ओ तेरे प्यार का।
0: 22 जुलाई पार्श्व गायक मुकेश का जन्मदिन।
2: मुबारक हो सबको समाये सोहा।
0: विविध भारती लेकर आ रहा है दो खास कार्यक्रम।
3: धीरे धीरे बोल कोई सुनना।
0: गीतकार आनंद बख्शी के बेटे राकेश आनंद बख्शी याद करेंगे अपने पिता को 21 जुलाई शाम 4 बजे।
4: उन्होंने क्या किया कि एक नौकरी पकड़ ली टाइम पास, एक सिनेमा हॉल था वहाँ पे पास में, पैसे नहीं चाहिए थे, फिल्म देखने को मिलता था फ्री में, वो छड़ी से जो उनको मार पड़ी है उसके बाद जबरदस्त मार पड़ी।
0: 22 जुलाई को स्टूडियो में होंगे दो गायक मुख्तार शाह और गोविंद मिश्र, जो गाएंगे मुकेश के ढेर सारे गाने।

0: है
1: और बताएंगे क्या जगह है मुकेश की उनके जीवन में।
2: वो उनकी तो एक दिल में छवि ऐसी है कि जिसको बोलते ना कि पूजा जाता है।
3: वो अगर होते तो शायद मैं पैर पकड़ के बैठा ही रहता।
1: याद रखिए 21 और 22 जुलाई शाम 4 बजे सिर्फ विविध भारती पर।
4: सुनो जी सुनो, हमारी भी सुनो।
5: तो चंचल अब हम लोग बातें करेंगे खाने पीने की, व्यंजन की बात
6: व्यंजन
5: करेंगे
6: की। तो पिन्नी जो है ना, पंजाब का जो व्यंजन है, ये पारंपरिक रूप से उड़द दाल की बनाई जाती है। वैसे लोग इसे आटा, मैदा, किसी अन्य आटे से भी बनाते हैं, लेकिन उड़द दाल की पिन्नी किस तरह बनाई जाती है, इसकी बड़ी एक अच्छी सी रेसिपी हमें मिली है, हमारे श्रोता की तरफ से ही मिली है। तो हम बता दें, इसके लिए हमें सामग्री चाहिए: धुली उड़द की दाल 500 ग्राम, देसी घी 250 ग्राम, बूरा या फिर पिसी हुई चीनी आप ले सकते हैं 300 ग्राम, और इलायची पाउडर एक छोटा चम्मच, और अगर आपको स्वाद ज्यादा चाहिए तो आप 2 चम्मच भी ले लीजिए। काजू, बादाम करीब करीब 50-50 ग्राम लेने हैं बारीक कटे हुए। और इसे बनाने का जो तरीका है, कमेंट्स में जिस तरह से बताया गया है कि उड़द की दाल को 4 से 5 घंटे के लिए पानी में भिगो दें। इसके बाद पानी को छानकर दाल को मिक्सर में थोड़ा सा दरदरा सा पीस लीजिए। फिर एक भारी तले की कढ़ाई में घी गर्म करके इस पिसी हुई दाल को डालें और धीमी आंच पर तब तक इसे भूनना है जब तक कि इसका रंग सुनहरा ना हो जाए, अच्छी खुशबू ना आने लगे। अब इसमें कटे हुए सूखे मेवे, इलायची का पाउडर डालकर फिर से 2 मिनट भूनना है और इसकी आंच को बंद कर देना है। मिश्रण जब थोड़ा ठंडा हो जाएगा तब इसमें गुड़ या फिर पिसा हुआ चीनी, बूरा, जो भी है वो अच्छी तरह से मिला दें, और जब तक ये हल्का गुनगुना है तभी तक हाथों में थोड़ा घी लगाकर गोल गोल या अंडाकार किसी भी तरह की शेप में इस पिन्नी को आकार दे दीजिए और बस एयर टाइट डब्बे में पैक करके रख दीजिए और आनंद लीजिए।
5: बिल्कुल। और देखो, एक उड़द दाल और राजमा की जो रेसिपी बताई गई दाल मखनी की, तो उड़द और राजमा को अच्छे से धोकर पानी में भिगोइए। रात भर भिगे हुए दाल में राजमा को छान लीजिए और 2 कप पानी और नमक डालकर प्रेशर कुकर में 7 सीटी बजने तक इसको पकाइए। खोलने से पहले भाप को पूरी तरह निकाल दीजिए। दाल को मखनी से अच्छी तरह से फेंट कर रख दीजिए। तड़के के लिए गहरे पैन में मक्खन को गर्म करके उसमें जीरा डालिए। जीरा उसके साथ साथ उसमें हरी

0: मिर्च, दालचीनी, लौंग, इलायची, प्याज डालिए और भूनिए, और उसमें अदरक लहसुन का पेस्ट, लाल मिर्च पाउडर, हल्दी, टमाटर पल्प डालिए और मध्यम आंच पर तेल छोड़ने तक पकाइए। और इसमें दाल, नमक और जरूरत के अनुसार 2-3 टेबल स्पून पानी डालिए और 10-15 मिनट तक उबालने दीजिए। इसमें फ्रेश क्रीम डालकर अच्छे से मिलाइए और धीमी आंच पर 2 से 3 मिनट तक पकाइए और धनिया और फ्रेश क्रीम से सजाकर गरम गरम आप सर्व कीजिए।
1: और इन रेसिपी के बाद अब आनंद लेते हैं गीत का।

0: तो देखो चंचल, देखते ही देखते समय कितनी तेजी से चला गया और अब हमको भी चलने की तैयारी करनी चाहिए। तो
1: बिल्कुल,
0: सभी से लेते हैं विदा, सभी को मंजरी वर्मा
1: और चंचल वर्मा का
0: नमस्कार।
1: नमस्कार।
0: सखी सहेली कार्यक्रम की प्रस्तुतकर्ता अनुश्री पाठक।
2: सखी सहेली।

0: दोस्तों नमस्कार, मैं हूं आपकी रेडियो सखी ममता सिंह और आज विविध भारती के स्टूडियो में हमने आमंत्रित किया है वो डॉक्टर हैं डॉक्टर उमेश ओझा जो यूरोलॉजिस्ट हैं बॉम्बे हॉस्पिटल और हिंदुजा हॉस्पिटल मुंबई में। और डॉक्टर साहब को हमने आमंत्रित किया है आज प्रोस्टेट विषय पर बात करने के लिए और यूरिन से जुड़ी हुई और जो अन्य बीमारियां होती हैं उन पर भी हम चर्चा करेंगे। डॉक्टर उमेश ओझा विविध भारती के स्टूडियो में आपका बहुत बहुत स्वागत है, नमस्कार।
1: थैंक यू वेरी मच, नमस्कार।
0: तो ये सर्जिकल प्रोसीजर से जो होता है तो कितने समय तक वो चलता है, क्या फिर वापस वही परेशानी तो नहीं होती?
1: ज्यादा करके इसके रिजल्ट्स 10 साल 5 साल अगले लंबे समय तक भी अच्छा मिल सकता है, लेकिन
0: जी।
1: साथ में ये चीजें हमें ख्याल में करनी है कि वेट कम करना,
0: जी
1: रेगुलर एक्सरसाइजेस करना,
0: जी जी
1: ऑपरेशन ट्रीटमेंट का एक भाग है, साथ में ये सब लाइफस्टाइल चेंजेस इक्वली इंपॉर्टेंट हो जाती है।
0: बिल्कुल,
1: क्योंकि अगर मसल्स ही वीक होने लगे वापस तो ऑपरेशन के बावजूद भी वापस तकलीफ हो सकती है।
0: जी
1: सो लाइफस्टाइल चेंजेस प्लस ऑपरेशन, ये दोनों के साथ में रिजल्ट्स अच्छे मिल सकते हैं।
0: जी, तो पहले से क्या सजगता बरतनी चाहिए, किस तरह से सावधानी रखें कि ये स्थिति ना आए लीकेज वाली?
1: सो पहले तो मैंने बताया ऐसे हमें ब्लैडर स्ट्रांग रखना जरूरी है, इसलिए समय समय से यूरिन कर लेना महत्व की बात है। सेकेंडली, सम पेल्विक फ्लोर एक्सरसाइजेस कहते हैं, वो रेगुलर करना जरूरी है
0: जी,
1: ताकि पेल्विक फ्लोर स्ट्रांग रहने से अगेन ये लीकेज का प्रॉब्लम कम हो सकता है। तीसरा है, प्रेगनेंसी के समय आजकल तो काफी एंटीनेटल और पोस्टनेटल एक्सरसाइजेस बताई जा रही है, वो रेगुलर करना जरूरी है। अगर इस प्रकार से हम ख्याल रखेंगे तो शायद ये इनकॉन्टिनेंस का प्रॉब्लम काफी कम हो सकता है।
0: जी, तो किन आयु वर्ग के लोगों को ये समस्या ज्यादा होती है? आजकल सुना है कि कम उम्र के युवाओं में भी।
1: यंग लोगों में जो होती है प्रॉब्लम, वो ज्यादा करके अर्ज इनकॉन्टिनेंस है,
0: जी,
1: जो कभी कभी स्ट्रेस के कारण, कभी कभी कैफिन वगैरह ज्यादा पदार्थ लेने के कारण, ये सब चीजों से वो कंट्रोल नहीं कर सकते, जो काफी हद तक दवाएं से कंट्रोल में आ सकता है, जिसे हम अर्ज इनकॉन्टिनेंस कहते हैं। एल्डरली पेशेंट्स में या प्रेगनेंसी के बाद में अगर वो पेल्विक फ्लोर मसल्स का ख्याल नहीं किया तो उनको जिसे हम स्ट्रेस इनकॉन्टिनेंस कहते हैं वो तकलीफ होती है। कुछ न्यूरोलॉजिकल डिजीजेस के कारण अगर वहां के नर्व्स काम नहीं कर रही है तो उन्हें परमानेंट या तो कंटिन्यूस इनकॉन्टिनेंस होता है, जो हर समय उठ के खड़े होते यूरिन लीक हो जाती है। सो कभी कभी जिसे नर्व्स के कारण जो ये पूरी सिस्टम कंट्रोल करता है वो कंट्रोल चले जाने से भी ये प्रॉब्लम हो सकती है। बट वहां ज्यादा करके कुछ न्यूरोलॉजिकल प्रॉब्लम रहते हैं जिसको एड्रेस करना भी इक्वली महत्व का है।
0: जी, और जिनको ये समस्या होती है तो लोग कहते हैं कि या तो पैड का इस्तेमाल करें, चाहे वो पुरुष हो चाहे महिला हो, या फिर कुछ थैली का इस्तेमाल, उसके बारे में बताइए वो क्या है तरीका?
1: सो यस, डायपर्स या पैड यूज करना कभी कभी जरूरी हो जाता है, लेकिन एक मैं बताता हूं, कभी कभी जो दिन में लोगों को स्ट्रेस रहता है और फिर उनको एक डर रहता है कि मुझे यूरिन हो जाएगी, सो वो जहां भी बाहर जाते पहले बाथरूम ढूंढते हैं।
0: जी,
1: ये जरूरी नहीं है, क्योंकि ये अभी स्ट्रेस लेवल बढ़ गया है। ऐसे लोगों को कभी कभी पैड यूज करने में या टेम्परेरी डायपर यूज करने में काफी फायदा होता है, क्योंकि वो टेंशन चला जाता है और उसके कारण अगर वो देखेंगे तो कभी वो पैड गिला भी नहीं होता है।
0: जी,
1: लेकिन
0: जी,
1: वो एक अश्योरेंस हो जाता है। मैंने काफी लेडीज देखी है जो काम कम कर देते हैं, काम बंद कर देते हैं, घर पे बैठे रहते हैं। ये जरूरी नहीं है आज के जमाने में, काफी ट्रीटमेंट मिलती है और ये ट्रीटमेंट लेके सेल्फ कॉन्फिडेंस बढ़ा के अपनी डे टू डे लाइफ कंटिन्यूस रखना बहुत जरूरी है। ये सब चीजों से क्वालिटी ऑफ लाइफ

0: सफर नहीं होनी चाहिए।
1: जी
0: सो ये मन में से डर निकालना बहुत जरूरी है, और उसके लिए प्रॉपर मेडिकल एडवाइस लेने से आजकल काफी लोगों को फायदा होता है।
1: जी
0: लेकिन इस डर से, ये प्रॉब्लम दूसरों को न बताने से प्रॉब्लम सॉल्व होने वाला नहीं है।
1: जी जी
0: सो ये महत्व का है कि आप मेडिकल एडवाइस लीजिए, उनका सॉल्यूशन मिल जाता है और उससे काफी लाइफस्टाइल चेंज हो सकती है। क्योंकि मैंने काफी लोगों को ये उनसे सुना है कि हम तो बस अब घर में ही बैठे रहते हैं, ये डर बना रहता है। ये जरूरी नहीं है।
1: बिल्कुल
0: ट्रीटमेंट लेके अपना काम, अपनी डे टू डे एक्टिविटी, बाहर जाना जरूर चालू रखना चाहिए।
1: जी
0: क्योंकि नहीं तो एक प्रॉब्लम से दूसरी प्रॉब्लम, साइकोलॉजिकल प्रॉब्लम
1: जी
0: शुरू होने का डर रहता है।
1: जी
0: तो ये इसके बारे में ये बहुत महत्व का समझना जरूरी है कि टॉक टू पीपल, टॉक टू डॉक्टर्स, और
1: बिल्कुल
0: सही समय में ट्रीटमेंट शुरू कर दीजिए।
1: जी। बुजुर्गों को हमने सुना है, कई बुजुर्ग ऐसे हैं जो यूरिन की समस्या के कारण कहीं बाहर नहीं जाना चाहते। वो कहते हैं कि हम जाएंगे, हमें वहां फिर बाथरूम की समस्या होगी। तो आपकी बातों से काफी इंस्पायर होंगे कि आप उसका एक तरीका है, उसकी व्यवस्था है, वो करके आ जाइए। तो
0: एब्सोल्युटली, कुछ लोग जैसे रहते हैं जिनको पेशाब की थैली काम नहीं करती है,
1: जी हाँ
0: उन लोगों को कभी कभी नली और बैग लगाना जरूरी
1: जी
0: पड़ता है।
1: जी जी
0: और जब तक वो प्रॉब्लम की ट्रीटमेंट न हो, वो नली लगानी पड़ती है। आजकल उसके लिए भी हम एडवाइस करते हैं जिसे हम इंटरमिटेंट कैथेटराइजेशन बोलते हैं,
1: अच्छा
0: ताकि पेशेंट खुद छोटी नली से दिन में 3 या 4 बार यूरिनरी ब्लैडर खाली कर सकता है,
1: जी
0: और उनको कंटिन्यूअस बैग लगाने की आवश्यकता नहीं रहती है,
1: जी जी
0: और अपनी डेली लाइफ और काम पे वो जा सकते हैं।
1: जी
0: सो कभी कभी लोगों को एक माइंड ब्लॉक जैसा रहता है कि ये कैसे होगा, लेकिन काफी लोग कर रहे हैं।
1: जी
0: सो इन शॉर्ट, ये सब प्रॉब्लम की समस्या रही, एक्सपर्ट से बात कीजिए, अपना माइंड ओपन रखना बहुत जरूरी है।
1: जी
0: मान लेना कि नहीं, अभी इसकी कोई सोल्यूशन ही नहीं है, मुझे
1: जी
0: सफर ही होना है, ये गलत बात है।
1: बिल्कुल
0: क्योंकि मेडिकल एडवाइस और आप अगर ट्रीटमेंट के लिए तैयार रहे तो काफी ऑप्शंस हैं जिससे क्वालिटी ऑफ लाइफ जरूर इंप्रूव हो सकती है।
1: जी बिल्कुल। और डॉक्टर साहब, अभी बहुत सारी बातें चल रही थी, हमने कुछ ऐसे लोगों को देखा है कि जो तुरंत यूरिन पास करके आते हैं वॉशरूम से, और तुरंत 5 मिनट के अंदर वापस जाते हैं, और वो जांच कराते हैं तो सब कुछ नॉर्मल आता है। तो ये क्या वजह हो सकती है, और इसका किस तरह से इलाज हो सकता है?
0: सो ये दो चीज होती है। अगर पूरी यूरिन एक समय में निकलती नहीं है तो वो बार बार जाने की इच्छा रहती है, जो कभी कभी यूरिनरी पैसेज में ऑब्स्ट्रक्शन या यूरिनरी ब्लैडर वीक होने से हो सकता है। दूसरा है जिनकी ब्लैडर सेंसिटिव होती है,
1: जी
0: जिसके कारण थोड़े बूंद रहने से भी वो सेंसेशंस बने रहते हैं, और उसके कारण बार बार जाने की इच्छा रहती है। जाके बाथरूम में काफी समय तक बैठते हैं, लेकिन ज्यादा यूरिन होती नहीं है। सो ये कभी कभी सेंसिटिव ब्लैडर के कारण हो सकता है।
1: जी
0: जो पहले जांच करके हम देखते हैं कि अंदर कोई रोग नहीं है, अगर वैसे नहीं रहा तो दवाइयों से वो सेंसेशन कैसे कंट्रोल में करना, वो हम कोशिश करते हैं।
1: जी
0: और तीसरी बात कि पेशेंट को भी कभी कभी अपने आप वो थोड़ा कॉन्फिडेंस लाने की आवश्यकता रहती है,
1: जी
0: कि एक बार करके आए तो सेंसेशन बाईपास करना सीखना पड़ता है, कि थोड़े सेंसेशंस रहे हम उसको बाईपास कर देंगे। एक बार वो पेशेंट अगर बिजी हो गया तो सेंसेशन काफी समय तक वापस
1: नहीं
0: चला जाता
1: आता
0: और बार बार जाने की जरूरत नहीं पड़ती है।
1: जी बिल्कुल
0: लेकिन ये सब चीजें एक बार टेस्ट कराने के बाद करनी चाहिए, ताकि ये क्लियर हो जाए कि अंदर कोई रोग नहीं है।
1: जी
0: और फिर ये काफी चीजों से लोग अपने आप अपने को सेल्फ ट्रेन कर सकते हैं कि छोटे छोटे ऐसे सेंसेशंस हुए, उसको बायपास करके हम अपने काम में लग जाएं।
1: जी
0: क्योंकि नहीं तो वो सेंसेशन इतना इरिटेबल हो जाता है कि बार बार फिर उनको इच्छा रहती है कि मैं जाके यूरिन करके आऊं।
1: जी और सारा फोकस, सारा ध्यान उसी पर रहता है कि
0: एब्सोल्युटली।
1: कुछ भी शुरू करने से पहले पहले यूरिन के
0: और
1: लिए
0: फिर वो
1: चले
0: डर सा
1: जाते
0: रहता है कि अगर
1: हैं।
0: कपड़े में कुछ बूंदे
1: जी
0: हो
1: लग गई
0: गई
1: तो
0: और कुछ स्मेल आने लगी तो एक एम्बरेसमेंट जैसा होने लगता है। इसलिए दे बिकम वेरी कॉन्शियस। सो ये चीजें थोड़ी, आई थिंक, सेल्फ कॉन्शियस रहना जरूरी है कि हर सिम्टम के पीछे भागना नहीं है, थोड़ा थोड़ा मानसिक बायपास करना भी सीखना जरूरी है।
1: बिल्कुल। डॉक्टर साहब, अभी आपने स्मेल की बात की, तो यहाँ पर एक बात जहन में आई है कि

0: अमूमन लोग ये कहते पाए जाते हैं कि हमारी यूरिन में दुर्गंध है, तो ये क्या लक्षण हो सकता है? स्मेल आ रही है अलग तरह से और कलर चेंज होता है कई
1: दैट्स
0: बार।
1: राइट। सो एक बात कि शायद यूरिन बहुत कॉन्सेंट्रेटेड है,
0: जी
1: क्योंकि काफी लोग पानी कम कर देते हैं ये डर से कि मुझे बार बार यूरिन के लिए जाना पड़ेगा। अल्टीमेटली यूरिन शरीर का कचरा है, उसमें सब केमिकल्स वगैरह रहते हैं जिसकी स्मेल आती है। सो ज्यादा पानी पीने से यूरिन काफी डाइल्यूट हो जाती है और स्मेल कम हो जाती है।
0: जी
1: दूसरी बात, कुछ दवाओं ऐसी रहती है जिसकी स्मेल यूरिन में आ सकती है। तीसरी बात, कुछ डाइट जिसके कारण भी यूरिन में स्मेल आ सकती है। सो द मोस्ट इंपॉर्टेंट थिंग इज कि ज्यादा पानी पीने से वो डाइल्यूट होने से स्मेल काफी कम हो जाती है।
0: जी
1: दूसरी बात है, जिनको कुछ ड्रॉप्स कपड़े में रह जाते हैं, देन वो स्मेल कंटिन्यूअसली उनको ऐसे लगता है कि यूरिन की स्मेल आती है। सो वहां कभी कभी एब्जॉर्बेंट पैड वगैरह पहनने से ये प्रॉब्लम कम होती है कि कपड़े में यूरिन जमा न होने से वो भी स्मेल कम हो सकती है।
0: जी बिल्कुल। डॉक्टर साहब यहां पर एक गाना सुनवाए अपने श्रोताओं को, कौन सा गाना?
1: जरूर, आई थिंक श्रेया घोषाल इज अनदर एक्सलेंट सिंगर,
0: जी
1: और
0: जी
1: उनका एक अच्छा गाना है मोहे रंग दो लाल,
0: क्या बात है
1: बाजीराव मस्तानी से।
0: जी, बाजीराव मस्तानी फिल्म का बड़ा ही बेहतरीन गाना चुना है।

Capcom, it's a leader. Capcom.

0: बाजीराव मस्तानी फिल्म का ये गाना हम सुन रहे थे। और अब ये बताइए डॉक्टर साहब कि किडनी स्टोन और यूरिन की समस्याओं का आपस में क्या तालमेल है और किस तरह की बीमारी ये मिलके रचते हैं?
1: सो यूरिनरी स्टोन्स वो भी एक काफी बड़ी समस्या बन रही है,
0: जी
1: और कुछ कुछ इलाके में जहां ज्यादा गर्मी है वहां स्टोन डिजीज काफी लोगों को तकलीफ दे रहा है। स्टोन के दो प्रॉब्लम हो सकते हैं, कभी कभी कोई सिम्टम्स नहीं रहते हैं, स्टोन बढ़ते जाता है
0: जी जी
1: और किडनी पूरी डैमेज हो जाती है तब तक पता नहीं चलता है, और कुछ स्टोन्स छोटे स्टोन्स रहते हैं, जब वो स्टोन नीचे निकलने की कोशिश करती है इतना दर्द देता है कि पता चलता है कि स्टोन है। अब स्टोन बनने के अलग अलग कारण है, सबसे बड़ा कारण है पानी कम पीना,
0: जी
1: क्योंकि कॉन्सेंट्रेटेड यूरिन से जो क्षार जो बनते हैं वो किडनी में एक बार जमा होने लगे तो वो फोकस बन के स्टोन्स बढ़ने लगते हैं।
0: जी जी
1: सो सबसे बड़ी दवाइयां पानी है। दूसरी बात, कुछ लोगों को कैल्शियम और यूरिक एसिड, उनकी मेटाबॉलिज्म
0: जी
1: एबनॉर्मल शरीर में होने से भी ये स्टोन्स बन सकते हैं। तीसरी बात, अगर यूरिन कॉन्स्टेंटली जमा होती है किडनी में या यूरिनरी ब्लैडर में, उसके कारण भी स्टोन बन सकते हैं। सो ये अलग अलग कारणों से स्टोन बनते हैं। सो हमारे देश में रेगुलर हेल्थ चेकअप जैसा कोई लोग मानते नहीं है कि रेगुलर हेल्थ चेकअप जरूरी है।
0: जी
1: कुछ लोग मानते हैं कि हम हेल्थ चेकअप कराएंगे, उसमें कुछ निकलेगा हमको डॉक्टर के पास
0: अरे
1: भागना पड़ेगा
0: इसलिए मत
1: और
0: चेकअप
1: उसे चेकअप मत
0: कराओ।
1: करवाओ,
0: जी जी
1: लेकिन चेकअप करना जरूरी है ताकि कभी कभी कुछ प्रॉब्लम अर्ली स्टेज में डिटेक्ट हुए तो उसकी ट्रीटमेंट कर सकते हैं। सो दैट इज द फर्स्ट थिंग। दूसरी बात, आजकल स्टोन के लिए काफी टेक्नोलॉजिकल एडवांसेस हुए हैं और ट्रीटमेंट आसान हुई है।
0: जी
1: कभी कभी छोटे स्टोन्स के लिए कुछ दवाइयां देते हैं, उससे निकल सकता है, लेकिन महत्व का ये हमें कॉन्स्टेंटली चेकअप रखना कि स्टोन के कारण किडनी पे प्रेशर आके किडनी डैमेज नहीं हो रही है, क्योंकि कभी कभी पेन नहीं होता है लेकिन किडनी पे प्रेशर आने से धीरे धीरे किडनी डैमेज हो जाती है और फिर हम कुछ कर नहीं सकते हैं।
0: जी
1: सो ये भी गलत बात है कि अगर दर्द नहीं है तो स्टोन के लिए कुछ करने की आवश्यकता नहीं है। तपास करने के बाद हम डिसाइड करते हैं कि स्टोन की पोजीशन क्या है, उसके कारण किडनी में कुछ डैमेज हो रहा है कि नहीं, और पेशेंट को कितनी तकलीफ हो रही है, उस हिसाब से निर्णय लेते हैं कि कुछ करने की आवश्यकता है या आवश्यकता नहीं है।
0: जी
1: आजकल एंडोस्कोपिक या दूरबीन से और लेजर एनर्जी के सोर्स अवेलेबिलिटी के कारण ट्रीटमेंट काफी इजी हो गई है
0: जी
1: और बड़ा कट वगैरह करके स्टोन निकालने की आवश्यकता नहीं रही है।
0: जी
1: सो अर्ली स्टेज में अगर हम ट्रीट करेंगे तो रिजल्ट्स काफी अच्छे हैं,
0: जी
1: लेकिन एक बात हमें यह भी जानना जरूरी है कि कोई भी दवाई या कोई भी ऑपरेशन की आड़ असर नहीं है, ऐसी बात नहीं है। अच्छी तरह ऑपरेशन करने के बाद में भी अगर पेशेंट के टिश्यू ठीक नहीं रहे तो फिर वहां दिक्कत हो सकती है।
0: जी
1: दूसरी बात, स्टोन के साथ डर लगता है इन्फेक्शन का, क्योंकि जब किडनी ऑब्स्ट्रक्ट हो जाती है और उसके साथ में इन्फेक्शन बन गया तो वो कभी कभी लाइफ थ्रेटनिंग बन जाती है, जिसे हम यूरोसेप्सिस कहते हैं,
0: ओ
1: क्योंकि एक बार इन्फेक्शन हुआ, किडनी ब्लॉक है, इन्फेक्शन निकलने के लिए रास्ता नहीं है, फिर इन्फेक्शन पूरे बदन में फैल जाता है, वो काफी सीरियस कंडीशन में पेशेंट हमारे पास आते हैं। सो स्टोन के साथ इन्फेक्शन को दूसरी चैलेंज है। तीसरी बात, स्टोन और डायबिटीज, क्योंकि अगेन डायबिटीज के कारण इन्फेक्शन होने की शक्यता बढ़ जाती है। सो ये सब चीजों से सिंपल स्टोन कॉम्प्लिकेटेड हो सकता है और कभी कभी काफी सीरियस बीमारी के साथ हमारे पास आते हैं। सो अगेन इन शॉर्ट, अगर रेगुलर चेकअप रखेंगे तो वो समय से हम ट्रीटमेंट कर सकते हैं।
0: जी।
1: दूसरी बात है, वंस अ स्टोन फॉर्मर इज ऑलवेज अ स्टोन फॉर्मर, और हमारे पास ऐसी कोई दवाइयां नहीं है जिससे हम आपको अश्योर कर सकें कि आप ये लीजिए आपको भविष्य में स्टोन नहीं होगा,
0: जी
1: ये
0: जी
1: गलत बात है, इसलिए रेगुलर चेकअप रखना जरूरी है। तीसरी बात है, लोग आके पूछते हैं
0: जी
1: कि हम इस कुएं का पानी पिए या इस प्रकार की

0: ट्रीटमेंट करें, आप जो ठीक लगे वो ट्रीटमेंट कीजिए, लेकिन महत्व का है कि चेकअप रखना जरूरी है। क्योंकि कुछ लोग मानते हैं कि हमने ये ट्रीटमेंट की, कुछ पान खाए, कुछ काढ़ा पिया, अच्छी बात है। अगर जो ट्रीटमेंट की साइड इफेक्ट नहीं है और आप उसे कोशिश करना चाहते हैं तो उसमें कोई प्रॉब्लम नहीं है, लेकिन लोग फिर तपास नहीं करते हैं और मान लेते हैं कि स्टोन चला गया, लेकिन अगर स्टोन अंदर बड़ा होके किडनी को डैमेज करे तो आपको पता नहीं चलेगा।
1: बिल्कुल।
0: सो ये मेरी रिक्वेस्ट है कि आप कोई भी ट्रीटमेंट लीजिए, लेकिन रेगुलर चेकअप और एक बार अच्छा मेडिकल ओपिनियन लेना बहुत जरूरी है।
1: बिल्कुल।
0: ये गलत बात है कि हर समय आप डॉक्टर के पास गए, डॉक्टर बताएंगे कि आप ऑपरेशन करवा लो। ये कुछ कुछ चीजें लोग मानते हैं, लेकिन वो सही नहीं है। हर डॉक्टर ये करने में कोई अच्छी बात है वैसे नहीं मानता है, लेकिन उस डर से अगर हमने व्यवस्थित ट्रीटमेंट नहीं ली और फिर ऐसा समय आता है कि किडनी एक बार डैमेज हो गई, फिर हम कुछ कर नहीं सकते हैं।
1: जी
0: सो यस, स्टोन के लिए चेकअप महत्व का है। कुछ कुछ डाइटरी रिस्ट्रिक्शंस जैसे पानी पीना बहुत महत्व की बात है। एक्स्ट्रा कैल्शियम, एक्स्ट्रा सॉल्ट अवॉइड करना जरूरी है।
1: ओके।
0: ज्यादा एनिमल प्रोटीन लेना एडवाइजेबल नहीं है। और कुछ कुछ जिसे ऑक्सलेट के प्रॉब्लम है उनको कुछ डायट्री रिस्ट्रिक्शन जरूरी है, लेकिन सब पेशेंट को डायट्री रिस्ट्रिक्शन करके जैसे बीज जैसी चीजें सब वो बीज जैसी टोमेटोज वगैरह खाना बंद कर देना वो भी सही नहीं है। सो स्टोन ट्रीटमेंट में भी काफी मिथ्स है, वो जरूरी नहीं है।
1: जी। तो अभी बीज की बात की तो अभी ध्यान में आया कि आजकल तो सोशल मीडिया पर, गूगल पर छाया हुआ है कि ये कद्दू का बीज और फ्लैक्स सीड और जाने कौन कौन से बीज खाएं तो स्टोन से निजात पाया जा सकता है, यूरिन की समस्या ठीक हो जाएगी, ये प्रोस्टेट ठीक हो जाएगा। तो
0: सो ये मेरी राय में काफी गलत बातें हैं। एज अ साइंटिस्ट जब तक मुझे एडिक्वेट एविडेंस नहीं है, जब तक इतना एक्सपीरियंस जो रिपोर्ट के साथ बताया नहीं गया कि ये करने से डेफिनेट फायदा होता है, वो चीजें मान्य करना वो पॉसिबल नहीं रहता है।
1: बिल्कुल।
0: एट द सेम टाइम एवरी पथी हैज सम ट्रीटमेंट फॉर एवरी प्रॉब्लम, बीट होम्योपैथी, बीट एलोपैथी, बीट आयुर्वेदिक, बट ये समझना जरूरी है कि ऐसी ट्रीटमेंट होनी चाहिए जिसकी आड़ असर ना हो। एट द सेम टाइम रेगुलर चेकअप करके उसका रिजल्ट देखना जरूरी है।
1: जी।
0: बाकी ये काफी चीजें जो सोशल मीडिया पे या गूगल में आती है, साइंटिफिकली सब चीजें प्रूव नहीं हुई है।
1: जी।
0: ये कुछ लोगों का अनुभव है, लेकिन वो अनुभव सब पेशेंट के लिए सही है कि नहीं वो एक बड़ा प्रश्न है।
1: बिल्कुल।
0: सो इन्फॉर्मेशन इज इम्पॉर्टेंट, बट आई थिंक एनालिसिस इज इक्वली इम्पॉर्टेंट।
1: जी। इस तरह की बीमारियां जब होती है तो डॉक्टर के शरण में ही जाना चाहिए, वही ज्यादा अच्छा होता है। किडनी स्टोन जब होता है तो उसके क्या बेसिक लक्षण क्या होते हैं और उस क्या स्थितियां हो कि मरीज डॉक्टर के पास जाए और किस डॉक्टर के पास जाए?
0: सो बेसिकली पेन, अगर सीवियर पेन रहा पीछे के भाग में या फ्लैंक जिसे हम कहते हैं, तो वो स्टोन के लिए कॉमन सिम्टम है। इन्फेक्शन दूसरा सिम्टम है। ब्लड इन द यूरिन, ये एक सिम्टम बहुत महत्व का है, क्योंकि स्टोन के कारण तो जरूर ब्लड आ सकता है, लेकिन हमें हमेशा फिक्र रहती है कैंसर की, क्योंकि वो एक सिम्टम है जो अगर किसी मरीज को हमने सुना कि उनके इनमें ब्लड जाती है, ये चेकअप करना बहुत जरूरी है कि कहां यूरिनरी ट्रैक्ट में कैंसर नहीं है। सो बेसिकली जहां तक स्टोन का प्रश्न है, मेनली पेन इज द कॉमनेस्ट सिम्टम, सेकेंड इज इन्फेक्शन, एंड थर्ड कभी कभी रूटीन इन्वेस्टिगेशन से भी पता चल जाता है, जो सोनोग्राफी इज अ सिंपल टेस्ट।
1: जी।
0: जो सोनोग्राफी रूटीनली करवाने में न तो कोई उसकी आड़ असर है, न तो इतनी एक्सपेंसिव है, लेकिन काफी यूरिनरी ट्रैक के प्रॉब्लम प्राइमरी डिटेक्ट करने के लिए सोनोग्राफी महत्वपूर्ण इन्वेस्टिगेशन है।
1: जी, तो उससे पता चल जाता
0: जी,
1: है। डॉक्टर साहब यहाँ पर एक गाना सुने।
0: जरूर, वापस हम पुराने गानों की तरफ चले तो रफी साहब का एक बहुत अच्छा गाना है, अकेले हैं चले आओ।
1: क्या बात है, बहुत बढ़िया गाना चुना है आपने, सुनते हैं यही गाना।

0: डॉक्टर साहब, गाने के बाद हमें बताइए कि लोग सर्जरी के नाम ढूंढ लेते हैं और सर्जरी के बारे में जानकारियां हासिल करते हैं, तो आप बताइए कि ये रोबोटिक सर्जरी और पारंपरिक सर्जरी एक होती है, तो मरीज इनका नाम सुन के बहुत ही चिंता में पड़ जाते हैं। क्या है ये? दोनों में किस तरह का अंतर
1: यहां
0: है?
1: मैं एक बात बताना जरूरी समझता हूं कि जब भी ऑपरेशन का प्रश्न आता है, अगर आपके मन में डाउट है तो जरूर सेकंड ओपिनियन लीजिए,
0: जी जी
1: क्योंकि ये महत्व की बात है कि कभी कभी हमें डाउट होता है कि ये जो सलाह दे रहे सही है कि नहीं। सो आई थिंक नथिंग इज रॉन्ग कि
0: बिल्कुल।
1: बड़ी अगर सर्जरी आपको करवानी है, जो कॉम्प्लिकेटेड सर्जरी या कोई भी सर्जरी फॉर दैट मैटर, अगर आपको राहत की जरूरी है या नहीं, जरूर सेकंड ओपिनियन लीजिए, पहली बात है। दूसरी बात, जैसे टेक्नोलॉजी एडवांस हो रही है, उसके कुछ एडवांटेजेस भी है, डिसएडवांटेजेस भी है। रोबोटिक सर्जरी का एडवांटेज वैसा है कि उसके कारण एक तो हमें बड़ा कट लेना नहीं पड़ता है, दूसरी बात है कि रिकवरी पीरियड ज्यादा अच्छा रहता है, कम रहता है, तीसरी बात है कि टेक्निकली ये सब साधनों से जो मैग्निफिकेशन और प्रिसिशन हमें मिलता है, उससे ऑपरेशन करना और आसान हो जाता है। लेकिन महत्व का है दैट इट्स नॉट ओनली द टूल, इज द पर्सन बिहाइंड द टूल दैट इज इम्पॉर्टेंट। सो हर टेक्नोलॉजी आई और वो कराने से फायदा ही होता है, ऐसी बात नहीं है। कुछ ऑपरेशंस ऐसे भी हैं कि जहां ओपन सर्जरी गिव्स बेटर रिजल्ट्स।
0: दोस्तों, विविध भारती से ये है कार्यक्रम सेहतनामा। आज आपको सुनवा रहे हैं यूरोलॉजिस्ट डॉक्टर उमेश ओझा से रेडियो सखी ममता सिंह की बातचीत। ये बातचीत जारी रहेगी इस छोटे से अंतराल के बाद।

0: दोस्तों, विविध भारती से आप सुन रहे हैं कार्यक्रम सेहतनामा।
1: जी। ये बात नहीं कि हर चीज लेप्रोस्कोपी या रोबोटिक करने से ही अच्छी होती है, ऐसी बात नहीं है। ओपन सर्जरी से भी काफी अच्छा रिजल्ट मिलता है, और इसी के कारण एक्सपर्ट के पास जाके हर प्रोसीजर के क्या एडवांटेजेस क्या डिसएडवांटेज वो
0: जी
1: समझना जरूरी है। लेकिन टेक्नोलॉजी के कारण भी काफी आउटकम में इम्प्रूवमेंट होता है, उसमें भी प्रश्न नहीं है।
0: जी
1: सो ये बैलेंसिंग एक्ट इज वेरी इंपॉर्टेंट, एंड दैट्स व्हाई टेकिंग प्रॉपर एक्सपर्ट ओपिनियन अपने आप या अपने फैमिली मेंबर्स या दोस्तों की राय लेने से ज्यादा महत्व का है। आप मेडिकल राय लीजिए
0: जी
1: और जरूर पड़ी तो सेकेंड ओपिनियन लीजिए।
0: जी बिल्कुल, उससे निश्चिंतता हो जाती है कि सेम बात दो डॉक्टर्स ने बोली है। और ये बड़ी अच्छी बात आपने कही है, और ये बड़ी ऑनेस्ट बात है कि एक डॉक्टर की ओर से ये सलाह दी जा रही है, बड़ी बात है। और वापस हम एक बार प्रोस्टेट की ओर जाते
1: जरूर।
0: हैं। प्रोस्टेट की सर्जरी के बारे में, कितनी ये आसान होती है और कितनी कठिन होती है मरीज के लिए?
1: मरीज के लिए आजकल ये न्यू टेक्नोलॉजी के कारण इतनी तकलीफदायी नहीं है। वो एनेस्थीसिया में करते हैं, दूरबीन से करते हैं ताकि कोई कट वगैरह या उसका पेन नहीं रहता है,
0: जी हाँ
1: और रिकवरी भी काफी फास्ट होती है। और आजकल ये सब नई टेक्नोलॉजी से काफी ऑप्शंस अवेलेबल हैं, और पहले जैसे बड़ा कट लेना, बहुत ब्लीडिंग हो रहा, बहुत दिनों तक नली रखना, वो सब दे आर थिंग्स ऑफ पास्ट। सो रिकवरी काफी जल्दी होती है और पेशेंट अपने काम पे बहुत जल्दी वापस जा सकता है।
0: जी
1: महत्व का है दैट डिसीशन मेकिंग
0: जी
1: कि जरूरी है या जरूरी नहीं है,
0: जी
1: और किस प्रकार की सर्जरी उस पर्टिकुलर केस के लिए ज्यादा अप्रोप्रिएट है, ये डिसीशन और डिस्कशन महत्व का होता है।
0: जी
1: अब
0: बिल्कुल
1: हर ऑपरेशन के मैंने बताया कुछ कॉम्प्लिकेशंस रहते हैं, ब्लीडिंग हो सकती है, कभी कभी इन्फेक्शन हो सकता है, ऑपरेशन के बाद में वीर्य बाहर आना बंद हो सकता है,
0: जी
1: कभी कभी वापस पैसेज नैरो होके जिसे हम स्ट्रिक्चर कहते हैं वो भी हो सकता है। सो कोई भी सर्जरी 100% सक्सेसफुल नहीं रहती है, और हर ऑपरेशन के कुछ आड़ असर रहती है।
0: जी
1: इसलिए ये समझना जरूरी है कि हम क्यों सर्जरी करवा रहे हैं, उसके कितने फायदे हैं कितने गैर फायदे हैं, और फिर वो समझ के फाइनल निर्णय लेना है कि हमें आगे कैसे बढ़ना है।
0: जी तो प्रोस्टेट ग्रंथि के बढ़ने से, उसकी सर्जरी से क्या उनकी मैरिज लाइफ पर भी असर पड़ता है?
1: सो मैंने बताया ऐसे कि वो जो वीर्य बाहर आना कभी कभी बंद हो सकता है, आजकल कुछ नई टेक्निक ऐसे भी आई है कि ये भी कॉम्प्लिकेशंस अवॉइड हो सकता है। इसलिए यंग पेशेंट्स में हो सके इतने हम दवाइयों से कोशिश करते हैं कि अगर उनके प्रॉब्लम सॉल्व हो जाते हैं तो हम ऑपरेशन की तरफ कम जाना पसंद करते हैं। फिर भी मैंने बताया ऐसे आजकल काफी प्रोसीजर लाइक यूरोलिफ्ट, रेज्यूम, आईटीन, ये अलग अलग नाम है, लेकिन उससे ये प्रॉब्लम कम होने की शक्यता ज्यादा है, लेकिन उसके रिजल्ट्स लंबे समय तक कितने अच्छे रहेंगे वो बताना मुश्किल है।
0: जी
1: सो उस पर्टिकुलर पेशेंट की जरूरत क्या है उस हिसाब से हम निर्णय लेते हैं कि कौन सी प्रोसीजर वो पेशेंट के लिए अच्छी है।
0: जी बिल्कुल। और अब आखिर में हमें बताइए डॉक्टर साहब कि अपने देश में प्रोस्टेट संबंधी जागरूकता को लेकर किस तरह की सजगता है, और क्या सजगता बरतनी चाहिए कि प्रोस्टेट, जो आजकल ये बीमारी बढ़ रही है, कम हो जाए?
1: काफी चीजें, लोग हेल्थ कॉन्शियस बन रहे हैं, हेल्थ अवेयरनेस डेफिनेटली बढ़ रही है, जैसे काफी रेगुलर हेल्थ चेकअप करने से भी पता चलता है कि प्रॉब्लम है कि नहीं। सो मोस्ट इंपॉर्टेंट थिंग इज रेगुलर हेल्थ चेकअप। कुछ एब्नॉर्मल यूरिनरी सिम्टम्स रहे तो समय में जांच करना, ये सबसे बड़ी बात है। अदरवाइज कंपेयर टू जब हम पहले प्रोस्टेट के बारे में सोचते थे, लोग आते थे कॉम्प्लिकेशंस लेके आते थे, नली लगा के आते थे, वो काफी अवेयरनेस के कारण प्रॉब्लम्स अब सॉल्व हो रही है, प्लस अच्छी अच्छी ट्रीटमेंट

0: मिलने लगी है। पहले दवाइयां नहीं थी, अभी
1: जी
0: दवाइयां से ऑलमोस्ट 60 to 70% पेशेंट्स को हम राहत दे सकते हैं। सो ये काफी चेंजेस हुए हैं, लेकिन अवेयरनेस इज द मोस्ट इम्पॉर्टेंट थिंग।
1: जी बिल्कुल
0: और
1: सही
0: आपके जैसे प्रोग्राम के माध्यम से
1: जी
0: ये लोगों को अश्योरेंस देना बहुत जरूरी है कि खाली रिपोर्ट देख के घबराने की आवश्यकता नहीं है।
1: जी जी
0: और जब हम भी निर्णय लेते हैं उस समय हम भी ये देखते हैं कि हमें रिपोर्ट को ट्रीट नहीं करना है, हमें पेशेंट को ट्रीट करना
1: क्या
0: है।
1: बात है
0: सो ये बहुत महत्व की बात है। सो ये डर रखना कि हम चेकअप करेंगे कुछ निकल आएगा और ट्रीटमेंट करनी पड़ेगी, ये बात नहीं है।
1: जी
0: लेकिन अगर पता चला तो समय में प्रिकॉशंस ले सकते हैं और राइट समय पर राइट ट्रीटमेंट हम एडवाइस कर सकते हैं।
1: जी सही बात है। प्रोस्टेट कैंसर के बारे में तो जाहिर सी बात है कैंसर के नाम से लोग डरते ही हैं, तो प्रोस्टेट कैंसर क्या पूर्णतः इलाज हो जाता है
0: आई
1: या
0: थिंक
1: लाइलाज?
0: बहुत महत्व की बात आपने कही है।
1: जी
0: पहली बात, एज वेरी राइटली यू सेड, कैंसर नाम सुन से लोग घबरा जाते
1: जी
0: हैं।
1: बिल्कुल
0: प्रोस्टेट का कैंसर आजकल जब अर्ली डिटेक्ट होता है तो इट इज नॉट लाइफ थ्रेटनिंग एट ऑल। कैंसर शब्द बड़ा है, लेकिन उसका ट्रीटमेंट प्लान, कभी कभी कैंसर जानने के बाद भी हम बोलते हैं कि कुछ करने की जरूरत नहीं है,
1: जी
0: क्योंकि इतना लो ग्रेड और अर्ली स्टेज में रहता है कि कुछ करने की आवश्यकता नहीं रहती। और दूसरा, ऐसे स्टेज में भी लोग आते हैं कि जहां पूरे बदन में वो स्प्रेड हो चुका रहता है,
1: अच्छा
0: तो फिर उसकी ट्रीटमेंट काफी दिक्कत वाली बन जाती है। लेकिन आजकल प्रोस्टेट कैंसर की काफी ट्रीटमेंट अवेलेबल है, जहां हम अगर अर्ली स्टेज में डिटेक्ट हुआ, हम ये बात करते हैं कि हम क्योर करने की कोशिश करते हैं। ज्यादा करके पहले जब कैंसर की बात आती थी हम बताते थे हम कंट्रोल कर सकते हैं। सो कैंसर प्रोस्टेट के लिए काफी ट्रीटमेंट अवेलेबल है।
1: जी
0: जब खाली लोकली प्रोस्टेट में ही डिजीज रहता है, तो जिसे हम रेडिकल प्रोस्टेटेक्टेमी कहते हैं,
1: जी
0: जहां पूरी ग्रंथि निकाल देते हैं, या तो रेडिएशन करके रिजल्ट्स लॉन्ग टर्म के लिए काफी अच्छा रिजल्ट्स रहता है। अगर वो आगे थोड़ा स्प्रेड हुआ रहता है तो फिर उस हिसाब से रेडिएशन या हार्मोन इंजेक्शंस की हम मदद लेते हैं, और जिनको काफी स्प्रेड हुआ रहता है उनको हार्मोन ट्रीटमेंट से हम कंट्रोल कर सकते हैं।
1: जी
0: बट आई कैन टेल यू, ये कैंसर इतना डरने वाला कैंसर नहीं रहा है, और रेगुलर चेकअप, PSA चेकअप अगर हम अर्ली डिटेक्ट करते हैं तो लॉन्ग टर्म रिजल्ट्स काफी अच्छे हो गए हैं।
1: डॉक्टर साहब, अब आगे बढ़ने से पहले आपकी पसंद का एक गाना और हो जाए, कौन सा गाना सुनवाए?
0: सरस्वती चंद्र का वो गाना, चंदन साबदन
1: चंचल चितवन
0: चंचल चित्रवन,
1: बेहतरीन
0: बहुत
1: गाना
0: अच्छा
1: है
0: गाना है।
1: जी, मुकेश की आवाज में भी है
0: मुकेश की आवाज
1: और
0: में और लता
1: लता
0: जी
1: जी
0: की
1: की।
0: आवाज में भी है,
1: जी
0: मुझे लगता है कि मुकेश की आवाज में
1: जी जी
0: सुनेंगे।
1: मुकेश की आवाज वाला गाना सुनते हैं।
0: जरूर।

0: डॉक्टर साहब, गाने के बाद हमारे श्रोताओं को बताइए कि किडनी से जुड़ी हुई बीमारियों की बात चल रही थी थोड़ी देर पहले, तो किडनी ट्रांसप्लांट की स्थिति कब आती है और किस तरह के जोखिम होते हैं उसमें, और क्या किडनी ट्रांसप्लांट से किडनी की समस्याएं दूर हो जाती हैं?
1: जिसे किडनी फेलियर होता है, जिसके अलग अलग कारण है, और जब दोनों किडनी फेल हो जाती है, तब परिस्थिति आती है कि वो किडनी रिप्लेसमेंट करना या किडनी फंक्शन रिप्लेस करना जरूरी हो जाता है। हमारे देश में अब सबसे कॉमन कारण डायबिटीज बन रहा है, दूसरा हाई ब्लड प्रेशर,
0: जी
1: और कुछ किडनी के इन्फेक्शन, या कभी कभी स्टोन्स वगैरह की किडनी ऑब्स्ट्रक्ट होके अगर सही समय में ट्रीटमेंट नहीं ली तो फिर ये किडनी डैमेज हो जाती है।
0: जी
1: जब दोनों किडनी डैमेज हो जाती है तब हमें काफी प्रॉब्लम आ जाती है, क्योंकि किडनी के बहुत इंपॉर्टेंट फंक्शन है, इज अ फिल्ट्रेशन प्लांट इन अवर बॉडी,
0: जी जी
1: और जब वो काम नहीं करता है तो हमारे इलेक्ट्रोलाइट इम्बेलेंस हो जाना शुरू हो जाता है, एसिड बेस बैलेंस में प्रॉब्लम शुरू हो जाते हैं, खून बनाने में तकलीफ होने लगती है, किडनी हमारा बोन मेटाबॉलिज्म में भी ख्याल करती है, ये सब चीजें शुरू हो जाती है। और कभी कभी जब इलेक्ट्रोलाइट इम्बेलेंस या पोटेशियम बढ़ने से या एसिडोसिस बढ़ने से वो कभी लाइफ थ्रेटनिंग हो जाता है, और उस समय इसे हम एंड स्टेज रिनल डिजीज कहते हैं, ट्रीटमेंट की आवश्यकता हो जाती है, या तो डायलिसिस या तो किडनी ट्रांसप्लांटेशन। डायलिसिस ये एक आर्टिफिशियल किडनी का काम करती है, जो
0: जी
1: हफ्ते में 2 या 3 बार मरीज को मशीन के ऊपर जाके ये ब्लड साफ करना या जो केमिकल्स जो बदन में तकलीफ देती है उनको क्लीन करना जरूरी हो जाता है, दैट इज डायलिसिस।
0: जी
1: लेकिन डायलिसिस के लिए हफ्ते में 2 या 3 बार जाना पड़ता है, और उससे पूरे किडनी के फंक्शन का रिप्लेसमेंट नहीं होता है।
0: जी जी
1: सो द बेटर ट्रीटमेंट इज किडनी ट्रांसप्लांटेशन।
0: जी
1: नाउ किडनी ट्रांसप्लांटेशन से नई किडनी मरीज को देके जो फिर वो किडनी का काम अपने आप ले लेती है, जिससे नियर नॉर्मल लाइफ पेशेंट की हो सकती है।
0: जी
1: लेकिन यहां कुछ चीजें समझना बहुत जरूरी है। पहली बात, शॉर्टेज ऑफ ऑर्गन्स। हर साल कुछ 2 लाख मरीज इंडिया में है जिनको ये रीनल रिप्लेसमेंट थेरेपी की जरूरत पड़ती है, और अल्टीमेटली 10% मरीज हैं जिनको ये ट्रीटमेंट मिल सकती है,
0: जी
1: क्योंकि डायलिसिस अब काफी सेंटर्स में डायलिसिस की सुविधा मिल रही है, लेकिन वो एक्सपेंसिव ट्रीटमेंट है। किडनी ट्रांसप्लांट के लिए ऑर्गन मिलना डिफिकल्ट है।
0: जी जी
1: 2 प्रकार के किडनी ट्रांसप्लांटेशन होते हैं, जिसे हम रिलेटेड किडनी ट्रांसप्लांट कहते हैं या डिजीज डोनर या कैडेवर ट्रांसप्लांट कहते हैं। लिविंग डोनर में जहां पेशेंट और डोनर दोनों की किडनीज मैच होती है, जो अलग अलग ब्लड टेस्ट से हम चेक करते हैं, वो डोनेट कर सकते हैं। लेकिन सबसे बड़ी बात है कि जो पर्सन डोनेट करता है उनकी हेल्थ को हमको ज्यादा चेकअप करना बहुत जरूरी है। ये नहीं होना चाहिए कि किसी ने डोनेट किया और खुद पेशेंट बन गए।
0: बिल्कुल
1: पहले वो सब हम चेकअप करते हैं कि जो डोनेट करना चाहते हैं उनको कोई प्रॉब्लम नहीं है और प्रॉब्लम होनी नहीं चाहिए। फॉर्चुनेटली एक किडनी से कोई भी पेशेंट अच्छी जिंदगी जी सकता है, और इसके कारण अगर बाकी सब रिपोर्ट्स ठीक रहे तो एक किडनी डोनेट कर सकता है। जिसे हम लाइव डोनर ट्रांसप्लांटेशन कहते हैं, और इसमें भी कुछ गवर्नमेंट्स के कानून है, उस हिसाब से हम डोनर सिलेक्ट कर सकते हैं।
0: जी जी
1: लेकिन सबसे जरूरी बात है, जैसे हम डिजीज डोनर और कैडेवर ट्रांसप्लांट

0: कहते हैं। अब ये समझना बहुत जरूरी है कि आफ्टर डेथ अगर हम किसी को मदद कर सके तो इससे बड़ी चीज क्या है।
1: जी
0: और डेथ हम ऐसे मानते हैं कि अगर हमारा हार्ट बंद हो गया तो हमारी डेथ हो गई।
1: जी
0: एक्चुअली ये ब्रेन है जो हमारी लाइफ को कंट्रोल करता है,
1: जी
0: और जब ब्रेन काम करना बंद हो जाता है तो उसे हम ब्रेन डेड कहते हैं।
1: जी जी
0: नाउ कुछ मरीज जिनके कुछ न्यूरोलॉजिकल प्रॉब्लम हुए, जिनको एक्सीडेंट हुआ जिसके कारण ब्रेन डैमेज हो जाता है, जहां टेक्निकली व्यवस्थित जांच करके एक्सपर्ट्स बताते हैं कि ये मरीज अभी ब्रेन डेड है, जिसको वापस जिंदा करना पॉसिबल नहीं है। अगर उनके ऑर्गन्स यूज कर सकें तो वो ऑर्गन से काफी लोगों को सेकेंड लाइफ मिल सकती है, जिसे हम कैडेवर ट्रांसप्लांट कहते हैं। ये अवेयरनेस बहुत जरूरी है,
1: जी
0: क्योंकि अदरवाइज यही ऑर्गन्स या तो हम दफना देते हैं या हम जला देते हैं। अगर समय में ये ऑर्गन्स अगर मिल गए तो काफी लोगों की जिंदगी सुधर सकती है।
1: जी
0: ये बात मानना गलत है कि कहां भी एक्सीडेंट हो गया, कहां से हम ऑर्गन ले लेंगे और ट्रांसप्लांट कर देंगे, ये सब अगेन मिथ्स है। ऑर्गन डोनेशन के लिए पहले तो मरीज ज्यादा करके इस बीमारी से जब आईसीयू में वगैरह रहते हैं, जब पूरी ट्रीटमेंट की कोशिश हो जाती है, उसके बावजूद जब चार एक्सपर्ट बताते हैं कि वापस जिंदा रहने की कोई चांस नहीं है, उस समय हम पेशेंट के जो ट्रांसप्लांट कोऑर्डिनेटर है वो रिलेटिव से पूछते हैं कि आप डोनेशन के लिए तैयार है कि नहीं। ये समझना बहुत जरूरी है, क्योंकि वो बहुत कम समय मिलता है, इसके बाद में हार्ट बंद हो जाता है। अगर एक बार हार्ट बंद हो गया तो ये जो ब्लड फ्लो ऑर्गन्स को मिल रहा था डेड बॉडी में, जिसके कारण ऑर्गन्स कुछ समय तक काम करते हैं, अगर उस समय के दरमियान हमको ऑर्गन मिले तो ही हम यूज कर सकते हैं। ये अगर लोगों को अवेयरनेस रही कि समथिंग कॉल्ड कैडेवर ट्रांसप्लांट जैसा है, जो इस प्रकार के ब्रेन डेड लोगों के ऑर्गन्स जो लीगल फ्रेमवर्क के अंडर जब
1: बिल्कुल
0: लिए जाते हैं और पेशेंट्स को देते हैं, काफी पेशेंट्स को सेकंड लाइफ मिलती है।
1: जी
0: ये जानना बहुत जरूरी है।
1: जी
0: दूसरी बात, ट्रांसप्लांट के बाद भी 100% सक्सेस नहीं है, क्योंकि अल्टीमेटली और किसी का ऑर्गन जब मिलता है वो बॉडी कैसे एक्सेप्ट करती है उसके ऊपर भी निर्भर रहता है।
1: जी
0: उसके लिए जांच जरूर करते हैं, उसके लिए काफी दवाइयां हैं जिससे ये रिजेक्शन ना हो, वो कोशिश होती है, लेकिन हर बॉडी वो एक्सेप्ट कर सकेगी कि नहीं वो भी प्रश्न रहता है।
1: जी
0: ये सब चीजें समझनी बहुत जरूरी है। लेकिन जो मरीज ऑर्गन फेलियर से तकलीफ में है, उनके लिए ऑर्गन ट्रांसप्लांट एक बहुत बड़ी चीज बन जाती है, उनको एक नई लाइफ मिल जाती है।
1: जी जी
0: लोगों को इसके बारे में भी जानकारी बहुत महत्व की है,
1: जी
0: और इसके पीछे भी काफी मिथ्स जो वगैरह रहती है उसको दूर करना बहुत जरूरी है।
1: जी जी
0: काफी लोग खाली पड़ते हैं कि ये ऑर्गन चोरी हुई या अनरिलेटेड पैसे दे के ट्रांसप्लांट, वो कॉमन नहीं है।
1: जी जी जी
0: इसीलिए राइट सेंटर में राइट लोगों से सलाह लेके राइट लीगल फ्रेमवर्क में अगर हम ये करेंगे तो काफी लोगों को हम नई जिंदगी दे सकते हैं। इसलिए ये समझना जरूरी है कि ब्रेन डेथ इज डेथ, और उनके समय में ऑर्गन अगर हम निकाल के किसी को डोनेट कर सके तो काफी लोगों को फायदा हो सकता
1: जी
0: है।
1: बिल्कुल, बड़ी तथ्यपरक बात कही है आपने। और ये अमूमन लोग जुमला इस्तेमाल करते हैं, सांस रुकी तो इंसान चला गया, लेकिन आपने एक कितनी जानकारी वाली बात बताई कि मस्तिष्क, ब्रेन का काम करना जरूरी है, ब्रेन रुका तो फिर इंसान गया। अब डॉक्टर साहब, एक बड़ी ही जरूरी बात है, वो है यूरिनल ट्रैक में कैंसर की समस्या। हम जो यूरिन के विषय पर बात करें तो इसके बारे में हमारे श्रोताओं को बताइए।
0: सबसे बड़ा लक्षण ब्लड इन द यूरिन, जब भी रिपोर्ट में या मरीज देखता है कि यूरिन में ब्लड आ रहा है, उस समय जांच करना बहुत जरूरी
1: जी
0: है।
1: जी
0: किडनी कैंसर, जब ये हम जांच करते हैं तो कुछ कुछ किडनी में भी हमें कैंसर दिखाई देता है,
1: जी
0: सबसे बड़ी समस्या ब्लैडर कैंसर की है।

0: जी
1: और द कॉमनेस्ट कॉज इज स्मोकिंग और टोबैको,
0: ओ
1: जो लोगों को पता नहीं है, लेकिन टोबैको
0: बिल्कुल
1: से ये ब्लैडर कैंसर बहुत कॉमन हो रहा है, और वो अगर समय से ट्रीट किए तो काफी अच्छा रिजल्ट मिलता है, लेकिन अगर वो ज्यादा स्प्रेड हो गया तो काफी कॉम्प्लिकेशन कर सकता है। सो अगेन, यहां दो तीन चीजें हैं। ऑफ कोर्स लाइफस्टाइल चेंजेस इज द मोस्ट इंपॉर्टेंट थिंग। आई थिंक टोबैको इज अनदर थिंग जिसके कारण शरीर में काफी जगह में कैंसर होने की शक्यता रहती है। और तीसरा है रेगुलर हेल्थ चेकअप, जो अगेन समय में कैंसर की बीमारी पता चलने से उसकी समय में अगर ट्रीटमेंट कर दी तो रिजल्ट्स काफी अच्छे मिलते हैं।
0: जी, मतलब ये पूर्णतः इलाज हो सकता है अगर समय पर।
1: एब्सोल्युटली
0: जी,
1: एब्सोल्युटली।
0: तो अब डॉक्टर साहब चलते चलते एक गाना आपकी पसंद का सुनवाएं, कौन सा गाना?
1: जरूर, आई थिंक ये आइकॉनिक गाना है, लग जा गले फिर कभी मुलाकात हो ना हो।
0: जी, अमूमन अंताक्षरी हो या कहीं कोई स्टेज प्रोग्राम हो या रेडियो का कोई प्रोग्राम हो, इस गाने के बगैर अधूरा सा रहता है। तो आज का
1: एब्सोल्युटली
0: ये प्रोग्राम भी जैसे अधूरा सा था इस गाने के बगैर। फिल्म है वो कौन थी, लता मंगेशकर की आवाज, पर्दे पर साधना, सुनते हैं ये गाना।

0: और अब चलते चलते हमारे श्रोताओं को सलाह दीजिए डॉक्टर साहब कि ये प्रोस्टेट के बढ़ने के बारे में, प्रोस्टेट और यूरिन की समस्याओं से जूझते लोगों की सजगता के लिए आप चंद शब्दों में क्या कहेंगे?
1: सो कुछ चीजें शरीर में कुदरती बढ़ती है, लाइक प्रोस्टेट
0: जी
1: ग्लैंड. हर पुरुष में प्रोस्टेट की ग्रंथि उम्र के हिसाब से बढ़ती है. इसका मतलब ये नहीं कि हर प्रोस्टेट एनलार्जमेंट के लिए ट्रीटमेंट की आवश्यकता है, वैसी बात नहीं है. लेकिन रेगुलर चेकअप करने से, एक्सपर्ट के पास चेकअप कराने से समय में अगर कुछ प्रॉब्लम रहा तो ट्रीट कर सकते हैं. कैंसर बड़ा शब्द है, लेकिन मॉडर्न टाइम में काफी ट्रीटमेंट अवेलेबल है. अगर कैंसर को समय में डिटेक्ट किया तो अच्छी तरह से ट्रीट कर सकते हैं. यूरिनरी प्रॉब्लम्स कभी कभी छोटे रहते हैं, तकलीफ ज्यादा देते हैं. लाइफस्टाइल चेंजेस से और प्रॉपर काउंसलिंग और दवाई समय से लेने से काफी टेंशन्स कम हो सकती है और यूरिन के प्रॉब्लम हम कंट्रोल कर सकते हैं. किडनी स्टोन्स हमारे देश में कॉमन है. अगेन, राइट टाइम में डिटेक्शन होना जरूरी है.
0: जी
1: और सबसे बड़ी बात, गूगल या कोई भी इंफॉर्मेशन पेशेंट के लिए अच्छा है, हमें जानना जरूरी है, लेकिन उस हिसाब से अपने आप ट्रीटमेंट डिसाइड करना, अपने आप टेंशन ले लेना, अपने मित्रों से सलाह लेना, ये सही नहीं है. क्योंकि सोशल मीडिया में बहुत बातें आती है

0: साइंटिफिकली सही है कि नहीं, वो बताने के लिए आपको एक्सपर्ट चाहिए।
1: बिल्कुल
0: सो मेरी सबसे बड़ी रिक्वेस्ट है कि कभी भी ऐसी प्रश्न आपके मन में आए, आप एक्सपर्ट को पूछिए।
1: जी
0: अगर आपको कुछ सलाह दी गई है, वो ट्रीटमेंट के बारे में है, ऑपरेशन के बारे में है, अवॉइड मत कीजिए। अगर आपको डाउट है, जरूर सेकंड ओपिनियन लीजिए। लेकिन ये बहुत महत्व की चीज है कि जो डिजीजेस अगर हमने समय में उसको पकड़ लिया, समय में ट्रीटमेंट उनकी आपको सही तरह से मिल गई, तो आगे जाके उसके कॉम्प्लिकेशंस कम हो गए और वो क्योर होने की शक्यता बढ़ जाती है।
1: जी
0: आई थिंक हेल्थ इज वेल्थ, वी ऑल नो।
1: जी
0: और आज के जमाने में जहां इवन आफ्टर एज ऑफ 60, 70, 80 एंड 90 लोगों एक्टिव है, हेल्थ मेंटेन करना बहुत जरूरी है। ये भी मैं जानता हूं कि हेल्थ ट्रीटमेंट एक्सपेंसिव हो रही है। जैसे टेक्नोलॉजी एडवांस हो रही है, इट इज कमिंग एट अ कॉस्ट। सो यस, पहले 10 दिन अस्पताल में रहना पड़ता था, अभी 2 दिन में ट्रीटमेंट हो जाती है,
1: जी जी
0: लेकिन इट्स एन एक्सपेंसिव अफेयर।
1: जी
0: सो आई थिंक मोस्ट इंपॉर्टेंट इज प्रिवेंशन, एंड दैट इज हैविंग अ गुड लाइफ स्टाइल चेंजेस, एडिक्वेट वाटर ड्रिंकिंग एंड टाइम टू टाइम रेगुलर चेकअप। आई थिंक दिस विल गिव अ गुड रोड मैप फॉर अ गुड हेल्थ, एंड आई थिंक दैट्स द मोस्ट क्रूशियल थिंग इन मॉडर्न टाइम।
1: जी
0: थैंक यू वेरी मच।
1: डॉक्टर साहब, विविध भारती के स्टूडियो में आप आए और इतनी सारी जानकारी आपने हमारे श्रोताओं को दी। विविध भारती परिवार की ओर से आपका बहुत बहुत शुक्रिया। नमस्कार
0: नमस्कार।
1: दोस्तों, सेहतनामा कार्यक्रम में अभी आप सुन रहे थे मुंबई के जाने माने यूरोलॉजिस्ट उमेश ओझा से रेडियो सखी ममता सिंह की बातचीत। आज आप सुन रहे थे इस कार्यक्रम का दूसरा और अंतिम भाग। चलने से पहले आपको बता दें, इस कार्यक्रम में रिकॉर्डिंग इंजीनियर HR पाटले, विविध भारती की ओर से इस कार्यक्रम के प्रस्तुतकर्ता जुबैर खान।

FM 102.7 पर आकाशवाणी का ये ओबरा केंद्र है। शाम के 5 बज रहे हैं। प्रस्तुत है युवा साथियों को संबोधित हमारा आज का युवा वाणी कार्यक्रम।

दोस्तों बहुत बहुत स्वागत है आप सभी का आपके अपने युववाणी कार्यक्रम में। और आज इस कार्यक्रम के साथ मैं हूं आशीष वर्मा। दोस्तों कुछ मंजिलें जमीन पर नहीं होती, फिर भी इंसान उन तक पहुंचने का सपना देखता है। रात जब अपने आंचल में चांद को सजा लेती है तब वह सिर्फ एक खगोलीय पिंड नहीं रहता बल्कि अनगिनत सपनों, कविताओं और उम्मीदों का चेहरा बन जाता है। कभी दादी नानी की कहानियों में चांद मामा था, कभी किसी की आंखों का उजाला, तो कभी वैज्ञानिकों के लिए एक अनसुलझी पहेली। लेकिन एक दिन ऐसा भी आया जब इंसान ने केवल चांद को देखा नहीं बल्कि उसके आंगन में अपने कदमों के निशान भी छोड़ दिए। ऐसी ऐतिहासिक उपलब्धि की याद में हर वर्ष 20 जुलाई को अंतर्राष्ट्रीय चंद्र दिवस मनाया जाता है। रात का आसमान हमेशा से हमें अपनी ओर बुलाता रहा है। चमकते सितारों के बीच बैठा चांद जैसे कहता रहा, अगर हिम्मत है तो मेरे पास आओ। सदियों तक इंसान ने उस आवाज को सिर्फ सुना, दूर से देखा, उसके बारे में गीत लिखे, कहानियां कहीं, कल्पनाएं भी बुनी। लेकिन जिज्ञासा का स्वभाव ठहरना कहां जानता है, वह कदम बढ़ाती है, रास्ते बनाती है और एक दिन इतिहास लिख देती है। 20 जुलाई साल 1969 मानव सभ्यता के इतिहास का वह सुनहरा दिन था जब पहली बार इंसान ने चंद्रमा की सतह पर कदम रखा। यह केवल विज्ञान की जीत नहीं थी बल्कि उस विश्वास की जीत थी कि सपनों की कोई सीमा नहीं होती। उस दिन धरती पर बैठे करोड़ों लोगों ने टेलीविजन की स्क्रीन पर इतिहास को चलते हुए देखा। किसी ने तालियां बजाई, किसी की आंखें भर आईं और किसी ने चुपचाप आसमान की ओर देखा। शायद उन्हें लगा होगा कि आज चांद थोड़ा और अपना सा लग रहा है। चंद्रमा तक पहुंचना आसान नहीं था, इसके पीछे वर्षों की मेहनत, असफल प्रयोग, अनगिनत वैज्ञानिकों की लगन और हजारों लोगों का समर्पण भी छिपा था। और इसलिए हर असफल प्रयास ने अगली सफलता की नींव रखी। आज जब हम अंतर्राष्ट्रीय चंद्र दिवस मनाते हैं तो यह केवल अतीत को याद करने का अवसर नहीं बल्कि भविष्य की ओर देखने का भी समय है। आज दुनिया फिर से चंद्रमा पर नए मिशन भेज रही है। अब लक्ष्य केवल वहीं पहुंचना नहीं बल्कि उसे और बेहतर ढंग से जानना भी है। और इस यात्रा में हमारे देश ने भी अपनी मजबूत पहचान बनाई है। चंद्रयान अभियानों ने पूरी दुनिया को दिखाया कि सीमित संसाधनों के बावजूद बड़े सपने पूरे किए जा सकते हैं। चांद अब केवल कवियों का विषय नहीं रहा बल्कि विज्ञान की प्रयोगशाला का विषय भी बन गया है। वहां पानी की संभावनाएं खोजी जा रही हैं, भविष्य के मानव अभियानों की तैयारी हो रही है और अंतरिक्ष विज्ञान के नए अध्याय लिखे जा रहे हैं। लेकिन इस पूरे सफर का सबसे सुंदर संदेश शायद ये है कि इंसान की सबसे बड़ी ताकत उसकी जिज्ञासा है। और इसलिए कहते हैं कि जब तक प्रश्न जिंदा है तब तक खोज जारी रहेगी, जब तक सपने जिंदा है तब तक मंजिलें बनती रहेंगी। हर वो बच्चा जो रात को चांद देखकर दूर से मुस्कुराता है, शायद उसके भीतर भी कोई वैज्ञानिक, कोई खोजी, कोई स्वप्न दृष्टा जन्म ले रहा होगा। इसलिए हमें बच्चों की जिज्ञासाओं को रोकना नहीं, उन्हें उड़ान देनी चाहिए। अंतर्राष्ट्रीय चंद्र दिवस हमें यह भी याद दिलाता है कि विज्ञान केवल प्रयोगशालाओं में नहीं, उसकी शुरुआत एक छोटे से प्रश्न से होती है। वो होता है ना, आखिर वो क्या है? आज जब रात होगी और चांद फिर आसमान में दिखाई देगा तो उसे केवल एक सुंदर दृश्य की तरह नहीं देखिएगा। याद कीजिएगा कि इंसान ने कभी उसे सिर्फ देखा था, फिर उसके बारे में सोचा और आखिरकार वहां तक पहुंच ही गया।

0: स्वामी हरसेवानंद शिक्षण संस्थान,
1: स्वामी हरसेवानंद पब्लिक स्कूल चूर्क और घोरावल के साथ ही साथ उच्च शिक्षा में लाया है बेहतर विकल्प।
0: स्वामी हरसेवानंद पीजी कॉलेज चूर्क में बीए, बीएससी, बीकॉम, बीबीए,
1: एमए, एमएससी, एमकॉम में प्रवेश प्रारंभ है। ज्ञान, संस्कार और सफलता की सशक्त पहचान,
0: स्वामी हरसेवानंद शिक्षण संस्थान। दोस्तों, चंद्रमा को लेकर मानव की जिज्ञासा कभी समाप्त नहीं हुई। समय के साथ विज्ञान ने उसके अनेक रहस्यों से पर्दा उठाया है, लेकिन आज भी चंद्रमा अपने भीतर अनगिनत सवाल समेटे हुए है। आने वाले समय में अंतरिक्ष अनुसंधान किस दिशा में बढ़ रहा है और चंद्रमा मानव सभ्यता के भविष्य में क्या भूमिका निभा सकता है, इन्हीं महत्वपूर्ण पहलुओं को ध्यान में रखते हुए अब आपको सुनवाते हैं एक वार्ता।

0: वार्ताकार हैं प्रियांशु पाठक। वार्ता का विषय है चंद्रमा, रहस्य विज्ञान और भविष्य।
1: नमस्कार, आकाशवाणी के सभी सम्मानित श्रोताओं को मेरा सादर प्रणाम। मैं हूं प्रियांशु पाठक और आप सुन रहे हैं कार्यक्रम युवाणी। आज मैं आपसे चर्चा करने जा रहा हूं जिसका विषय है चंद्रमा, रहस्य विज्ञान और भविष्य। कल्पना कीजिए, एक शांत रात है, आकाश तारों से भरा है और उनके बीच चांदी की तरह चमकता हुआ चंद्रमा हमारी ओर मुस्कुरा रहा है। सदियों से मनुष्य ने चंद्रमा को प्रेम, सौंदर्य और आशा का प्रतीक माना है। कवियों ने इसकी सुंदरता पर गीत लिखे, वैज्ञानिकों ने इसके रहस्यों को समझने का प्रयास किया और आज पूरा विश्व इसे मानव सभ्यता के अगले पड़ाव के रूप में देख रहा है। प्रिय श्रोताओं, चंद्रमा पृथ्वी का एकमात्र प्राकृतिक उपग्रह है। यह पृथ्वी से लगभग 384,400 किलोमीटर दूर स्थित है। यदि कोई कार बिना रुके 100 किलोमीटर प्रति घंटे की गति से चले तो चंद्रमा तक पहुंचने में लगभग 160 दिन लग जाएंगे, लेकिन आधुनिक अंतरिक्ष यान यह दूरी लगभग 3 दिनों में पूरी कर लेते हैं। वैज्ञानिकों का मानना है कि लगभग 4.5 वर्ष पहले पृथ्वी से मंगल ग्रह के आकार का एक विशाल पिंड टकराया। उस भीषण टक्कर से निकले पदार्थों ने मिलकर चंद्रमा का निर्माण किया। इसे जायंट इम्पैक्ट थ्योरी कहा जाता है और आज यही सबसे अधिक स्वीकार किया जाने वाला वैज्ञानिक सिद्धांत है। चंद्रमा का गुरुत्वाकर्षण पृथ्वी का केवल 1/6 है, इसलिए यदि पृथ्वी पर आपका वजन 60 किलोग्राम है तो चंद्रमा पर वह लगभग 10 किलोग्राम के बराबर महसूस होगा। यही कारण है कि अंतरिक्ष यात्री वहां धीरे धीरे चलते हैं और ऊंची छलांगें लगाते दिखाई देते हैं। क्या आप जानते हैं कि चंद्रमा पर एक दिन लगभग 14 पृथ्वी दिनों के बराबर होता है और रात भी लगभग 14 दिनों तक रहती है। इसलिए वहां दिन में तापमान 127 डिग्री सेल्सियस तक पहुंच जाता है, जबकि रात में यह -170 डिग्री सेल्सियस तक गिर जाता है। इतनी कठिन परिस्थितियों में जीवन की कल्पना करना भी आसान नहीं है। श्रोताओं, चंद्रमा का एक और अद्भुत रहस्य है, वह हमेशा हमें अपना एक ही चेहरा दिखाता है। ऐसा इसलिए क्योंकि वह अपनी धुरी पर और पृथ्वी के चारों ओर लगभग समान समय में घूमता है। उसका दूसरा भाग, जिसे हम दूरस्थ भाग या फॉर साइड ऑफ द मून कहते हैं, पृथ्वी से कभी नहीं दिखाई देता। अब बात करते हैं उस ऐतिहासिक यात्रा की जिसने मानव इतिहास बदल दिया। 20वीं शताब्दी में अमेरिका और सोवियत संघ के बीच अंतरिक्ष प्रतियोगिता शुरू हुई। वर्ष 1959 में सोवियत संघ का लूना 2 चंद्रमा तक पहुंचने वाला पहला अंतरिक्ष यान बना। इसके बाद अनेक मिशनों ने चंद्रमा के रहस्यों को समझने का प्रयास किया। फिर आया 20 जुलाई 1969। पूरी दुनिया रेडियो और टेलीविजन से जुड़ी हुई थी। करोड़ों लोगों ने वह क्षण देखा जब नील आर्मस्ट्रांग ने चंद्रमा की धरती पर पहला कदम रखा। उन्होंने कहा, वह एक व्यक्ति का छोटा कदम है, लेकिन मानवता की यह बहुत बड़ी छलांग है। यह केवल अमेरिका की उपलब्धि नहीं थी, बल्कि पूरी मानव सभ्यता की विजय थी। इसके बाद कई अभियानों ने चंद्रमा से चट्टानों और मिट्टी के नमूने पृथ्वी पर लगाकर वैज्ञानिकों को नई जानकारी दी। प्रिय श्रोताओं, अब बात करते हैं भारत की। भारत ने सीमित संसाधनों में जो उपलब्धियां हासिल की हैं, वे पूरे विश्व के लिए प्रेरणा है। वर्ष 2008 में इसरो ने चंद्रयान-1 का सफल प्रक्षेपण किया। इस मिशन ने विश्व को चौंका दिया। पहली बार चंद्रमा की सतह पर जल अणुओं के स्पष्ट प्रमाण मिले। इस खोज ने पूरी दुनिया की अंतरिक्ष नीति बदल दी। वैज्ञानिकों को विश्वास हुआ कि भविष्य में चंद्रमा पर मानव वसावट संभव हो सकती है। इसके बाद 2019 में चंद्रयान-2 भेजा गया। यद्यपि इसका विक्रम लैंडर अंतिम क्षणों में सफल नहीं हो पाया, लेकिन ऑर्बिटर आज भी चंद्रमा का अध्ययन कर रहा है और महत्वपूर्ण वैज्ञानिक जानकारियां भेज रहा है। इस मिशन ने हमें सिखाया कि विज्ञान में असफलता भी सफलता की पहली सीढ़ी होती है। और फिर आया वह दिन जिसने हर भारतीय का सिर गर्व से ऊंचा कर दिया। 23 अगस्त 2023, भारत का चंद्रयान-3 सफलतापूर्वक चंद्रमा के दक्षिणी ध्रुव पर उतरा। भारत ऐसा करने वाला विश्व का पहला देश बना। यही नहीं, भारत अमेरिका, रूस और चीन के बीच चंद्रमा पर सफल सॉफ्ट लैंडिंग करने वाला चौथा देश भी बना। विक्रम लैंडर और प्रज्ञान रोवर ने चंद्रमा की मिट्टी, तापमान, सल्फर सहित अनेक तत्वों पर वहां की सतह का सफल अध्ययन किया। इस सफलता ने यह सिद्ध कर दिया कि भारत केवल अंतरिक्ष विज्ञान में भाग लेने वाला देश नहीं, बल्कि उसका नेतृत्व करने की क्षमता रखता है। श्रोताओं, आज विश्व के अनेक देश चंद्रमा की ओर क्यों लौट रहे हैं, इनके पीछे 3 बड़े कारण हैं। पहला, जल। दक्षिणी ध्रुव पर जमी बर्फ भविष्य के अंतरिक्ष यात्रियों के लिए पानी का स्रोत बन सकती है। इसी पानी में ऑक्सीजन और हाइड्रोजन प्राप्त कर रॉकेट ईंधन भी बनाया जा सकता है। दूसरा, हीलियम-3। वैज्ञानिकों

0: का मानना है कि चंद्रमा पर हीलियम 3 नामक दुर्लभ तत्व बड़ी मात्रा में हो सकता है। भविष्य में यदि परमाणु संलयन तकनीकी सफल होती है तो यही तत्व स्वच्छ और असीम ऊर्जा का स्रोत बन सकता है। तीसरा, अंतरिक्ष अनुसंधान। चंद्रमा पर वातावरण नहीं है, इसलिए वहां स्थापित दूरबीनें ब्रह्मांड को पृथ्वी की तुलना में कहीं अधिक स्पष्ट रूप से देख सकेंगी। भविष्य में चंद्रमा मंगल ग्रह की यात्राओं का आधार केंद्र भी बन सकता है। आज अमेरिका का आर्टेमिस कार्यक्रम चीन और अन्य देश चंद्रमा पर अस्थायी अनुसंधान केंद्र बनाने की दिशा में कार्य कर रहे हैं। भारत भी अपने अंतरिक्ष कार्यक्रमों को लगातार आगे बढ़ा रहा है। आने वाले वर्ष में भारतीय अंतरिक्ष यात्री और वैज्ञानिक नई उपलब्धियां हासिल करेंगे। प्रिय श्रोताओं, क्या आपने कभी सोचा है कि यदि भविष्य में मनुष्य चंद्रमा पर रहने लगे तो वहां का जीवन कैसा होगा? वैज्ञानिक इस दिशा में लगातार शोध कर रहे हैं। ऐसे विशेष आवास विकसित किए जा रहे हैं जो अंतरिक्ष यात्रियों को अत्यधिक तापमान, विकिरण और सूक्ष्म उल्का पिंडों से सुरक्षित रख सके। साथ ही ऐसी तकनीकों पर भी काम हो रहा है जिनकी सहायता से चंद्रमा की मिट्टी का उपयोग करके ही ईंटें, सड़कें और अन्य आवश्यक संरचनाएं बनाई जा सके। आज अंतरिक्ष विज्ञान केवल वैज्ञानिकों तक सीमित नहीं रह गया है। भारत के अनेक युवा छात्र छात्राएं रोबोटिक्स, आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस, खगोल विज्ञान और अंतरिक्ष प्रौद्योगिकी के क्षेत्र में नए नए प्रयोग कर रहा है। संभव है कि आज का कोई विद्यार्थी ही आने वाले वर्षों में चंद्रमा पर जाने वाले भारतीय मिशन का वैज्ञानिक अंतरिक्ष यात्री बने। इसलिए हमें भी विज्ञान के प्रति जिज्ञासा बनाई रखनी चाहिए, नए प्रश्न पूछने चाहिए और नई खोजों के लिए स्वयं को तैयार रखना चाहिए, क्योंकि हर महान उपलब्धि की शुरुआत एक छोटे से प्रश्न और एक बड़े सपने से होती है। प्रिय श्रोताओं, चंद्रमा हमें केवल विज्ञान नहीं सिखाता बल्कि जीवन का संदेश भी देता है। यदि हमारे इरादे दृढ़ हो और प्रयास निरंतर हो तो असंभव दिखाई देने वाला लक्ष्य भी एक दिन वास्तविकता बन जाते हैं। उसके घटने बढ़ने से हमें परिवर्तन को स्वीकार करने को मिलता है। उसकी शीतल रोशनी हमें अंधकार में भी आशा बनाए रखने की प्रेरणा देती है और उनके रहस्य हमें यह बताते हैं कि प्रश्न पूछना, खोज करना और सीखते रहना ही मानव की सबसे बड़ी शक्ति है। आज जब हम रात के आकाश में चंद्रमा को देखते हैं तो हमें केवल उसकी सुंदरता नहीं बल्कि उसके भीतर छिपे विज्ञान, संभावनाओं और मानव भविष्य की झलक भी दिखाई देती है। कौन जानता है, आने वाले कुछ दशकों में चंद्रमा पर वैज्ञानिक प्रयोगशालाएं, मानव बस्तियां बसें, भारत का तिरंगा वहां और ऊंचाई से लहराए। इस विश्वास के साथ भारत की विज्ञान और अंतरिक्ष अनुसंधान के क्षेत्र में नई ऊंचाइयों को छुएगा। इसी के साथ चंद्रमा के रहस्यों, विज्ञान और भविष्य पर आधारित अपनी यह प्रस्तुति यहीं समाप्त करता हूं। आशा है यह जानकारी आपके लिए उपयोगी और प्रेरणादायक रही होगी। सुनते रहिए आकाशवाणी। बहुत बहुत धन्यवाद।
1: गाइए, गुनगुनाइए, कहिए हमसे दिल की बात।
2: आपकी फरमाइश पर हम चलेंगे म्यूजिकल रिदम के साथ।
3: हेलो,
1: फिर क्या, फोन उठाइए, वॉल्यूम बढ़ाइए,
2: जो चाहे वो ट्रैक सुनाइए।
1: डायल करिए 0544529710। मंगलवार और शुक्रवार दिन में 11 बजे से।
2: हेलो फरमाइश, योर म्यूजिक योर स्टाइल,
1: ओनली ऑन AIR ओबरा।
4: डेंगू, मलेरिया, चिकनगुनिया जैसे रोग संचारी रोग होते हैं। इनसे बचने के लिए घर के दरवाजे और खिड़कियों पर जाली लगवाएं, मच्छरदानी का प्रयोग करें, पानी की टंकी को ढक कर रखें, पूरी बांह वाले कपड़े पहने, कूलर की नियमित सफाई करें और अनुपयोगी वस्तुओं में पानी ना जमा होने दें।
5: अधिक जानकारी के लिए टोल फ्री हेल्पलाइन नंबर 1800-1805-145 पर कॉल करें।
4: राष्ट्रीय स्वास्थ्य मिशन उत्तर प्रदेश द्वारा जनहित में जारी।
6: एक प्रकार से PM जय अब गरीबों की जय बन गई है।

0: आयुष्मान भारत प्रधानमंत्री जन आरोग्य योजना के तहत लगभग 60 करोड़ लोग बने हैं 5 लाख रुपए के मुफ्त उपचार के हकदार। अब तक 12 करोड़ से भी ज्यादा मुफ्त उपचार किए जा चुके हैं, जिससे गरीब परिवारों के चिकित्सा खर्च में लगभग 2 लाख करोड़ रुपए की बचत हुई। आज ही आयुष्मान ऐप डाउनलोड कर आयुष्मान कार्ड बनाएं। ज्यादा जानकारी के लिए 1-4-5-5-5 पर कॉल करें।
1: युववाणी कार्यक्रम आप सुन रहे हैं आकाशवाणी ओबरा से। कार्यक्रम के साथ मैं हूं आशीष वर्मा। दोस्तों, भोजन केवल पेट भरने का साधन नहीं है, यह हमारे शरीर की भाषा है। जो हम खाते हैं वही धीरे धीरे हमारी सांसों, हमारी ऊर्जा, हमारी मुस्कान

और हमारे सेहत का हिस्सा बन जाता है। जिंदगी की भाग दौड़ में हमने खाने को अक्सर सिर्फ एक आदत बना लिया है। जल्दी जल्दी खा लेना, समय न मिलने पर कुछ भी खा लेना, स्वाद के पीछे भागना और स्वास्थ्य को बाद के लिए छोड़ देना, यही हमारी सबसे बड़ी भूल बनती जा रही है। हमारा शरीर किसी मशीन की तरह ही है। जैसे मशीनों को सही ईंधन चाहिए, वैसे ही हमारे शरीर को भी संतुलित और पौष्टिक भोजन चाहिए। और कहते ना कि यदि ईंधन अच्छा होगा तो सफर भी बेहतर होगा। बेहतर खान पान का अर्थ केवल महंगा भोजन नहीं होता, क्योंकि अक्सर लोगों के दिमाग में यही आता है कि बेहतर का मतलब महंगा। इसका अर्थ यह है कि सही समय पर सही मात्रा और संतुलित भोजन कैसे लिया जाए। हमारी रसोई में मौजूद दालें, हरी सब्जियां, मौसमी फल, दूध, दही, मोटे अनाज और पर्याप्त पानी, ये सब मिलकर शरीर को वो शक्ति देते हैं जिसकी उसे हर दिन जरूरत होती है। आजकल बाजार में मिलने वाले जंक फूड और अत्यधिक प्रोसेस्ड खाद्य पदार्थ स्वाद तो देते हैं, लेकिन शरीर से बहुत कुछ छीन लेते हैं। अधिक नमक, अधिक चीनी, अधिक तेल धीरे धीरे अनेक प्रकार की बीमारियों के कारण बन जाते हैं। मधुमेह, उच्च रक्तचाप, मोटापा और हृदय रोग जैसी समस्याएं केवल दवाइयों से नहीं बल्कि हमारी थाली से भी जुड़ी होती है। इसलिए इलाज की शुरुआत अक्सर रसोई से ही होती है। धीरे धीरे अच्छी तरह चबाकर खाना भी स्वास्थ्य का महत्वपूर्ण हिस्सा है। जब हम बिना जल्दबाजी के भोजन करते हैं तो शरीर उसे बेहतर ढंग से पचा पाता है। पानी भी भोजन जितना ही आवश्यक है। पर्याप्त पानी शरीर को सक्रिय रखता है, पाचन में सहायता करता है और कई समस्याओं से बचाने में मदद करता है। स्वास्थ्य के जानकार बताते हैं कि बच्चों के खान पान पर तो और भी विशेष ध्यान देना चाहिए। यदि बचपन में अच्छे भोजन संबंधी आदतें विकसित हो जाएं, तो उनका लाभ जीवन भर मिलता है। परिवार के साथ बैठकर भोजन करना भी एक सुंदर परंपरा है जो केवल शरीर ही नहीं रिश्तों को भी पोषण देती है। और आज आवश्यकता इस बात की है कि हम अपनी थाली में रंग बढ़ाएं। हरी सब्जियां, लाल टमाटर, पीली दाल, नारंगी गाजर और ताजे फल, ये रंग आंखों को नहीं बल्कि शरीर को भी स्वस्थ बनाते हैं। खान पान में संतुलन सबसे बड़ी कुंजी है। न बहुत अधिक न बहुत कम, शरीर की जरूरत के अनुसार भोजन करना ही समझदारी है। और दोस्तों, स्वास्थ्य किसी एक दिन की कमाई नहीं है, यह हर दिन लिए गए छोटे छोटे निर्णयों के परिणाम हैं। सुबह का नाश्ता, समय पर दोपहर का भोजन, हल्का रात्रि भोजन और बीच बीच में स्वस्थ विकल्प, यही अच्छी जीवन शैली की पहचान है। यदि हम चाहते हैं कि आने वाले वर्षों में हमारा शरीर, हमारा स्वास्थ्य हमारा साथ देता रहे, तो आज ही हमें अपनी थाली, अपने भोजन से दोस्ती करनी होगी, क्योंकि शरीर वही याद रखता है जो हम हर रोज उसे खिलाते हैं, और उसी तरह से वो आने वाले समय में हमें अपना व्यवहार रिटर्न करके भी देता है। अच्छा खाते हैं तो खुश होकर के दोस्ती लंबी चलती है, और अगर गलत आदतों से जुड़ जाते हैं तो शरीर भी बुरा मान जाता है और फिर दिन कम हो जाते हैं जिंदगी के। इसलिए बेहतर खान पान केवल जीवन को लंबा नहीं बनाता बल्कि उसे बेहतर भी बनाता है। स्वस्थ शरीर में ही उत्साह बसता है, सपने पलते हैं और जीवन अपनी पूरी चमक के साथ आगे बढ़ता जाता है।

दोस्तों, जो आंखें सपने देखती हैं, वही एक दिन इतिहास लिखती हैं। जिज्ञासा को जीवित रखिए, ज्ञान को अपना साथी बनाइए और हर नई सुबह के साथ कुछ नया सीखने का संकल्प लीजिए। इन्हीं शुभकामनाओं के साथ कार्यक्रम से मुझे यानी आशीष वर्मा को दें अनुमति। सुनते रहिए, जुड़े रहिए आकाशवाणी उपरा से।

0: बहनों नमस्कार। गृहलक्ष्मी कार्यक्रम में आप सभी श्रोता सखियों का बहुत बहुत स्वागत करती हूँ। मैं आपकी रेडियो सखी अर्चना। बहनों, बरसात के इस सुहावने मौसम में आप सभी श्रोता सखियों का तहे दिल से बहुत बहुत स्वागत करती हूँ। बहनों, कार्यक्रम की शुरुआत मैं इन चंद लाइनों से करती हूँ, खास आपके लिए। घर आंगन की रौनक है, परिवार की है शान, हर रिश्ते की दौर है, जो ममता की मूरत है, धैर्य की है खान, घर परिवार की है सच्ची शान, उन गृहलक्ष्मी के चरणों में नमन है हमारा, जिससे महकता है ये जहान सारा। बहनों, आज हम सबसे पहले बातें करेंगे सेहत की। बहनों, अब हम कहीं न कहीं हम दिखावे के चक्कर में आजकल अपनी रसोई में भी पारंपरिक और पौष्टिक भोजन को भूलते जा रहे हैं। अक्सर हम बाहर का बना खाना ऑर्डर कर लेते हैं, जो कि सेहत के लिए बहुत ही नुकसानदायक होता है। बहनों, असली ताकत और पौष्टिकता तो हर घर के बने खाने में ही है, जो कि हमारी सेहत को तंदुरुस्त रखती है। बहनों, सही स्वास्थ्य के लिए संतुलित भोजन बहुत आवश्यक है। जो भी हम खा रहे हैं उसमें सिर्फ स्वाद ही ना हो बल्कि पौष्टिकता भी आवश्यक है। बहनों, हमारे खाने में हर रोज दालें, हरी सब्जियां, ताजे फल, साबुत अनाज, दूध, दही, मेवे जरूर शामिल होने चाहिए। बहनों, ये सभी अनाज सब्जियां हमें सिर्फ स्वस्थ नहीं रखते बल्कि हमें ये ऊर्जा देते हैं और इससे हमारी रोग प्रतिरोधक क्षमता भी बढ़ती है। और साथ ही बहनों, पता है, इससे हम बीमारियों से भी बचे रहते हैं। स्वस्थ रहने के लिए हमें ज्यादा चीनी, नमक, तेल, मिर्च मसाले या डिब्बा बंद भोजन बिल्कुल नहीं करना चाहिए। बहनों, ये मन, पता है, कभी कभी हमें बहुत गलत राह पर ले जाता है, जिससे हमें समझना होगा कि हम खुद को कैसे नियंत्रण में रखें ताकि हमारा स्वास्थ्य तन मन धन हर प्रकार से ठीक रहे। कई बार, पता है, सेहत का यह संतुलन हमारी बुरी आदतों से डगमगा जाता है और उन बुरी आदतों में नशा भी एक ऐसी ही समस्या है जिससे बहुत सारे घर आज की डेट में ग्रसित हैं। बहनों, हम सभी जानते हैं कि नशा न केवल हमें शारीरिक, आर्थिक बल्कि मानसिक रूप से भी कमजोर बना देता है। बहनों, ये धीरे धीरे घर की मानसिक शांति को भी खत्म कर देता है और हमें पता भी नहीं चलता। जब इस आदत से घर का एक व्यक्ति भी ग्रसित होता है तो पूरा परिवार आर्थिक और मानसिक रूप से टूट जाता है, जैसा कि हम सब जानते हैं। अपने घर के इन खतरों से दूर रखने के लिए हमें खुद ही प्रयास करना पड़ेगा। बहनों, नशा एक गंभीर समस्या, आइए जानते हैं चिकित्सा अधिकारी ओबरा परियोजना चिकित्सालय के डॉक्टर रामेश्वर शरण कांदू जी से, और उनसे बातचीत कर रही हैं बबीता बत्रा जी। तो चलिए सुनते हैं।
1: आज हम एक बेहद गंभीर और जरूरी विषय पर बात करने जा रहे हैं, वो है नशा। ये एक ऐसी समस्या है जो धीरे धीरे इंसान को अंदर से खोखला कर देती है। आज के समय में नशे की लत बच्चों, युवाओं और बड़ों सभी को अपनी चपेट में ले रही है। इसी विषय पर सही जानकारी और मार्गदर्शन देने के लिए आज हमारे साथ स्टूडियो में ओबरा परियोजना चिकित्सालय के चिकित्साधिकारी डॉक्टर रामेश्वर शरण कांदू जी हैं। आपका हमारे कार्यक्रम में बहुत बहुत स्वागत है
2: जी। नमस्कार।
1: नमस्कार। तो डॉक्टर साहब, सबसे पहले हमारे श्रोताओं को आप ये बताइए कि नशा क्या होता है और लोग इसकी ओर क्यों आकर्षित होते हैं।
2: जी देखिए, नशा वो आदत होती है जिसमें आदमी ये जानता है कि यह चीज उसके शरीर, परिवार और भविष्य के लिए ठीक नहीं है, फिर भी वह उसे बार बार करता है, चाह कर भी छोड़ नहीं पाता। नशा धीरे धीरे आदमी को अपने कब्जे में ले लेता है। जैसे कोई आदमी की सोच, समझ और उसकी ताकत, उसका स्वास्थ्य

0: सब छीन लेता है। मसाल को दो तरीके से बात करेंगे। एक होता है जैसे कि किसी पदार्थ, नशीले पदार्थ का नशा है ना, जिसको हम बोलते हैं सब्सटेंस यूज एडिक्शन है ना। दूसरा होता है व्यवहारिक नशा, जिसमें हम बात करते हैं जैसे मोबाइल एडिक्शन हो गया है ना, इंटरनेट एडिक्शन हो गया, लगातार फोन पे हम मैसेजिंग स्क्रॉलिंग कर रहे हैं। और फिर दूसरा आता है फिर जुए, जुए का भी एक नशा, जुआ भी एक तरह का नशा है ना। तो ये इस तरह के नशे हैं है ना। लेकिन पहले नशा क्या था, शराब बीड़ी सिगरेट गुटखा और गांजा तक सीमित था। लेकिन आज के समय मोबाइल इंटरनेट और ऑनलाइन गेम सोशल मीडिया के नशे के रूप में बन चुके हैं। फर्क सिर्फ इतना कि यह नशा दिखाई नहीं देता लेकिन नुकसान बहुत गहरा करता है। लोग नशा कई वजहों से शुरू करते हैं, कोई मजाक में, कोई दोस्ती के दबाव में कर लेता है, कोई दुख, गरीबी, बीमारी, घरेलू झगड़े या बेरोजगारी से परेशान होकर करते हैं। शुरू में नशा आदमी को लगता है कि इससे मन हल्का हो गया है, परेशानी हमारी कम हो रही है, लेकिन धीरे धीरे नशा आदमी को कमजोर बना देता है और आदमी नशे का गुलाम बन जाता है।
1: समझते हैं कि हम थोड़ी देर के बिल्कुल रिलैक्स हो गए, मतलब कुछ भी दिमाग में नहीं चल रहा है,
0: जबकि ये सब केमिकल की वजह से होता है। क्योंकि जब भी हम कोई नशा करते हैं तो हमारा एक केमिकल चेंज हो जाता है हमारी ब्रेन में है ना, जैसे डोपामिन का लेवल बढ़ता है ना, उसकी वजह से हमें एक यूफोरिया आता है, हमें लगता है कि काम कूल लग रहा है, सब कुछ अच्छा हो गया, सारा टेंशन कम हो गया है।
1: तो आजकल समाज में किस तरह के नशे सबसे ज्यादा हो रहे हैं?
0: आज गांव और शहर दोनों जगह सबसे ज्यादा देखा जाए तो शराब, गुटखा और बीड़ी और सिगरेट बहुत आसानी से मिल जाती हैं। कई जगह तो बच्चे तक को ये चीजें मिल जाती हैं, जो बहुत चिंता की बात है। कुछ लोग सोचते हैं कि थोड़ा सा गुटखा या बीड़ी से क्या होगा, लेकिन यही सोच जो है आगे चलकर बड़ी बीमारी बन जाती है। आजकल एक नया नशा बहुत तेजी से फैल रहा है, जैसे मोबाइल का नशा है ना। बच्चे सुबह उठते मोबाइल पकड़ लेते हैं और रात को उसी के साथ सोते हैं। इससे उनके पढ़ाई छूट जाती है ना, उनका एकेडमिक परफॉर्मेंस कम हो जाता है, उनकी आंखों में दिक्कत आने लगती है, सिर में दर्द बना रहता है, और एक्चुअली वो घर में आपस में बातचीत बंद कर देते हैं ना, घर से दूर हो जाते हैं, अलग हो जाते हैं, माता पिता से कम बात करते हैं। इसे मोबाइल का नशा धीरे धीरे इंसान को अकेलापन की तरफ और जो कि डिप्रेशन में फाइनली चला जाता है।
1: बिल्कुल, घर वालों से बात नहीं कर रहे हैं जबकि मोबाइल से भी दूसरे लोगों से बात कर ले रहे हैं, लेकिन घर में बातचीत अब बहुत कम हो गई है। तो डॉक्टर साहब, ये नशा हमारे शरीर और दिमाग पर किस तरह का असर डालता है?
0: देखिए, नशा सबसे पहले क्या दिमाग पे इफेक्ट करता है, क्योंकि जो नशा होता है ये हमारे दिमाग में केमिकल चेंजेस ही करता है ना, जिससे क्या होता है हमारा दिमाग कमजोर होता है, आदमी सबसे पहले भूलने लगता है, सही गलत की सोचने समझने की क्षमता खत्म हो जाती है, धीरे धीरे कम होती है फिर खत्म हो जाती है, और गलत फैसले होने लगते हैं। शरीर पर नशे का असर बहुत बुरा होता है, दिल कमजोर होने लगता है, जैसे सांस की बीमारी हो जाती है ना, खांसी बनी रहती है ना, जो कि ज्यादातर धुएं वाले नशा हुआ, जैसे सिगरेट का हुआ, गांजा हुआ, ये जो धुएं वाली नशे हैं इनके ज्यादातर ये फेफड़े पे असर देते हैं। और जैसे कि ये चबाने वाले नशा, जैसे गुटखा हुआ है ना, और गुटखा जैसे उसको चबाते हैं है ना, तो ये ज्यादातर ओरल कैंसर और ये सब चीजों को ज्यादा वो करता है। बाकी ये हमारा शराब का सेवन है, जो कि सबसे ज्यादा हमारे लीवर को इफेक्ट करता है, लीवर सिरोसिस, लीवर कैंसर है ना, और नशे की वजह से नींद पूरी नहीं होती है, रात भर बेचैनी रहती है, शरीर में ताकत नहीं रहता है, काम करने का मन नहीं लगता है, दिमाग पर असर इतना गहरा होता है कि आदमी छोटी छोटी बातों पर गुस्सा करने लगता है, चिड़चिड़ा हो जाता है, घर में कोई भी थोड़ी सी बात होती है तो वो बहुत उग्र हो जाता है, जो कि घर में झगड़े का कारण बनता है। जी, और कभी कभी वो हमेशा उदास रहने लगता है।
1: वही ना, तो शरीर और दिमाग पर सही बात है, बहुत ही बुरा मतलब प्रभाव डालता है ये नशा जो है। तो आजकल लेकिन देखने में आ रहा है कि बच्चों और युवाओं में नशे की लत बहुत ज्यादा है, कारण क्या है इसका?
0: देखिए, आज के समय में बच्चों के देखिए तो हाथ में मोबाइल जल्दी आ जाता है, लेकिन उन्हें सही रास्ता दिखाने वाला कोई नहीं होता है। माता पिता है, रोजी रोटी के चक्कर में व्यस्त रहते हैं, बच्चों से खुलकर बात नहीं हो पाती है, कभी स्कूल में पढ़ाई का दबाव रहता है, बड़े बच्चे हैं, नौकरी न मिलने की चिंता, कभी कभी वो गलत पीयर प्रेशर, गलत संगति में चले जाते हैं ना, सोशल मीडिया की पे आजकल जो चमक धमक देखते हैं उसमें बच्चे भटक जाते हैं,
1: उससे भी बहुत बच्चे परेशान हो रहे हैं कि उसने तो ऐसे कर लिया, उसके पास तो इतना पैसा है, वो तो यहाँ घूमने जा रहा है, हम नहीं जा पा रहे,
0: उनको देख के है ना, एक उनका एक इनडायरेक्ट पीयर प्रेशर आता है, जिसको वो वैसा ही वो बनना चाहते हैं, वैसा करना चाहते हैं। कई बार बच्चे नशे को मर्दानगी, जैसे बहादुरी या बहुत फैशन समझ लेते हैं, जो कि सच्ची बहादुरी नशे से दूर रहना ही है।
1: सही में बहुत अच्छी बात आपने कही। तो मतलब नशा कोई भी हो तो उससे दूर रहना है, चाहे मोबाइल का नशा हो, चाहे इस तरफ आ जाए तो हम सिगरेट तम्बाकू

0: और जाते रहो बात बात पे गुस्सा करेगा, जो उसकी नींद दिक्कत हो जाती है, उसको
1: अच्छा
0: भूख कम लगता है, घर में खाना नहीं खाएगा, कहेगा कि आज मुझे खाना नहीं है ना, खाना छोड़ देगा, कभी बाहर से खा के आएगा है ना, जो भी है, कभी कभी
1: हाँ
0: नशे से भूख भी डिस्टर्ब हो जाती है, भूख
1: वो
0: कम लगती
1: खत्म हो
0: है ना,
1: जाती
0: तो
1: है।
0: वो घर पे खाना खाना छोड़ देता है ना। और सबसे बड़े घर बच्चे है ना, जो कि युवा जो शुरू कर रहे होते हैं, घर से झूठ बोलना शुरू कर देते हैं, कभी कभी वो माँ बाप की जेब से पैसे भी चुराना शुरू कर देते हैं नशे को लेके है ना, कभी कभी पैसे ज्यादा मांगते
1: अच्छा
0: है ना, तो ये सब लक्षण होते हैं। अगर ये सब लक्षण दिखे गार्जियंस को दिखे तो उसको ध्यान देना चाहिए कि बच्चा पैसे ज्यादा मांग रहा
1: हाँ
0: है ना,
1: क्यों
0: क्यों
1: हाँ
0: पैसे ज्यादा मांग रहा है ना, और कभी उसके एकेडमिक परफॉर्मेंस के देख, अचानक बहुत अच्छा पढ़ने में था, क्लास में बहुत अच्छे नंबर आते थे, फिर अभी नंबर कम होने
1: अचानक
0: लगे
1: से
0: है ना,
1: कैसे कम हो
0: हाँ
1: गए।
0: कम होने लगे, तब भी ये सब लक्षण होते हैं कि कहीं गलत रास्ते पे तो नहीं जा रहा ना, तो ये ध्यान देना चाहिए, ये सब नशे के संकेत हो सकते हैं। अगर ये सब लक्षण को समय से पहचान लेते हैं तो उनको नशे में बढ़ने से रोक सकते हैं।
1: रोक सकते हैं, मतलब
0: जी
1: ये तो अभिभावक को बहुत ध्यान देना पड़ेगा कि
0: जी
1: भाई क्यों व्यवहार में चेंज आ रहा है, क्यों वो
0: हाँ
1: अकेला रहना पसंद
0: हाँ
1: कर रहा है, पैसा क्यों ज्यादा मांग रहा है इस समय।
0: जी
1: तो अभिभावक की
0: हाँ
1: पूरी
0: कभी
1: जिम्मेदारी है।
0: हाँ कभी है पैसे गायब हो जाए, घर में कोई
1: हाँ
0: कीमती ऐसा सामान है कोई
1: वो
0: गायब हो
1: गायब हो
0: रहा,
1: गया तो भाई
0: गायब हो रहा
1: कहाँ चला गया, वो
0: जी।
1: ध्यान देना है। तो ये नशा छोड़ने में क्या क्या फिर परेशानियां क्या क्या आती हैं।
0: जैसे नशा आदमी जो कर रहा होता है, अगर अचानक से नशा छोड़ दे तो उसको विड्रॉल रिएक्शन हम लोग बोलते हैं, विड्रॉल
1: अच्छा
0: सिम्टम्स आते हैं ना, जैसे उसका शरीर कांपने लगता है,
1: अच्छा
0: मन घबराता है ना, नींद नहीं आती है, उसके हाथ कांपते हैं, लिख नहीं पाता
1: अच्छा
0: है ना, और उसको बार बार नशा का क्रेविंग होता है कि मुझे नशा करना है, नहीं पियेंगे तो ये, क्योंकि ये सब सिम्टम बहुत तेज आने लगते हैं ना, दिल धड़कन बहुत तेजी से बढ़ जाता है ना, तो वो उसको नशा करने का मन करता रहता है, कई बार बहुत तेज उसमें गुस्सा आ जाता है ना, और वो वायलेंट हो जाता है ना, हिंसा भी करता है,
1: हिंसा
0: घर वालों
1: करता
0: पे
1: है।
0: हिंसा करता है, और कभी कभी आदमी टूट सा जाता है। इस समय सबसे ज्यादा जरूरत होती है परिवार के साथ की है ना,
1: जी
0: इसमें डांटने से कुछ नहीं होता है ना, लेकिन प्यार और समझ और हिम्मत देने से सब संभल सकता है
1: हाँ, मतलब प्यार चाहिए उस समय
0: जी,
1: और
0: और
1: बच्चे को
0: सपोर्ट
1: हिम्मत
0: चाहिए उसे
1: सपोर्ट चाहिए।
0: जी।
1: तो क्या नशे की लत से बाहर निकलना संभव है।
0: हाँ नशा पूरी तरीके से छोड़ा जा सकता है, नशा ये कोई गुनाह नहीं है, बीमारी है ना, और बीमारी का इलाज होता है, इसमें डॉक्टर की सही सलाह, काउंसलिंग, परिवार का सहयोग और खुद की मजबूत इच्छा शक्ति भी थोड़ी चाहिए, आदमी फिर से अच्छा और सामान्य जीवन जी सकता है। हजारों लोग नशा छोड़कर आज खुशहाल जीवन जी रहे हैं
1: मतलब आराम से छोड़ा जा
0: जी,
1: सकता है, थोड़ा घर
0: जिसमें
1: वालों की सपोर्ट मिल
0: सब
1: जाए, काउंसलिंग मिल जाए
0: जी, और
1: तो
0: डॉक्टर के साथ जिसमें कुछ शुरुआती दवाइयां देनी होती हैं, जो उनके जो सिम्टम्स विड्रॉल सिम्टम्स आ रहे हैं उसको कम करते हैं है ना, बाद में वो फिर मेंटेन करता है, वो अब्सटिनेंस मेंटेन करते हैं, उनका नशा छूट जाती है धीरे
1: बाकी घर वालों का थोड़ा प्यार
0: जी
1: चाहिए, सपोर्ट चाहिए।
0: जी
1: तो डॉक्टर साहब एक प्रश्न ये भी है कि समाज को और स्कूलों को नशा रोकने के लिए क्या कदम उठाने चाहिए।
0: तो समाज को इसमें मिलकर लड़ने की जरूरत होती है, गांव में बच्चों और युवाओं के लिए खेल कूद, सांस्कृतिक कार्यक्रम, भजन कीर्तन, अच्छे काम बढ़ाने होंगे, नशे की खुली बिक्री पर रोक लगानी चाहिए, अगर कोई गलत रास्ते पे जा रहा है, किसी को कोई देखते हैं कि ये लड़का नशा कर रहा है, तो उसको समाज को उसका अकेला नहीं छोड़ना चाहिए, बल्कि उसको समझा कर सही रास्ते पे लाना चाहिए, स्कूलों में इसके लिए नशे को लेके एक अवेयरनेस प्रोग्राम होना चाहिए ना, कि वो बच्चे समझे, क्योंकि ये युवा ही है जो कि बाद में जाके है ना, स्कूल में होते हैं तो नहीं, लेकिन जैसे ही कॉलेज या बड़े स्कूल में जाते हैं तो ये कहीं ना कहीं वो पीयर प्रेशर, कहीं ना कहीं इन्फ्लुएंस पा जाते हैं और वहीं से उनके नशा लग जाती है,
1: लग जाती
0: लेकिन
1: है
0: अगर जो
1: लग।
0: स्कूलों में इसको लेके उनको अवेयर कर दिया जाए है ना, नशे के बारे में समझा दिया जाए, तो शायद जब वो नशा करने के
1: तो
0: शुरुआत ही है
1: सोचेंगे
0: तो
1: हाँ
0: जरूर उनके दिमाग में बात
1: हाँ
0: आएगी और शायद नशे में ना जाए
1: ना जाए हाँ कि भाई ऐसा कहा गया था इसको करने से इतना नुकसान है, मतलब
0: जी
1: हमारे शरीर को और दिमाग को, तो उस
0: जी
1: डर से हो सकता है फिर वो
0: जी
1: ना
0: जी जी
1: करें। हाँ तो डॉक्टर साहब अंत में आप नशे से दूर रहने के लिए क्या संदेश देना चाहेंगे।
0: मैं यही कहूंगा कि देखिए घर से ही सुधार शुरू होता है, माता पिता बच्चों से रोज बात करें, उनका दुख सुख समझें, घर के बड़े खुद नशा न करें, क्योंकि अगर जो बड़े ही करेंगे तो फिर बच्चे वो ही सीखते
1: हाँ
0: हैं और
1: बिल्कुल
0: फिर वो भी नशे में जाते हैं, अगर घर में किसी को नशे की आदत लग रही हो तो शर्म या डर के कारण उसे छिपाए नहीं है ना, कई बार गार्जियंस होते हैं जानते हैं बच्चा नशे में जा रहा है लेकिन उसको अवॉइड करते हैं,
1: हाँ
0: छुपाते हैं ना,
1: छुपा
0: लोगों से
1: लेते हैं
0: बताते नहीं है, ऐसा नहीं करें, समय पर डॉक्टर से पास जाएं, दिखाएं, समझदार व्यक्ति से सलाह लें और उसमें काउंसलिंग जो भी है डॉक्टर जैसे सलाह देते हैं है ना, उनकी मदद लेके है ना उनको नशे से दूर करें। नशा आदमी की जैसे सेहत, पैसा, परिवार और भविष्य सब कुछ धीरे धीरे छीन लेता है, लेकिन अगर समय रहते समझ आ जाए तो नशा छोड़ा जा सकता है और जीवन फिर से सुधर सकता है। इसलिए मेरा कहना रहेगा, नशा छोड़िए, परिवार बचाइए, स्वस्थ रहिए, खुश रहिए।
1: तो बहनों बात वही है कि भाई हिम्मत रखें, चुप

0: आ रहे हैं और सही समय पर मदद लें। तो डॉक्टर रामेश्वर कांदू जी ने बहुत अच्छी हम लोगों को नशे के ऊपर जानकारी दी, समय निकाला, आप स्टूडियो में आए, आपका बहुत बहुत धन्यवाद।
1: जी धन्यवाद।
2: अभी हमने भेंटवार्ता सुनी, नशा एक गंभीर समस्या। भेंटवार्ता कर थी डॉक्टर रामेश्वर शरण कांदू जी और उनसे बातचीत कर रही थी बबीता बत्रा जी।
3: गाइए गुनगुनाइए कहिए हमसे दिल की बात,
4: आपकी फरमाइश पर हम चलेंगे म्यूजिकल रिदम के साथ।
5: हेलो,
3: फिर क्या, फोन उठाइए, वॉल्यूम बढ़ाइए,
4: जो चाहे वो ट्रैक सुनाइए,
3: डायल करिए 0544529710। मंगलवार और शुक्रवार दिन में 11 बजे से।
4: हेलो फरमाइश, योर म्यूजिक योर स्टाइल,
3: ओनली ऑन AIR ओबरा।
2: बहनों, एक बार फिर से आप सभी का बहुत बहुत स्वागत है आपके अपने कार्यक्रम गृहलक्ष्मी में। बहनों, अपने परिवार को सेहतमंद रखने में हमारे जिगर यानी लीवर की देखभाल बहुत जरूरी है और हेपेटाइटिस की बीमारी इसी लीवर की सूजन है जो मुख्य रूप से वायरस के कारण होती है। इससे बचाव बहुत आवश्यक है क्योंकि पता है बहनों, लंबे वक्त तक रहने से ये गंभीर लीवर रोग, लीवर का खराब हो जाना और न ध्यान देने पर लीवर के कैंसर जैसी भयानक बीमारी का कारण भी बन सकती है। इसलिए बहनों, हेपेटाइटिस जैसा कि हमने जाना कि ये लीवर की सूजन है, जब लीवर में सूजन आ जाती है तो वो अपना काम ठीक ढंग से नहीं कर पाता, तो ज्यादातर हेपेटाइटिस वायरस के संक्रमण के कारण होता है और कुछ इम्यून बीमारियों के कारण होता है। जैसे बहुत ज्यादा बीमार हो गए या फिर बहुत ज्यादा शराब पी रहा है कोई या फिर कुछ हानिकारक केमिकल दवाओं का रिएक्शन हो गया, तब भी इसके कारण भी ये हेपेटाइटिस की बीमारी हो सकती है। और साथ ही बहनों, दूषित भोजन और दूषित पानी के कारण भी ये बीमारी होती है। और इस बीमारी के बचाव के लिए हेपेटाइटिस बी का टीका हम सभी को जरूर लगवाना चाहिए और साथ ही संक्रमित व्यक्ति के खून या फिर शारीरिक तरल पदार्थों के संपर्क में आने से भी बचना चाहिए। और हमें हमेशा नई सिरिंज का ही प्रयोग करना चाहिए और कभी भी जो है कि यूज की हुई सुई हमें नहीं लगवानी चाहिए। यदि लीवर से संबंधित कोई भी दिक्कत समझ में आए तो सबसे पहले हमें डॉक्टर से संपर्क करना चाहिए। तो बहनों, हमें अपनी सेहत का खास ख्याल रखना है, तो आप भी अपनी सेहत का ख्याल रखिए और साथ ही साथ खुश रहिए, मस्त रहिए और तनाव मुक्त रहिए। तो चलिए सुनते हैं इस बहुत ही प्यारे से गीत को।

दोनों वाकई बरसात का मौसम बहुत सुहाना होता है, पर यदि हम थोड़ा सा सावधानी रख लें तो फिर इसकी बात ही क्या। मैंने बताया, बरसात के पानी को बचाकर हम पर्यावरण में भी अपना योगदान दे सकते हैं। इसीलिए हम सभी को बरसात के पानी को इकट्ठा करना चाहिए। इसके लिए हम सभी को अपनी छत पर को साफ कर लेना चाहिए और छतों पर पाइप लगाकर पानी को ड्रम या जमीन में बने टैंकों में भी हम इकट्ठा कर सकते हैं, या फिर सोख्ता या गड्ढों के जरिए इसे जमीन में जाने दें, जिससे बारिश का पानी जमीन में बने टैंकों में इकट्ठा होगा और उससे पता है ये भूजल भी इससे सुधरता है। और इस पानी का इस्तेमाल हम बगीचे में पौधों को सींचने में, घर की सफाई करने, गाड़ी धोने या फिर कपड़े धोने में भी हम लोग कर सकते हैं। तो बहनों देखिए, ये तो हुई हमारी बात कि हम लोग बरसात के पानी से भी बहुत कुछ कर सकते हैं, और बातचीत का सिलसिला आगे भी चलेगा, लेकिन उससे पहले चलिए सुनते हैं एक बार फिर से गीत संगीत की दुनिया में। तो चलिए सुनते हैं इस गीत को।

उम्मीद करती हूँ कि गीत आप सभी को बहुत पसंद आया होगा। बहनों, हम सभी जानते हैं कि हमारे बच्चे ही हमारी पूरी प्रॉपर्टी हैं और हमारे बच्चे ही हमारे भविष्य की शान है, तो इसके लिए हमें अपने बच्चों की खास सुरक्षा रखनी चाहिए। बहनों, पता है उत्तर प्रदेश के सोनभद्र समेत पूरे भारत में चाइल्ड हेल्प लाइन नंबर दिया गया है, जिसका नंबर है 1098। बहनों, हम किसी भी आपात स्थिति में इस नंबर पर कॉल कर सकते हैं। जी हाँ बहनों, 24 घंटे इस नंबर यानी 1098 पर सुविधा मिलती है। यह नंबर आपातकाल में तुरंत सहायता प्रदान करता है। तो बहनों, इसके लिए हमें अपने बच्चों को जागरूक करना चाहिए और उन्हें बताना चाहिए कि यदि कोई दिक्कत है बेटा तो आप इस नंबर पर कहीं भी हैं आप फोन कर सकते हैं 1098। और हर बच्चे को यह नंबर याद होना चाहिए और इसका फर्ज है कि हम सभी माता पिता इस पर विशेष ध्यान दें कि बच्चों को यह नंबर याद हो कि यदि किसी स्थिति में वो फंस जाता है, कोई आपात काल स्थिति होती है, तो वो तुरंत फोन करे। और इसमें पता है बहनों, इसमें बच्चे को तुरंत सहायता मिलती है, जैसे कि इसमें बच्चे को तुरंत रेस्क्यू कर लिया जाता है, मेडिकल सहायता दी जाती है, आश्रय और परामर्श सभी प्रकार की सुविधाएं इसमें मिलती हैं। तो बहनों, आपकी मुस्कुराहटें यूं ही बनी रहे जीवन के हर सफर में, बाहरी रहे छाए कुछ पल के लिए ही सही, जो साथ रहा हमारा और आपका वो यादें बनकर हमेशा दिल में समाये रहेगा। सखियों, अब आप सभी को करती हूँ नमस्कार, अलविदा लेने का वक्त आ गया है, कुछ यादें छोड़कर जा रही हूँ, फिर मिलूंगी नई बातों के साथ। तो मुस्कुराती रहिए, अपना ख्याल रखिए, हम फिर मिलेंगे, तब तक के लिए स्वीकार कीजिए रेडियो सखी अर्चना का नमस्कार।

श्रोताओं, भी आप सुन रहे थे गृहलक्ष्मी कार्यक्रम आकाशवाणी के हम ओबरा केंद्र से बोल रहे हैं। शाम के 6 बजने को है, थोड़ी ही देर में आप सुनेंगे भोजपुरी में समाचार। कृपया प्रतीक्षा करें।

आकाशवाणी गोरखपुर से भोजपुरी समाचार। नमस्कार, समाचारन के साथ हम वेद प्रकाश पाठक। संसद का मॉनसून सत्र आज से शुरू हो गए। सत्र के पहला दिन ने संसद के दोनों सदनों का कार्यवाही नीट परीक्षा पेपर लीक मामला पर विपक्ष के

0: हंगामा के नाते लगातार बाधित रहा। संसद के मानसून सत्र से पहले संवाददाता लोगों से बतियावत प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी कहने की चाहे मानसून हो के आ चाहे मानसून सत्र दोनों के सक्रिय रहने पर वो ढेर उत्पादक सिद्ध होला।
1: मानसून हो या मानसून सत्र अगर दोनों प्रोएक्टिव हो तो देश का कल्याण होता है, जीव मात्र का कल्याण होता है। साथियों, पिछले एक महीने में देश ने अनेक सिद्धियां प्राप्त की है और देशवासी गर्व से भर जाए इस प्रकार की सिद्धियों का सिलसिला चला है, चाहे राष्ट्रीय हो, अंतर्राष्ट्रीय हो और अब तो अंतरिक्ष भी हो, भारत के लिए गर्व के पल रहे हैं।
0: श्री मोदी सज्जू राजनीतिक दलन से सत्र के दौरान सकारात्मक और सार्थक चर्चा का आग्रह कैले। मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ आज बाराबंकी में 542 करोड़ रुपया से बेसी की लागत वाली 82 परियोजना का लोकार्पण और शिलान्यास कैले। इस मौका पर मुख्यमंत्री विकास के साथ विरासत के संरक्षण के प्रदेश सरकार को प्राथमिकता बतौले।
2: प्रधानमंत्री मोदी जी का सबका साथ सबके विकास के मंत्र को हम लोगों ने जमीनी धरातल पर उतारा है। यूपी का नौजवान, यूपी का कोई नागरिक यूपी के बाहर जाता है और सामने वाले को अगर आप अपनी पहचान दे देते हैं कि मैं उत्तर प्रदेश से हूँ, मैं बाराबंकी से हूँ, मैं अयोध्या से हूँ, मैं लखनऊ से हूँ, अगर आप कह देंगे सामने वाले के चेहरे पर चमक दिखती है।
0: अपने संबोधन में मुख्यमंत्री यहो कहना कि बाराबंकी के स्टेट कैपिटल रीजन SCR के रूप में विकसित कल जा रहा बा, जेकरे एक ओर लखनऊ बा आ दूसर की ओर अयोध्या। वहां के कहने की जवन विकास लखनऊ आ अयोध्या ले पहुंची ओकर लाभ बाराबंकियों के निश्चित तौर पर मिली। मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ आज अपने सोशल मीडिया प्लेटफॉर्म पर योगी की पाती साझा करत नौजवानन से कम एगो कौशल सीखने का अपील कैले हमें।
3: मुख्यमंत्री ने अपने सोशल मीडिया प्लेटफॉर्म पर अपील की है कि युवा यह संकल्प ले कि कम से कम एक कौशल सीखकर समाज और प्रदेश की प्रगति में सक्रिय भागीदारी करेंगे। उन्होंने कहा कि देश की सर्वाधिक युवा शक्ति वाला अपना प्रदेश कौशल से जुड़कर न केवल विकसित उत्तर प्रदेश बल्कि $1 trillion अर्थव्यवस्था के निर्माण का पथ भी प्रशस्त करेगा। श्री योगी ने युवाओं को याद दिलाया कि कौशल ही आत्मनिर्भरता का आधार, स्वाभिमान का संबल और विकसित होने की राह पर अग्रसर प्रदेश की सबसे बड़ी पूंजी है।
0: प्रदेश सरकार की ओर से गठित विशेष जांच दल SIT श्री राम मंदिर चढ़ावा चोरी के मामला में न्यायालय के सामने अपन स्थिति रिपोर्ट प्रस्तुत कर दिया है। अयोध्या में 22 जुलाई के श्री राम जन्मभूमि तीर्थ क्षेत्र ट्रस्ट का एगो अहम बैठकी बुलावल गई बा। एगो रिपोर्ट।
4: अयोध्या में श्री राम मंदिर के चढ़ावे में चोरी के मामले के बीच अब राम जन्मभूमि तीर्थ क्षेत्र ट्रस्ट की 22 जुलाई को अहम न्यासी बैठक बुलाई गई है। बैठक के एजेंडे में SIT की अंतिम रिपोर्ट पर चर्चा और ट्रस्ट की विभिन्न समितियों के पुनर्गठन का प्रस्ताव शामिल है। वहीं दूसरी ओर निर्मोही अखाड़े ने सुप्रीम कोर्ट में याचिका दाखिल कर ट्रस्ट के पुनर्गठन, वित्तीय लेन देन के फॉरेंसिक ऑडिट, ट्रस्ट में उचित प्रतिनिधित्व और मंदिर की पूजा व्यवस्था रामानंदी परंपरा के अनुसार संचालित करने समेत कई मांगे उठाई है। तन्मय सोनिया, आकाशवाणी समाचार, अयोध्या।
0: प्रदेश के कई जिलों में रुक रुक के बरखा का सिलसिला जारी बा। पूर्वी उत्तर प्रदेश के गोरखपुर के साथ ही प्रदेश के कई गो और जिलों में बरखा से जनजीवन प्रभावित भइल हो। एगो रिपोर्ट।
5: मुजफ्फरनगर जिले में भारी बारिश के कारण एक पुरानी इमारत गिरने से 4 बच्चों समेत 5 लोगों की मौत हो गई, 5 अन्य लोग घायल हो गए। भारी बारिश ने राज्य की राजधानी लखनऊ समेत कई जिलों में आम जनजीवन को प्रभावित किया है। मौसम विभाग ने राज्य के कई जिलों के लिए ऑरेंज अलर्ट जारी किया है और कहा है कि मौजूदा मौसम की स्थिति अगले 3 दिनों तक बनी रहने की संभावना है। अगले 24 घंटों में तराई के इलाके और बुंदेलखंड के कुछ हिस्सों में भारी बारिश होने की उम्मीद है। सुशील चंद्र तिवारी, आकाशवाणी समाचार, लखनऊ।
0: ए बीचे खराब मौसम के देखत उत्तराखंड में सुरक्षा के नाते एहतियाती तौर पर आज 4 धाम जतरा कुछ समय खातिर रोक दिया गया बा। समाचार पूरा भइल। नमस्कार।

0: सब पंचन के राम राम।
1: आपको के राम राम भोला भैया, पंचेती के डुगडुगी भजन। अब भैया देखा का गठीले हुआ आज, भैया देखा बतावा।
2: भैया देखा इसमें पानी बरखा के मौसम तो आ ही रहा है,
1: बिल्कुल।
2: अब इसने में जोन बाकी खेत जोन भी तैयार रहे, जो पहले जोताई हो गई रहे पनिया गिल हो भैया, ओकर बुआई हो रहा बा,
1: बिल्कुल।
2: जोना की जैसा रग देखल जात बहन।
1: हाँ हाँ।
2: और साथ साथ जोन बाकी पौधरोपण भी कल जा रहा हो, ताकि जोन बाकी धरती की हरियाली बरकरार रहे भैया
1: एकदम।
2: और साथ साथ जोन बाकी पर्यावरण के में जोन अनियमितता हो, वो बिल्कुल जो है कि नियमबद्ध हो पावे, एक दृष्टिगत रख करके अधिकाधिक पौधरोपण के कार्यक्रम इसमें चल रहा भैया।
1: एकदम बिल्कुल सही कहत हुआ भोला भैया। और जितने अधिक पेड़ लगे भैया, उतना ही भैया देखा हम लोगन के आसपास के पर्यावरण सही रहे, और भैया देखा हम लोगन के स्वास्थ्य भी अच्छा रहे। भैया देखा जहाँ ज्यादा पेड़ रहला, भैया देखा जोन भी वायुमंडल में कार्बन डाइऑक्साइड की मात्रा रहला, ओके अवशोषित करके भैया देखा शुद्ध ऑक्सीजन हम लोगन के उपलब्ध होखेला। जहाँ ज्यादा पेड़ रहला भैया देखा भूजल स्तर भी बनल रहला, मिट्टी के कटाव भी रुकेला। और ओकरे साथ साथ भैया देखा जोन आंधी तूफान आवेला, सूखा आवेला, और भैया देखा बाढ़ आवेला, ओकरा में भी भैया कमी देखे के
2: बिल्कुल। एकरे साथ साथ जोन बाकी पेड़ पौधा के जोन भी पत्तियां घिरला जमीन में, वो जोन बाकी टिकाऊ खेती खातिर जोन बाकी बहुत ही वरदान है,
1: बिल्कुल।
2: जैसे कि वो सड़ करके जीवांश के मात्रा जोन बढ़ावला, वो बिल्कुल अचूक हो भैया। जोन आज प्राकृतिक खेती के बारे में बात कल जा रहा है, या टिकाऊ खेती के बारे में बात कल जा रहा है, ये विषय पे जोन बाकी अगर ज्यादा ध्यान केंद्रित करे के है, तो पेड़ पौधा बहुत जरूरी है भैया। अगर नीम के पेड़ लगल है, तो नीम के पत्ती गिरी है, तो जहाँ दीमक लग रहा हन जमीन में, उकठा रोग जहाँ लग रहा हन, उससे जोन बाकी अच्छा निजाकत मिलला भैया।
1: बिल्कुल बिल्कुल सही कहत हो भैया। और जहाँ भैया देखा आप टिकाऊ खेती के बात कैला, तो भैया देखा जे तरह से भैया देखा पेड़ पालो जोन बाकी ज्यादा जहाँ रहला भैया देखा जीवांश के मात्रा उ खेत में ज्यादा रहला, तो निश्चित रूप से भैया देखा टिकाऊ खेती समय की मांग, एकरे बारे में शरण सिंह भैया जो रह उनसे अपन अचलू भैया के बातचीत होगी, और निश्चित रूप से भैया देखा दोनों बातचीत के माध्यम से पूरा जानकारी दी है, और हम लोगन भैया देखा गठिया हो जाए।
2: बिल्कुल भैया, तो सुना मैं।
3: श्रोताओं नमस्कार। श्रोताओं आज हम चर्चा करेंगे एक ऐसे विषय पर जो किसान की आय, मिट्टी की सेहत और आने वाली पीढ़ियों के सुरक्षित भविष्य से जुड़ा हुआ है। वह विषय है प्राकृतिक जैविक मृदा संरक्षण एवं जीवांश वृद्धि के लिए। और इस महत्वपूर्ण विषय पर प्रकाश डालने के लिए आज हमारे साथ स्टूडियो में उपस्थित हैं शिवशरण सिंह भैया, जो कि कृषि विशेषज्ञ हैं, जनपद सोनभद्र के मियोरपुर ब्लॉक के बनवासी सेवाश्रम गोविंदपुर से जुड़े हुए हैं। सर आपका स्टूडियो में आने के लिए बहुत बहुत धन्यवाद भैया।
4: नमस्कार सर।
3: सर सबसे पहले तो आप हमारे श्रोताओं को ये बताइए कि प्राकृतिक खेती, जैविक खेती और मृदा संरक्षण का आपस में किस प्रकार से संबंध है सर?
4: बहुत बढ़िया सवाल है। देखिए प्राकृतिक खेती और जैविक खेती, प्राकृतिक खेती का मतलब है हम प्रकृति के अनुरूप, प्रकृति के संसाधन है उसका बहुत ही समुचित ढंग से उपयोग करें, ये प्राकृतिक है
3: जी।
4: जैविक में क्या है कि यदि हम एक उदाहरण तौर पर आप देखें तो जो है यदि आप एक हेक्टेयर में कर रहे हैं तो जैविक में यदि आप गोबर की खाद करते हैं, केचुआ की खाद करते हैं तो जो है मतलब वो 24 टन चाहिए कंपोस्ट खाद। आप प्राकृतिक खेती में जीवों के माध्यम से हमें करना है तो हमें जो है जीवामृत, घन जीवामृत, गोबर में जो 1 ग्राम गोबर में गाय के 3,000 करोड़ बैक्टीरिया है, हमें उनको बढ़ा करके गुड़ के साथ बेसन के दे करके उनको जो है बढ़ा करके हम जो है मतलब प्राकृतिक खेती से वो सस्ती खेती होगी, टिकाऊ खेती होगी और स्वास्थ्य और पर्यावरण की अच्छी खेती होगी।
3: जब ये सब करते रहेंगे तो मृदा संरक्षण ऑटोमेटिक हो जाएगा।
4: बिल्कुल
3: जी, जी जी सर। तो जैसे आज के समय में जो किसान भाई काफी परेशान है इस चीज को लेकर के, या ये कह लीजिए कि दिमाग में उनके चल रहा है कि रासायनिक खाद को हम कैसे अचानक से छोड़ सकते हैं, जैविक खेती और प्राकृतिक खेती को अपनाने के लिए,
4: हमें इस बात को एक वैज्ञानिक आधार पर हमें सोचने की जरूरत है
3: जी।
4: कि आप एक हेक्टेयर में जो नाइट्रोजन है हमारे वातावरण में 70,000 टन है और किसानों को चाहिए 120 किलो से 150 किलो तक चाहिए। उस हवा को क्या है कि वो बैक्टीरिया पौधों को देंगे, राइजोबियम है, एजिटोबैक्टर है, और ये गोबर में है, गाय के गोबर में है। हमें इनकी संख्या बढ़ाएंगे तो जैसे आपने हमने कहा कि 120 किलो से 150 किलो पर हेक्टेयर नाइट्रोजन चाहिए किसानों को
3: जी,
4: खेत के लिए। और वह भगवान ने कितना दिया है प्रकृति में, कितना 70,000 टन है
3: जी।
4: तो हमें जो है इन प्राकृतिक जो माध्यम से इन जीवों की संख्या को बढ़ाएंगे तो जो हवा में नाइट्रोजन है वो पौधों को मिलेगा, तो पौधे तो अपने आप सस्ते होंगे
3: जी,
4: अच्छा होगा
3: जी, जी जी। सर जैसे खेत में जीवांश की मात्रा कम हो रही है तो इसको फसल और मिट्टी पे इस पे क्या प्रभाव पड़ता है सर?
4: देखिए जीवांश जब हमारा देश स्वतंत्र हुआ 1950 का एक सर्वे है, 2% से 2.5% तक कार्बन था और आज 0.3 से 0.4 तक पहुंच गया है,
3: घट गया है।
4: तो कार्बन क्या है, ये जीव अंश जीवांश कार्बन है
3: जी।
4: तो धीरे धीरे हम रासायनिक खाद रासायनिक दवा से जीवों को मारते जा रहे हैं, तो उससे कार्बन की हमारा परसेंटेज घट रहा है। और जैसे जैसे जीवों की संख्या बढ़ेगी तो जीवांश कार्बन बढ़ेगा
3: जी।
4: जीवांश कार्बन बढ़ेगा तो हमारी जो है जो जमीन के जो है वो पानी की क्षमता बढ़ेगी, धारण करने की
3: क्षमता
4: जो है, तो उसमें पानी भी कम लगेगा और फसल जो उत्पादन होगा वो पूरा पौष्टिक होगा, सारे तत्व तो उसमें रहेंगे
3: जी। जी तो सर किसान अपने खेत में जीवांश बढ़ाने के लिए ऐसे कौन कौन से सरल उपाय अपना सकते हैं या कम लागत वाले उपाय अपना सकते हैं जीवांश बढ़ाने के लिए?
4: उसमें एक तो जो भी आप फसल अवशेष है उसको जलाएं ना, उसको आप कंपोस्ट बना करके मल्चिंग करके, प्लास्टिक से मल्चिंग न करके जो अवशेष हैं उससे मल्चिंग करें। और किसान भाई आप केवल वैसे ही गोबर आप देते हैं रखा हुआ, आप उसमें जो है थोड़ा सा जो है गुड़ मिला दें और चूनी मिला दें और उसमें पानी के साथ 1 महीना तक कर दें, तो उससे बहुत सारे बैक्टीरियों की संख्या बढ़ जाएगी, उससे जीवांश कार्बन बढ़ जाएगा
3: जी।
4: और जो जीवामृत है घन जीवामृत है आप इसके प्रयोग से जीवों की संख्या बढ़ने से आपका जो है जैविक कार्बन बढ़ जाएगा
3: जी। जी तो जैसे सर भी आप बताएं कि जो भी फसल अवशेष हैं उन्हें खेतों में जलाना नहीं चाहिए, कई भाई लोग अभी इसको अनदेखा कर रहे हैं, तो अगर मान लीजिए ऐसा अनदेखा अगर वो कर रहे हैं तो उन्हें नुकसान क्या हो सकता है या हमारी मृदा को क्या नुकसान है उससे?
4: हमने जैसे आपसे कहा कि जो जितना जीवांश कार्बन अच्छा होगा उतनी जमीन हमारी स्वस्थ होगी, तो जलाने से तो जो हमारे जो बैक्टीरिया हैं जो जीवांश हैं वो तो मर जा रहे हैं
3: जी।
4: इससे बहुत बड़ा फायदा होगा कि आपका सारे जीव तो हम तो बढ़ाने की बात कर रहे हैं, अब वो आग लगाएंगे तो हमारे जो केचुए हैं हमारे जो और बैक्टीरिया है मूत्र कीट है वो सब मर जाएंगे
3: जी। तो सर जैसे इसको विकल्प के तौर पे कैसे यूज किया जा सकता है, इसको कैसे प्रयोग कर सकते हैं?
4: कंपोस्ट बना करके पराली बिल्कुल नहीं जलाना चाहिए, है ना, उससे बहुत नुकसान है और वो पर्यावरण के लिए भी और खेत के लिए भी जो है, तो इसको कंपोस्ट बना करके गड्ढे में के अंदर भी और वैसे भी जो है मल्चिंग से वो अपने आप जो है बैंगन की खेती है और भी जो खेती है उसमें से आप मल्चिंग कर देंगे, 6 महीने बाद वो सड़ जाएगा अपने आप हो जाएगा, घास भी नहीं जमेगा।
3: यही हमारा अगला प्रश्न भी है सर कि प्राकृतिक खेती में जीवामृत हो या घन जीवामृत हो, बीजामृत हो या मल्चिंग, इसकी भूमिका क्या है सर, हमारे किसान भाई को अगर बताना चाहें?
4: देखिए जो है जो बीजामृत है ना, इसमें यदि आप बीजामृत करते हैं तो इसमें जो नुकसानदायक बैक्टीरिया हैं खेतों में और बीज में भी हो सकता है, तो इससे जो है शोधन करने से बीजामृत से उसमें आपका बीज बिल्कुल स्वस्थ होगा और बीज स्वस्थ होगा तो उसमें किसी भी तरह की जो है वो हमारी जमीन भी स्वस्थ होगी, बीज भी स्वस्थ होगा, उसमें बीमारी किसी तरह की नहीं लगेगी
3: जी। बहुत सही तरीके से सर बताया आपने। और सर इस समय बरसात का मौसम चल रहा है और बरसात का कोई अपने जनपद में क्योंकि भौगोलिक दृष्टि से देखा जाए तो काफी असमान स्थिति रहती है, कहीं बहुत ज्यादा बारिश हो जाती है तो कहीं बिल्कुल नहीं बारिश होती है, तो ऐसी स्थिति में जो वर्षा जल संचयन है इसको हमारे किसान भाई वर्षा जल संचयन कर सकते हैं इसके लिए?
4: सब तो सबसे बढ़िया है जो किसान अपने स्तर से करता है कि जहाँ पर ढलान है वहाँ पर थोड़ा मेड़ बनाए, सीधे पानी बहने न दें और जो ढलान के विपरीत जुताई करें तो मिट्टी नहीं बहेगी, मिट्टी नहीं कटेगी तो आपका जीवांश नहीं बहेगा
3: जी।
4: तो ये सबसे बड़ी बात है कि आप छोटे जितना भी अपने छोटे छोटे स्तर पर जो है आप मेड़बंदी करें और मेड़ों पर पेड़ लगाएं और ढाल के विपरीत जुताई करें, तो उससे मिट्टी कटान नहीं होगा
3: ये सब सलाह सर केवल मृदा संरक्षण के लिए और आपके जीवांश की वृद्धि के लिए बहुत अच्छे तरीके से सर बताया। और फसल चक्र की सर इसमें क्या उपयोगिता है?
4: फसल चक्र में जैसे क्या है कि आप देख रहे हैं कि जो दलहन फसल है ना, यदि हम वो हवा के हिसाब से बात कर नाइट्रोजन इकट्ठा करना वो, तो जब हम फसल चक्र करते हैं, यदि आपने दलहनी फसल किया तो उसमें अगली फसल को काफी हमको खाद कम देना पड़ेगा, तो ये किसान के लिए बहुत फायदा है कि फसल चक्र करने से हमें खाद का जो है वो प्रकृति से ही पूरा हो जाता है।
3: जी, मतलब जो हम हमारे चर्चा का मुख्य बिंदु है कि कैसे हम जीवाश्म को बढ़ाएं और मृदा संरक्षण की बात करें, तो ये सब चीजें हम हमारे लिए काफी उपयोगी होंगी हमारे किसान भाइयों के लिए। सर, रासायनिक उर्वरकों का संतुलित उपयोग थोड़ा बहुत भी जरूरी है अगर, तो वो कितना कर सकता है किसान भाई, और अधिक प्रयोग करें अगर तो उसका नुकसान क्या हो सकता है? सर,
4: असल में यदि हम रासायनिक उर्वरकों की बात करें तो उससे क्या हुआ कि आप जो है एक तो हमारे जो जीव मर रहे हैं उससे जो है, और दूसरा क्या कि हमारी मिट्टी कड़ी हो जा रही है
3: जी
4: रासायनिक उर्वरकों के प्रयोग से,
3: मतलब नमीपन खत्म हो गया,
4: नमीपन खत्म हो गया, जो पानी बरस रहा है वो नदी में चला जा रहा है, वो पानी जमीन नहीं सोख रही है
3: जी।
4: तो ये जो है यदि हम इस्तेमाल करते हैं तो आपका जो है जमीन सोखेगी तो निश्चित रूप से मृदा कार्बन बढ़ेगा।
3: जी जी सर, किसानों से मुलाकात होती रहती है अक्सर, तो छोटे किसान और जो सीमांत किसान है ये लोग चर्चा करते हैं कि ये सब चीजें जो है जैविक खेती प्राकृतिक खेती वो बड़े किसान ही अपना सकते हैं। छोटे किसान और सीमांत किसान अगर इसे अपनाना चाहें तो इसकी शुरुआत वो कैसे कर सकते हैं?
4: जैसे हमने कहा कि नहीं, ये भ्रम है, ये हम किसानों से भी कहते हैं, किसान भाई ज्ञान आपके पास है, आप भी ज्ञान जोड़िए
3: जी,
4: जो है आप देखिए कि आपका जैसे कि क्या है कि घर में भी यदि आप खाना खाते हैं तो पका हुआ भोजन करते हैं, ऐसे आपके पास चावल है तो चावल पेट में नहीं चला जाए, वो पकाते हैं, अब पकाने की बहुत सारी विधाएं, बहुत सारे सामान है, उसी तरह से जो आप खाना देते हैं, जो आपका वर्मी कंपोस्ट है, जो भी खाद देते हैं, वो पौधों का भोजन नहीं है, वो जीव खाते हैं, जीव इसलिए कहते हैं जीवांश कार्बन वो पौधों का भोजन है। तो आप जो है आप बैक्टीरियों को बढ़ाइए, आपके पास गोबर है अभी भी है तो उसमें से जो है मतलब आप गुड़ डाल के बेसन डाल करके और यहाँ की जो मिट्टी जहाँ पर हम खेती नहीं करते वहाँ की जीवांश ठीक है तो उनमें जो है उनकी संख्या को, किसान भाई आप जैविक विधियों से ही आप सस्ता खेती करेंगे, स्वास्थ्य के लिए अच्छा करेंगे तो वो तो संभव है। और इसलिए तो आज क्या हुआ कि रासायनिक खाद रासायनिक दवा और हर कुछ जो है आप खरीद बाजार आधारित है, इसलिए किसान आज खेती से अपना मोड़ रहा है
3: जो है। जी सर, हम एक छोटा सा उदाहरण चाहेंगे आपसे कि किसी के उदाहरण के माध्यम से आप बताइए कि हमारे जो छोटे किसान हैं इस किस विधि से, मतलब कौन सी विधि अपना करके जो है इसको मृदा जीवांश को बढ़ाने में अपनी भूमिका निभा सकते हैं।
4: किसान भाई आप जो भी है, एक तो आपके पास जो भी अवशेष है उसको आप सड़ाइए, और दूसरा है कि आप जो है जीवामृत घन जीवामृत अलौकिक खाद है आप इसका प्रयोग करिए, आप जीवांश को बढ़ाइए, बैक्टीरिया को बढ़ाइए, और बैक्टीरिया जो है हवा में जो नाइट्रोजन है, जो जमीन में फास्फोरस है, पोटास है, वो देंगे तो आपका पैसा बचेगा, क्योंकि वो आपके साथ प्रकृति का ही है। खेती का पहला सिद्धांत है कि प्रकृति में हमारी जितनी हमारी सहभागी मित्र हैं वो सब लोग आपकी मदद करेंगे
3: जी।
4: तो आपकी प्राकृतिक खेती बहुत सस्ता है जो है, बस आप प्रकृति के जो कीड़े हैं, जो केचुए हैं, जो बैक्टीरिया हैं, जो हमारे मित्र, इनकी संख्या बढ़ाइए, आप इसमें विज्ञान जोड़िए, निश्चित रूप से आपका जो है वो खेती फायदेमंद होगा, विकास होगा।
3: जी सर, तो बहुत ही अच्छे तरीके से सर बताया, और लेकिन अंत में हमारे चलते चलते हमारे किसान भाइयों को इसके और कुछ विशेषता अपने संदेश के माध्यम से बताएं।
4: किसान भाई आप, हम आपसे एक निवेदन कर रहे हैं कि आप इसको बहुत अच्छी तरह से समझिए कि आपके पास जो प्रकृति में जो भी चीजें हैं, आप हमारे इलाका में जो है बहुत सारे ऐसी जड़ी बूटी हैं जिसमें आप प्राकृतिक आप कीट नियंत्रण दवा बना सकते हैं, 10 पत्ती अर्क बना सकते हैं जो है वो बहुत सस्ता होगा, और अब जो आपके पास है आपके घर के पास है वो बाजार से बढ़िया है, ये अवधारणा यदि किसानों के पास आ जाएगी तो निश्चित रूप से किसान फलीभूत होगा।
3: जी सर, तो बहुत अच्छे तरीके से आपने सारी चीजों को बताया। सर, आपने प्राकृतिक खेती, जैविक खेती, मृदा संरक्षण और जीवांश वृद्धि जैसे महत्वपूर्ण विषयों पर अत्यंत ही सरल और उपयोगी जानकारी हमारे श्रोताओं तक पहुंचाई। हमें विश्वास है कि किसान भाई बहन इन सुझावों को अपनाकर अपनी मिट्टी के सेहत को सुधारेंगे, खेती की लागत घटाएंगे और टिकाऊ कृषि की दिशा में आगे बढ़ेंगे। इन्हीं शुभकामनाओं के साथ आपका आकाशवाणी स्टूडियो में पधारने के लिए बहुत बहुत धन्यवाद।
4: आपको धन्यवाद सर, पूरे स्टूडियो को।
5: ये कहानी है एक गृहिणी और उसके अंतर्मन की।
6: बिजली का बिल, किराना, स्कूल फीस, सब हो गया।
7: बन गया बजट?
6: हाँ, 5,000 बच गए।
7: तो नई साड़ी ले ले?
6: ना, पिछले महीने तो ली थी।
7: एक और?
6: नहीं, पहले बजट बनाओ, फिर छोटी छोटी बचत को बैंक में सेव करो और पैसों को बढ़ते देखो।
7: बढ़िया,
6: जाओ भाई।
8: RBI कहता है,
9: वित्तीय समझदारी समृद्ध नारी।
10: गाइए, गुनगुनाइए, कहिए हमसे दिल की बात।
11: आपकी फरमाइश पर हम चलेंगे म्यूजिकल रिदम के साथ।
12: हेलो,
10: फिर क्या, फोन उठाइए, वॉल्यूम बढ़ाइए,
11: जो चाहे वो ट्रैक सुनाइए।
10: डायल करिए 0544529710 मंगलवार और शुक्रवार दिन में 11 बजे से।
11: हेलो फरमाइश, योर म्यूजिक, योर स्टाइल,
10: ओनली ऑन AIR ओबरा।
1: मुराला भैया, देखिए कितना बढ़िया जानकारी हम लोगन टिकाऊ खेती के बारे में सुन ली है। शिव शरण सिंह भैया से जोन बाकी अचलू भैया के बातचीत भैलक और भैया कलन के भैया देखा, मिट्टी में जितना ही जीवांश के मात्रा हम लोगन बढ़ाए उतना ही भैया देखा हम लोगन के खेती में लागत कम आई और पैदावार भी बढ़िया मिली।
2: निश्चित रूप से जोन प्राकृतिक खेती हो भैया, पर्यावरण के लिए भी बहुत अनुकूल है, ऐसे जोन बाकी हम लोग प्राकृतिक खेती पर बहुत निर्भर रह के चाहिए
1: एकदम,
2: क्योंकि धीरे धीरे जो हम लोग रासायनिक खाद दवा के प्रयोग करते हैं अधिकाधिक, ऐसे जोन बाकी मिट्टी की मृदा खत्म हो रहा है
1: एकदम।
2: एक अगर हम लोग के संरक्षित करे के है तो निश्चित रूप से हम लोग के प्राकृतिक खेती पर निर्भर होए के पड़ी। अब एक खातिर सबसे पहले खेत के मेड़ पर पेड़ लगावे के होगी और जोन बाकी पेड़ से जोन पत्ती गिरी वो सड़ करके जब खेत में जाए तो ओकर जोन बाकी जीवांश बढ़ाई भी आ।
1: बिल्कुल बिल्कुल,
2: तो बात कही हम लोग के भी और हुई, लेकिन आज जोन बाकी कुछ रेडियो रिपोर्ट भी हो हम लोग के।
1: अच्छा अच्छा,
2: ओके बारे में भी हम लोग के सुने के बहन की कहाँ से हो भैया, तो
1: बताओ।
2: संस्कृति विभाग वाराणसी द्वारा गुरु नानक बालिका इंटर कॉलेज रावसगंज सोनभद्र में भू जल सप्ताह के अंतर्गत घटता भू जल स्तर कारण और निवारण विषय पर आयोजित संगोष्ठी की रेडियो रिपोर्ट है और एक स्थल ध्वनियांकन सौरभ तिवारी जी हों, वाचन और संपादन अचल श्रीवास्तव, प्रस्तुतकर्ता सचिन कुमार वर्मा जी हों।
1: अच्छा अच्छा,
2: का कुछ आज के ये संगोष्ठी में हो रहा है उन्हीं लोगों की जबानी सुनल जाए भैया।
1: बिल्कुल सुनल जाए भैया।
3: श्रोताओं, आप सुन रहे हैं संस्कृति विभाग के क्षेत्रीय पुरातत्व इकाई, क्षेत्रीय अभिलेखागार वाराणसी एवं गुरु नानक बालिका इंटर कॉलेज रावर्सगंज सोनभद्र के संयुक्त तत्वाधान में भूजल सप्ताह दिनांक 16 से 22 जुलाई 2026 के अंतर्गत डॉ. कुसुमाका श्रीवास्तव जी की अध्यक्षता में 3 दिवसीय कार्यक्रम की रेडियो रिपोर्ट। श्रोताओं, इस कार्यक्रम के अंतर्गत घटता भूजल स्तर कारण और निवारण विषय पर संगोष्ठी का आयोजन किया गया। संगोष्ठी में वक्ताओं ने अपने विचार रखे। इस कार्यक्रम में वृक्षारोपण, निबंध प्रतियोगिता, चित्रकला प्रतियोगिता का भी आयोजन किया गया। कार्यक्रम की शुरुआत आयोजन में आए आगंतुकों के स्वागत में प्रस्तुत विद्यालय के बालिकाओं द्वारा स्वागत गीत से हुआ।
13: हर्षित

0: इतिहासकार श्री दीपक कुमार केसरवानी जी कार्यक्रम की रूपरेखा प्रस्तुत करते हुए।
1: शासन के मंशा के अनुरूप संपूर्ण उत्तर प्रदेश भर में भूजल सप्ताह मनाया जा रहा है। 16 जुलाई से लेकर 22 जुलाई तक विभिन्न विद्यालयों, सार्वजनिक संस्थानों, प्राइवेट संस्थानों में इस कार्यक्रम का आयोजन किया जा रहा है। इसी क्रम में हमारे जनपद सोनभद्र मुख्यालय रॉबर्टसगंज के गुरु नानक बालिका इंटर कॉलेज के परिसर में यह कार्यक्रम आयोजित किया गया है। इसके अंतर्गत भूजल का घटता स्तर एवं कारण निवारण इस विषय पर एक संगोष्ठी का आयोजन किया गया। इस संगोष्ठी में कार्यक्रम के अध्यक्ष डॉक्टर कुसुमाकर श्रीवास्तव जी, मुख्य अतिथि दीपक कुमार केसरवानी, विशिष्ट अतिथि एवं मुख्य वक्ता रवि प्रकाश चौबे जी एवं डॉक्टर दिवाकर श्रीवास्तव जी, सरदार जसवीर सिंह जी। आज जल संकट है पूरे देश में, और कभी किसी वैज्ञानिक ने कहा था कि अगला विश्व युद्ध यानी तीसरा विश्व युद्ध जल के लिए होगा। जल है तो कल है, कल है तो जल है। जल संरक्षण के लिए सबसे अच्छा उपाय ये है कि हम पर्यावरण को शुद्ध रखें, वृक्षारोपण कराएं, और हमारे जो खेती किसानी करने वाले कृषक हैं वो फौहारों के माध्यम से अपने खेतों में सिंचाई करें एवं हम जल की बर्बादी को रोकें। जैसे जल जो बाथरूम में हम यूज करते हैं, जो हम आरओ का पानी यूज करते हैं उसमें बहुत से जल बर्बाद होते हैं इत्यादि, हम छोटे छोटे अपने कारनामों पे अगर रोक लगाएं तो जल संचयन हो सकता है। और इसका सबसे बड़ा साधन यह है कि जहां हमें जगह मिले, चाहे घर के आंगन में, खेत में, खलियान में, गमलों में, हम वृक्ष लगाएं। आप अगर एक वृक्ष लगाते हैं तो इसका मतलब यह है कि आप अपने घर के वातावरण को शुद्ध कर रहे हैं। अभी माननीय प्रधानमंत्री नरेंद्र भाई मोदी जी ने एक नारा दिया था वन महोत्सव के अंतर्गत, एक पेड़ माँ के नाम। वो नारा इसलिए दिया कि अगर हम अपने माँ के नाम का पेड़ लगाएंगे तो हम इसे अपने प्राणों से ज्यादा इसका संरक्षण करेंगे, इसका बचाव करेंगे, इसका रखरखाव करेंगे।
0: भूवैज्ञानिक दिवाकर श्रीवास्तव जी द्वारा पानी रिचार्ज कैसे करें इस पर प्रकाश डालते हुए।
2: पानी को रिचार्ज कैसे करें, पहले सरकार वर्ग चार के अंदर में कई जगह जगह पे गड्ढे, तालाब ये सब बनवाती थी, अब वो प्रथा खत्म हो गई। अब आप लोग को देखना है कि तालाब कहीं जहां पर भी है उसको संरक्षित करें। लोग तालाबों को बंद करके मकान बना लिए, तालाब कुआं किसी भी कुएं में आपको पानी नहीं मिलेगा। कुआं बहुत जरूरी है, जब पानी जब कुएं के अंदर रहता है तो वो भी एक स्रोत पकड़ता है, उससे भी पानी नीचे जाता है, और कुआं खुद भी जो पानी का जो सरफेस है उससे भी पानी लेके आता है और अपने आप को रिचार्ज करता है। कुआं, तालाब और रेन वाटर हार्वेस्टिंग, जिसे भी डॉक्टर भैया ने बताया था कि हार्वेस्टिंग करना जरूरी है, तो रेन वाटर हार्वेस्टिंग आप अपने घर से, कार्यालय पे या जो जहाँ भी बड़ी बिल्डिंग है वहां पर अगर रेन वाटर हार्वेस्टिंग की व्यवस्था की जाए तो उस एरिया में पानी धीरे धीरे रिचार्ज होने लगेगा और जल स्तर बढ़ जाएगा। केरल में पानी की बहुत समस्या थी, लेकिन वहां के लोगों ने तालाब और गांव कुएं बना बना करके धीरे धीरे वाटर रिचार्ज करना शुरू किया और आज वहां पानी की समस्या बहुत हद तक खत्म। तो डिप्लीशन ऑफ वाटर टेबल, इसको आप रिचार्ज करके ही कर सकते हैं। अब वो रिचार्ज आपके हाथ में है नहीं, पानी आप बना नहीं सकते, पानी बरसता है वही रेन वाटर को ही आपको रिचार्ज करना है, उसी से रिचार्ज करना है। तो आप रेन वाटर हार्वेस्टिंग करिए, जगह जगह तालाब बनवाइए, कुएं हो, सरकार को या अपना जिससे भी एक लड़की ने नुक्कड़ नाटक किया उस तरह के आप जागरण करें, समाज में जागरण करें ताकि लोग जागृत हों और इस विषय पे ध्यान दें, क्योंकि जल आज है कल नहीं रहेगा। खुला हुआ नल कहीं भी देखें तो जरूर बंद करें, क्योंकि जल संरक्षण बहुत जरूरी है। जीवन में जल से ज्यादा जरूरी कोई चीज नहीं है। एक आदमी अगर पानी खाली पिए तो 7 दिन से ज्यादा जीवित रह सकता है, इसलिए पानी पे आपको बचाना बहुत जरूरी है।
0: जल है तो कल है, इस बात का महत्व बताते हुए पर्यावरण विद रवि प्रकाश चौबे जी।
3: आज देखेंगे कि आज गांव में जाकर के देखिए हजारों तालाब बनाए गए हैं, वाटर टैंक बनाए गए हैं, लेकिन जब बरसात ही नहीं होगी तो हम संसद का संरक्षण क्या करेंगे। बरसात हो इसकी चिंता हम सबको करनी चाहिए, और बरसात तभी होगी जब हमारा वन हमारा पर्यावरण सब बचेगा तब। इसलिए हम सब लोगों को अपने जो हमारा ये वन है उसको बचाना है, और अपने अभी जैसे ऋषिकेश में हम सब लोग देख रहे होंगे सोशल मीडिया न्यूज चैनल के माध्यम से 10-20 मिनट रास्ता को कम करने के लिए वहां 4000 पेड़ काटने की तैयारी हो रही थी और काटे भी गए बहुत सारे, लेकिन जब पूरा ऋषिकेश के सारे लोग समाज के लोग सड़क पर निकले वन में गए खड़े हुए मजबूर कर दिए तो अब कल जो है वहां पर पेड़ों की कटान रुकी है। इसलिए आने वाले समय में सोनभद्र में भी कई लाखों पेड़ काटने के लिए यहां पर तैयारी हो रही है जो हमारा जीवन ही बर्बाद कर देगा, क्योंकि सोनभद्र जो हमारा सबसे ये कैमूर क्षेत्र है यहां पर कई नदियों का प्रादुर्भाव है जिसमें सबसे प्रमुख नदी है बेलन नदी घाघर नदी और कर्मनाशा नदी जिस पर कई बांध बने हुए हैं जो हमारे सोनभद्र ही नहीं सोनभद्र के आसपास के सारे इलाकों को जो है वो जल से सिंचित करते हैं, लेकिन जब वो जो हमारा जल जहां से निकल रहा है जहां पेड़ लगे हुए हैं जहां गुफाएं हैं भित्ति चित्र हैं ऐतिहासिक स्थल हैं उनको नष्ट करके वहां पर प्रोजेक्ट लगाने की बात हो रही है तो वो जो है उससे नाश होगा। जो आकाश में जो बादल चलते हैं पानी लेकर के तो जहां ऑक्सीजन रहता है वहीं पर वो आकर्षित होते हैं और बरसात होती है, लेकिन जब वो पेड़ ही कट जाएगा वन ही कट जाएगा तो आकाश का जो बारिश बरसात जो हमको देती है पानी वह भी हमको पानी मिलना बंद हो जाएगा।
0: वृक्षारोपण और वृक्ष संरक्षण की उपयोगिता बताते हुए पुरातत्व विभाग के राजीव रंजन जी,
4: हम सभी एक अभियान के तहत जुड़े हुए हैं, तो आपने सुबह आकर के सोचा कि हमें पेड़ भी लगाना है। किसके नाम से लगाना है? माँ के नाम से लगाना है, पिता के नाम से लगाना है, भाई के नाम से लगाना है। तो हम यहाँ पर आकर एक संकल्प लेते हैं कि हम सभी आज जा करके अपने घरों में एक एक वृक्ष लगाएंगे। ये बहुत अच्छी चीज है कि हम यहाँ पर आकर के एक संकल्प लेना चाहते हैं कि हमें भी आज अपने घर पर जाकर के एक एक वृक्ष लगाना है। दूसरी चीज ये है कि पुरातत्व विभाग की तरफ से हम आप सभी बच्चों को ये दिखाना चाहते हैं प्रदर्शनी के माध्यम से कि पुरातत्व विभाग क्या करता है। पुरानी इमारतों का रखरखाव करता है, उनका संरक्षण करता है, और जब हम अपने स्मारकों पर जाते हैं तो किस किस तरह की सावधानियां रखते हैं इसके लिए हमें ध्यान रखना चाहिए। पुरातत्व विभाग के साथ साथ हम यहाँ पे पांडुलिपियों का भी आप लोगों को दिखाने का प्रयास कर रहे हैं कि पुरानी पांडुलिपियां कैसी थी और किनके माध्यम से हम लोग उसको रखे हुए हैं सजो कर रखे हैं और आपको आने वाले पीढ़ी के लिए भी उसको हम बचा के रखते हैं जिसकी प्रतियों के माध्यम से आपको हमने यहाँ पे दिखाने की कोशिश की है। तो हम ये चाहते हैं कि आप सभी लोग यहाँ पर आए और अपना अपना संकल्प लेकर अपने अपने घरों को जाएं और एक नई सीख के साथ जाएं। हम सभी का यहाँ पे धन्यवाद करते हैं और यहाँ पर सभी बच्चों को बहुत बहुत आशीर्वाद देते हैं कि आप सभी आप इस कार्यक्रम में सबको सहयोग करें। धन्यवाद।
0: जल संचयन से अपने भविष्य को कैसे संरक्षित करें इस पर प्रकाश डालते हुए गुरु नानक बालिका इंटर कॉलेज के प्रबंधक सरदार जसवीर सिंह जी,
5: ये जो प्रोग्राम आज आप लोग देख रहे हैं क्षेत्रीय पुरातत्व इकाई वाराणसी क्षेत्रीय अभिलेखाकार वाराणसी एवं लखनऊ के द्वारा आयोजित है जिसमें भी आप सबका सहयोग है। आज से 550 साल पहले गुरु नानक देव जी ने ये कहा, पवन गुरु पानी पिता माता धरत महत दिवस रात दोय दाई दाया खेले सगल जगत। उन्होंने उस टाइम जल को जो है पिता के समान कहा और दिवस रात ये जो दिन और रात है इसके अंदर हम सब जो है वो खेल रहे हैं। पानी जहाँ इंसान के लिए जरूरत रखता है वहीं वो पशुओं के लिए मछलियों के लिए जितने भी जीव जंतु हैं सबके लिए पानी बहुत आवश्यक है। इसी को जो कम हो रहा है इसको पूरा करने के लिए किस तरह किया जाए आज हम लोग यहाँ वार्ता कर रहे हैं। मैं पिछले दिनों चेन्नई जाने का मौका मिला, एक ऑपरेशन था आँख का, वहाँ मैंने देखा जहाँ जिस होटल में रुके हुए थे पानी का कोई साधन नहीं था, बड़े बड़े टैंकरों से पानी आ रहा था और होटल के अंदर दिया जा रहा था। मैं देख के हैरान रह गया कि कितना पानी हम लोग यूज कर रहे हैं और पानी नहीं है, जबकि वहां समुद्र है, चाहे तो उसको साफ करके दे सकते हैं, लेकिन वो सारा पानी टैंकरों से आ रहा। जैसा कि सबने कहा, पानी बचाना है। हम लोग कार धोते हैं, टोटी खोल दिया, पाइप से पानी बह रहा है, उसके बाद कपड़ा मार रहे हैं, तो अगर हम एक बाल्टी और मग्गा लेकर के धोएं तो काफ़ी पानी की बचत हो सकती है। आजकल जो टोटियाँ आ रही हैं वो भी सेंसर वाली आ रही हैं, आप खड़े हो जाएं, पानी आएगा, आप हट गए तो पानी बंद हो जाएगा। विदेशों में जब बाढ़ आती है तो उन्होंने नदियों के किनारे और नहरें बना दी, बाढ़ का पानी नदी में जाता है, नदी का पानी फिर उनके खेतों में जाता है, वो बाढ़ के पानी को कभी भी मिसयूज नहीं करते। ये कई जगह मैंने पढ़ा है कि बाढ़ के पानी को वो बिल्कुल अपने यहाँ संचित करते हैं, चाहे उनको जो भी उपाय करना पड़े।
0: सभी को धन्यवाद ज्ञापित करते अपने अध्यक्षीय उद्बोधन के साथ डॉक्टर कुसुमाकर श्रीवास्तव जी।
6: आज गुरु नानक बालिका इंटर कॉलेज के सभागार में हम सब उपस्थित हुए हैं। वो इसलिए उपस्थित हुए हैं कि उत्तर प्रदेश सरकार द्वारा प्रदेश भर में चलाए जा रहे भूजल सप्ताह के अंतर्गत क्षेत्रीय संस्कृति विभाग वाराणसी, क्षेत्रीय पुरातत्व इकाई वाराणसी और क्षेत्रीय अभिलेखाकार वाराणसी और गुरु नानक बालिका इंटर कॉलेज के संयुक्त तत्वाधान में ये कार्यक्रम चलाया जा रहा है। वो कार्यक्रम है घटता हुआ भू जल स्तर। इस पर अभी हमारे पूर्व वक्ताओं ने बहुत विस्तार से चर्चा किया, अभी रवि प्रकाश जी ने पूरा वृत्तांत ही समझा दिया। साधुवाद करता हूँ, धन्यवाद देता हूँ। और हमारे बीच में पुरातत्व विभाग के राजीव रंजन जी हैं, इन्होंने ये जो प्रदर्शनी लगी हुई है बनारस से लेकर के और हमारे जनपद की भी वृत्त चित्र लगे हुए हैं, ये ऐतिहासिक इस धरोहरों को बनारस पुरातत्व विभाग संरक्षित कर रहा है, उसके लिए मैं पुरातत्व विभाग को और राजीव रंजन जी को ढेर सारी शुभकामनाएं देता हूँ कि जो हमारी जो विरासत थी उसको आज उजागर किया जा रहा है। हमारे छात्र छात्राएं, शिक्षक शिक्षिकाएं, उपस्थित सभागार में प्रबुद्ध जन, विद्वत जन, सभी लोग यहाँ उपस्थित हैं, वो इसको देखें, समझें और इसको चरितार्थ करें। तो आज सब लोगों का मैं विशेष रूप से धन्यवाद करता हूँ, विशेष रूप से दीपक केसरी जी का जो विंध्य सोन समिति के निर्देशक हैं, और जसवीर सिंह जी का, ये मेरे बड़े भाई भी हैं, तो उन्होंने जितना समय दिया गुरु नानक इंटर कॉलेज की तरफ से, प्रबंधक की तरफ से, जो इन्होंने यहाँ पर अपना समय देकर के हम लोगों को चरितार्थ किया है, और विशेष रूप से मैं इन छात्र छात्राओं को, शिक्षक शिक्षिकाओं को विशेष रूप से धन्यवाद देता हूँ। जय हिंद, जय भारत।
0: श्रोताओं, अभी आप सुन रहे थे संस्कृति विभाग के क्षेत्रीय पुरातत्व इकाई, क्षेत्रीय अभिलेखागार वाराणसी एवं गुरु नानक बालिका इंटर कॉलेज रावर्सगंज सोनभद्र के संयुक्त तत्वाधान में भूजल सप्ताह दिनांक 16 से 22 जुलाई 2026 के अंतर्गत 3 दिवसीय कार्यक्रम की रेडियो रिपोर्ट। स्थलीय ध्वन्यंकन था सौरभ कुमार तिवारी, वाचन एवं संपादन अचल श्रीवास्तव, प्रस्तुतकर्ता थे सचिन कुमार वर्मा।
7: ये कहानी है एक गृहिणी और उसके अंतर्मन की।
8: बिजली का बिल, किराना, स्कूल फीस, सब हो गया।
9: बन गया बजट?
8: हाँ,
9: 5,000 बच गए।
10: तो नई साड़ी ले ले।
9: ना,
8: पिछले महीने तो ली थी।
9: एक और
8: नहीं, पहले बजट बनाओ, फिर छोटी छोटी बचत को बैंक में सेव करो और पैसों को बढ़ते देखो।
9: बढ़िया,
8: जाओ भाई।
11: RBI कहता है,
12: वित्तीय समझदारी समृद्ध नारी।
13: भला भैया।
14: हाँ भैया।

0: या मन
1: कितना बढ़िया जोन बाकी मन मनसान करोन मोहम्मद खलील और उनकर संगतिया भैया,
0: बिल्कुल
1: आप लोग के भी बहुत बहुत धन्यवाद है। लेकिन सबसे महत्वपूर्ण भैया हम रहो भाई
0: क्या भैया
1: कि इसमें इस साल देखा पानी बड़ा कम अब तक बरसल हो भैया,
0: एकदम एकदम
1: अब तक ताल तलैया भर जाए चाहते रहे बहुत जगह से जोन बाकी झरना भी शुरू हो जाए, लेकिन औसतन देखल जाए तो बहुत कम बा, छिटफुट खाली बरसात हो रहा है और ऐसे में देखा काम बनने वाला भैया नहीं है।
0: एकदम नहीं भैया, देखा अपन खेती पाती भी प्रभावित होते हुए।
1: हाँ हाँ हाँ,
0: और
1: हाँ
0: तो निश्चित
1: कहीं कहीं से जोन बाकी पर्यावरण हम लोग के बढ़िया साथ नहीं दे रहा है भैया।
0: हाँ भैया,
1: एक बड़ा मतलब चिंतन के विषय है कैसे हम लोग पानी अपन संरक्षित करी और कैसे जोन बाकी पानी के बुलाई और कई तरीके जोन बाकी पानी बरसाई एके पर भी हम लोग के ध्यान देने की जरूरत है।
0: एकदम
1: एके खातिर जोन बाकी हम लोग के हरियाली लावे के जरूरी है और तब जाकर कहीं पानी की संकल्पना कर जा सकला भैया। तो आज ऐसने जल शक्ति अभियान के तहत जौन बातचीत है देवेंद्र कुमार यादव जी से कि बारिश के पानी इकट्ठा कैसे करें, मुलाकात हो गई रहे भैया।
0: हाँ हाँ,
1: तो कहा बतियाल है
0: एकदम भैया, एकदम बातचीत करें, बातचीत आप लोग करें और हम लोग भैया देखा एकदम गठिया होता है।
2: सोनभद्र जनपद अंतर्गत दुद्धी ब्लाक के टेढ़ा निवासी श्री देवेंद्र कुमार यादव जी से मुलाकात हो रही है। आप जल संरक्षण के विषय में चिंतनशील व्यक्ति हैं, अक्सर करके गांवों में भी लोगों को यह बताने काम किया करते हैं कि जल से संकट आने की संभावनाएं अधिक बढ़ गई है, जो कि वर्तमान में भी देखा जा रहा है कि तमाम नदी नाले से लेकर के जहां पर झरने अपने आप उत्पन्न होते थे, निकलने लगते थे बरसात के बाद, और बरसात में भी वे अब बिल्कुल सूखा पड़ जा रहे हैं। इसको सतत बनाए रखने की ज़रूरत है कि जल का स्रोत बंद न हो। तो इस प्रकार से क्या इनका विचार है और कैसे जल से संकट उत्पन्न होने की संभावना है, इनसे ही बातचीत होगी। देवेंद्र कुमार जी, आपको आकाशवाणी कार्यक्रम में बहुत बहुत स्वागत है। ये अक्सर करके देखा जाता है कि जल के लिए अभियान भी चलाए जा रहे हैं कि उसको बचाया जाए, कभी कभी तो देखते हैं कि नल में और नाले में भी अनायास के ऐसी पानी बह रहे हैं, क्या कहना चाहेंगे आप?
3: जी, हमको इसमें शामिल करने के लिए बहुत बहुत धन्यवाद भैया। जल संरक्षण के बारे में बहुत लोग सुने होंगे, जल के बारे में कितना कमी होता जा रहा है और जल के अभाव में कितना लोग परेशान है। इसको लोग अगर समझ जाएं
2: जी,
3: तो वास्तव में फिर से पहले जैसा हो सकता है। अब पहले और आज में देखिए कितना अंतर हो गया। पहले पानी ऊपर था
2: जी,
3: कुआं खोद के पानी निकालते थे लोग, शुद्ध जल मिलता था। आज पीने के लिए लोग जगह जगह तरस रहे हैं, जहाँ पानी है वहाँ तो सोच रहे हैं कि बहुत पानी है, पानी बह रहा है, और जहाँ पानी नहीं है ना वहाँ जाके देखिए का हाल है।
2: बिल्कुल,
3: पानी पिया से आदमी पीने के लिए खरीद खरीद के पी रहे हैं भाई।
2: हाँ, हाँ,
3: देख ही रहे हैं शहरवा में आजकल बड़े बड़े टंकी लेके घूमते हैं, देखेंगे 1,000-2,000 लीटर के टंकी लेके घूमते हैं और पानी खरीद के पी रहे हैं।
2: अच्छा, अशुद्ध जल हो रहा है, शुद्ध कर करके
3: पनिया पनिया वो मिल रहा है लेकिन करेगा,
2: शुद्ध नहीं मिल रहा है।
3: और शुद्ध नहीं मिल रहा है तो शुद्ध मिलेगा कैसे?
2: जी,
3: जब शुद्ध रखेंगे तब न मिलेगा। तो बचा ही नहीं रहे हैं लोग।
2: बिल्कुल बिल्कुल,
3: देखिए पानी के अभाव में अभी दुनिया बहुत परेशान होने वाला है, इतना परेशान होने वाला है। अभी बताएं आपको कि हम कहीं पढ़े थे जल संरक्षण के बारे में, 2001 में एक व्यक्ति के पीछे 1800 घन मीटर पानी उपलब्ध था।
2: अच्छा अच्छा,
3: और वही जो आंकड़ा वैज्ञानिक लोग लगाए, आने वाले 2050 में 1000 लीटर मात्र बचेगा, 1000 घन मीटर पानी एक आदमी के पीछे। और यही स्थिति बना रहा तो आने वाले 100-200 साल में क्या होगा?
2: बिल्कुल बिल्कुल,
3: अब समझिए आदमी पानी नहीं बचा रहा है ना, पानी बचाएगा तो बचेगा।
2: हाँ हाँ हाँ,
3: उस पर विचारे नहीं कर रहा है।
2: अच्छा, ये पानी जो है कि जो समाप्त होते चला जा रहा है, तो इसका जो है कि क्या कुछ स्रोत कुछ बंद हो रहे हैं या जो है कि आदमी अव्यय कर दे रहा है?
3: देखिए, इसमें आदमी जो कर रहे हैं ना,
2: हाँ,
3: इन्हीं की करनी से हो रहा है सब।
2: अच्छा अच्छा, मतलब अपने पैर पर कुल्हाड़ी
3: मार रहे हैं। पानी के मेन स्रोत जानते हैं, पहले पेड़ पौधा जहाँ था, ऐसे भी देखे होंगे जहाँ नदी किनारे पेड़ पौधा बहुत रहते थे करार करगी में,
2: वहीं
3: हाँ, से पानी निकलता था।
2: बिल्कुल बिल्कुल,
3: तब पेड़ का जो जड़ है ना वो भी पानी का स्रोत देता है। और ऐसे हूँ देखिए, पहाड़ी क्षेत्रों में क्या है, पानी बहाए नाली में गया, नाली में से नाला में, बड़ा नाला में गया, बड़ा नाला में से चला गया नदी में, नदी में से चला गया समुन्द्र में।
2: बिल्कुल बिल्कुल,
3: तो अब समुन्द्र जितना नीचे है उतना नीचे हमारा पानी भी धीरे धीरे जाएगा। और वह पनिया अगर गड्ढा खोद खोद के जगह जगह पर रोक दिया जाए तो वह पनिया सीधे जहाँ आप यूज किए पानी जो यूज हुआ उसके बाद फिर वही पानी गड्ढा में डालेंगे, गड्ढा में सीधे जमीन में सोखेगा उसको, तो जल स्तर बना रहेगा।
2: बिल्कुल बिल्कुल। और पहले जो है कि पनघट हुआ करता था, थोड़ा थोड़ा चुवाड़ी खोद करके हमें का जन बाकी प्रकृति द्वारा झरना जो निकलता था,
3: प्रकृति द्वारा निकलता था,
2: उससे जो है कि लोग भर करके और जो है कि एकदम स्वच्छ जल पान करते थे। और आज तो पनघट भी भूल जा रहे हैं लोग।
3: आज कहाँ पनघट, आज तो टोटी खोल दिए, बिगड़ गया तो खुले रहता है। उसका जो टोटी का जो वो है बटन है उसका सिस्टम, वो जहाँ से टंकी है पानी का वहीं लगा हुआ है समझिए, वहाँ खुला आते, दिन भर खुला वहाँ बंद, दिन भर बंद। आदमी ध्यान नहीं देता इस पर।
2: बिल्कुल,
3: ये सब चीज है। जैसे नहा रहे हैं तो चल रहा है मोटर, तो चल रहा है, नहा रहे हैं, एक बाल्टी से नहाना है, 100 बाल्टी बहाना है, ऐसे कहाँ से होगा, ऐसे जल तो भाई कमी हुई भी करेगा इसे।
2: बिल्कुल बिल्कुल।
3: तो इस तरह जैसे आदमी पीने खाने के लिए भी यूज करता है, बर्तन भी धो रहा है तो टब में पानी भर के धोए, नहाना है बाल्टी में भर के नहाए
2: जी,
3: और जो भी पानी बह रहा है के लिए गड्ढा बना दिया जाए आगे।
2: हाँ,
3: वो गड्ढे में जाएगा पानी, फिर जमीन सोखेगा तो फिर जल स्तर बना रहेगा। इसमें सिंचाई में भी लोग बहुत बर्बाद कर रहे हैं।
2: अच्छा अच्छा।
3: अब सिंचाई में देखिए किसान लोग क्या करते हैं कि बोर करा दिए।
2: हाँ।
3: आजकल 100 फीट 150 फीट 200 फीट बोर करा दिए। बोर कराने के बाद जिस खेत में पानी डालना है, लाइट आया तो मोटर चल गया, चल रहा है तो चल रहा है,
2: चल रहा है,
3: लाइट
2: चल
3: कटा है तो मोटर बंद है।
2: अब कहाँ जा रहा है,
3: कहाँ जा रहा है कोई पता नहीं है।
2: बिल्कुल, बिल्कुल।
3: जिसमें सिंचाई हो गया है उसी में बराबर चलते जा रहा है, चलते जा रहा है। तो पानी तो कमी हुई भी करेगा,
2: पानी कमी होगा,
3: और पानी कमी होगा आगे इसको पछताना पड़ेगा लोगों को।
2: बिल्कुल बिल्कुल। और जहाँ सबसे महत्वपूर्ण तो अभी जो आप पनघट के बात किए और जो है कि जो वहाँ से जाकर के लोग पानी लाना, एक दूसरे से हालचाल करना और फिर जो है कि शुद्ध जल का बात, एक दूसरे से बात विचार अच्छा होना,
3: वो
2: पहले तो वो तो वो सही हुआ। दूसरी बात जो ये बहाव वाली जो नदियां थी उसमें जब जाकर के आदमी स्नान करता था तो एक तो निरोग ऐसे रहता था,
3: निरोग रहता था।
2: दूसरी बात शरीर में उतने पानी लगता था
3: जितना जरूरत
2: था, बाकी पानी तो उसी में चल ही रहा है, बह रहा है,
3: बाकी वही था। नदी नदी समुन्द्र में, समुन्द्र से आकाश में, आकाश से फिर नदी में, वो चल रहा था। जमीन के अंदर का जो पानी था
2: बिल्कुल
3: वो पानी बचा रहता था,
2: बचा रहता था।
3: लेकिन अब क्या है, जमीन के अंदर से निकाल के नदी में बहा दिए, हो गया समुद्र में, फिर उड़ा वो तो जल चक्र में बन गया, समुद्र से आकाश में, आकाश से नदी में, नदी से फिर समुद्र में।
2: हाँ,
3: तो
2: हाँ,
3: मटिया में कहाँ से पनिया मिलेगा,
2: मटिया में कहाँ से मिलेगा। बिल्कुल। तो ये जो है कि एक तो आपने बताया जो बोर करने की बात, तो आज कुआं में भी पानी बहुत कम मिल रहा है, यानी कि बोर से बहुत नीचे चल जाता होगा।
3: अब भाई बोर कराएंगे 200 फीट 150 फीट नीचे, कुआं आपका है 30 फीट का,
2: जी जी,
3: अब 100 फीट नीचे से पानी निकाल रहे हैं तो 30 फीट पर कैसे पानी मिलेगा आपको,
2: नहीं मिल पाएगा,
3: पानी नीचे जाएगा ही।
2: तो चूंकि रेडियो के माध्यम से आपको बहुत लोग सुन रहे हैं,
3: जी जी,
2: पंच लोग भी सुन रहे हैं, किसान भाई लोग भी सुन रहे हैं,
3: जी जी जी,
2: तो ये जो है कि क्या इनके हाथ में है पानी बचा पाना?
3: बिल्कुल बिल्कुल, इन्हीं के हाथ में है।
2: हाँ, हाँ।
3: सब हम लोगों के हाथ में ही है, हम लोग करेंगे तभी होगा, नुकसान तो हम लोग कर रहे हैं।
2: हाँ, अच्छा,
3: तो
2: सरकार की योजना चलाने से बहुत नहीं है,
3: सरकार की योजना तो
2: केवल ज्ञान बताने के लिए,
3: योजना जो चला रही है सब ठीक है, लेकिन हमें उस पर अमल करना है, हम तो अमल नहीं कर रहे हैं
2: जी।
3: अभी हर घर जल योजना का ये नाली पाइप बिछाया जा रहा है, बनाया जा रहा है, अब सरकार तो लगा दिए, टोटी लगा दिया, नल लगा दिया,
2: आंगन में
3: लगा दिया। अब आपका क्या करेंगे कि एक नल खराब हो गया, वाल्व खराब हो गया 15 रुपया के, अब उसको लगाएंगे नहीं, दिन भर बहाते रहेंगे।
2: बिल्कुल बिल्कुल,
3: तो वही चीज है।
2: अब कहाँ कहाँ जाए की
3: सरकार कहाँ कहाँ ढूंढेगी, आपके आंगन में देखने
2: जाएगी, आपके सदुपयोग के लिए, आपके सहयोग के लिए किया जा रहा है, आप असहयोग करेंगे
3: और सरकार, आप सोचेंगे सब सरकार करे, अब मुंह में थोड़ी डालेगा सरकार।
2: बिल्कुल बिल्कुल,
3: सरकार तो कर ही रही है।
2: बिल्कुल, बहुत बढ़िया बात। अब जैसे कि अभी आप जो पनघट के बात किए थे, हमको गुधोली वाला भी बात समझ में आया कि पहलवा जोन बाकी जो पशु सुबह सुबह चले जाते थे और पानी पी करके दिन भर उधर जंगल चरते, गुधोली बेला जोन बाकी
3: गुधोली बेला आ जाते थे,
2: शाम के जोन जो है कि भाई उनके पैर से जो धूल उठता था, यही समय होता था कि जो है कि
3: गोधूली कहते हैं,
2: हाँ उसी को गोधूली कहते हैं, कि सूर्यास्त हुआ पर अंधेरा नहीं हुआ,
3: अंधेरा नहीं हुआ,
2: उसी समय जो बखत आता था पशु लोन के,
3: वही बेला गोधूली।
2: हाँ, उ लोग के राज्य से भी और उ लोग के जो बाकी चलन से, खान पान से भी, ये बहुत मतलब जहाँ जल संरक्षण की बात आती है वो भी सब बड़ा कारगर में
3: हाँ,
2: है।
3: हाँ, हाँ,
2: तो जैसे

0: पेड़ पौधे के बारे में आपने कहा,
1: हाँ,
0: तो पेड़ पौधे कितना कारगर है ये इसको रोकने के
1: पेड़
0: लिए?
1: पौधे जल बचाव के लिए और बरसात के लिए बहुत ज़रूरी है।
0: अच्छा
1: देखिए, एक तो बरसात पेड़ पौधे को ऐसे होता है,
0: हाँ
1: आंधी को तूफान में पेड़ ही बदलते हैं, शुद्ध हवा पेड़ ही लाते हैं,
0: जी जी जी
1: और बारिश भी पेड़ ही कराते हैं।
0: हाँ
1: और दूसरी बात कि जो पेड़ के जड़ है,
0: हाँ
1: जड़ जहाँ भी पेड़ है वहाँ जलस्तर हमेशा बना रहता है ठीक
0: बना
1: ठाक,
0: रहता है।
1: और जहाँ पेड़ पौधे नहीं हैं वहाँ जलस्तर नीचे चला जाता है।
0: जी
1: वैसे
0: जी
1: भी
0: जी
1: बताया ना कि जैसे नदी नाला किनारे देखेंगे, जहाँ पेड़ है वहाँ से अपने आप पानी निकलता है, झरना।
0: हाँ निकलता है, जो कि बिल्कुल पहाड़ी पर
1: हाँ
0: और वहाँ से झरना चल रहा है, तो वहाँ कौन सा जो है बाकी जलस्तर, अब लोग खोजता है कि नदी नीचे है
1: नदी नीचे है
0: तो
1: तो
0: वहीं से पानी
1: हाँ,
0: निकलेगा,
1: अगर पानी ऊपर से आ रहा
0: वो
1: है पहाड़ी
0: ऊपर से
1: पर से,
0: पानी निश्चित रूप से अब पेड़ पौधा की वजह से
1: पेड़
0: ये
1: पौधे की वजह
0: है।
1: से ये सब होता है। पानी, देखिए पानी के बारे में हम लोग क्या कहें, आप सुनिए कि आप सुने उनको
0: रहीम
1: रहीम
0: जी
1: जी को
0: बिल्कुल बिल्कुल
1: कब
0: बिल्कुल
1: के कभी उस दिन कितनी
0: हाँ हाँ हाँ
1: विचारशील, उनको दार्शनिक समझिए,
0: बिल्कुल बिल्कुल
1: उस दिन कह गए, वो कहे थे ना, रहिमन पानी राखिए बिन पानी सब सून, पानी गए न उबरे मोती मानुष चून।
0: बिल्कुल
1: तो
0: बिल्कुल
1: इसमें सब पानी का तो है, लेकिन इहो पानी का
0: ये
1: इसमें
0: भी
1: मतलब
0: पानी
1: है।
0: का जिक्र
1: हाँ,
0: है
1: इस पानी का
0: बिल्कुल
1: भी जिक्र है।
0: हाँ। तो मुराव भाई देखा आपो बड़ी ध्यान से सुनत हो और आपो से बातचीत हो जाए कि पानी की बहुत आवश्यकता है और पेड़ पालों से बहुत एक संग्रहित किया कर जा सकला।
2: एकदम दिया,
0: तो भैया देखते कि आपके हाथ में पाती भी हो।
2: एकदम पाते भी है, बिंदा में से अपन राजेश भैया भेजले हुए,
0: हाँ हाँ
2: और
0: हाँ
2: बाजार भाव हमेशा हम लोगों के अपने कार्यक्रम में जाला, तो भैया कुंतल में हुए
0: अच्छा बताओ
2: टमाटर
0: भैया
2: 2500 रुपया कुंतल, लौकी 1000 रुपया कुंतल, भिंडी 1200 रुपया कुंतल, नेनुआ 1000 रुपया, प्याज रहले 2800 रुपया कुंतल, आलू 1100 रुपया, मक्का रहले 1000 रुपया कुंतल, मिर्चा 6000 रुपया, करेला 3500 रुपया कुंतल, कुंदरू 2000, बैगन 1200 रुपया कुंतल, बोरा 1600, मूली रहले 2500, परवल 2500 रुपया कुंतल, और कटहल रहले 700 रुपया कुंतल, खीरा 2000 रुपया कुंतल,
0: अच्छा
2: और
0: भैया
2: नींबू के भाव यह देखा गिरत हुए, यह देखा 100 से 150 रुपया प्रति सैकड़ा
0: तो
2: रहा।
0: राजेश कुमार भैया के भी बहुत बहुत धन्यवाद हो। इस समय मौसम बदलत हो भैया बदलल हो, ऐसे में जो बहुत लोग की तबीयत भी खराब हो रहा हो,
2: बिल्कुल
0: तो ऐसे में संतुलित आहार लेवे की जरूरत हो। तो अब देखते घड़ी की सुई भी इशारा करत हो कि हम लोग के पंचायत यही समेटक चाहिए।
2: एकदम
0: फिर
2: भैया,
0: अगले दिन अगले जानकारी के साथ फिर मुलाकात हुई हम लोग के,
2: एकदम
0: तो का कहा था
2: एकदम चलल जाए भैया, सब पंचन के
0: राम
2: राम राम।
0: राम।

हम आकाशवाणी ओपरा से बोल रहे हैं एफएम 102.7 पर। प्रस्तुत है कार्यक्रम लोक गीत। कार्यक्रम में आज आपको सुनवा रहे हैं मोहम्मद खलील और साथियों के गाए हुए चंद लोक गीत। आरंभ निर्गुण से।

0: गाइए गुनगुनाइए, कहिए हमसे दिल की बात।
1: आपकी फरमाइश पर हम चलेंगे म्यूजिकल रिदम के साथ।
2: हेलो,
0: फिर क्या, फोन उठाइए, वॉल्यूम बढ़ाइए,
1: जो चाहे वो ट्रैक सुनाइए।
0: डायल करिए 0544529710। मंगलवार और शुक्रवार दिन में 11 बजे से।
1: हेलो फरमाइश, योर म्यूजिक योर स्टाइल,
0: ओनली ऑन AIR ओबरा।

आज लोक गीत कार्यक्रम में हम आपको सुनवा रहे थे मोहम्मद खलील और साथियों को, आपको सुनवा रहे थे निर्गुण। इसी के साथ लोकगीत कार्यक्रम अब समाप्त होता है।

हम आकाशवाणी ओपरा से बोल रहे हैं। समय है कार्यक्रम विवरण का। सुगम संसद समीक्षा आप सुनेंगे रात्रि 8 बजे से, और रात्रि 10 बजे का समय रहेगा संसद में आज प्रश्नकाल के दौरान हुई कार्यवाही की रिकॉर्डिंग का। ये दोनों ही कार्यक्रम हम अपने दिल्ली केंद्र से अनुप्रसारित करेंगे। ईमेल आधारित फरमाइशी फिल्मी गीतों का कार्यक्रम म्यूजिक गैलरी का समय आज रात सुनिएगा 10:13 पर। इसके अलावा फिल्मी गीतों के कार्यक्रम में भूले बिसरे गीत कार्यक्रम आप सुनेंगे रात्रि 9:15 पर। समरस कार्यक्रम में शाम 7:31 पर। फिल्म संगीत कार्यक्रम में रात्रि 8:15 और रात्रि 9:30 पर। कार्यक्रम सुगम संगीत का आनंद लीजिएगा रात्रि 8:30 से। हम आपको एक बार फिर से याद दिला दें, संसद समीक्षा होगी रात्रि 8 बजे से। संसद में आज प्रश्नकाल के दौरान हुई कार्यवाही की रिकॉर्डिंग आपको सुनवाएंगे रात्रि 10 बजे से। ये दोनों ही कार्यक्रम हमारे दिल्ली केंद्र से रिले किए जाएंगे। आपकी एमएल आधारित फरमाइशी फिल्मी गीतों का कार्यक्रम म्यूजिक गैलरी का समय आज रात 10:13 का रहेगा। श्रोताओं, अभी आप कार्यक्रम विवरण सुन रहे थे। हम आकाशवाणी ओबरा से बोल रहे हैं FM 102.7 पर। अब से बस थोड़ी ही देर में यानी 7:20 से आप सुनेंगे प्रादेशिक समाचार हमारे लखनऊ केंद्र से। कृपया प्रतीक्षा करें।

0: सेंटर पर यह आकाशवाणी का लखनऊ केंद्र है। शाम के 7:20 होने को हैं। थोड़ी ही देर में प्रादेशिक समाचार प्रसारित किए जाएंगे।
1: ये कस्टमर केयर कहाँ है? हाँ मैडम
2: जी,
1: ये केवाईसी अपडेट के लिए मुझे बार बार मैसेज क्यों आ रहा है?
2: क्योंकि बैंकिंग सेवाओं के लिए निर्धारित समय पर केवाईसी अपडेट करवाना चाहिए।
1: पर ये होगा कैसे?
2: अगर पहचान या पते में कोई बदलाव नहीं है तो अपने बैंक या एटीएम या बिजनेस करेस्पोंडेंट यानी बीसी के पास जाएं, या बैंक में रजिस्टर्ड ईमेल या मोबाइल नंबर या मोबाइल बैंकिंग ऐप या पत्र द्वारा उसका डिक्लेरेशन दें।
1: अच्छा, और अगर कोई बदलाव हो तो?
2: तो ऐसे में पहचान और पते का नवीनतम प्रमाण देकर केवाईसी अपडेट करवा सकते हैं।
1: बस
2: बस
1: समझ गया।
2: अपना केवाईसी अपडेट कराने के लिए अपने नजदीकी ग्राम पंचायत के कैंप या बैंक शाखा में जाएं।
3: आरबीआई कहता है,
4: जानकार बनिए, सतर्क रहिए।
0: आकाशवाणी लखनऊ से प्रस्तुत है प्रादेशिक समाचार। मुख्य समाचार। मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ ने बाराबंकी में 542 करोड़ रुपए की विकास परियोजनाओं का किया शुभारंभ। कहा, एससीआर के विकास से होगा बाराबंकी का विकास। सर्वोच्च न्यायालय ने श्री राम जन्मभूमि मंदिर चढ़ावा मामले में संबंधित पक्षों को राजनीतिकरण न करने के दिए निर्देश। 27 जुलाई को होगी अगली सुनवाई। कांवड़ यात्रा की तैयारियों को लेकर मेरठ में मुख्य सचिव एसपी गोयल और पुलिस महानिदेशक राजीव कृष्ण की बैठक। उत्तर प्रदेश समेत उत्तराखंड, दिल्ली, राजस्थान और हरियाणा के अधिकारी हुए शामिल। और प्रदेश के अधिकांश जनपदों में रुक रुक कर बारिश से शारदा, घाघरा और गंडक नदी पहुंची खतरे के निशान के करीब। मौसम विभाग ने 22 जुलाई तक भारी बारिश का जताया अनुमान। नमस्कार, प्रदेश के समाचारों के साथ मैं मनीषा पाठक। अब समाचार विस्तार से। मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ ने आज बाराबंकी में 542 करोड़ रुपए से अधिक की 82 विकास परियोजनाओं का लोकार्पण और शिलान्यास किया। इस दौरान उन्होंने विभिन्न योजनाओं के लाभार्थियों को चेक, स्वीकृति पत्र और आवास की चाबी भी प्रदान की। कार्यक्रम को संबोधित करते हुए मुख्यमंत्री ने कहा कि स्टेट कैपिटल रीजन एससीआर के विकास के साथ बाराबंकी के विकास के भी नए द्वार खुल रहे हैं। उन्होंने कहा कि सरकार विरासत को संरक्षित करने के लिए प्रतिबद्ध है और इसी कड़ी में लोधेश्वर महादेव कॉरिडोर का विकास किया जा रहा है।
5: हमने भारत के विरासत के प्रतीक बाराबंकी की पहचान भगवान लोधेश्वर महादेव के इस पवित्र मंदिर के कॉरिडोर के लिए भी धनराशि स्वीकृत कर दी है। और आज मैंने देख करके अत्यंत आनंद की अनुभूति हुई, कितना भव्य कॉरिडोर बन रहा है काशी विश्वनाथ धाम की तर्ज पर। और आने वाला हर श्रद्धालु अभिभूत होकर के जाएगा और बदले में आशीर्वाद और धन्यवाद आपको दे करके जाएगा।
0: मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ ने आज स्टेट ट्रांसफॉर्मेशन कमीशन की बैठक में प्रदेश में संचालित प्रमुख आधारभूत संरचना, औद्योगिक विकास, निवेश, जनकल्याण और सेवा वितरण से जुड़ी परियोजनाओं की समीक्षा की। बैठक में मुख्यमंत्री ने जीरो पॉवर्टी अभियान के तहत पात्र परिवारों का अंत्योदय कार्ड बनाने और सभी योजनाओं का लाभ देने के निर्देश दिए। मुख्यमंत्री ने लखनऊ नाइट सफारी परियोजना की समीक्षा करते हुए इससे जुड़ी सभी औपचारिकताएं शीघ्र पूरी कर परियोजना को समय बद्ध रूप से आगे बढ़ाने पर भी बल दिया। सर्वोच्च न्यायालय ने आज श्रीराम जन्मभूमि मंदिर चढ़ावा मामले की निष्पक्ष और समयबद्ध जांच की मांग करने वाली कई याचिकाओं पर सुनवाई की। सुनवाई के दौरान न्यायालय ने इस मामले में एसआईटी के पुनर्गठन पर विचार करने को कहा ताकि जांच बिना किसी रुकावट के आगे बढ़ सके। न्यायालय ने संबंधित पक्षों से इस मुद्दे का राजनीतिकरण न करने के निर्देश भी दिए। मुख्य न्यायाधीश सूर्यकांत, न्यायमूर्ति जॉय माल्या बागची और न्यायमूर्ति वी मोहना की पीठ ने कहा कि राम मंदिर चढ़ावा विवाद अपराध का एक साधारण मामला है और न्यायालय का काम सिर्फ उचित जांच सुनिश्चित करना है। सॉलिसिटर जनरल तुषार मेहता ने न्यायालय को बताया कि आरोपों की जांच के लिए प्रदेश सरकार ने एसआईटी का गठन किया था और अब राज्य पुलिस इसकी जांच कर रही है। मामले की अगली सुनवाई 27 जुलाई को होगी। प्रदेश के मुख्य सचिव एसपी गोयल और पुलिस महानिदेशक राजीव कृष्ण ने आज मेरठ में आगामी कांवड़ यात्रा की तैयारियों को लेकर बैठक की। बैठक में उत्तर प्रदेश के विभिन्न मंडलों के अधिकारियों के साथ ही उत्तराखंड, दिल्ली, राजस्थान और हरियाणा के अधिकारी भी शामिल हुए। बैठक में कांवड़ यात्रा के दौरान सुरक्षा व्यवस्था, यातायात प्रबंधन, श्रद्धालुओं की सुविधाओं और संवेदनशील स्थानों सहित सभी प्रमुख बिन्दुओं पर चर्चा की गई। डीजीपी राजीव कृष्ण ने बताया कि कांवड़ यात्रा को लेकर सुप्रीम कोर्ट के निर्देशों और सरकार के तय नियमों का पालन करते हुए कांवड़ की ऊंचाई, डीजे की आवाज और समेत अन्य पहलुओं को लेकर विशेष सतर्कता बरती जाएगी।
3: इस बार भी जो शासन के माननीय सुप्रीम कोर्ट के जो निर्देश है, कांवड़ की हाइट, कांवड़ के वॉल्यूम डेसिबल और इस साल के कुछ नए चैलेंजेस हैं, महंगाई व्यवस्थाएं हैं, साथ ही साथ कांवड़ के श्रद्धालु है उनको भी एक व्यवस्था के तहत उनके लिए पूरा प्लान बनाया गया है। उस ट्रैफिक के प्लान को आपके माध्यम से, समाचार पत्रों के माध्यम से समय पर सभी को अवगत कराया जाएगा, जिससे कि पहले से जानकारी रहे कि कांवड़ के मार्ग हैं वो क्या रहेंगे। हमारा प्रयास यही है कि सबके
0: भारतीय प्रौद्योगिकी संस्थान आईआईटी कानपुर ग्रीन हाइड्रोजन के क्षेत्र में अनुसंधान और नवाचार को बढ़ावा देने की दिशा में महत्वपूर्ण भूमिका निभाएगा। संस्थान के निदेशक प्रोफेसर मणिन्द्र अग्रवाल ने बताया कि उत्तर प्रदेश ग्रीन हाइड्रोजन नीति 2024 के तहत आईआईटी कानपुर में ग्रीन हाइड्रोजन पर नवाचार और एकीकृत ग्रीन हाइड्रोजन सेंटर फॉर एक्सलेंस इकोसिस्टम इकोजेन की स्थापना की जाएगी। इस प्रोजेक्ट के माध्यम से ग्रीन हाइड्रोजन के उत्पादन से लेकर भंडारण, परिवहन, उपयोग और विभिन्न प्रणालियों के एकीकरण आदि को प्रोत्साहित किया जाएगा। ये समाचार आप आकाशवाणी लखनऊ से सुन रहे हैं। ताजा समाचार जानने के लिए आप हमारी वेबसाइट newsonair.gov.in पर लॉगिन कर सकते हैं। इसके साथ ही आप प्रादेशिक समाचारों का ये बुलेटिन हमारे यूट्यूब चैनल newsonair लखनऊ पर भी सुन सकते हैं। हज कमेटी ऑफ इंडिया ने एक सर्कुलर जारी कर बताया है कि हज 2027 के लिए ऑनलाइन आवेदन करने की अंतिम तिथि 20 जुलाई से बढ़ाकर 24 जुलाई 2026 कर दी गई है। इच्छुक हज आवेदक हज कमेटी की वेबसाइट पर ऑनलाइन आवेदन कर सकते हैं। हज यात्रियों का चयन डिजिटल रैंडम सिलेक्शन प्रक्रिया से 30 जुलाई 2026 को हज हाउस मुंबई में किया जाएगा। चयनित हज यात्रियों की सूची हज कमेटी ऑफ इंडिया की वेबसाइट पर प्रकाशित की जाएगी। भारत के नियंत्रक एवं महालेखा परीक्षक कार्यालय और भारतीय सामाजिक विज्ञान अनुसंधान परिषद के संयुक्त तत्वावधान में देशभर के स्नातक, स्नातकोत्तर और डॉक्टरेट की पढ़ाई कर रहे छात्रों के लिए एक शोध लेख प्रतियोगिता आयोजित की जा रही है। इसका उद्देश्य छात्रों को सीएजी की ऑडिट रिपोर्टों के आधार पर शोध करने के लिए प्रोत्साहित करना और इससे जुड़े अन्य पहलुओं पर सार्थक चर्चा को बढ़ावा देना है। इस प्रतियोगिता

0: सहायता के लिए 1 अगस्त से 30 सितंबर 2026 तक आवेदन किए जा सकते हैं। उत्तर प्रदेश क्रिकेट एसोसिएशन ने आज लखनऊ के अटल बिहारी वाजपेयी इकाना स्टेडियम में यूपी T20 लीग के सीजन 4 के टिकट लॉन्च किए। कार्यक्रम में मुख्यमंत्री के सलाहकार अवनीश अवस्थी ने कहा कि प्रदेश सरकार खेलों के इंफ्रास्ट्रक्चर और खिलाड़ियों को बढ़ावा देने के लिए खास कदम उठा रही है।
1: माननीय मुख्यमंत्री जी का पूरे प्रदेश में स्पोर्ट्स के लिए, यूथ के लिए, विशेष रूप से प्रदेश स्तर पर और जिले स्तर पर, ब्लॉक स्तर पर भी स्पोर्ट के इंफ्रास्ट्रक्चर का विशेष रूप से उन्होंने ख्याल रखा है। स्पोर्ट की नई नीति लागू करके स्पोर्ट पर्सन को पुलिस में, अन्य सभी विभागों में सरकारी नौकरी देने का, और हमारे कुछ ऐसे खिलाड़ी हैं जिसमें कि उनको डिप्टी SP और तहसीलदार तक नौकरी देने की व्यवस्था की गई है।
0: T20 लीग सीजन 4 का आयोजन 14 अगस्त से 6 सितंबर 2026 तक किया जाएगा। इस बार लीग का आयोजन लखनऊ और कानपुर में किया जाएगा। प्रदेश के खेल एवं युवा कल्याण राज्य मंत्री गिरीश चंद्र यादव ने आज ग्रेटर नोएडा में CBSE नॉर्थ जोन की लॉन टेनिस और शूटिंग प्रतियोगिता का शुभारंभ किया। इस प्रतियोगिता में देशभर से 772 शूटिंग खिलाड़ी, 742 लॉन टेनिस खिलाड़ी भाग ले रहे हैं। कार्यक्रम को संबोधित करते हुए उन्होंने कहा कि खेल केवल पदक जीतने का माध्यम नहीं, बल्कि अनुशासन, नेतृत्व, आत्मविश्वास और राष्ट्र निर्माण का सशक्त आधार है। राजधानी लखनऊ समेत प्रदेश के अधिकांश जनपदों में रुक रुक कर हो रही बारिश से नदियों का जलस्तर तेजी से बढ़ रहा है। लखीमपुर खीरी में शारदा नदी, बाराबंकी और अयोध्या में घाघरा और कुशीनगर में गंडक खतरे के निशान के पास पहुंच गई है। बारिश के कारण जनजीवन भी प्रभावित हो रहा है। मौसम विभाग ने 22 जुलाई तक राज्य में भारी बारिश का अनुमान जताया है। पेश है एक रिपोर्ट।
2: मुजफ्फरनगर जिले में भारी बारिश के कारण एक पुरानी इमारत गिरने से 4 बच्चों समेत 5 लोगों की मौत हो गई। 5 अन्य लोग घायल हो गए और उन्हें इलाज के लिए अस्पताल में भर्ती कराया गया है। संत कबीर नगर जिले में भी एक पुराना मंदिर गिर गया। हालांकि इस घटना में किसी के हताहत होने या घायल होने की खबर नहीं है। भारी बारिश ने राज्य की राजधानी लखनऊ समेत कई जिलों में आम जनजीवन को प्रभावित किया है। कई इलाकों में जलभराव और ट्रैफिक जाम के हालात बन गए। मौसम विभाग ने राज्य के कई जिलों के लिए ऑरेंज अलर्ट जारी किया है और कहा है कि मौजूदा मौसम की स्थिति अगले 3 दिनों तक बनी रहने की संभावना है। अगले 24 घंटों में तराई के इलाके और बुंदेलखंड के कुछ हिस्सों में भारी बारिश होने की उम्मीद है। सुशील चंद्र तिवारी, आकाशवाणी समाचार, लखनऊ।
0: अंत में मुख्य समाचार एक बार फिर। मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ ने बाराबंकी में 542 करोड़ रुपए की विकास परियोजनाओं का किया शुभारंभ। कहा, SCR के विकास से होगा बाराबंकी का विकास। सर्वोच्च न्यायालय ने श्रीराम जन्मभूमि मंदिर चढ़ावा मामले में संबंधित पक्षों को राजनीतिकरण न करने के दिए निर्देश। 27 जुलाई को होगी अगली सुनवाई। कांवड़ यात्रा की तैयारियों को लेकर मेरठ में मुख्य सचिव SP गोयल और पुलिस महानिदेशक राजीव कृष्ण ने की बैठक। उत्तर प्रदेश समेत उत्तराखंड, दिल्ली, राजस्थान और हरियाणा के अधिकारी हुए शामिल। और प्रदेश के अधिकांश जनपदों में रुक रुक कर बारिश से शारदा, घाघरा और गंडक नदी पहुंची खतरे के निशान के करीब। मौसम विभाग ने 22 जुलाई तक भारी बारिश का जताया अनुमान। इसी के साथ प्रादेशिक समाचारों का ये बुलेटिन समाप्त हुआ। अगला बुलेटिन रात 8 बजे FM पर प्रसारित किया जाएगा। नमस्कार।

जीवन कठिन प्रतीत हो सकता है, लेकिन आपके करने योग्य हमेशा कुछ न कुछ होता है जिसे करके आप सफल हो सकते हैं। ये विचार है स्टीफन हॉकिंग के।

हम आकाशवाणी ओबरा से बोल रहे हैं, एफएम 102.7 पर। शाम के 7:31 हो रहे हैं। आपको सुनवाते हैं कार्यक्रम सबरस। सबसे पहले आपको सुनवा रहे हैं कयामत से कयामत तक फिल्म का ये गीत। आवाजें उदित नारायण और अलका याग्निक की हैं।

सबरस कार्यक्रम आप सुन रहे हैं आकाशवाणी ओपरा से। लीजिए सुनिए कुमार सानू की आवाज में माशूक फिल्म के इस गाने को।

0: नहीं, पहले बजट बनाओ, फिर छोटी छोटी बचत को बैंक में सेव करो और पैसों को बढ़ते देखो।
1: बढ़िया,
0: जाओ भाई।
2: RBI कहता है,
3: वित्तीय समझदारी समृद्ध नारी।
4: अब आपको सुनवा रहे हैं अनुपमा देशपांडे और मोहम्मद अजीज का गाया ये गीत। फिल्म है शैतानी इलाका।

चुका हूँ। आपको बता दें, आपके ईमेल संदेश पर आधारित फरमाइशी फिल्मी गीतों का कार्यक्रम म्यूजिक गैलरी आज प्रसारित होगा रात्रि 10:13 से। तो फिर सुनिए और जुड़े रहिए आकाशवाणी ओपरा से। आग और शोला फिल्म का ये गीत आपके रेडियो सेट पर। आवाजें अनुराधा पौडवाल और मनहर उदास की।

0: कार्यक्रम के आखिर में आपको सुनवा रहे हैं यलगार फिल्म की ये रचना।
1: ऐ मेरी हमरक्स, मुझको थाम ले, जिंदगी से भाग कर आया हूं।
2: बारिश हो रही है, ये बारिश न होती तो भी ना आती।

श्रोताओं, अभी आप सुन रहे थे उदित नारायण और सपना मुखर्जी की आवाज में यलगार फिल्म के इस गाने को, और इसी के साथ सबरस कार्यक्रम अब समाप्त होता है। आकाशवाणी के हम उमरा केंद्र से बोल रहे हैं, हमारा अगला प्रसारण होगा आपसे बस थोड़ी ही देर में, कृपया प्रतीक्षा करें।

इंद्रप्रस्थ चैनल है, मीडियम वेव 366.3 मीटर यानी 819 किलोहर्ट्ज़, डीआरएम 810 किलोहर्ट्ज़ पर रात्रि के 8 बजे चुके हैं। और आइए सुनते हैं कार्यक्रम गीत मालिका।

के पहले दिन लोकसभा में विपक्ष के सदस्यों ने पेपर लीक को लेकर शिक्षा मंत्री धर्मेंद्र प्रधान के इस्तीफे तथा राम मंदिर चढ़ावा चोरी के मुद्दे पर विपक्ष ने प्रश्नकाल में हंगामा किया, जिसके कारण सदन की कार्यवाही 12 बजे तक स्थगित करनी पड़ी। लोकसभा अध्यक्ष ओम बिरला ने सुबह जैसे ही प्रश्नकाल शुरू किया, विपक्षी सदस्य तख्तियां हाथ में लेकर सदन के बीचों बीच आकर नारेबाजी और हंगामा करने लगे। अध्यक्ष ने सदस्यों को शांत रहकर और अपनी सीटों पर लौटकर प्रश्नकाल चलते रहने का देने का आग्रह किया, लेकिन सदस्यों ने उनकी बात नहीं सुनी और हंगामा करते रहे। हंगामे के बीच ही ओम बिरला ने प्रश्नकाल जारी रखने का प्रयास किया, लेकिन विपक्षी दलों के सदस्यों का हंगामा और तेज हो गया। अध्यक्ष ने सदस्यों से कहा कि लोकसभा सर्वोच्च संस्था है और यहां चुनकर भेजे गए सांसदों से लोगों की अपेक्षाएं हैं, जिसका सम्मान किया जाना चाहिए। उन्होंने सदन में तख्तियां लहराने और नारेबाजी को संसद की मर्यादा का उल्लंघन बताया और कहा कि सत्र के पहले दिन सदन नहीं चलने की परंपरा टूटनी चाहिए। प्रश्नकाल में नारेबाजी करना तख्तियां लहराना उचित नहीं है। अध्यक्ष ने इस दौरान सदस्यों से बार बार व्यवस्था बनाए रखने का आग्रह किया, लेकिन इसका विपक्ष पर कोई असर नहीं हुआ और सदस्यों का हंगामा और तेज हो गया। हंगामा बढ़ता देख श्री बिरला ने सदन की कार्यवाही 12 बजे तक के लिए स्थगित कर दी। 12 बजे भी सदन की कार्यवाही शुरू होते ही हंगामा कर रहे सदस्यों को शांत रहने की अपील करते हुए पीठासीन अधिकारी दिलीप सैकिया ने कहा कि विपक्षी सदस्यों का व्यवहार ठीक नहीं है। असम और अरुणाचल प्रदेश में बाढ़ आई है, लोग परेशान हैं, देश में और भी कई समस्याएं हैं, आप उन पर चर्चा कीजिए, आपको नियमानुसार समय दिया जाएगा, सरकार हर मुद्दे पर चर्चा के लिए तैयार है। श्री सैकिया की अपील का विपक्षी सदस्यों पर कोई असर नहीं हुआ और वे हंगामा करते रहे। इस पर श्री सैकिया ने कार्यवाही दोपहर 1 बजे तक के लिए स्थगित कर दी। 1 बजे सदन की कार्यवाही शुरू होते ही विपक्षी सदस्य नारेबाजी करते हुए सदन के बीचों बीच आ गए। विपक्षी सदस्य शोरगुल करते हुए शिक्षा मंत्री के इस्तीफे की मांग कर रहे थे। श्री सैकिया ने नारेबाजी न करने और सदन की कार्यवाही सुचारू रूप से चलने देने की अपील की, लेकिन सदस्यों पर इसका कोई असर नहीं हुआ, जिसके कारण सदन की कार्यवाही स्थगित करनी पड़ी। विपक्षी सदस्यों के हंगामे के कारण लोकसभा में भोजनावकाश के बाद भी कार्यवाही सुचारू रूप से नहीं चल सकी। सदन की कार्यवाही भोजनावकाश के बाद 2:30 बजे जैसे ही शुरू हुई, पीठासीन अधिकारी जगदम्बिका पाल ने सदस्यों को नियम 377 के तहत अपने मामले उठाने के लिए कहा, लेकिन विपक्षी सदस्य तख्तियां लेकर सदन के बीचों बीच आ गए और सरकार के खिलाफ नारेबाजी करने लगे। श्री पाल ने कहा कि जनता ने सांसदों को अपने उम्मीदों के साथ लोकसभा में भेजा है, सदन में तख्तियां और बैनर लेकर आना तथा नारेबाजी करना उचित नहीं है और इसकी अनुमति नहीं है। कार्यवाही शुरू होते ही कांग्रेस के केसी वेणुगोपाल ने कोरम का मुद्दा उठाया, जिस पर पीठासीन अधिकारी ने कहा कि सदन में कोरम पूरा है। कुछ सदस्यों ने आरोप लगाया कि सांसदों को सदन में आने से रोका जा रहा है, लेकिन श्री पाल ने इस आरोप को ये कहते हुए खारिज कर दिया कि ऐसा होने का प्रश्न ही नहीं उठता। पीठासीन अधिकारी ने विपक्षी सदस्यों से हंगामा बंद कर अपनी अपनी सीटों पर लौटने का आग्रह किया, लेकिन हंगामा जारी रहने पर उन्होंने सदन की कार्यवाही 3 बजे तक के लिए स्थगित कर दी। 3 बजे सदन की कार्यवाही शुरू होते ही फिर से हंगामा और शोरगुल होने लगा, जिसके कारण सदन की कार्यवाही दिनभर के लिए स्थगित कर दी गई। शिक्षा राज्य मंत्री डॉ. सुकांत मजुमदार ने लोकसभा में आज एक सवाल के लिखित जवाब में कहा कि सरकार ने वर्ष 2025-26 से वर्ष 2029-30 तक 5 वर्ष की अवधि के लिए 500 करोड़ रुपए के कुल बजटीय व्यय के साथ मेक इन इंडिया AI वर्क फॉर इंडिया की परिकल्पना के अंतर्गत शिक्षा के क्षेत्र में AI उत्कृष्टता केंद्र की स्थापना की घोषणा की। शिक्षा मंत्रालय ने भारतीय प्रौद्योगिकी संस्थान मद्रास में शिक्षा हेतु AI उत्कृष्टता केंद्र की स्थापना की है। ये केंद्र राष्ट्रीय शिक्षा नीति के अनुरूप देश भर में शिक्षार्थियों को AI सक्षम उपकरण उपलब्ध कराने के लिए स्थापित किया गया है, जिसका उद्देश्य शिक्षा पारिस्थितिकी तंत्र में प्रौद्योगिकी का समावेशन करना है। उन्होंने कहा कि बजट 2025-26 में घोषित कौशल हेतु 5 राष्ट्रीय उत्कृष्टता केंद्रों को उन्नत ITI PMSETU योजना के माध्यम से प्रधानमंत्री कौशल और रोजगार के एक भाग के रूप में अनुमोदित किया गया है। इस योजना के तहत भुवनेश्वर, चेन्नई, हैदराबाद, कानपुर और लुधियाना
स्थित राष्ट्रीय कौशल प्रशिक्षण संस्थानों में 5 राष्ट्रीय उत्कृष्टता केंद्र स्थापित किए जाने की परिकल्पना की गई है। श्री मजुमदार ने कहा कि शिक्षकों को प्रौद्योगिकी के प्रभावी उपयोग में सक्षम बनाने के उद्देश्य से एनसीईआरटी द्वारा एआई विषय प्रशिक्षण कार्यक्रमों का आयोजन किया गया है, जिनमें 96,000 से अधिक प्रतिभागी लाभान्वित हुए हैं। उन्होंने कहा कि इसी प्रकार सीबीएसई भी शिक्षकों को शिक्षण अधिगम तथा मूल्यांकन में एआई उपकरणों के उपयोग और शैक्षिक प्रबंधन तथा प्रशासन में उनकी उपयोगिता के प्रति संवेदनशील बनाने हेतु क्षमता निर्माण कार्यक्रम आयोजित करता है। पिछले 3 वर्ष में 1,234 कार्यक्रमों का आयोजन किया गया, जिनमें सीबीएसई से संबद्ध विद्यालयों के 64,775 शिक्षक लाभान्वित हुए हैं। केंद्रीय श्रम और रोजगार राज्य मंत्री शोभा करंदलाजे ने एक सवाल के लिखित जवाब में कहा कि राष्ट्रीय करियर सेवा एनसीएस पोर्टल देश भर के सभी हितधारकों के निजी और सरकारी क्षेत्रों की नौकरियों, ऑनलाइन और ऑफलाइन रोजगार मेलों की जानकारी, नौकरी खोज और मिलान, करियर परामर्श, व्यावसायिक मार्गदर्शन, कौशल विकास पाठ्यक्रमों की जानकारी, कौशल प्रशिक्षण कार्यक्रम आदि करियर से संबंधित सेवाएं डिजिटल प्लेटफॉर्म के माध्यम से प्रदान करने के लिए एक वन स्टॉप समाधान है। उन्होंने कहा कि एनसीएस परियोजना में अन्य बातों के साथ साथ राज्यों संस्थाओं के सहयोग से करियर संबंधी सेवाएं प्रदान करने के लिए आदर्श करियर केंद्र एमसीसी स्थापित करने की भी परिकल्पना की गई है। अब तक सरकार ने पूरे देश में 407 आदर्श करियर केंद्रों को मंजूरी दी है। वित्त राज्य मंत्री पंकज चौधरी ने एक लिखित जवाब में कहा कि ग्रामीण और दूरदराज के क्षेत्रों में बैंकिंग सेवाओं की सुलभता सुनिश्चित करने के लिए सरकार का प्रयास देश से सभी बसे हुए गांवों के 5 किलोमीटर के दायरे में एक बैंकिंग आउटलेट उपलब्ध कराना है। बैंकिंग आउटलेट उपलब्धता की निगरानी एक भौगोलिक सूचना प्रणाली जीआईएस आधारित एप्लीकेशन जनधन दर्शक जेडीडी ऐप द्वारा की जाती है। इसके अलावा भारतीय रिजर्व बैंक ने पूर्व अनुमति के बिना वाणिज्यिक बैंकों, स्मॉल फाइनेंस बैंकों, पेमेंट्स बैंकों, स्थानीय क्षेत्रों के बैंकों और क्षेत्रीय ग्रामीण बैंकों को भारत में कहीं भी बैंक शाखाएं खोलने की अनुमति दी है, बशर्ते कुल शाखाओं का 25% हिस्सा बैंकिंग सुविधाओं वाले ग्रामीण क्षेत्रों में खोला जाए। अब सुनिए राज्यसभा में हुई कार्यवाही की समीक्षा। लेखक हैं पीटीआई भाषा के माधव चतुर्वेदी। राज्यसभा में आज मॉनसून सत्र का पहला दिन काफी हंगामेदार रहा। विपक्षी सदस्यों ने परीक्षाओं में कथित अनियमितता, राम मंदिर चढ़ावा चोरी मामले और कुछ अन्य मुद्दों को लेकर हंगामा किया, जिसके कारण राज्यसभा की बैठक 5 बार के स्थगन के बाद दोपहर करीब 2:30 बजे पूरे दिन के लिए स्थगित कर दी गई। सभापति सीपी राधाकृष्णन ने सत्र के प्रारंभ में अपने संक्षिप्त टिप्पणी में सदस्यों से उच्च सदन की गरिमा, अनुशासन और मर्यादा बनाए रखने का आह्वान करते हुए आग्रह किया कि वे कामकाज के समय से निपटारे पर ध्यान केंद्रित करें, क्योंकि हर व्यवधान से देश और लोगों से जुड़े मामलों पर चर्चा में देरी होती है। किंतु उनके इस अपील का विपक्षी सदस्यों पर कोई प्रभाव नहीं पड़ा और सदन में हंगामा जारी रहा। हंगामे के कारण उच्च सदन में प्रश्नकाल और शून्यकाल नहीं चल सके और कोई विधायी कामकाज भी नहीं हो सका। इससे पहले दिन में 11 बजे मॉनसून सत्र के पहले दिन राष्ट्रगान के साथ सदन की कार्यवाही शुरू हुई। सभापति ने नवनिर्वाचित 9 सदस्यों को सदन की सदस्यता की शपथ दिलाई। गुजरात से भाजपा के मुकेश भाई जे राठवा, कर्नाटक से कांग्रेस के पवन खेड़ा, मध्य प्रदेश से भाजपा के महेश केवच, मेघालय से एनपीपी के जेम्स पगसा कोंकल संगमा, मिजोरम से खिंग्यांगटे लातलू आंगकीमा, राजस्थान से भाजपा के डॉ सतीश पूनिया, पश्चिम बंगाल से भाजपा के प्रकाश चेक बड़ाइक, सुष्मिता देव और सुखेंदु शेखर राय ने राज्यसभा की सदस्यता की शपथ ली। खेड़ा ने अंग्रेजी में मुकेश भाई जी राठवा, महेश केवट, जेम्स पगसा कोंकल संगमा, डॉ सतीश पुनिया और प्रकाश बड़ाइक ने हिंदी में तथा सुष्मिता देव और सुखेंदु शेखर रॉय ने बांग्ला में शपथ ली। बजट सत्र संपन्न होने और मॉनसून सत्र शुरू होने से पहले निर्वाचित हुए कुछ अन्य सदस्य अंतर सत्र अवधि के दौरान सभापति के कक्ष में शपथ ले चुके हैं। सभापति ने नए सदस्यों का सदन में स्वागत किया। इसके बाद सदन में 4 दिवंगत पूर्व सदस्यों बलबीर पुंज, स्वप्न साधन बोस, रंगासाई रामकृष्ण और एच हनुमंथप्पा के साथ ही कतर के पूर्व अमीर शेख हमद बिन खलीफा अल सानी को श्रद्धांजलि दी गई। सदन में आवश्यक दस्तावेज पटल पर रखे जाने के बाद विपक्ष के नेता मल्लिकार्जुन खड़गे ने नीट यूजी 2026 प्रश्न पत्र लीक के मुद्दे को उठाने की कोशिश की। उन्होंने कहा कि लाखों छात्रों के भविष्य से जुड़ा मामला है। खड़गे ने आरोप लगाया कि सरकार इस मुद्दे को दबाने की कोशिश कर रही है।
श्री खड़गे जब अपनी बात रख रहे थे तभी विपक्षी सदस्य अपने स्थानों पर खड़े होकर नारे लगाने लगे। हंगामे के बीच सभापति राधाकृष्णन ने सदन की कार्यवाही दोपहर 12 बजे तक स्थगित कर दी। एक बार के स्थगन के बाद दोपहर 12 बजे बैठक शुरू होने पर सदन में वही नजारा था। सभापति ने प्रश्नकाल शुरू कराना चाहा, लेकिन विपक्षी सदस्यों ने हंगामा शुरू कर दिया। हंगामा रुकता न देख सभापति ने बैठक 12:30 बजे तक स्थगित कर दी। दोपहर 12:30 बजे सदन की कार्यवाही दोबारा शुरू होने पर विपक्षी सदस्य जंतर मंतर पर प्रदर्शन कर रहे छात्रों के समर्थन और उनके खिलाफ पुलिस कार्रवाई के विरोध में नारेबाजी करने लगे। वे अयोध्या स्थित राम मंदिर के चढ़ावे की कथित चोरी के मुद्दे को लेकर भी नारे लगा रहे थे। द्रविड़ मुनेत्र कड़गम के सदस्यों ने तमिलनाडु और कर्नाटक के बीच बंटवारे का मुद्दा उठाने की कोशिश की तथा सदन के बीच में आने का प्रयास किया, हालांकि सभापति राधाकृष्णन ने उन्हें ऐसा करने से रोक दिया। विपक्षी सदस्यों के लगातार हंगामे के बीच सभापति ने सदन की कार्यवाही दोपहर 12:50 तक स्थगित कर दी। बैठक के दोपहर 12:50 पर फिर शुरू होने पर सदन में वही नजारा देखने को मिला। हंगामे के कारण सभापति ने बैठक दोपहर 2 बजे तक स्थगित कर दी। सभापति ने बैठक स्थगित करने से पहले कहा कि वो गतिरोध को लेकर कार्य मंत्रणा समिति की बैठक में चर्चा करेंगे। दोपहर 2 बजे बैठक शुरू हुई तो उपसभापति हरिवंश ने सदन में चर्चा एवं पारित किए जाने वाले विधेयकों के लिए तय किए गए समय के बारे में सदन को बताया। उनकी बात पूरी भी नहीं हो पाई थी और विपक्षी सदस्यों ने नारेबाजी शुरू कर दी। उपसभापति ने सदस्यों से शांत रहने की अपील करते हुए कहा कि संसद चर्चा करने के लिए है और यहाँ चर्चा एवं संवाद होना चाहिए। अपनी बात का असर न होते देख उन्होंने बैठक को 2:30 बजे तक के लिए स्थगित कर दिया। सदन की कार्यवाही जब दोपहर 2:30 बजे पुनः शुरू हुई तो विपक्षी दलों के सदस्यों ने फिर से शिक्षा मंत्री धर्मेंद्र प्रधान के इस्तीफे की मांग को लेकर छात्रों के प्रदर्शन और उन पर पुलिस कार्रवाई का मुद्दा उठाया और सरकार के खिलाफ नारेबाजी करते हुए हंगामा करने लगे। उपसभापति हरवंश ने सदस्यों से शांत रहने की अपील करते हुए कहा कि सुबह से अब तक कोई कामकाज नहीं हो पाया है। उन्होंने कहा कि सदन की गरिमा बनाए रखना हम सबकी जिम्मेदारी है, ये उच्च सदन है और इस तरह का व्यवधान उचित नहीं है। हंगामा थमते न देख उन्होंने बैठक शुरू होने के 1 मिनट के भीतर ही कार्यवाही को पूरे दिन के लिए स्थगित कर दिया। इससे पहले सभापति ने सत्र के प्रारंभ में अपने संबोधन में सदस्यों से उच्च सदन की गरिमा, अनुशासन और मर्यादा बनाए रखने का आह्वान करते हुए आग्रह किया कि वे कामकाज के समय से निपटारे पर ध्यान केंद्रित करें, क्योंकि हर व्यवधान से देश और लोगों से जुड़े मामलों पर चर्चा में देरी होती है। सभापति ने कहा, मैं सदन के सभी पक्षों के सदस्यों से अपील करता हूं कि वे इस प्रतिष्ठित संस्था की गरिमा, अनुशासन और मर्यादा को बनाए रखें। हालांकि संसदीय लोकतंत्र में विचारों का मतभेद स्वाभाविक है, लेकिन उन्हें इस तरह से व्यक्त किया जाना चाहिए कि सदन की पवित्रता बनी रहे। व्यवधानों को इसके कामकाज को बाधित नहीं करने देना चाहिए। उन्होंने सत्र के उत्पादक, रचनात्मक और उद्देश्यपूर्ण रहने की कामना की और कहा, मैं राज्यसभा के 271वें सत्र की शुरुआत पर आप सभी का हार्दिक स्वागत करता हूं। इस सदन की सार्थक चर्चाओं की गौरवशाली परंपरा रही है और मुझे विश्वास है कि इस सत्र उस विरासत को आगे बढ़ाएगा। हमारे सामने 19 बैठकें हैं और यह हमारी सामूहिक जिम्मेदारी है कि हम इस बहुमूल्य समय का उपयोग राष्ट्रीय महत्व के मुद्दों पर बहस करने और उन पर निर्णय लेने में करें। सभापति ने कहा, इस सत्र का एक महत्वपूर्ण विधायी और विचार विमर्श संबंधी एजेंडा है। मैं सदस्यों से आग्रह करता हूं कि वे कामकाज के समय पर निपटारे पर ध्यान केंद्रित करें, क्योंकि हर व्यवधान देश और उन लोगों से जुड़े मामलों पर चर्चा में देरी करता है जिनका हम प्रतिनिधित्व करते हैं।

आग्रह करता हूं कि वे कामकाज के समय पर निपटारे पर ध्यान केंद्रित करें, क्योंकि हर व्यवधान देश और उन लोगों से जुड़े मामलों पर चर्चा में देरी करता है जिनका हम प्रतिनिधित्व करते हैं। सभापति ने सदस्यों को सूचित किया कि सत्र से उच्च सदन के सचिवालय ने सदस्य

चांदी सोना फिल्म का ये गीत अभी आप सुन रहे थे किशोर कुमार और आशा भोसले की आवाजों में। इसी के साथ फिल्म संगीत कार्यक्रम अब समाप्त होता है।

हम आकाशवाणी ओबरा से बोल रहे हैं एफएम 102.7 पर। रात्रि के 8:30 हो रहे हैं। आपको सुनवाते हैं कार्यक्रम सुगम संगीत। सबसे पहली रचना आपको सुनवा रहे हैं जसवंत सिंह की आवाज में।

0: चंदन दास के गाए इस रचना के साथ ही सुगम संगीत का कार्यक्रम अब समाप्त होता है। स्वामी हरसेवानंद शिक्षण संस्थान,
1: स्वामी हरसेवानंद पब्लिक स्कूल चूर्क और घोरावल के साथ ही साथ उच्च शिक्षा में लाया है बेहतर विकल्प।
2: स्वामी हरसेवानंद पीजी कॉलेज चूर्क में बीए, बीएससी, बीकॉम, बीबीए,
1: एमए, एमएससी, एमकॉम में प्रवेश प्रारंभ है। ज्ञान, संस्कार और सफलता की सशक्त पहचान,
2: स्वामी हरसेवानंद शिक्षण संस्थान।
0: हम आकाशवाणी उबरा से बोल रहे हैं। रात्रि के 8:45 होने वाले हैं। अब से बस थोड़ी ही देर में आप सुनेंगे समाचार, पहले हिंदी में, उसके बाद रात 9 बजे से अंग्रेजी में। कृपया प्रतीक्षा करें।

0: क्या आप परेशानियों से घिरे हैं? मन भारी है और कोई रास्ता नजर नहीं आ रहा? याद रखें, समाधान आपके पास है। टेलीमानस के निशुल्क नंबर 14416 पर कॉल करें। कहीं से भी कभी भी 24 घंटे यह सुविधा उपलब्ध है। यहाँ आपकी बात सुनी जाती है, समझी जाती है और आपको सही दिशा दी जाती है। आप अकेले नहीं है, मदद बस एक कॉल दूर है।
1: नमस्कार, आकाशवाणी से समाचार संध्या के साथ मैं कनकलता। संसद के मॉनसून सत्र के पहले दिन की शुरुआत हंगामे से हुई। दोनों सदनों की कार्यवाही विभिन्न मुद्दों को लेकर बार बार बाधित। केंद्रीय मंत्री जेपी नड्डा ने नई दिल्ली में प्रदर्शनकारियों से बातचीत की, धरना समाप्त करने और स्थिति सामान्य करने की अपील की। राष्ट्रपति द्रौपदी मुर्मू ने भारत और मोल्दोवा के बीच मजबूत आर्थिक सहयोग तथा तेजी से बढ़ते क्षेत्रों में सहयोग का आह्वान किया। जम्मू संभाग में मूसलाधार वर्षा से 4 और लोगों की मौत। पिछले 2 दिन में मरने वालों की संख्या 16 हुई। उपराज्यपाल मनोज सिन्हा ने कई जिलों में बाढ़ की स्थिति का जायजा लिया। हिमाचल प्रदेश और जम्मू कश्मीर में कल तेज बारिश का रेड अलर्ट। और ब्रिटेन में लेबर पार्टी के एंटी बर्नहम ने नए प्रधानमंत्री के रूप में कार्यभार संभाला। अब समाचार विस्तार से। संसद के मॉनसून सत्र के पहले दिन की शुरुआत हंगामे से हुई। संसद के मॉनसून सत्र के पहले दिन आज विभिन्न मुद्दों सहित नीट परीक्षा पेपर लीक मामले पर विपक्ष के विरोध के बीच दोनों सदनों की कार्यवाही कई बार बाधित हुई। हंगामा जारी रहने पर कार्यवाही बार बार स्थगित किए जाने के बाद कल तक के लिए स्थगित कर दी गई है। और ब्यौरा हमारे संवाददाता से।
2: विपक्ष के विरोध के चलते लोकसभा की कार्यवाही 7 बार और राज्यसभा की कार्यवाही 6 बार स्थगित की गई। इस व्यवधान के कारण दोनों सदनों में प्रश्नकाल नहीं चल सका। वहीं विपक्ष के हंगामे के बीच लोकसभा में विधि और न्याय मंत्री अर्जुन राम मेघवाल ने उच्चतम न्यायालय न्यायाधीश संख्या संशोधन विधेयक 2026 पेश किया। इस विधेयक का उद्देश्य उच्चतम न्यायालय न्यायालय संख्या अधिनियम 1956 में संशोधन कर न्यायाधीशों की संख्या को मौजूदा 33 से बढ़ाकर 37 करना है। इसमें भारत के मुख्य न्यायाधीश शामिल नहीं है। वहीं राज्यसभा में जब सदन की कार्यवाही सुबह 11 बजे शुरू हुई तो 9 निर्वाचित सदस्यों ने उच्च सदन के सदस्य के तौर पर शपथ ली। आनंद कुमार के साथ अमन यादव, आकाशवाणी समाचार, दिल्ली।
1: प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने कहा है कि चाहे मॉनसून हो या मॉनसून सत्र, दोनों के सक्रिय रहने पर वे अत्यंत उत्पादक सिद्ध होते हैं। संसद के मॉनसून सत्र से पूर्व संवाददाताओं से बातचीत में श्री मोदी ने कहा कि महज 1 महीने में देश ने अनेक उपलब्धियां हासिल की हैं जो प्रत्येक नागरिक को गौरवान्वित करती हैं। श्री मोदी ने सभी राजनीतिक दलों से सकारात्मक और सार्थक चर्चा का आग्रह किया।
3: मानसून हो या मानसून सत्र, अगर दोनों प्रोएक्टिव हो तो देश का कल्याण होता है, जीव मात्र का कल्याण होता है। साथियों, पिछले 1 महीने में देश ने अनेक सिद्धियां प्राप्त

0: होती है और देशवासी गर्व से भर जाएं, इस प्रकार की सिद्धियों का सिलसिला चला है, चाहे राष्ट्रीय हो, अंतर्राष्ट्रीय हो और अब तो अंतरिक्ष भी हो, भारत के लिए गर्व के पल रहे हैं।
1: केंद्रीय मंत्री जगत प्रकाश नड्डा ने आज नई दिल्ली में प्रदर्शनकारियों के प्रतिनिधियों से मुलाकात की। सोशल मीडिया पोस्ट में उन्होंने बताया कि बैठक में प्रतिनिधिमंडल के साथ विस्तार से चर्चा हुई। श्री नड्डा ने सभी प्रदर्शनकारियों से धरना समाप्त करने और स्थिति सामान्य करने में प्रशासन का सहयोग करने का आग्रह किया। इस बीच दिल्ली पुलिस ने सभी प्रदर्शनकारियों से शांति, संयम और सार्वजनिक व्यवस्था सुनिश्चित करने में पुलिस का सहयोग करने की अपील की है। वीडियो संदेश में दिल्ली पुलिस के अपर आयुक्त और जनसंपर्क अधिकारी राजीव रंजन ने जनता को किसी भी मंच के माध्यम से अफवाहों, गलत सूचनाओं पर विश्वास न करने और न ही उन्हें फैलाने की सलाह दी। ये समाचार आकाशवाणी से प्रसारित किए जा रहे हैं। समाचार संध्या में आपका फिर स्वागत है। राष्ट्रपति द्रौपदी मुर्मू ने आज किशिनो में स्टेफान सेल मारिसी स्वेंच स्मारक पर पुष्पांजलि अर्पित की। उनके साथ भारत और मोल्दोवा के कई वरिष्ठ अधिकारी भी मौजूद थे। ये समारोह मोल्दोवा के राष्ट्रीय नायक को सम्मान देने के लिए आयोजित किया गया। ये दोनों देशों के बीच दोस्ती, साहस और एक दूसरे की आजादी का सम्मान करने की भावना को भी दर्शाता है। राष्ट्रपति ने आज भारत और मोल्दोवा के बीच आर्थिक सहयोग बढ़ाने पर बल देते हुए कहा कि दोनों देशों के बीच तेजी से बढ़ते क्षेत्रों में साथ काम करने की बड़ी संभावनाएं हैं। मोल्दोवा की राजधानी किशिनो में भारत मोल्दोवा बिजनेस फोरम को संबोधित करते हुए राष्ट्रपति ने कहा कि किसी भारतीय राष्ट्रपति की मोल्दोवा की पहली राजकीय यात्रा है।
2: मोल्दोवा की पहली राजकीय यात्रा है। ये हमारे द्विपक्षीय संबंधों में एक ऐतिहासिक उपलब्धि है और हमारे दोनों देशों के बीच बढ़ती मित्रता और आपसी विश्वास को दर्शाती है। भारत और मोल्डोवा तीन दशकों से मधुर और मैत्रीपूर्ण संबंध साझा करते आ रहे हैं। भौगोलिक रूप से दूर होने के बावजूद शांति, विकास और अंतर्राष्ट्रीय सहयोग के प्रति हमारे साझा प्रतिबद्धता के अनुरूप हमारी साझेदारी निरंतर बढ़ती रही है।
1: राष्ट्रपति मुर्मू और मोल्दोवा की राष्ट्रपति माया सांडू ने आज व्यापार, निवेश, कृषि, स्वास्थ्य, नवीकरणीय ऊर्जा, डिजिटल पब्लिक इंफ्रास्ट्रक्चर, आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस और नवाचार सहित कई क्षेत्रों में द्विपक्षीय सहयोग बढ़ाने पर सहमति जताई। विदेश मंत्री एस जयशंकर ने विश्वास व्यक्त किया है कि पनामा के विदेश मंत्री हाइवेर एडुआर्डो मार्टिनेज आचा वास्केज की यात्रा से सभी क्षेत्रों में द्विपक्षीय संबंध और मजबूत होंगे। नई दिल्ली में पनामा के विदेश मंत्री के साथ बैठक में डॉ. जयशंकर ने कहा कि ये यात्रा दोनों देशों के बीच हाल में हुए उच्च स्तरीय आदान प्रदान की गति को और आगे बढ़ाती है। उन्होंने कहा कि दोनों देशों की सरकारें और उनके नेता भारत पनामा साझेदारी को गहरा और व्यापक बनाने के लिए उत्सुक हैं। वाणिज्य तथा उद्योग मंत्री पीयूष गोयल ने आज नई दिल्ली में संयुक्त अरब अमीरात के अर्थव्यवस्था और पर्यटन मंत्री अब्दुल्ला बिन तौक अल मर्री और उनके प्रतिनिधिमंडल के साथ बैठक की। श्री गोयल ने बताया कि बैठक में व्यापार, निवेश, पर्यटन और आवाजाही के क्षेत्र में द्विपक्षीय साझेदारी को और मजबूत करने पर चर्चा हुई। सर्वोच्च न्यायालय ने आज उत्तर प्रदेश सरकार से अयोध्या के राम मंदिर में चढ़ावे के कथित गबन की जांच के लिए विशेष जांच दल एसआईटी गठित करने की संभावना के बारे में जानकारी देने को कहा। न्यायालय ने याचिकाकर्ताओं को इस मुद्दे का राजनीतिकरण न करने की चेतावनी दी। मुख्य न्यायाधीश सूर्यकांत, न्यायमूर्ति जयमाल्या बागची और बी मोहना की पीठ ने उत्तर प्रदेश सरकार की ओर से पेश सॉलिसिटर जनरल तुषार मेहता को इस बारे में निर्देश देने को कहा कि क्या प्राथमिकी दर्ज होने से पहले पूरे मामले की जांच करने वाली एसआईटी को स्थानीय पुलिस के बजाय इस मामले की जांच का जिम्मा सौंपा जा सकता है। सर्वोच्च न्यायालय इस याचिका पर 27 जुलाई को फिर सुनवाई करेगा, जब उत्तर प्रदेश सरकार मामले में एसआईटी जांच के बारे में जानकारी देगी। विधि और न्याय मंत्रालय ने अधिवक्ता संशोधन विधेयक 2026 का मसौदा हितधारकों और आम जनता के परामर्श के लिए जारी कर दिया है। ये मसौदा बार काउंसिल ऑफ इंडिया के परामर्श से तैयार किया गया है। इसे टिप्पणियां और सुझाव आमंत्रित करने के लिए बार काउंसिल की आधिकारिक वेबसाइट पर उपलब्ध कराया गया है। ये समाचार हमारी वेबसाइट www.newsonair.gov.in और हमारे न्यूज ऑन एआईआर ऐप पर भी उपलब्ध हैं। ये आकाशवाणी है। ब्रिटेन में लेबर पार्टी के नवनिर्वाचित नेता एंडी बर्नहम ने नए प्रधानमंत्री के रूप में कार्यभार संभाल लिया है। किंग चार्ल्स रिते ने ग्रेटर मैनचेस्टर के 56 वर्षीय पूर्व मेयर को किर स्टार्मर के इस्तीफे के बाद नई सरकार बनाने के लिए आमंत्रित किया था। श्री एंडी बर्नहम ने कहा कि हम ब्रिटेन के लिए बड़े बदलाव लाएंगे।
3: हम ब्रिटेन के लिए पिछले 40 सालों में सबसे बड़े बदलाव लाएंगे, एक नया राजनीतिक और आर्थिक मॉडल बनाएंगे। 1980 के दशक में ब्रिटेन ने कुछ गलत कदम उठाए थे, देश के बड़े हिस्सों में उद्योग खत्म हो गए और वे अब तक उससे उबर नहीं पाए हैं, इसीलिए हम राजनीति को बदलेंगे।
1: इससे पहले किर स्टार्मर ने ब्रिटेन के प्रधानमंत्री के रूप में 10 डाउनिंग स्ट्रीट से अपना अंतिम भाषण दिया और फिर औपचारिक रूप से अपना इस्तीफा देने के लिए किंग चार्ल्स से मुलाकात की। उन्होंने कहा कि वे एंडी बर्नहम को सत्ता सौंप रहे हैं और वे उन्हें पूरा समर्थन देंगे। जम्मू कश्मीर में बारिश से जुड़ी घटनाओं में आज जम्मू संभाग में 4 और लोगों की मौत हो गई। इसके साथ ही पिछले 2 दिन में मरने वालों की संख्या बढ़कर 16 हो गई है। ब्यौरा हमारे संवाददाता से।
4: तेज बारिश के कारण पुंछ और रजौरी जिले में बचाव और राहत कार्य आज प्रभावित हुआ। कल आए विनाशकारी बाढ़ और भूस्खलन में 12 लोगों की मौत हो गई थी, जबकि कई अन्य अब भी लापता हैं। प्रशासन ने संवेदनशील क्षेत्रों में रहने वाले लोगों को सतर्क रहने की सलाह दी है। राष्ट्रीय आपदा मोचन बल, राज्य आपदा मोचन बल, जम्मू कश्मीर पुलिस और सेना के दल प्रभावित क्षेत्रों में तैनात हैं तथा संवेदनशील इलाकों में हाई अलर्ट पर हैं। पुंछ, रजौरी, रियासी और उधमपुर के प्रमुख मार्गों को यातायात के लिए खोल दिया गया है। मौसम विभाग ने 23 जुलाई तक राज्य में मूसलाधार बारिश की चेतावनी जारी की है। जम्मू से एन गुलशन रैना की रिपोर्ट के साथ समाचार कक्ष से शशांक कुमार।
1: केंद्र शासित प्रदेश के कई जिलों में तेज बारिश, अचानक आई बाढ़ और भूस्खलन के बाद उपराज्यपाल मनोज सिन्हा ने स्थिति की समीक्षा की। वहीं मुख्यमंत्री उमर अब्दुल्ला ने राजौरी और पुंछ जिलों में बारिश से हुई मौतों पर मृतकों के परिजनों को 6-6 लाख रुपए की अनुग्रह राशि देने की घोषणा की है। उत्तराखंड में रुक रुक कर बारिश का सिलसिला जारी है। पहाड़ी इलाकों में बारिश और भूस्खलन के कारण कई राष्ट्रीय राजमार्गों, प्रमुख सड़कों और ग्रामीण संपर्क मार्गों पर यातायात प्रभावित हुआ है। इस बीच मौसम विभाग ने अगले 24 घंटों में राज्य के कई जिलों में मूसलाधार वर्षा की संभावना व्यक्त की है।
5: तेज बारिश के चलते देहरादून मसूरी मुख्य मार्ग पानी वाले बैंड के पास क्षतिग्रस्त हो गया है। लोगों की सुरक्षा को देखते हुए प्रशासन ने इस मार्ग पर आवाजाही अगले आदेश तक पूरी तरह प्रतिबंधित कर दी है। आमजन से मार्ग के खुलने तक मसूरी आने जाने के लिए वैकल्पिक मार्ग का प्रयोग करने का अनुरोध किया गया है। वहीं गढ़वाल आयुक्त आनंद स्वरूप ने चारधाम यात्रा मार्गों के बंद होने की स्थिति में तीर्थयात्रियों को सुरक्षित स्थानों पर ठहराने और मार्ग पूरी तरह सुरक्षित होने के बाद ही यात्रा शुरू करने के संबंधित जिलाधिकारियों को निर्देश दिए हैं। तीर्थयात्रियों से अफवाह पर ध्यान न देने और प्रशासन की आधिकारिक सलाह मानने के लिए अपील की गई है। साक्षी सिंह, आकाशवाणी समाचार, देहरादून।
1: हिमाचल प्रदेश के कांगड़ा, मंडी और सिरमौर जिलों में मौसम विभाग द्वारा जारी रेड अलर्ट के मद्देनजर कल सभी शिक्षण संस्थान बंद रहेंगे। चंबा, कांगड़ा, कुल्लू, मंडी और सिरमौर जिलों में तेज बारिश की चेतावनी जारी की गई है। मौसम विभाग ने दिल्ली, हरियाणा, चंडीगढ़, पंजाब, हिमाचल प्रदेश, उत्तराखंड, झारखंड, ओडिशा और उत्तर प्रदेश में अगले 2 दिन में तेज बारिश की संभावना व्यक्त की है। मध्य प्रदेश, बिहार, छत्तीसगढ़, पश्चिम बंगाल और पूर्वोत्तर क्षेत्र में भी अगले 2-3 दिन तक ऐसा ही मौसम रहेगा। सामाजिक न्याय और अधिकारिता मंत्रालय कमजोर और वंचित वर्गों के सामाजिक और आर्थिक पुनर्वास के लिए स्माइल योजना लागू कर रहा है। इस योजना का उद्देश्य जरूरतमंद लोगों को सम्मानजनक जीवन जीने और स्थायी आजीविका के अवसर उपलब्ध कराना है। सरकार ने कहा है कि इस वर्ष जून तक लगभग 55 करोड़ 49 लाख उपयोगकर्ता यूपीआई से जुड़ चुके हैं। लोकसभा में एक लिखित उत्तर में वित्त राज्य मंत्री पंकज चौधरी ने बताया कि वित्त वर्ष 2025-26 में 24,162 करोड़ यूपीआई लेन देन में 314 लाख करोड़ रुपए का आदान प्रदान हुआ। यूनिफाइड डिस्ट्रिक्ट इंफॉर्मेशन सिस्टम फॉर एजुकेशन प्लस 2025-26 के आंकड़ों के अनुसार देश भर में स्कूलों में नामांकन बढ़कर लगभग 25 करोड़ हो गया है। लोकसभा में लिखित जवाब में शिक्षा मंत्री धर्मेंद्र प्रधान ने कहा कि प्राथमिक, प्रारंभिक, मध्य और माध्यमिक स्तर की शिक्षा में वर्ष 2025-26 में नामांकन अनुपात वर्ष 2024-25 की तुलना में बेहतर हुआ है। उन्होंने कहा कि सभी स्तरों पर स्त्री पुरुष समानता सूचकांक 1 या उससे अधिक है। आकाशवाणी का समाचार सेवा प्रभाग रात 9:30 फोन इन कार्यक्रम पब्लिक स्पीक में आज आयकर रिटर्न भरना, जागरूकता, सुविधा और समय से अनुपालन विषय पर परिचर्चा प्रसारित करेगा। सनदी लेखाकार और कर विशेषज्ञ शरद कोहली तथा बैंकिंग विशेषज्ञ अश्विनी राणा परिचर्चा में हिस्सा लेंगे। श्रोता स्टूडियो में उपस्थित विशेषज्ञों से विषय से संबंधित प्रश्न पूछ सकते हैं। पीवी सिंधु कल से शुरू होने वाले चाइना ओपन 2026 बैडमिंटन टूर्नामेंट में भारतीय दल की अगुवाई करेंगी। महिला सिंगल्स में सिंधु के साथ देविका सिहाग और उन्नति हुड्डा शामिल हैं। पुरुष सिंगल्स में लक्ष्य सेन, आयुष शेट्टी और एच एस प्रणॉय टीम का हिस्सा हैं। अंत में मुख्य समाचार एक बार फिर। संसद के मानसून सत्र के पहले दिन की शुरुआत हंगामे से हुई। दोनों सदनों की कार्यवाही विभिन्न मुद्दों को लेकर बार बार बाधित। केंद्रीय मंत्री जेपी नड्डा ने नई दिल्ली में प्रदर्शनकारियों से बातचीत की, धरना समाप्त करने और स्थिति सामान्य करने की अपील की। राष्ट्रपति द्रौपदी मुर्मू ने भारत और मोल्दोवा के बीच मजबूत आर्थिक सहयोग तथा तेजी से बढ़ते क्षेत्रों में सहयोग का आह्वान किया। जम्मू संभाग में मूसलाधार वर्षा से 4 और लोगों की मौत, पिछले 2 दिन में मरने वालों की संख्या 16 हुई। उपराज्यपाल मनोज सिन्हा ने कई जिलों में बाढ़ की स्थिति का जायजा लिया। हिमाचल प्रदेश और जम्मू कश्मीर में कल तेज बारिश का रेड अलर्ट और ब्रिटेन में लेबर पार्टी के एंटी बर्नहम ने नए प्रधानमंत्री के रूप में कार्यभार संभाला। इसके साथ ही समाचार संध्या का ये अंक समाप्त हुआ। नमस्कार।

0: डेंगू, मलेरिया, चिकनगुनिया जैसे रोग संचारी रोग होते हैं। इनसे बचने के लिए घर के दरवाजे और खिड़कियों पर जाली लगवाएं, मच्छरदानी का प्रयोग करें, पानी की टंकी को ढक कर रखें, पूरी बांह वाले कपड़े पहनें, कूलर की नियमित सफाई करें और अनुपयोगी वस्तुओं में पानी ना जमा होने दें।
1: अधिक जानकारी के लिए टोल फ्री हेल्पलाइन नंबर 1800-1805-145 पर कॉल करें।
0: राष्ट्रीय स्वास्थ्य मिशन उत्तर प्रदेश द्वारा जनहित में जारी

0: लता मंगेशकर की आवाज में अभी आप सुन रहे थे दिलक मंदिर फिल्म के इस गाने को। गाइए गुनगुनाइए कहिए हमसे दिल की बात।
1: आपकी फरमाइश पर हम चलेंगे म्यूजिकल रिदम के साथ।
2: हेलो,
0: फिर क्या, फोन उठाइए, वॉल्यूम बढ़ाइए,
1: जो चाहे वो ट्रैक सुनाइए।
0: डायल करिए 0544529710। मंगलवार और शुक्रवार दिन में 11 बजे से।
1: हेलो फरमाइश, योर म्यूजिक योर स्टाइल,
0: ओनली ऑन AIR ओबरा।

मोहम्मद रफी की आवाज में अभी आप सुन रहे थे नील कमल फिल्म का ये गीत। इसी के साथ पुरानी फिल्मी गीतों का कार्यक्रम भूले बिसरे गीत अब समाप्त होता है।

हम आकाशवाणी ओबरा से बोल रहे हैं। FM 102.7 पर रात्रि के 9:30 हो रहे हैं। आपको सुनवाते हैं कार्यक्रम फिल्म संगीत।

श्रोताओं, कार्यक्रम में अगला गीत आपको सुनवाने से पहले एक सूचना आपको दे दें कार्यक्रम संबंधी। आपके ईमेल संदेश पर आधारित फरमाइशी फिल्मी गीतों का कार्यक्रम म्यूजिक गैलरी आज प्रसारित होगा रात्रि 10:13 से। तो फिर सुनते रहिए, जुड़े रहिए आकाशवाणी उपरा से।

अभी आप सुन रहे थे अनुराधा पौडवाल और शब्बीर कुमार की आवाजों में तेरी मेहरबानियां फिल्म के इस गाने को। श्रोताओं, आपके ईमेल संदेश पर आधारित फरमाइशी फिल्मी गीतों का कार्यक्रम म्यूजिक गैलरी आज प्रसारित होगा रात्रि 10:13 से। फिल्म संगीत कार्यक्रम आप सुन रहे हैं आकाशवाणी ओपरा से। कार्यक्रम में शामिल करने जा रहे हैं शब्बीर कुमार और लता मंगेशकर की आवाज में कुदरत का कानून फिल्म के इस गाने को।

0: श्रोताओं, तेरे नाम फिल्म का ये गीत अभी आप सुन रहे थे उदित नारायण की आवाज में। गाइए, गुनगुनाइए, कहिए हमसे दिल की बात।
1: आपकी फरमाइश पर हम चलेंगे म्यूजिकल रिदम के साथ।
2: हेलो,
0: फिर क्या, फोन उठाइए, वॉल्यूम बढ़ाइए,
1: जो चाहे वो ट्रैक सुनाइए।
0: डायल करिए 0544529710 मंगलवार और शुक्रवार दिन में 11 बजे से।
1: हेलो फरमाइश, योर म्यूजिक योर स्टाइल,
0: ओनली ऑन AIR ओबरा।

श्रोताओं, अभी आप सुन रहे थे आजा सनम फिल्म का ये गीत। आवाजें थी सुरेश वाडकर और अनुराधा पौडवाल की। इसी के साथ फिल्म संगीत का यह कार्यक्रम समाप्त हुआ।

हम आकाशवाणी ओपरा से बोल रहे हैं। श्रोताओं, आपके ईमेल संदेश पे आधारित फरमाइशी फिल्मी गीतों का कार्यक्रम म्यूजिक गैलरी आज प्रसारित होगा रात्रि 10:13 से। तो फिर सुनिए और जुड़े रहिए आकाशवाणी ओपरा से।

हम आकाशवाणी ओपरा से बोल रहे हैं FM 102.7 पर। हमारा अगला प्रसारण होगा आकाशवाणी के दिल्ली केंद्र से, कृपया प्रतीक्षा करें।

0: ये आकाशवाणी है, कृपया हमारे अगले प्रसारण की प्रतीक्षा कीजिए। ये आकाशवाणी है। अब आप आज लोकसभा में प्रश्नकाल के दौरान हुई कार्यवाही की रिकॉर्डिंग सुनेंगे। दिस इज द दिल्ली स्टेशन ऑफ आकाशवाणी। प्लीज स्टैंड बाय फॉर आवर नेक्स्ट ब्रॉडकास्ट। यू विल नाउ लिसन टू द प्रोसीडिंग्स ड्यूरिंग द क्वेश्चन आवर इन लोकसभा टुडे।
1: माननीय सभासदों, माननीय अध्यक्ष जी,
2: माननीय सदस्यगण, अत्यंत दुख के साथ मुझे सभा को अपने 6 पूर्व साथियों एवं कतर के पूर्व अमीर फादर अमीर महामहिम शेख हमद बिन खलीफा अल थानी के निधन के बारे में सूचित करना है। श्री नादेन दला भास्कर राव अविभाजित आंध्र प्रदेश के खम्मम संसदीय निर्वाचन क्षेत्र से, जो अभी तेलंगाना में है, 12वीं लोकसभा के सदस्य थे। वे उद्योग संबंधी संसदीय स्थायी समिति के सदस्य भी रहे। श्री राव आंध्र प्रदेश के मुख्यमंत्री भी रहे और उन्होंने आंध्र प्रदेश के सरकार में मंत्री के रूप में भी कार्य किया। श्री नादेंदला भास्कर राव का निधन 90 वर्ष की आयु में 22 अप्रैल 2026 को हैदराबाद तेलंगाना में हुआ। श्रीमती ओमवती देवी उत्तर प्रदेश के बिजनौर संसदीय क्षेत्र से 12वीं लोकसभा की सदस्य थी। वे श्रम कल्याण संबंधी संसदीय स्थायी समिति की सदस्य रही। इससे पूर्व वे 4 कार्यकालों के लिए उत्तर प्रदेश विधानसभा की सदस्य भी रही। उन्होंने उत्तर प्रदेश सरकार में मंत्री के रूप में अपनी सेवाएं दी। श्रीमती ओमवती देवी का निधन 77 वर्ष की आयु में 8 मई 2026 को बिजनौर उत्तर प्रदेश में हुआ। श्री सुधांशु सील पश्चिम बंगाल के कोलकाता उत्तर पश्चिम संसदीय क्षेत्र से 14वीं लोकसभा के सदस्य थे। वह शहरी विकास संबंधी संसदीय स्थायी समिति के सदस्य थे। इससे पूर्व पश्चिम बंगाल विधानसभा के सदस्य भी रहे। श्री सुधांशु सील जी का निधन 81 वर्ष की आयु में 14 मई 2026 को कोलकाता पश्चिम बंगाल में हुआ। मेजर जनरल भुवन चंद खंडूरी उत्तराखंड के गढ़वाल संसदीय निर्वाचन क्षेत्र से 10वीं 12वीं 13वीं 14वीं और 16वीं लोकसभा के सदस्य थे। वे रक्षा संबंधी संसदीय समिति तथा वित्तीय संबंधी संसदीय समिति के सभापति भी रहे। वह अन्य कई संसदीय समितियों में भी अपनी सेवाएं दी। उन्हें सड़क परिवहन राजमार्ग मंत्री तथा शहरी विकास गरीबी उपशमन मंत्री के रूप में भी अपनी सेवाएं दी। श्री खंडूरी जी 2 बार उत्तर प्रदेश के उत्तराखंड के मुख्यमंत्री भी रहे। मेजर जनरल भुवन चंद खंडूरी जी का निधन 91 वर्ष की आयु में 19 मई 2026 को देहरादून उत्तराखंड में हुआ। श्री केपी धन पालन केरल के चाला कुंडी संसदीय निर्वाचन क्षेत्र से 15वीं लोकसभा के सदस्य थे। वे वाणिज्य संबंधी

0: संसदीय समिति के सदस्य तथा कंप्यूटर के प्रावधान संबंधी संसदीय समिति के सदस्य भी रहे। श्री केपी धनपालन का निधन 76 वर्ष की आयु में 30 मई 2026 को एर्नाकुलम केरल में हुआ। श्री प्यारेलाल संगवार उत्तर प्रदेश के घाटमपुर संसदीय निर्वाचन क्षेत्र से 13वीं लोकसभा के सदस्य थे। इससे पूर्व वे 2 कार्यकालों के लिए उत्तर प्रदेश विधानसभा के सदस्य भी रहे। श्री प्यारेलाल संगवार का निधन 71 वर्ष की आयु में 8 जुलाई 2026 को दिल्ली में हुआ। सभा अपने 6 पूर्व साथियों के निधन पर गहरा शोक व्यक्त करती है और शोक संतप्त परिवारों के प्रति संवेदना व्यक्त करती है। माननीय सदस्यगण, मुझे अत्यंत दुख के साथ सभा को कतर के फादर अमीर महामहिम शेख अहमद बिन खलीफा अल थानी के निधन के बारे में भी सूचित करना है। महामहिम शेख अहमद बिन खलीफा अल थानी ने जून 1995 से जून 2013 तक 18 वर्षों तक कतर के अमीर के रूप में कार्य किया। उन्होंने आधुनिक कतर की नींव रखी और उसे विकास और समृद्धि की महान ऊंचाइयों पर पहुंचाया। उन्होंने भारत कतर संबंधों के संवर्धन में भी महत्वपूर्ण भूमिका निभाई। महामहिम शेख अहमद बिन खलीफा अल थानी का निधन 74 वर्ष की आयु में 12 जुलाई 2026 को निधन हो गया है। सभा महामहिम अमीर शेख अहमद बिन खलीफा अल थानी के निधन पर कतर के लोगों और शाही परिवारों के प्रति अपनी गहरी संवेदना व्यक्त करती है। अब सभा दिवंगत आत्माओं के सम्मान में मौन रहेगी। ओम शांति। मान्य सदस्यगण, प्लीज आप निधन संबंधी उल्लेख के समय सदन की मर्यादाओं को बने रहिए। नहीं, सदन के अंदर यह अपेक्षा है कि कुछ मर्यादाएं सदन की हमेशा रही है, उन मर्यादाओं परंपराओं को पालन करना सबकी जिम्मेदारी है। मैं यही आपसे अपेक्षा करता हूं। नो, मेरी सदन में हमेशा ये अपेक्षा रहेगी सदन की परंपराओं और प्रतिष्ठा को बनाए रखें। मैं सबको उचित समय देता हूं, सार्थक चर्चा हो, संवाद हो, तर्क हो, इसके लिए संसद है। आप तर्क से चर्चा करें, नारेबाजी से संसद की मर्यादा नहीं बनती है। प्लीज, प्रश्नकाल, प्रश्न नंबर 1, धवन लक्ष्मण भाई पटेल।
1: प्रश्न नंबर 1, प्रश्न संख्या 1, क्या संस्कृति मंत्री ये बताने की कृपा करेंगे कि क भारत की धरोहर पांडुलिपियों को सुरक्षित रखने के लिए शुरू की गई ज्ञान भारतम पहल के उद्देश्य और प्रमुख घटक क्या हैं? ख, क्या भारत की पांडुलिपि और ज्ञान की विरासत के संरक्षण के लिए उक्त पहल में दक्षिण गुजरात के वलसाड निर्वाचन क्षेत्र के ढोडिया, कोकना और वर्ली समुदायों सहित जनजातीय समुदायों की मौखिक और पांडुलिपि परंपराओं का प्रलेखन शामिल है? ग, उक्त पहल के अंतर्गत ऐसी जनजातीय ज्ञान परंपराओं सहित प्राचीन पांडुलिपियों और ज्ञान की परंपरा के डिजिटीकरण, परिरक्षण और प्रसार में कितनी प्रगति हुई है? घ, ये पहल भारत की सभ्यता और ज्ञान की विरासत को सुदृढ़ करने के लिए किए जाने वाले व्यापक प्रयासों के साथ किस प्रकार जुड़ती है? और अंग, क्या सरकार के पास आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस AI के उपयोग सहित इन डिजिटीकृत संसाधनों के साथ विद्वान जन के व्यापक जुड़ाव, सहयोग और लोगों के लिए इनकी सुलभता हेतु कोई रूपरेखा है?
2: मेरा प्रश्न मंत्री जी से यह है कि भारत की पांडुलिपि विरासत के संरक्षण हेतु प्रारंभ की गई ज्ञान भारत का पहला उद्देश्य और उसके प्रमुख घटक क्या है, तथा दक्षिण गुजरात के वलसाड संसदीय क्षेत्र के ढोडिया, कोकड़ा और वाली जैसे जनजाति के मौखिक और पांडुलिपि परंपराओं के दस्तावेज

0: दस्तावेजीकरण किया जा रहा है और इसमें एआई का उपयोग किया जा रहा है।
1: माननीय अध्यक्ष महोदय, विरासत हमें दिशा भी देता है, विरासत हमें दर्शन भी देता है और इसलिए मोदी जी ने विकसित भारत की जब कल्पना करी तब रेड फोर्ट से अपने उद्बोधन में कहा था कि हमें विकसित भारत बनाना है, तो विकसित भारत बनाने के लिए हम प्रेरणा कहां से लेंगे। मोदी जी ने प्राण लेलवाते हुए देश को कहा था कि हम विकसित भारत बनाने के लिए संकल्प करेंगे विकसित भारत बनाने का। दूसरा प्रण लेलवाते हुए गुलामी की मानसिकता को छोड़ने की बात कही थी और तीसरा प्रण लेलवाते हुए मोदी जी ने कहा था कि युवा सबसे प्रेरणा लेकर हम विकसित भारत बनाएंगे। हमारे मेनू हमारी विरासत है और आज मंदिर के रूप में, शोक संस्थान के रूप में, महाविद्यालयों में, मठों में, जैन भंडारों में और निजी संग्रहालयों में हमारी मैनुस्क्रिप्ट है। ये मैनुस्क्रिप्ट को हम ज्ञान भारत मिशन के द्वारा उसको आरक्षित करने के लिए, डिजिटलीकृत करने के लिए, रिसर्च ड्रिवन बनाने के लिए, जन सुलभी बनाने के लिए मोदी जी ने ज्ञान भारत मिशन का लॉन्च करा और ये ज्ञान भारत मिशन के द्वारा देश में आज 1 करोड़ से अधिक मैनुस्क्रिप्ट का सर्वे करा गया। उसमें से ये मैनुस्क्रिप्ट में से 8 करोड़ अब डिजिटलाइज हो चुके हैं और उसमें से 3,74,000 मैनुस्क्रिप्ट अब ऑलरेडी अपलोड हो चुके हैं और उसमें माननीय सदस्य ने कहा है कि अपनी लोकल लैंग्वेज में भी कोई जो मैनुस्क्रिप्ट होगी उसको भी सर्वे में शामिल करके उसको भी उसके प्रति संशोधन करा जाएगा और डिजिटलाइज करा जाएगा।
2: सदस्यगण, संसद लोकतंत्र का सर्वोच्च संस्था है, मेरा आपसे आग्रह है आप सदन के अंदर सार्थक चर्चा करें, संवाद करें, लोगों की जन आकांक्षाओं अपेक्षाओं को रखें। मैं सभी माननीय सदस्यों को उचित नियमों के तहत पर्याप्त समय पर्याप्त मौका दूंगा। मेरा आपसे आग्रह कि तख्तियां और नारेबाजी से सदन की मर्यादा नहीं बनती है। मेरा आग्रह है कि सदन का प्रथम दिन है और इस परंपरा को तोड़ना चाहिए कि प्रथम दिन सदन नहीं चलेगा। मैं हमेशा आपसे आग्रह कहता हूं कि आपको पर्याप्त अवसर पर्याप्त समय मिलेगा, नियमों के तहत नोटिस दीजिए, सदन नियमों प्रक्रियाओं से चलता है, मैं आपको प्रयास में दूंगा। अभी प्रश्नकाल है, प्रश्नकाल के अंदर नारेबाजी करना तथ्या लेराना उचित नहीं है। आप सब वरिष्ठ सदस्य हैं, प्लीज आपसे आग्रह है कि अपनी सीट पर बैठें, सदन चलाने में सहयोग करें। सदन नहीं चलाना चाहते, प्रश्नकाल नहीं चलाना चाहते, चर्चा नहीं करना चाहते, सदन की कार्रवाई आज 12 बजे तक के लिए स्थगित की जाती है।
3: अभी आप आज लोकसभा में प्रश्नकाल के दौरान हुई कार्यवाही की रिकॉर्डिंग सुन रहे थे। यू आर लिसनिंग टू द प्रोसीडिंग्स ड्यूरिंग द क्वेश्चन आवर इन लोकसभा टुडे। दिस ब्रॉडकास्ट केम टू यू फ्रॉम दिल्ली स्टेशन ऑफ आकाशवाणी।

102.7 पर आकाशवाणी का ये ओबरा केंद्र है। आइए सुनते हैं कार्यक्रम म्यूजिक गैलरी। श्रोताओं, हर गीत अपने साथ कोई ना कोई एहसास लेकर जरूर आता है। कभी कोई गीत मुस्कान दे जाता है, तो कभी कोई गीत बीते हुए दिनों की याद दिला जाता है, तो कोई अपनों को और करीब लेके आता है। इन्हीं खूबसूरत एहसासों को आपकी ईमेल से मिली फरमाइशों के साथ लेकर हम एक बार फिर से हाजिर हैं आकाशवाणी ओबरा FM 102.7 से प्रसारित होने वाले कार्यक्रम म्यूजिक गैलरी में। कार्यक्रम के साथ मैं आशीष वर्मा। और श्रोताओं, अगर आप भी चाहते हैं कि आपकी पसंद का गीत कार्यक्रम म्यूजिक गैलरी का हिस्सा बने, तो अपना नाम, अपना पता और जिस अपने के लिए गीत सुनना चाहते हैं उसका उल्लेख करते हुए हमें ईमेल करिए। ईमेल आईडी है akashvaniobra@gmail.com, यानी कि akashvaniobra@gmail.com। तो आइए फिर शुरुआत करते हैं कार्यक्रम की। आपको सुनवाते हैं ये पहला गीत।

0: तो श्रोताओं, ये था कार्यक्रम का पहला गीत अनुराधा पौडवाल और पंकज उधास की आवाजों में दयावान फिल्म से। और इस गीत के लिए हमें मेल किया था चोपन रोड ओबरा से तृप्ति जायसवाल और इनके घर के सभी सदस्यों ने। गाइए, गुनगुनाइए, कहिए हमसे दिल की बात।
1: आपकी फरमाइश पर हम चलेंगे म्यूजिकल रिदम के साथ।
2: हेलो,
0: फिर क्या, फोन उठाइए, वॉल्यूम बढ़ाइए,
1: जो चाहे वो ट्रैक सुनाइए।
0: डायल करिए 0544529710 मंगलवार और शुक्रवार दिन में 11 बजे से।
1: हेलो फरमाइश, योर म्यूजिक योर स्टाइल,
0: ओनली ऑन AIR ओबरा। और श्रोताओं, अब बढ़ते हैं कार्यक्रम के अगले गीत की ओर, जिसके लिए हमें फरमाइश लिख भेजी है गांव मातनपुर पोस्ट महाराजपुर जिला आजमगढ़ से सौम्या यादव, आकृति यादव, नकुल और रकुल ने। आप सबकी फरमाइश ये है कि आपको निगाहें फिल्म का एक गीत सुनना है, जिसे गाया है मोहम्मद अजीज ने। गाने में सावन का जिक्र है, गांव की मिट्टी की खुशबू है। तो आइए सुनते हैं आपकी पसंद वाला ये गीत।

कार्यक्रम म्यूजिक गैलरी आप सुन रहे हैं आकाशवाणी ओपरा से। कार्यक्रम के साथ मैं हूं आशीष वर्मा। और आप भी चाहते हैं कि अगर इस कार्यक्रम में आपकी पसंद का गीत गूंजे तो हमें मेल करिए इस आईडी पर akashvaniobra@gmail.com यानी कि akashvanioBRA@gmail.com। और अब हमारी कंप्यूटर स्क्रीन पे दिख रहा है अरुण कुमार का एक मैसेज डाला नई बस्ती से जो आया हुआ है। इन्होंने सुनना चाहा है अनुराधा पौडवाल और उदित नारायण की आवाज में एक गीत दिल फिल्म से।

हमें मेल कर रहे हैं akashvaniobra@gmail.com पर। अगला गीत आशिया बानो की फरमाइश पर है, जिसे इन्होंने मुंबई से हमें लिख भेजा है। आप चाहते हैं कि आपको हिना फिल्म के कव्वाली सुनवाई जाए, जिसमें आवाजें लता मंगेशकर और साथियों की है। साथ ही इस गीत को सुनने की फरमाइश आपके साथ की है ओबैद, सिद्धेश और संदेश ने भी। तो आइए आपकी फरमाइश पूरी करते हैं, आपको सुनवाते हैं हिना फिल्म की ये कव्वाली।

कार्यक्रम म्यूजिक गैलरी आप सुन रहे हैं आकाशवाणी ओपरा से। कार्यक्रम के साथ मैं हूं आशीष वर्मा। और अब जो गीत हम आपको सुनवाने जा रहे हैं, इसके लिए हमें मेल आया है प्रवीण कुमार का डाला सोनभद्र से। आपने सुनना चाहा है उदित नारायण की आवाज में रोग फिल्म का ये गीत। प्रवीण जी के साथ इस गीत को हम भी सुनते हैं और आप सब सुनिए। बहुत ही प्यारा सा गीत है, हम उम्मीद करते हैं कि आप सबको भी अच्छा लगेगा।

0: कार्यक्रम म्यूजिक गैलरी आप सुन रहे हैं आकाशवाणी उबरा से, जिसके लिए आपने हमें मेल किया है इस मेल आईडी पर। मेल आईडी है akashvaniobra@gmail.com, यानी कि akashvaniobra@gmail.com। गाइए गुनगुनाइए, कहिए हमसे दिल की बात।
1: आपकी फरमाइश पर हम चलेंगे म्यूजिकल रिदम के साथ।
2: हेलो,
0: फिर क्या, फोन उठाइए, वॉल्यूम बढ़ाइए,
1: जो चाहे वो ट्रैक सुनाइए।
0: डायल करिए 0544527100 मंगलवार और शुक्रवार दिन में 11 बजे से।
1: हेलो फरमाइश, योर म्यूजिक योर स्टाइल,
0: ओनली ऑन AIR ओबरा। और अब जो फरमाइश हमें आई है, ये हमें मिल रही है छत्रपति संभाजी नगर महाराष्ट्र से। अनिल घोटके ने इन्हें देखा है। आपने सुनना चाहा है घरौंदा फिल्म का गीत। आवाजें हैं रूना लैला और भूपेंद्र सिंह की।
3: दीवाना,
4: एक दीवाना शहर में,
3: एक दीवाना नहीं एक दीवानी भी।
4: दो दीवाने शहर में।

श्रोताओं, रेडियो उद्घोषक और श्रोता का रिश्ता आवाज से शुरू होकर विश्वास, आत्मीयता और दिलों के जुड़ाव तक पहुंचता है। यह कहना है उत्तम सिंह जंघेल का, जिनका संदेश हमें मिला है कुकहा भिलाई से, जिनके साथ मोरस जंघेल, अनिल कुमार, अजीत कुमार, आयुष जंघेल और नंदिनी जंघेल ने सुनना चाहा है लोफर फिल्म का गीत। आवाज लता मंगेशकर की है। तो चलिए फिर आपकी फरमाइश को पूरी करते हैं, आपको सुनवाते हैं आपकी पसंद वाला ये गीत।

तो श्रोताओ, ये था हमारा आज का ईमेल आधारित फरमाइशी गीतों का कार्यक्रम म्यूजिक गैलरी, जिसे आप सुन रहे थे आशीष वर्मा के साथ। और श्रोताओ, आप भी इस कार्यक्रम का हिस्सा जरूर बनिए। हमें ईमेल करिए अपने पसंद के गीतों को सुनने के लिए। मेल आईडी है akashvaniobra@gmail.com, यानी कि akashvaniobra@gmail.com। कार्यक्रम यहीं समाप्त होता है। सुनते रहिए, जुड़ते रहिए आकाशवाणी ओबरा से। नमस्कार।

हम आकाशवाणी ओबरा से बोल रहे हैं FM 102.7 पर। श्रोताओं, रात्रि के 11 बजने को हैं। अब से बस थोड़ी ही देर में आप सुनेंगे हिंदी में समाचार हमारे दिल्ली

0: नमस्कार, आकाशवाणी समाचार के साथ मैं जया भारती। संसद के मॉनसून सत्र के पहले दिन की शुरुआत हंगामे से हुई। आज विभिन्न मुद्दों सहित नीट परीक्षा पेपर लीक मामले पर विपक्ष के विरोध के बीच दोनों सदनों की कार्यवाही कई बार बाधित हुई। हंगामा जारी रहने पर कार्यवाही बार बार स्थगित किए जाने के बाद कल तक के लिए स्थगित कर दी गई। और ब्यौरा हमारे संवाददाता से।
1: विपक्ष के विरोध के चलते लोकसभा की कार्यवाही 7 बार और राज्यसभा की कार्यवाही 6 बार स्थगित की गई। इस व्यवधान के कारण दोनों सदनों में प्रश्नकाल नहीं चल सका। वहीं विपक्ष के हंगामे के बीच लोकसभा में विधि और न्याय मंत्री अर्जुन राम मेघवाल ने उच्चतम न्यायालय न्यायाधीश संख्या संशोधन विधेयक 2026 पेश किया। इस विधेयक का उद्देश्य उच्चतम न्यायालय न्यायालय संख्या अधिनियम 1956 में संशोधन कर न्यायाधीशों की संख्या को मौजूदा 33 से बढ़ाकर 37 करना है। इसमें भारत के मुख्य न्यायाधीश शामिल नहीं है। वहीं राज्यसभा में जब सदन की कार्यवाही सुबह 11 बजे शुरू हुई तो 9 निर्वाचित सदस्यों ने उच्च सदन के सदस्य के तौर पर शपथ ली। आनंद कुमार के साथ अमन यादव, आकाशवाणी समाचार, दिल्ली।
0: प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने कहा है कि चाहे मॉनसून हो या मॉनसून सत्र, दोनों के सक्रिय रहने पर वे अत्यंत उत्पादक सिद्ध हो सकते हैं। संसद के मॉनसून सत्र से पूर्व संवाददाताओं से बातचीत में श्री मोदी ने कहा कि महज एक महीने में देश ने अनेक उपलब्धियां हासिल की हैं, जो प्रत्येक नागरिक को गौरवान्वित करती हैं। श्री मोदी ने सभी राजनीतिक दलों से सकारात्मक और सार्थक चर्चा का आग्रह किया।
2: मॉनसून हो या मॉनसून सत्र, अगर दोनों प्रोएक्टिव हो तो बहुत ही प्रोडक्टिव होते हैं, और दोनों को प्रोडक्टिव होते हैं तो देश का कल्याण होता है, जीव मात्र का कल्याण होता है। साथियों, पिछले एक महीने में देश ने अनेक सिद्धियां प्राप्त की है, चाहे राष्ट्रीय हो, अंतर्राष्ट्रीय हो, और अब तो अंतरिक्ष भी हो, भारत के लिए गर्व के पल रहे हैं।
0: केंद्रीय मंत्री जगत प्रकाश नड्डा ने आज नई दिल्ली में प्रदर्शनकारियों के प्रतिनिधियों से मुलाकात की। सोशल मीडिया पोस्ट में उन्होंने बताया कि बैठक में प्रतिनिधिमंडल के साथ विस्तार से चर्चा हुई। श्री नड्डा ने सभी प्रदर्शनकारियों से धरना समाप्त करने और स्थिति सामान्य करने में प्रशासन का सहयोग करने का आग्रह किया। इस बीच दिल्ली पुलिस ने सभी प्रदर्शनकारियों से शांति, संयम और सार्वजनिक व्यवस्था सुनिश्चित करने में पुलिस का सहयोग करने की अपील की है। वीडियो संदेश में दिल्ली पुलिस के अपर आयुक्त और जनसंपर्क अधिकारी राजीव रंजन ने जनता को किसी भी मंच के माध्यम से अफवाहों तथा गलत सूचनाओं पर विश्वास न करने की सलाह दी। विदेश मंत्री सुब्रमण्यम जयशंकर ने विश्वास व्यक्त किया है कि पनामा के विदेश मंत्री हावियर एडुआर्डो मार्टिनेज आजा वास्केज की यात्रा से सभी क्षेत्रों में द्विपक्षीय संबंध और मजबूत होंगे। नई दिल्ली में पनामा के विदेश मंत्री के साथ बैठक में डॉ. जयशंकर ने कहा कि यह यात्रा दोनों देशों के बीच हाल में हुए उच्च स्तरीय आदान प्रदान की गति को और आगे बढ़ाती है। उन्होंने कहा कि दोनों देशों की सरकारें और उनके नेता भारत पनामा साझेदारी को गहरा और व्यापक बनाने के लिए उत्सुक। सर्वोच्च न्यायालय ने आज केंद्र सरकार को निर्देश दिया है कि वह 2 सप्ताह के भीतर एक समिति का गठन करे जो देश भर के उच्च न्यायालयों के मुख्य न्यायाधीशों और न्यायाधीशों को सेवानिवृत्ति के बाद दी जाने वाली सुविधाओं के लिए एक समान दिशा निर्देश तैयार करेगी। मुख्य न्यायाधीश सूर्यकांत की अध्यक्षता वाली पीठ ने निर्देश दिया कि समिति के गठन के 3 महीने के भीतर केंद्र सरकार और सर्वोच्च न्यायालय दोनों को अपनी सिफारिशें प्रस्तुत करे। राष्ट्रीय सुरक्षा सलाहकार अजीत डोभाल को इस वर्ष के लोकमान्य तिलक राष्ट्रीय पुरस्कार के लिए चुना गया है। उन्हें यह प्रतिष्ठित पुरस्कार लोकमान्य तिलक की 106वीं पुण्यतिथि के अवसर पर 1 अगस्त को पुणे में प्रदान किया जाएगा। लोकमान्य तिलक स्मारक ट्रस्ट के अध्यक्ष डॉ. रोहित तिलक ने आज एक प्रेस कॉन्फ्रेंस में इसकी घोषणा की। मौसम विभाग ने दिल्ली, हरियाणा, चंडीगढ़, पंजाब, हिमाचल प्रदेश, उत्तराखंड, झारखंड, ओडिशा और उत्तर प्रदेश में अगले 2 दिनों में तेज बारिश की संभावना व्यक्त की है। मध्य प्रदेश, बिहार, छत्तीसगढ़, पश्चिम बंगाल और पूर्वोत्तर क्षेत्र में भी अगले 2 से 3 दिनों तक ऐसा ही मौसम रहेगा। और खेलों में पीवी सिंधु कल से शुरू होने वाले चाइना ओपन 2026 बैडमिंटन टूर्नामेंट में भारतीय दल

0: की अगुवाई करेंगी। महिला सिंगल्स में सिंधु के साथ देविका सिहाग और उन्नति हुडा भी शामिल हैं। इसके साथ ही ये समाचार बुलेटिन समाप्त हुआ।
1: हम आकाशवाणी उभरा से बोल रहे हैं FM 102.7 पर। श्रोताओं, इस समय रात्रि के 11:05 हो रहे हैं। संपन्न होती है हमारी आज की ये सभा। कल सुबह 6:50 पर हम आपकी सेवा में पुनः उपस्थित होंगे। तब तक के लिए हमें अनुमति दें। जय हिंद।